ओम शांति। राखी का त्योहार सभी ब्रह्मावत्सों के लिए अलौकिकता की छाप छोड़ने वाला है। सभी के मन में सुंदर संकल्पों के, पवित्र संकल्पों के बीज पैदा होने लगते हैं। एक बहुत सुंदर समय होता है जब हमारे सभी सेवा केंद्रों पर बहुत ज्यादा अलौकिक वातावरण अनुभव में आता है। मुझे याद है जब दादी प्रकाश मणि थी, बिल्कुल शुरू के दिन केवल हिस्ट्री हॉल था, क्या रौनक होती थी इस दिन की। राखी बंधवा कर भी सब लोग वहीं बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे, ऐसा सुंदर प्रवाह रहता था। तो इस दिन सभी मिलकर बाबा को कुछ संकल्प भी देते हैं, न केवल प्योरिटी का, लेकिन किसी में क्रोध हो, जिससे परिवार को परेशानी हो रही हो उसको जीतने का, किसी में अभिमान ज्यादा हो उसको रियलाइज करके उस पर विजय पाने का। हम जानते हैं ये सब काम केवल प्रतिज्ञा करने से नहीं होते, लेकिन इनके लिए एक लंबे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो इस राखी के दिन सभी भाई बहने अपने अंदर कुछ विशेष परिवर्तन करने का शुभ संकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे और उस संकल्प को पूर्ण करने की प्लानिंग भी करेंगे, अर्थात पुरुषार्थ क्या करना है। कम से कम 6 मास तो राखी का त्योहार हमारे लिए वरदान बन जाएगा। बहने भाइयों को राखी बांधती हैं, दुनिया में तो ब्राह्मण भी बांधते हैं और बहने भी बांधती हैं और खर्ची भी लेते देते हैं। हम लोग अपना कोई मनोविकार देते हैं तो आज कोई सूक्ष्म संकल्प, कोई आकर्षण, कोई सूक्ष्म संशय का संकल्प, कोई अपने जीवन में निराशा का संकल्प, विनाश नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ करते करते थक गए हैं, इसको समाप्त करने का संकल्प, ऐसा एक संकल्प करते रहें। और याद रखेंगे विनाश की गति पहले धीमी ही होगी, फाइनल विश्वयुद्ध तो अंत में होगा, लेकिन बाबा ने मुरली में कहा विनाश में मुख्य भूमिका निभाएंगी अर्थक्वेक्स, प्राकृतिक प्रकोप। तो हमें उन्हें भी साक्षी होकर देखने का और सबको सकाश देने का एक सुंदर संकल्प करना है। राखी के पर्व पर मेरी तो ये शुभ भावना है कि सभी अपनी दिनचर्या में 15 मिनट ऐसा फिक्स करें, फिक्स, जिसमें संसार को सकाश दें, प्रकृति को भी सकाश दें, जिनको विघ्न बहुत आ रहे हैं जीवन में उनको भी सकाश दें। टाइम फिक्स करने से वही समय हमें आकर्षित करने लगता है और हम जैसे तैसे करके भी अगर नियमबद्ध हो जाएं तो सचमुच नियमों में बड़ा बल होता है। मान लो आपके घर में मेहमान ही आ गए और आपको 15 मिनट विश्व को सकाश देनी है, आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, तो आप उन्हें कह भी सकते हैं कि मुझे 15 मिनट साधना करनी है, कुछ आप ये कार्य कर लो, एंजॉय कर लो, कहीं घूम फिर लो और मैं 15 मिनट के बाद आता हूँ, आती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे बहुत अच्छा हो कि सवेरे 6 बजे तक ऐसा सकाश देने का अपना टाइम सभी फिक्स करें। ये न केवल बहुत सुंदर सेवा होगी बल्कि अपनी स्थिति को महान बनाने का भी एक बहुत ही भव्य और आकर्षक प्रोग्राम रहेगा। बाबा की मुख्य प्रेरणा है और ये सकाश देने की सेवा विनाश काल में हमें प्रकृति की मदद की पात्र भी बनाएगी। तो इस त्योहार को इस अलौकिक ढंग से सभी मनाएंगे। राखी बंधवाएं आप बहनों से, आपको किसी को बांधनी है, बहन है, आप भी बांधें, लेकिन ऐसी शुभ भावनाएं रखें ताकि दूसरे का पूरा कल्याण हो जाए। क्योंकि संगम युग पर जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कर लिया हो उसको जीवन में बहुत सुख मिलता है। तो राखी बांधें और बंधवाएं और इस दिन का बहुत आनंद लें, इस समय को, राखी को, अपने संकल्प को पूरा महत्व दें।
रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।

0: ओए रुको रुक, ओए रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, ये एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, अपनी भाषा को सदा मधुर बनाए रखो। यह मानव सफलता का सबसे बड़ा सोपान है जो ईश्वर ने आपको उपहार के रूप में दे रखा है। यह ऐसा खजाना है जिसमें से आप जितना भी खर्चें वह बढ़ता ही रहता है, कभी खाली नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि एक आदमी बिना किसी कठिनाई के सीधे ऊंचे पद पर आकर विराजमान हो जाता है, जबकि वैसा ही एक आदमी सारी उम्र एड़ियां रगड़ता रह जाता है, परंतु फिर भी उस पद तक नहीं पहुंच पाता, भले ही वह उस ऊंचे पद वाले से कितना ही अधिक योग्य क्यों न हो। वह बेचारा जो जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है, उस पद को पाने के लिए हर प्रयत्न करता है। ऐसा हमारे पूरे समाज में होता आ रहा है, शायद भविष्य में भी ऐसा ही होता रहे। कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? मैंने देखा है कि जब लोग उन्नति नहीं कर पाते तो भाग्य को कोसने लगते हैं, भाग्य को गालियां देकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आपकी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु भाग्य है, जिसके आगे आप हारे हुए जुआरी की भांति घुटने टेक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अपने शत्रु से हाथ मिलाने से तो कहीं अच्छा है आप किसी मित्र की तलाश करें, ऐसे मित्र की जो आपका मार्गदर्शक बन सके। इस भाग्य के झमेले से आप जितना दूर रहोगे उतनी ही उन्नति करोगे। आपके सच्चे मित्र हैं मधुर वाणी, हर एक के साथ प्रेम करना, प्रसन्न चित्त से बातें करने से ही आप सामने वाले का मन जीत सकते हैं। आज का युवा वर्ग उस समय बहुत ही हैरान होता है जब उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाता है। उन लोगों को इसका कारण समझ में नहीं आता, परंतु एक बात तो उन लोगों को याद ही रखनी होगी कि चुंबकीय आकर्षण वाला प्राणी सीधा विजय प्राप्त कर

एक नवयुवक जो बहुत अधिक आराम पसंद था। काम के बारे में उसका यही विचार था कि काम तो सारी जिंदगी ही होते रहते हैं, चार दिन की इस जिंदगी में चिंता की क्या जरूरत है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, सदा खुश रहो। खुश रहने से कुछ जाता नहीं, रोने से कुछ आता नहीं, दोनों में से किसी पर भी कुछ नहीं लगता, यह फैसला तो समय स्वयं करता। मगर एक बात तो मानी जा सकती है कि उस युवक के लिए सफलता के द्वार सदा खुले रहते थे। वह जहां भी जाता लोग उसका स्वागत करते थे, वह सदा ही खुशियां बांटता था, दुख की बात उसके निकट तक नहीं आती थी, लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहते। आखिर क्यों? उस युवक में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण लोग उसे चाहते थे? बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे। वह किसी को धन नहीं देता था, लेकिन वह धन से भी कीमती चीज लोगों को देता था। वह थी मन की खुशियां, जो सबको बराबर मिलती थी। वह हर आदमी की उलझन और चिंता का कोई न कोई हल ढूंढ देता था। यही कारण था कि लोग उसके पास दौड़े आते थे। हर सभा सोसाइटी में लोग उसकी प्रतीक्षा इसीलिए करते थे कि वह उन सब के मनोरंजन का साधन था। वह युवक न जाने क्यों इतना लोकप्रिय हो गया है, जबकि वह कुछ काम नहीं करता। इस पर भी सब के सब लोग उसे चाहते हैं, प्रेम करते हैं। जब देखो आवारा घूमता नजर आता है, ऐसे लोग यह बात नहीं सोचते कि वह आदमी लोगों को खुशियां बांटता है, सदा खुशियां बांटकर लोगों का मन जीत लेता है। उसके मधुर बोल ही लोगों का मन जीत लेते हैं, लोग यही तो चाहते हैं। उस युवक ने जो कुछ भी प्राप्त किया, उसे आप कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसने अपने गुणों के कारण अच्छे विद्वानों की संगत प्राप्त कर ली, उनके पास से उसे ज्ञान का अनमोल खजाना मिला, जिसके सहारे वह विद्वान बन गया। यही ज्ञान उसे आगे ही आगे ले जाता रहा, और एक दिन ऐसा आया जब उसके ज्ञान और उसकी हंसी के कारण एक अरबपति सेठ, जो पुराना रोगी था, बिल्कुल ठीक हो गया। उस सेठ ने खुश होकर उसे अपनी कंपनी में भागीदार बना लिया। इसे कहते हैं जीवन की सफलता और उन कर्मों के फल जो आप करते हैं। जो भी प्राणी सारे संसार को खुश रखने का प्रयास करता है, उसे स्वयं ही एक दिन खुशियों का खजाना मिल जाता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुपया पैसा सोना चांदी जो काम नहीं कर सकता वह प्रेम के दो शब्द कर देते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत कर ही आप असली विजेता बन सकते हैं। प्यार और सच्चे प्रेम से तो आप ईश्वर को भी पा सकते हैं। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पाइयो। जब प्रेम से आप प्रभु को पा सकते हैं तो इंसानों का मन जीतना कौन सी बड़ी बात है। प्यार के दो मीठे शब्द आपके जीवन में खुशियों का रंग भर सकते हैं, तो फिर आप अपने को बदल क्यों नहीं देते। नफरत, घृणा और दुर्व्यवहार आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। यही बात अपने पल्ले बांध लीजिए। जीवन की इन छोटी छोटी बातों पर आपका कोई खर्च तो आता नहीं। यदि आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो आप पर कोई बोझ तो पड़ता नहीं। नहीं हंसी आपको बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है। यह आपकी अपार संपत्ति है। भले ही आप गरीब हैं, मगर यह क्यों भूल जाते हैं कि आपके पास खुशियों का अनमोल खजाना है। प्रेम और मित्रता भी कभी न समाप्त होने वाली ऐसी पूंजी है जिसे आप किसी भी कारोबार में लगा देंगे तो आप पर धन की वर्षा होने लगेगी। आप अपने शत्रुओं पर बड़े बड़े आधुनिक हथियारों से विजय प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु जब प्यार के दो शब्द बोलकर उनसे मित्रता का हाथ मिला लें तो विजय आपकी ही होगी। भले ही आप धनवान हैं, यदि आप में शिष्टाचार की भावना नहीं, आप में प्रेम नहीं, आप किसी को मित्र बनाने की योग्यता नहीं रखते, तो फिर आप एक गरीब से भी नीचे की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेम से प्राणी महान बनते हैं, घृणा इंसान को पतित बनाती है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंचने वाले लोग अपनी नम्रता व मधुर वाणी के कारण ही इन ऊंचे पदों पर पहुंचकर महान बन सके हैं। लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह भी पक्की कर ली। बिना किसी हथियार के प्रयोग के उन्होंने लोगों के मन जीत कर उन पर विजय प्राप्त कर ली। किंतु जिन लोगों ने तलवार, बम, गोली, बारूद से संसार को विजय करने के सपने देखे थे, वे उस समय भी घृणा के पात्र थे और आज भी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं। इतिहास में उन्हें कोई अच्छा स्थान नहीं मिल सका। कोमलता एवं दयालुता की भावना का प्रदर्शन, नम्रता की छोटी छोटी चेष्टाएं, एकाग्रता से ध्यान देकर दूसरों के विचार सुनना, ये कुछ ऐसे बातें हैं जिनसे हर प्राणी का जीवन मधुर और निराशा से दूर हो सकता है।
1: हरे कृष्णा। जो भजन मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही सुंदर भाव में लिखा गया है और ये भजन जानवी भारद्वाज जी ने लिखा है। इस गीत में मथुरावासी और सारी गोपियाँ अपने भाव

0: पीछे पीछे पीछे चल। वह स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

यदि आपको सच्ची लोकप्रियता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा और साथ ही अपने आप को ईमानदार और स्वच्छ बनाना होगा। यदि आप एक आदर्शवादी मानव हैं, आपके दामन पर कोई दाग नहीं है, तो आपकी लोकप्रियता को कोई नहीं रोक सकेगा और आपकी छवि इस समाज में महान मानव जैसी होगी। आप स्वार्थी न बने बल्कि परोपकारी बने। अपने आप से ऊंचे उठकर उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे बहुत नीचे गिर पड़े हैं। ऐसे लोगों में अवश्य रुचि लें जो दुखी हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। एक बार ईसा मसीह अपने भक्तों के साथ जंगल से जा रहे थे कि उन्होंने धरती पर पड़े 5 ऐसे प्राणियों को देखा जिनकी टांगे नहीं थी। वे पेट के बल रेंग कर चल रहे थे। उनकी दयनीय हालत देखकर उनके मन में दया आ गई। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे ईश्वर, आप इन सभी को टांगे दे दो ताकि वे चलने के योग्य हो जाएं। यीशु तो स्वयं दयालु थे। वे सदा दीन दुखियों की सेवा करते रहे। उनके मन में भी दया आ गई। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, इस बेचारों को चलने योग्य बना दें। उनकी प्रार्थना से उन 5 को टांगे मिल गई। तो उनमें से 4 आदमी तो टांगे मिलते ही ऐसे भाग खड़े हुए जैसे कोई चोर चोरी करके भागता है। उनमें से केवल 1 आदमी ही वहां खड़ा रहा। उसने उनकी कृपा को पहचाना और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपका मैं जितना भी धन्यवाद करूं वह कम ही होगा। इस वक्त धन्यवाद न करना भी तो सबसे बड़ा पाप है। यीशु हंसकर उस आदमी से बोले, देखो प्राणी, संसार में कोई भी नेक काम धन्यवाद मांगने के लिए नहीं किया जाता। यह तो मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने पूरा किया। दुखी मानव जाति की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैंने यह करके तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि अपने ही धर्म का पालन किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे 4 साथी टांगों को मिलते ही भाग गए हैं। इनके साथ यदि तुम भी भाग जाते तो भी मुझे क्या फर्क पड़ सकता था। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आज का मानव तो किसी दूसरे का जरा सा काम करके भी उस पर 100 एहसान जताता है, मगर आप? हाँ, मैं किसी पर एहसान नहीं करता बल्कि अपना फर्ज पूरा करता हूँ। जाओ, तुम अपने जीवन का आनंद लो। मेरा धन्यवाद केवल इतना ही होगा कि दीन दुखियों की सेवा करो और इस सेवा के बदले में कुछ भी लेने का प्रयत्न न करना। कभी किसी के दिल को दुख मत देना। कभी किसी से कड़वा वचन मत बोलना। मधुर भाषा से ही मानव हृदय को जीता जा सकता है। बिना किसी स्वार्थ के मानव सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। यह थी यीशु महान की शिक्षा, जिसका एक एक शब्द आपके अंधेरे जीवन में प्रकाश ला देगा। आप नम्र रहेंगे तो आपके लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपने कभी उन वृक्षों की ओर देखा है जिन पर स्वादिष्ट फल लगे होते हैं? उनकी टहनियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। ठीक ऐसे ही आपको सोचना है। जब फल लग जाएं, अर्थात आपको ज्ञान विद्या प्राप्त हो जाए, तो आपके स्वभाव में नम्रता आ जानी चाहिए। नेकी करो, कुएं में डालो। इस सिद्धांत पर ही अमल करो। सदा भला करते रहो। इसी से आपका यश बढ़ेगा। दूसरों का भला करो, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। सदा मुस्कुराते रहो फलों की भांति। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कालचक्र, भारत भूमि पर जन्मे ऋषि मुनि महात्माओं सिद्ध संतों सन्यासियों को नमन करता हूं, जिन्होंने पवित्रता के मार्ग पर चलकर मनुष्यों के सामने एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया, भारतीय समाज के साथ विश्व को भी एक संदेश दिया कि कैसे ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता को हासिल किया जा सकता है। एक बार मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो अन्य शक्तियां स्वयं विकसित होने लगती हैं। विकारी विचारों से घिरा रहने वाला मन भटकना बंद कर देता है। पवित्र विचारों को धारण करने से मन की निर्बलता समाप्त हो जाती है। जैसा कि प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा शिव के निर्देशानुसार मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाए, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म विकार से वे मुक्त रहे, खुद फरिश्ता बन सभी को फरिश्ता बनने के लिए प्रेरित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महासचिव एवं वरिष्ठ राजयोगी बीके ब्रजमोहन को भी ब्रह्मा बाबा ने कुछ ऐसी अलौकिक अनुभूतियां कराई कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आज सुनेंगे उनके ब्रह्मा बाबा के साथ के कुछ यादगार अनुभव।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से

0: शांति। ब्रह्मा बाबा हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अलौकिक पिता हैं और ब्रह्मा बाबा ने हमको अलौकिक जन्म दिया है। लौकिक जन्म अर्थात शरीरी जन्म तो हमारा माता पिता का अलग अलग है ही, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने हमको अलौकिक जन्म दिया उससे हमारे अंदर क्या अलौकिकता आ गई, तो ज़रूर ब्रह्मा बाबा के अंदर वो थी, तभी तो हमारे अंदर आई। तो मैं जहाँ तक अपना अनुभव जानता हूँ वो ये है कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि मर जीवा जन्म होता है, एक ही जन्म में व्यक्ति जब एक रूप बदल के दूसरे में जाता है तो नया रूप उसका हो जाता है। एक व्यक्ति सन्यासी बनता है तो फिर पिछली लाइफ को भूल जाता है। इसमें मैंने क्या देखा कि सबसे पहले जब मैं अपने माता पिता के साथ माउंट आबू आया था, बहुत वर्ष पहले की बात है, शायद 1954 रहा होगा, तो उस वक़्त मैंने क्या देखा अलौकिक जन्म का। उस समय हम लोगों का गोद में जाने का रस्म होता था। गोद में जाने का रस्म अब नहीं रहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा इस शरीर में नहीं रहे। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है कि गोद का बच्चा बनना, इसका मतलब सचमुच ही ब्रह्मा बाबा जब बॉडी में थे तो उन्होंने हमें गोद में लेकर गोद का बच्चा बनाया। तो मेरा प्रथम एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं 21 वर्ष का था, ब्रह्मा बाबा की गोद में गया तो मुझे जैसे रुई जैसा महसूस हुआ कि मेरी बॉडी का वेट ही नहीं है, बिल्कुल हल्कापन महसूस हुआ और दिल करता था कि ब्रह्मा बाबा की गोद में ही पड़ा रहूं। समय होता है क्योंकि अन्य लोगों को भी बाबा की गोद में आना था, तो बाबा ने मेरी पीठ को धीरे धीरे थपथपाया, उसका अर्थ था कि अब आप उठ जाओ। तो मैं उठा लेकिन मेरा दिल किया कि मैं फिर गोद में चला जाऊं, तो मैंने दूसरा टर्न भी बाबा की गोद में ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या अनुभव किया कि मैं इतना हल्का कैसे हो गया। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के रथ में आकर आप आत्माओं को पिछले सारे जो बोझ होते हैं, जो आपके बंधन होते हैं, जो आपके हिसाब किताब के कारण आत्मा शरीर में इतना भारी महसूस करती है, वो मेरे ख़त्म हो गए। तो तब मैंने सोचा कि अलौकिक का मतलब क्या हुआ, आज से बाबा ने मुझे इस लौकिक दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसा कर दिया है कि आज के बाद मैं लौकिक में दोबारा नहीं जा सकता। तो जैसे छाछ के अंदर से मक्खन को रिड़क लो तो मक्खन वापस नहीं जा सकता, वो दिन से लेकर आज मेरी 90 वर्ष की एज हो गई है, बाबा ने मुझे लौकिक काम में भी 17 साल मुझे कहा लौकिक जॉब करो, अलौकिक काम में भी मुझे स्थान स्थान पर भेजा, भारत के कोने कोने में भेजा, दुनिया के सब कोने में भेजा, जो मैं वैसे लौकिक में तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की और वो बड़ी विचित्र चीज़ थी कि मेरा लौकिक में या इस दुनिया में देखते हुए रहते हुए जैसे मक्खन छाछ में नहीं मिल सकता, मेरी कभी भी आसक्ति नहीं गई। यानी मुझे ऐसे लगता था कि मैं जैसे देख रहा हूँ कर रहा हूँ पर मेरे पर इस लौकिक दुनिया का प्रभाव नहीं है, उसमें मैं लौकिक अलौकिक ही देखता रहा। जब बाबा ने मुझे कहा, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया बाबा, मैंने तो अपना प्रैक्टिस शुरू किया, बाबा ने मुझे माउंट आबू में कहा, बच्चे प्रैक्टिस में बुद्धि जाती है, तुम सरकारी नौकरी कर लो। तो मैं अपने ऑफिस में वापस ही नहीं गया, सरकारी नौकरी कर ली। 17 साल सरकारी नौकरी की, उसमें मैं ऑफिसर बन गया, सीनियर ऑफिसर बन गया, पर मुझे कुछ उसमें करता रहा नौकरी, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं इस नौकरी में कोई आसक्त हूँ। यहाँ तक था, आप हैरान होंगे कि मैंने 17 साल नौकरी की है, मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में था फाइनेंस में, तो हमारा ऑफिस फैक्ट्री के बाहर होता था। तो 17 साल में से मैं 12 साल फैक्ट्री में ही नहीं गया। यानी आप हैरान होंगे कि कोई व्यक्ति दुनिया में शौकिया तौर पर भी कहीं जाता है, इधर उधर चले जाता है। मैंने सोचा मेरा काम ही नहीं। एक दिन जब दादियों ने कहा कि तुम्हारी आवश्यकता है फुल टाइम सेवा के लिए, तो मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। मुझे तब भी फील नहीं हुआ इतनी बड़ी नौकरी है, मेरे लौकिक रिश्तेदार भी आए, तुम क्यों छोड़ता है, बूढ़ा हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, मांग के खाएगा, मतलब मेरे पर असर नहीं हुआ। बाबा ने मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह भेजा। वहाँ के भाई बहन मुझे कहते थे भाई साहब यहाँ ये देख लो वो देख लो, परंतु मेरे अंदर कभी भी किसी चीज़ को देखने का इच्छा ही नहीं हुआ। और अगर वो मुझे ले भी जाते थे तो मैं उसमें कभी मेरी आसक्ति नहीं हुई। तो मैंने देखा कि बाबा ने वो गोद लेकर मुझे अपना बच्चा बनाकर लौकिक से अलौकिक कर दिया, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि लौकिक में ये शरीर है, इतने जन्मों के इसके ऊपर हिसाब किताब हैं, इसमें रोग भी आ जाता है, कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन उस अलौकिक स्थिति के कारण से मुझे अनेक प्रकार की परिस्थितियों से 90 साल आप सोचेंगे इसमें 70 साल तो मैं बाबा के पास ही रहा हूँ, अनेक परिस्थितियाँ आई, लेकिन कभी भी मुझे इस लौकिक दुनिया का, इसके लौकिक नियमों का, इसके लौकिक जो भी कहा जाता है लोकलाज का, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा के साथ वो तो पहला दिन था, उसके बाद भी जितना समय हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा को बहुत परख थी अपने बच्चों की। ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चे को समझते थे कि मेरे बच्चे माया की दुनिया से अलग होकर मेरे बच्चे बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने हमको ऐसी गहरी पालना दी हुई है, ऐसा स्नेह, परमात्म स्नेह दिया हुआ है ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने, कि जो हमारे रोम रोम में समाया हुआ। मुझे ताश वगैरह खेलना नहीं आता था, ब्रह्मा बाबा मुझे अपने पास बिठाकर खिलाने के लिए मुझे सिखाया कि बच्चे ऐसे ऐसे तुम खेलो, तुम ऑफिसर हो, तुम क्लब में जाते हो, तुम्हें ताश खेलना भी नहीं आता। तो मैंने कहा बाबा मैं क्लब में जाता ही नहीं हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, साल में 2 बार क्लब में जाता हूँ, वो भी अकाउंट्स का व्यक्ति हूँ, तो वहाँ के स्टॉक वगैरह चेक करने मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मेरी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर बाबा ने अपने पास बिठाकर, फिर मैंने ये देखा कि बाबा का अपना लौकिक बच्चा भी हमारे साथ बैठता था जिसका नाम नारायण था। तो बाबा मुझे अपने साथ में गद्दी पर पांडव भवन में बिठाते थे, बच्चे को सामने बिठाते थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि मैं तो बाबा का अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, ये बाबा का लौकिक भी है, अडॉप्टेड भी है, फिर भी बाबा मुझे स्नेह देते। इसी प्रकार से कोई चीज़ें बाबा ने मुझे स्थूल चीज़ें भी दी, जो ऐसे लगता था कि भगवान धरती पर आकर बच्चे के साथ लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार से पालना कर रहे हैं। मेरी खुशी के लिए कोई भी चीज़ जो मुझे पसंद होती थी बाबा बहुत प्यार से उसको मंगवाते थे। मुझे फूल गोभी खाने का शौक था, तो बाबा जब सीजन नहीं होता था, कोई भी माउंट आबू में फूल गोभी नहीं आती थी, कुछ बड़े बड़े होटल वाले मंगवाते थे, बाबा खास बहुत महंगे रेट पर भी फूल गोभी मंगा कर मुझे खिलाते थे कि मेरा बच्चा है। वो दिन मुझे भूलता नहीं है। मुझे आम खाने का शौक था, तो बाबा खास तौर पे ध्यान रखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं घटना आपको सुनाता हूँ कि मुझे आम खाने का शौक है शुरू से। तो हमारा परिवार था, माता पिता, मैं, मेरा भाई, तो हम बाबा के साथ टेबल पर भोजन कर रहे थे। जो भी परिवार आते थे तो बाबा कम से कम एक बार उनको अपने साथ टेबल पर भोजन करवाते थे, और उस समय आम का सीजन था तो हर एक को एक एक आम मिला। तो मेरी माता को पता था कि मेरे बच्चे को आम का शौक है, उसने बहुत धीरे से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ खिसका दिया। तो माता ने सोचा और मैंने भी सोचा कि बाबा को तो पता नहीं लगा, पर बाबा तो बाबा ही थे। जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा ने अपनी ब्राह्मणी लच्छू बहन को कहा, बच्ची एक टोकरी में आम डाल के लाओ। और मुझे कहा, बच्चा ये आम ले लो। आप सोच सकते हैं इतना प्यार तो शरीर किताब ही नहीं करते। तो हर प्रकार से बाबा ने इतनी मुझे पालना दी है जैसे लौकिक अलौकिक, तो वो मेरे रोम रोम में समाई हुई है। आज ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं रहे, वो भी बाबा ने शरीर का त्याग किया सब बच्चों के लिए कि मैं आगे आगे मेरे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, लाखों में हो जाएगी। टर्न भी लगाएंगे तो सैकड़ों में मिलने आएंगे, तो मैं किसको मिलूंगा किसको नहीं मिल पाऊंगा। हर एक बच्चा चाहता है कि बाबा मेरे से मिले, फ्रीली मिले। तो बाबा ने यहाँ तक किया कि अपना देह त्याग करके बाबा सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म में बाबा कहते हैं, मेरा कोई भी बच्चा कब भी चाहे जितना समय चाहे मेरे से मिल सकता है। हम लोगों का तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि हर एक बच्चा, क्योंकि सूक्ष्म लोग सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है जहाँ अव्यक्त बाबा हर रूप से हमें मिलते हैं। तो मैंने देखा कि जो चित्र बना हुआ है महारास का, कि श्री कृष्ण के साथ हर एक गोपी के साथ है, उसका भाव यही है कि हम सब ब्राह्मण दिन हो रात हो किसी भी समय बाबा के पास अपना व्यक्त रूप धारण करके मिलते हैं। ये भी बाबा ने अलौकिक जीवन हमें सिखाया है। तो एक एक चीज में हम समझेंगे, हमारे सांस में हमारे प्राण में अलौकिकता इतनी भर दी है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी ईश्वरी सेवा करके होती है, ईश्वरी जीवन व्यतीत करके होती है। और कहीं कुछ लौकिकता आ जाए, मुझे तो ऐसा फील करता है जैसे बोझ हो। कभी कोई व्यक्ति मुझे अपने घर में ले जाता है और अपने घर का दिखाता है, ये इतना बड़ा घर है, तो मेरा दिल करता है वहां से भाग जाऊं। क्योंकि मुझे वो जो अलौकिक सुख है, जो अति इंद्रिय सुख है, जिसमें शरीर का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसकी अनुभूति मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरा दिल करता है कि परमात्मा बाबा का मुरली सुनता रहूं। लगातार मुरली पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, मुरली को मनन करता रहूं। जो कोई भाई बहन आता है उससे मुरली की बातचीत करता रहूं। जो सेवा मिलती है करता रहूं। इस यज्ञ में जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, मेरे आत्मा भाई हैं जिन्होंने सारा सृष्टि चक्कर मेरे साथ अलग अलग जन्मों में रहना है, उनसे मैं जितना बाबा ने मुझे प्यार दिया है रूहानी प्यार, वो मैं उनको बोल के द्वारा व्यवहार के द्वारा दे सकूं, इसी में मेरा जीवन बीतता है। मैं समझता हूं बाबा भी यही सेवा करते करते संपूर्ण हो गए, और हम भी उन्हीं के फॉलो करते करते इसी सेवा करते करते, बाबा ने कहा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को संपूर्ण बना ही दूंगा। मुझे लगता है कि हम तो कम मेहनत करते हैं, पर बाबा की जो लगातार मदद है और बाबा ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी हुई है इतना बड़ा यज्ञ की, उससे हम संपूर्णता की ओर जाता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, अनेक धार्मिक मार्ग हैं, विधियां हैं, उनके ऊपर जन्म जन्मांतर से हम और हमारे पूर्वज चलते आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी विशेष क्या बात सिखाती हैं जिसके कारण से वो कहते हैं हम देखते हैं कोई व्यक्ति एक बार ब्रह्मा कुमारी या कुमारी बन जाता है तो जिंदगी भर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाता है, और चाहे वो भारत का हो चाहे किसी विदेश का हो, ऐसी कौन सी बात है जो इनकी विशेषता है? तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि अन्य जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान है, वो हमारे शरीर के धर्म, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड और विधियों में चलते आए हैं। मैं ऐसे कहूँगा शॉर्ट में कि जैसे सूर्य नहीं होता है तो व्यक्ति अनेक प्रकार की रोशनी के प्रबंध करते हैं, कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, कोई बड़े बड़े सर्च लाइट जलाता है। आजकल रात को फैक्ट्रियां चलती हैं जहाँ इतनी लाइट होती है व्यक्ति सो नहीं पाता है, लेकिन वो सारे तरीके नकली ही होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा हमको जो मौलिक बात बताई है वो बड़ी विचित्र है और जादू की तरह है, और वो ये है कि तुम आत्मा हो। और लोग पूछते हैं आपका ज्ञान किस शास्त्र में लिखा हुआ है, तो भगवान ने हमें बताया है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ उसकी निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हैं आके कि तुम शरीर के द्वारा बोल रहे हो, शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हो, अपने आप को शरीर ही मानते हो, मेरी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, टांगे चलती हैं, मुख से मैं भोजन करता हूँ, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे यंत्र हैं, तुम आत्मा हो। आत्मा ही आंखों के द्वारा देखती है, आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है। तो जब हमको ये बोध होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो दुनिया के अंदर हम क्या करते आए हैं कि शारीरिक तौर पर अपनी उन्नति को उन्नति मानते आए हैं कि मेरा वस्त्र मेरे पास ज़्यादा हो जाए, मेरे पास धन हो जाए ताकि मैं खा पी सकूँ, अच्छा मकान हो जाए आदि। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है अगर उसको इम्प्रूव करोगे तो आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आत्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देता, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम देखते हैं, मैं भी ये देखता था ज्ञान में आने से पहले कि साधन तो सारे थे, हमारे पास धन भी था, जॉब भी था, माता पिता भी थे, लेकिन जैसे दुनिया वाले दुखी हैं वो हम भी उसी प्रकार से थे। हमें अपने भविष्य का पता ही नहीं था, हम सोचते थे कि मरने तक या रिटायर होने तक ही सारा प्रबंध करना है। तो जब यहाँ आए तो बाबा ने बताया कि जैसे बीज होता है, बीज अगर बेहतर हो जाए तो सारा पौधा बेहतर हो जाए, तो आप आत्मा को अगर इम्प्रूव करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके पास धन भी पर्याप्त मात्रा में आएगा, आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, और आप अगले जन्म में भी अपने साथ संस्कार ले जाओगे। तो जब हमें ये पता लगा कि एक ऐसी भी विधि है जिसको करने से आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस संबंध संपर्क सारा ठीक हो जाता है, और पिछला भी जो हिसाब है वो आसानी से चुकतू हो जाता है, पुराने लेने देने के हिसाब भी सूली से कांटा की तरह हो जाते हैं, तो मैं इस मार्ग में आ गया। और मैंने देखा ये तो सारी दुनिया से एक विचित्र मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसमें आप इस दुनिया में भी रहते हैं, आप इस लोक का भी सुख लेते हैं और अपना परलोक भी सुधारते हैं। कहा जाता है कि आध्यात्मिकता से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है और परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। दुनिया वाले परमार्थ को तो जानते ही नहीं, अपने भविष्य का तो सोचते ही नहीं, आत्मा अगले जन्म में जाएगी, और इसलिए पूरा ज्ञान ना होने के कारण इस दुनिया में साधन होते हुए भी वो उनसे ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा तो यही अनुभव है, कोई भी नया आए लोग समझते हैं कि भाई आध्यात्मिक मार्ग बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो ना किसी से घर बार छुड़ाया जाता है, ना उसका व्यवसाय छुड़वाया जाता है, कुछ भी नहीं, उसको आत्मा का ज्ञान दिया जाता है कि सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी आत्मा से कैसे खराब आदतों को निकालना है, जो आपको तंग करने वाली चीज़ें हैं उसको ठीक करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ ऐसे लोग जिनके पास संसारिक साधन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा धन भी नहीं है, लेकिन वो इतने खुश नज़र आते हैं कि करोड़पति से भी ज़्यादा अपने आप को हर्षित महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ हर एक को कम से कम अगर एक हफ्ता भी यहाँ आकर के इस ज्ञान का अनुभव करेगा तो मेरा ख्याल है वो जिंदगी भर इस रास्ते पे चलेगा और अपने लोक भी सिद्ध करेगा और लोक भी सिद्ध करेगा।
1: मैं काल चक्र का पहिया, अनेक गुरुओं की जीवन कहानी का साक्षी रहा हूं, उन द्वारा अपने फॉलोअर्स की पालना करते देखा है। लेकिन जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपने ईश्वरीय परिवार की पालना की, सभी को आत्मिक प्रेम एवं स्नेह की दृष्टि से देखा, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखी, अपनी वृत्ति को स्वच्छ बनाया। जिस प्रकार सांसारिक मां अपने बच्चे की कमी एवं कमजोरियों को ना देखकर उसकी बेहतर से बेहतर परवरिश करती है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने माता पिता के रूप में हर यज्ञवत्स की विशेषताओं को देखा और उन्हें अपने से आगे बढ़ाने का कार्य किया।

0: Hi, this is music composer Ricky Cage, and you're listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। विचारों की एक लंबी कतार से गुजरते हैं हर रोज हम और आप। विचार जो हमारे अपने ही दिमाग में उपजते हैं और फिर हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। अगर विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जब विचार हमारे हाथ में नहीं रहते, जब वो थॉट्स हमारे हाथ से परे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स के ताने बाने में या फिर माया जाल में फंस कर रह जाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। इसीलिए ज़रूरत ये है कि अपने विचारों को पहचानें और फिर अगर लगता है कि वो नेगेटिव है तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से ना सिर्फ हमारा डिप्रेशन ख़त्म होगा बल्कि सही खुशी, सही हैप्पीनेस को जो हम तलाश रहे हैं वो हमें मिल सकती है। किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमने कई स्टेजेस से गुजरे थे पिछले अपनी कड़ियों में। हमने ये जाना था कि सबसे पहले है सजग होना, यानी कि अवेयर होना कि थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद आता है कि कैच किया जाए, फिर हमें कहीं ना कहीं उन्हें अंडरलाइन करना है, पहचानना है, स्टॉप करना है, एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म। हम बदल सकते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस से भी आगे बढ़ेंगे और कैच करेंगे उन विचारों को जो नेगेटिव है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। स्वागत है डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी हार्दिक
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमने एक वादा किया था अपने जितने भी दर्शक हैं, मैंने अपने आप से भी कहा था कि मैं ये पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करूंगी, और हमने किया भी कि 15 मिनट तो नहीं बैठा गया आज, लेकिन हाँ 4 से 5 बजे सुबह की जो हमने वक्त तय किया है, जो कोशिश की गई है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे 5 बजने में 10 मिनट के अलार्म लगा के हमने बैठने की कोशिश की, और 10 मिनट ही कोशिश ये की कि सजगता की कोशिश की जाए। एक एक्सरसाइज आपने बताई थी कि किस तरह से अपने आप को देखें और ऑब्जर्व करते जाएं, ये एक्सरसाइज आपने बताई थी जो आपकी साइकोथेरेपी का एक पार्ट था कि यहाँ से लेकर अपने पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। एंड बिलीव मी, देयर वर अराउंड 10 थॉट्स विच केम विच आई कुड कैच, यू नो। सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हमारे सभी दर्शकों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि उनके मेल्स और फोन कॉल्स का मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ये एक जो अवेयरनेस का प्रोसेस है कि सजगता का, इसको जब ये है, इसमें आप कैच कैसे करना है उनको? आए तो थे वो थॉट्स, लेकिन वो आए और गए, आए और गए। उसमें से 10 रजिस्टर जरूर हुए, लेकिन वो जब तक मैं पहुँचती उस वक्त तक, तब तक वो गायब हो चुके थे। तो ये जो अवेयर होने के बाद कैच करने वाली बात है, तो हम वो कैच कैसे करेंगे?
2: तो एक सबसे बस ये जो 10 विचार जो आपको आए उसी को कैच करो। हो सकता है कि आप लिख नहीं भी पाए, है ना, उस समय याद नहीं रहे, तो उसको लिख लो। भले उठ भी जाना पड़े उठ जाओ, फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करो। अपने पास ही रखो डायरी और एक एक वर्ड लिख लो, ज्यादा भी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ही शब्द आपने लिख लिया कि भी बेटी का टेंशन, आपको वो विचार आया अभी बेटी की एग्जाम है, नो डॉक्टर्स एग्जाम, आपने लिख दिया, आपको याद आ जाएगा। फिर आपको और कुछ आया, और एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए तैयारी करना।
1: अच्छा, एक शब्द ही लिख दो।
2: हाँ, तो पूरी बात आपको याद आ जाएगी।
1: तो फिर मुझे लगा कि वो मैं लिखने लग जाऊंगी तो मेरा पूरा वो चेन टूट जाएगा।
2: अगर याद रहे तो बेस्ट है, अगर याद न रहे तो लिखो, और भले एक दो दिन नहीं भी लिखो, क्योंकि रिपीट होने, जो आपका रूट कॉज है, जिसको आपको कैच करना है, वो थॉट आपके रिपीट होने। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के विचार आते हैं। उस समय जो आपको विचार आते, एक तो जो काम करना है उसके विचार आएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके जीवन की है उसके विचार कुछ आएंगे,
1: जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है उसके
2: भी आ सकते हैं, और जो रूट है उसके भी विचार आ सकते हैं। जो आपको बार बार विचार डिस्टर्ब कर रहा है कि जो डिप्रेशन का कारण हो सकता है, डिप्रेशन न भी कहो, जीवन में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पूरी खुशी को हमें अनुभव करने नहीं देते हैं, उसका कारण उस विचार में आ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, इसमें हमें ये तो डिफाइन हम नहीं कर सकते अभी कि ये विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
2: अभी नहीं,
1: ये तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब करेंगे।
2: अब भले उसको डिफाइन नहीं भी करो, परंतु ये प्रोसेस में रूट आएगा। मैं आपको एक दो उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था जो निर्णय नहीं कर पा रहा था। एक बार मैं माउंट आबू में ही था तो वह मेरे पास आया और उसने कहा डॉक्टर मुझे 2 मिनट चाहिए। तब मैं भी जा रहा था लेकिन फिर उसने कहा नहीं नहीं बस मुझे 2-3 मिनट का ही वक्त चाहिए। तो मैं कह रहा ठीक है और उसने ये बात बताई कि मेरी दिक्कत यह है कि छोटी छोटी बातों में भी मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ। छोटी सी भी बात होगी कि मैं ये करूँ या यहाँ जाऊँ, ये ट्रेन में जाऊँ या उस ट्रेन में जाऊँ, तो वो भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है? थोड़ा सा एक और भी टेक्निक होती है साइकोथेरेपी, जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो बैठ करके मैंने उससे थोड़े से कुछ प्रश्न पूछे, उसको कुछ बातें याद करने के लिए कहा और जब वो बातें कही तो बस 4-5 मिनट में ही यह बात सामने आ गई जिसको हाँ उसे कैच करने की जरूरत है। बल उसने तो पूरा प्रोसेस नहीं किया था, एक प्रकार से कहेंगे कि इंटरव्यू में यह बात सामने आई, लेकिन यह सेम बात इस प्रोसेस में भी उभर करके आ सकती
1: वो
2: है।
1: कैच इसीलिए कर पाए क्योंकि आप थे यहाँ, खुद कैच
2: खुद
1: करने
2: को करना है।
1: और हर रोज आ रहे हैं, हर रोज आप तो नहीं मिलेंगे,
2: मिलेंगे
1: ना? तो हर रोज तो हम ही हैं जो हम करेंगे।
2: और हम ये भी चाहते हैं कि भी व्यक्ति खुद करे, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम से कम हो जाए।
1: सेल्फ सफिशिएंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद अपना ऊपर कंट्रोल करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आ रही है कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ है, एक अलग बात है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही खरा उतरता हुआ है कि भाई सब कुछ चेक किया गया है उसके ऊपर है। जो आपने अभी थ्योरी बताई हमें, जो बात करने का तरीका कि किस तरह से अपने आप से बात करनी है, सजगता का एक जो पूरा था, इसमें कहीं ना कहीं पूरी साइंटिफिक थ्योरी है जो आपने बता रहे हैं, जो साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है, ये जो पूरी टेक्निक है। अध्यात्म क्या कहता है? मेडिटेशन इज आल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली?
3: या आई थिंक इट्स सिमिलर। इट मतलब वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड द वे ऑफ डूइंग इट कुड बी लिटिल डिफरेंट, बट विधि तो सेम ही है। विधि यही है कि मन को क्वाइटन करना है, तो क्वाइटन करने से जो बहुत डीप रूटेड थॉट्स जो दबे हुए थे वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, तो हम उनको कैच कर पाएंगे। कई ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो बचपन में कुछ मेरे साथ हुआ हो और मैंने उसको पूरी लाइफ अभी तक भूले हुए थे, लेकिन वो सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो लेकिन जब माइंड साइलेंट हो जाता है तो वो इमर्ज हो जाती है बात बिल्कुल। तो इट इज़ द सेम थिंग, लेकिन द वे ऑफ डूइंग इट वुड बी लिटिल डिफरेंट, बट वी गेट द सेम रिजल्ट। एंड इनफैक्ट अभी समझ में आ रहा है कि राजयोगा भी एक साइकोथेरेपी की तरह, यू नो इट इज साइकोथेरेपी, और इसलिए हम देखते हैं कि उसके अंदर इतना चेंज हमारे अंदर आ जाता है। इट्स जस्ट दैट साइकोथेरेपी करने के लिए हमें एक डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। तो डॉक्टर कितने अच्छे हमें जो मिले डॉक्टर, और हमारा वो फेथ कितना होगा डॉक्टर के ऊपर, और हम उस विधि को कितना अपनाएंगे। लेकिन राजयोग क्योंकि हम अपनी स्व इच्छा से करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट से करते हैं, तो वी गिव इट आवर फुल, you know, full
1: and in fact सबसे बड़ी बात अपने साथ कर रहे हैं ना,
3: हाँ,
1: तो सबसे ज्यादा faith तो अपने ऊपर होगा ही,
3: बिल्कुल। तो maybe वो result मिल जाता है,
4: it can be faster,
3: yeah it will be faster। मैं कभी
4: 15 मिनट करो, even राजयोग में 15 मिनट करने की भी जरूरत नहीं। अगर सचमुच आप करने लगो, थोड़े दिन लगेंगे, एक दिन में ना भी हो, आप अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो ऐसे एक सेकंड में आएगा, आप मेडिटेशन कर रहे विचारों को थोड़ा शांत इमीडिएटली आएगा कि भी ये कारण था। देखो मैं आपको एक दो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वह जो स्टूडेंट का मैं आपको उदाहरण बता रहा था, उसके साथ जब ये डिस्कस किया तो उसने खुद ये प्रिसाइसली वो याद कर पाया। उसने कहा कि भी हमारा बॉक्स बनाने का बिजनेस है, छोटे मोटे अलग अलग साइजेस के वो लोग बॉक्स बनाते थे। कहा कि भी एक बार वो बॉक्स की छोटी सी फैक्ट्री होगी, उसमें बना रहे थे, सभी वर्कर फ्री थे, तो उसने सोचा कि भी एक स्पेसिफिक साइज का बॉक्स है, उसकी डिमांड आती ही है, आज नहीं है समझो एक मास के बाद आएगी, तो वर्कर्स क्यों फ्री बैठे रहे, चलो मैं उसके 200-500 बॉक्स बनवा लेता हूँ। तो उसने कहा ये बॉक्स बनाओ। तो थोड़ी देर के बाद उसके फादर आए, अरे क्या गलती कर दी, तुम बुद्धू हो, तुमको अक्ल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, वो इतना भी काम तुम्हारे से नहीं आता है, डांटने लगे। तो मैंने फिर जो थोड़ा गहराई में गया कि वहां उसका रूट है, कि उस समय जो फादर ने सुनाया वो डीप पहुंच गया, और वो सदा अभी उसे याद है, भले वो कॉन्शियसली भूल गया
2: लेकिन गहराई में है मन की और सदैव वो उसे डिस्टर्ब करता है।
1: तो एक बार डांटा, एक बार डांटे ने किया।
2: इफ यू आर इमोशनल, एक बार में भी, क्योंकि तब वो इमोशनल हुआ होगा, रोया भी होगा, उसे बहुत फील हुआ होगा, फादर ने भी जिस टोन में सुनाया, अगर वो गहराई में चला गया तो बार बार उसे सामने आता है, छोटा भी निर्णय करना तू नहीं कर पाएगा ना, तेरे से ये नहीं होगा।
3: एक्चुअली एक बार नहीं होता है
1: ये, कहीं ना कहीं कांस्टेंट वो कहते रहे होंगे।
3: एक बार दूसरा व्यक्ति कहता है, हम बार बार उसको अपने आप को सुनाते हैं। आप अगर अभी मुझे कुछ कहकर चले जाएं और फिर कभी ना मिले, आप शायद एक ही बार कहेंगे, लेकिन मैं अपने आप को 100 बार वो बात सुनाऊंगी,
2: 1000 बार भी कहेंगे,
3: 1000 बार भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती,
1: उन्होंने ऐसे कैसे कहा। I remember that.
3: So we kind of you know reaffirm it by and we can do that for years. हम बहुत सालों तक किसी की कोई बात को पकड़ कर रखते हैं।
1: I remember that, you know, like once somebody told me,
2: he must be right,
1: you are manipulator, and I kept on telling, I never met that person again, but I kept on telling everyone that that person said that I'm a manipulator. And am I a manipulator? But it became so difficult, you know, like I can understand that,
3: you know, and then you say to yourself, but I'm not a manipulator, but that person said I am a manipulator.
1: So why did that person say that, you know, like I kept on doing it, it took me a long time. Yes, I realized that, and I never met that person.
3: So that whose fault is it?
1: Mine.
3: Abhi hum kya jaldi se keh dete hain, it's that person's fault. Unhone mujhe kaha, he said it only once. He said it only once and went away. See, that's
1: and
3: where
1: whether he meant it or not, I'm like, whatever he was trying to do, I don't even know that.
3: And I know myself better. So, you know, I just need to, jab unhone ek bar kaha, it's not that ke hum logon ki baaton ko bilkul reject kar dein, kyunki kai hamare bahut bhalai ke liye kuch keh rahe hain, hum usko le lein, analyze kar lein, useful hai, usko accept karein, agar apne andar koi nahi to, या अपने इनकी परसेप्शन, यू नो, इनको उस तरह से दिखाई दे रहा है, बिकॉज लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल कैन रियली मैनिपुलेट अस, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा कहकर जा सकते हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत डीप लास्टिंग।
2: और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि स्पष्ट होगा
1: जी
2: कि भल राजयोग से हम करें बहुत फास्ट होगा, सीबीटी वो स्लो प्रोसेस है थोड़ा। और एक लड़की का किस्सा है कि शी वॉज फीलिंग इन्फीरियर, एंग्शियस, इवन नो टू मच डिस्टर्ब, डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों थी उसमें, बार बार डिस्टर्ब होके आती थी। फिर एक बार ये तो प्रोसेस में हुआ, साइकोथेरापी में उसने खुद कहा कि मेरे से बड़ी बहन है, और जब मेरा जन्म हुआ तब पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन एक तो बेटी हुई तो उनको दर्द था, कहते बोले मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नानी हमेशा टोकती थी कि हमको तो बेटा होना चाहिए था। और दूसरी एक इंसिडेंस उसने खुद कहा, और वो एक जगह पर रूट हो सकता है, जैसे शिवानी बेन ने बताया ना, वो बोले इवेंट तो एक बार हुई लेकिन उसने हजारों बार रिपीट किया होगा। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, तो एक बार उनकी जो उससे बड़ी बहन थी, वो दोनों बहनें जाती थी प्रिंटिंग प्रेस में, फादर को हेल्प करती थी। पहले जो मैनुअल मशीन्स आते थे ना, तो मैनुअल मशीन से वो कोई नहीं था वर्कर, तो बड़ी बहन है वो मशीन को स्टार्ट कर, तो फादर आए कि नहीं नहीं नहीं बेटे तुम नहीं चलाओ, तुम्हारे मसल्स आ जाएंगे, हाँ तुम लड़की हो तुम ये नहीं चलाओ। फिर कहा कि 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसा हुआ कि वर्कर्स नहीं थे, मैं अकेली थी तो मैं भी चलाने लगी, मैं चलाती गई काफी देर तक, फादर आए लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं मुझे तुम्हें नहीं करो, उसका मतलब है कि दे डोंट लाइक मी।
1: ये इंटरप्रिटेशन
2: कुछ ना कुछ भी नहीं उसका, हाँ रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा, टू मच वर्क हो सकता है तो रजिस्टर ही, लेकिन उसने अभी बहुत बार ये बात को रिपीट की, थोड़ी भी बार की लेकिन इमोशनली कही होगी, जिससे बस ये हो गया कि पेरेंट्स बड़ी बहन को प्यार करते मुझे प्यार नहीं करते।
3: ना दिस इज अवेयरनेस एक्चुअली जो हम कह रहे हैं ना, किस बात जब कोई एक हमें कुछ कहकर चला जाए और हम बार बार उस चीज को अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, अवेयर सी व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, अगर हम उस टाइम रुक कर देख ले कि उसने एक बार कहा ये हो सकता है सच नहीं है, चेक कर लिया और देख लिया सच नहीं है, व्हाई एम आई टॉर्चरिंग माई सेल्फ,
1: व्हाई डू वी डू दैट, आई हैव डन दैट,
3: वी ऑल हैव डन दैट, हम सब इज दोस सेइंग,
1: सी आई हैव वेंट थ्रू माय होल सेल्फ एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर आई एम अ मैनिपुलेटर और नॉट, एंड आई फाउंड दैट नो आई एम नॉट, आई डिड दैट एनालिसिस वेयर आई फाउंड, बट आई केप्ट ऑन रिपीटिंग, व्हाई डू वी डू दैट।
3: बिकॉज वी आर नॉट श्योर. वी आर नॉट श्योर क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम अपने आप को क्योंकि उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते. अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि अपनी विशेषताएं कुछ सुनाइए तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता, उन लोगों से पूछो जो मेरे आस पास रहते हैं. इट्स लाइक सेइंग जो मेरे आस पास लोग हैं वो मुझे मेरे से अच्छा जानते हैं. इसलिए ज़्यादातर हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है क्योंकि हम सोचते हैं हम, और वैसे भी हम औरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं ना, इसकी विशेषता, इसकी कमज़ोरी, अपनी नहीं देखते. तो इसलिए अगर हमें कोई कह दे

0: कि आपके अंदर ये विशेषता है. कई बार झूठी महिमा हो सकती है वो, इट कुड बी फॉल्स प्रेज, बट बिकॉज समबडी एल्स हैज सेड इट्स ट्रू. इफ समबडी क्रिटिसाइजेस वो झूठ हो सकता है, बट बिकॉज समबडी एल्स हैज सेड इट इज ट्रू,
1: इट मस्ट बी ट्रू.
0: ये सब
1: कहीं ना कहीं सच्चाई का थोड़ा सा तो
0: क्योंकि किसी और ने कहा. जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप से मिलना शुरू कर देंगे, तो फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा. कोई कुछ कहेगा, सुने, चेक, discard or accept and
1: great.
0: Move on.
1: I think every one of us wants to reach that level. It doesn't really matter, you know, what others are saying, because sabse badi baat hai understanding one's own self.
0: Jab hum apne aap ko abhi tak nahi jaan paye to dusra kya janega hame, hamare se acha dusra kaise jaan sakta hai hame. It's not possible. But we give them that authority.
1: तो हम सजगता पे थे कि सजग रहने के लिए ये जो हमने एक पूरा प्रोसेस किया है और उसके हमें फायदे, सजगता आते ही पहला ये एहसास कि पब्लिक ओपिनियन रियली डजंट मैटर, ये एक बात समझ में आती है. तो राजयोग में आपने कहा कि जल्दी भी कैच कर सकते हैं हम, तो राजयोग के लिए कुछ और कैसे, जैसे वहाँ बैठना तो वही पूरा तरीका है, उसके बाद क्या हमें कुछ और सोचना चाहिए?
0: क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, ये रियलिटी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. इवन ये होल जो प्रोसेस है, इट्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर. जो थॉट्स हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है? आई द सोल. मैं आत्मा जब संकल्प करती हूँ तब उसको हम मन कहते हैं. मन आत्मा की ही फैकल्टी है. तो अब अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस अभी जो हम कर रहे हैं कि बॉडी की एक एक पार्ट पर फोकस करें, ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं. मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, ये अभी तक बहुत कूट कूट के भरा है. एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू द स्टेज कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है. तो जितनी जल्दी हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तो हमारे ये सारे एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं, ये बहुत जल्दी हम इनसे डिटैच हो जाएंगे. तो राजयोग में हम ये अभ्यास करते हैं कि यू नो रीच टू हु एम आई, यू नो टॉक टू योर सेल्फ, हु एम आई. एंड बिकॉज नॉलेज मिल गई है तो आंसर अपने आप निकलेगा. तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स जैसे आते हैं, जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि बच्चों के, हस्बैंड के, ये सब आएंगे. तो एवरी टाइम दैट थॉट कम्स, फर्स्ट तो आई कीप सीइंग कि किस चीज़ के थॉट मेरे को बार बार आते हैं. इसका मतलब मैं अभी भी अपने आप को उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मे बी एज अ मदर, मे बी एज वट एवर, एज अ प्रोफेशनल. तो देन आई अगेन टेल माई सेल्फ, येस दिस इज़ माई रोल, लेकिन ये मैं नहीं हूँ. अभी जो बैठा है मेडिटेशन करने, दैट्स नॉट अ मदर, दैट्स नॉट एन इंजीनियर, दैट्स नॉट अ टीचर. जो मेडिटेशन अभी करने बैठा है वो कौन है? वो मैं हूँ. मैं कौन हूँ? क्या मैं एक मदर हूँ? नहीं, मदर मेरा रोल है.
1: मैं इवन कनुप्रिया भी नहीं हूँ.
0: नहीं, कनुप्रिया तो मेरा नाम है सिर्फ. कनुप्रिया तो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन लेबल मिला है, तो दैट आई कैन एड्रेस यू एज कनुप्रिया. यू नो आई एड्रेस पीपल बाय नेम. नहीं तो नाम नहीं है. मैं नाम नहीं हूँ. मैं तो शरीर भी नहीं हूँ. ये शरीर भी मेरा है, मेरा हाथ, यू सी. तो ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? यू नो दैट्स हाउ आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ, कि मैं रिलेशन नहीं हूँ, मैं डेजिग्नेशन नहीं हूँ, मैं तो नाम भी नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ. सो ब्रेक डाउन ऑल दोज थॉट्स विच आर कमिंग. सो देन मैं कौन हूँ? सो स्लोली स्लोली वो सारी थॉट्स जो आ रही थी, जो सारे दिन में बहुत ज़्यादा इंटेंगल, वो धीरे धीरे साइड होती जाएंगी. फाइनली आई कम बैक टू द ट्रूथ, द रियलिटी, कि आई एम दैट ब्यूटिफुल कॉन्शियंट एनर्जी. मैं एक आत्मा हूँ. मैं कैसी आत्मा हूँ? यू नो मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा स्वरूप कैसा है? व्हाट डू आई डू द होल डे? दैट्स हाउ आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ. देन द आंसर्स आई स्टार्ट गिविंग टू माई सेल्फ बेस्ड ऑन द नॉलेज, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है कि लाइक हमें नॉलेज मिली कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप. मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. मुझे प्यार चाहिए नहीं. इनिशियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हूँ ही शांत स्वरूप. देन आई टॉक टू माई सेल्फ, इज इट ट्रू कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ? मुझे, मैं तो सारा दिन अशांत रहती हूँ. मैं तो कितना
1: तलाश ही रहती हूँ.
0: तो कैसे हो सकता है कि मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ? यू नो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन एंड दिस कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन आई सेड हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ क्योंकि मुझे शांति अच्छी लगती है. तो इसीलिए मुझे वो चीज़ की आज भी अट्रैक्शन हो रही है. मैं कितना भी गुस्सा करूँ, मुझे गुस्सा अच्छा लगता नहीं है। अच्छा हमेशा वही लगेगा जो हमारी नेचर होगी, जो नेचुरल होता है। अननेचुरल चीज अच्छी नहीं लगती है। देन आई स्टार्ट, दैट्स द प्रोग्रामिंग दैट गोज ऑन, कि मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है। फिर कोई टेंशन वाली थॉट या कोई बीच में आ गई, ये थॉट क्यों आ रही है जबकि मेरी ओरिजिनल नेचर, यू नो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायलॉग एंड दिस इज अ प्रोग्रामिंग दैट आई विल डू अर्ली इन द मॉर्निंग, वेयर आई फीड इन ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस इन टू दिस कंप्यूटर, दैट आई एम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, प्योर कॉन्शियस चैतन्य शक्ति आत्मा, जो यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाते
1: हैं। ये बातचीत जो हो रही है, तर्क वितर्क है, ये मेरा दिमाग, मेरी आत्मा,
0: दिमाग इज ब्रेन,
1: मेरे दिमाग आत्मा के साथ कर रहा है या क्या हो रहा है?
0: सी, दिमाग इज अ ब्रेन, तो ब्रेन फिजिकल, ब्रेन फिजिकल है,
1: मेरी, ओके, मेरा मन कर रहा है,
0: हाँ,
1: मेरा माइंड कर रहा है,
0: माइंड करता है, ये दो लॉयर्स हैं और एक जज होता है।
1: तो जज इज
0: बुद्धि, इंटेलेक्ट। हमने पहले भी कहा था आत्मा जब सोचने का काम करती है तो वो मन है, जब आत्मा निर्णय लेने का काम करती है तो वो बुद्धि है, जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं। और फिर जब वो इंटेलेक्ट ने फाइनल डिसीशन दे दिया और हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, यस, मैं हूँ शांत स्वरूप, फिर वो धीरे धीरे मेरा संस्कार बनता जाता है। तो आत्मा ये तीन चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये दो लॉयर्स वो मन है, मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है,
1: लॉयर, मन ही दोनों बातें कर रहा है,
0: दोनों साइड का, यू नो, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों मन ही कर रहा है, क्योंकि मन एक नए बिलीफ सिस्टम से थिंकिंग चल रही है और एक पुरानी बिलीफ सिस्टम की थिंकिंग भी बीच बीच में उसको कट करती है। फिर धीरे धीरे, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग नाउ, ना थॉट की जो सोर्स थी बिलीफ इन्फॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, अब हमारी इन्फॉर्मेशन की सोर्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमने भरनी अब शुरू की है, पहले भर नहीं रहे थे, पहले नेगेटिव था तो थॉट नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव भरना शुरू किया तो वो वाली थॉट्स भी शुरू हो गई,
1: तो वो तर्क ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गया,
0: yes.
1: क्योंकि वो सही लगने लग गया ना,
0: एब्सोल्युटली। फिर जो आत्मा है उसको सच्चाई तो हमें हर एक को पता है, अंदर हर एक को पता है कि गुस्सा नहीं अच्छा लगता, तो फिर बुद्धि वो आंसर देगी, you know,
1: yes.
0: कि this is what you are, this is what you are, and कुछ दिन, जैसे कहा एक महीना करते रहिए, जैसे शायद उतना, मतलब everybody will take their own time, so we'll not really say कि you know इतना time लगेगा, थोड़े दिन के बाद you will start feeling that just becomes natural experience, और इस चीज़ को फिर हम सारा दिन में, जो हमने कहा ना एक एक मिनट, क्योंकि सारा दिन में फिर वो body consciousness में आ जाते हैं, office में घुसे, मैं कौन हूँ जो office जा रहा है, मैं कौन हूँ जो अपने परिवार से बात कर रहा है, ये बार बार एक रिविजन जब होती जाती है तो धीरे धीरे वी आर मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस
1: टू अगेन
0: सोल कॉन्शियसनेस। अगर आप दिन में एक मिनट पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आधा मिनट पे सोल कॉन्शियस हैं, आप ईगोलेस हैं उस टाइम। सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं, इट्स ईगोलेस। और जितनी देर आप ईगोलेस हैं, टेंशन, एंग्जाइटी एंड द होल लिस्ट,
1: तो बट एक मिनट भी अगर हम ईगोलेस हैं,
0: दैट्स वेरी बिग,
1: लेकिन एक मिनट के बाद ही हम फिर ईगो में आ जाएंगे,
0: नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे परसेंटेज
1: कम होता जाएगा। ओके, वंडरफुल,
2: अंडरस्टैंडिंग आएगी तो नहीं होगा फिर
0: जी, अगर
2: तो
0: हम एक मिनट करते हैं ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, उसका इफेक्ट कम से कम 5-10 मिनट रहेगा, फिर उसके बाद
2: फिर वो सिस्टम ही
0: चेंज होता जाएगा ना धीरे धीरे,
2: जो ईगो के थॉट है वही चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ईगो वाला और उनको सोचता है सेल्फ एस्टीम अपने बारे में, तो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हम सेल्फ की ओर ही डायरेक्ट होते हैं,
1: कि अगेन कांस्टेंट ये चलता रहेगा अपने साथ। ये प्रोसेस जो हमने सुबह 4 से 5 के बीच में या कोशिश की कि उस सब का शुरू करें, और जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन में भी हमने यही देखा जो पूरा राजयोग की आप बात कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वही बात, एक पॉजिटिविटी, एक जो किस तरह से अपने आप के बारे में अवेयर होना कि मैं कौन हूँ और मेरे क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये एक वॉच डॉग की तरह भी है, अगर बुद्धि तो वो ये देख रही है कि क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस है, सजगता है। देन वी कैच द थॉट्स विच वर देयर, नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में आएंगे एनालिसिस पे, वो मेरे ख्याल से अंडरलाइन होगा फिर,
2: फिर वो उसमें अंडरलाइन डिफरेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर,
1: वो एनालिसिस करेंगे जब, तभी हम वो अंडरलाइन पे आएंगे, वो अंडरलाइन जो है हम अगली कड़ी में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त खत्म हुआ, लेकिन बिल्कुल ये दो एस्पेक्ट्स जो थे, दो हम स्टेप्स पे थे, अवेयरनेस हमने पहले ही समझ ली थी थोड़ी बहुत, सजगता. आज हमने एक मेडिटेशन के एस्पेक्ट को भी समझा कि मेडिटेशन इज अगेन असान.

हम खुद को पहचान सकते हैं। ये एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप राजयोग मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जा सकते हैं और इस मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन का कोर्स है ये निःशुल्क है और आपको बता दें कि दुनिया के 120 देशों में 8000 सेंटर्स हैं ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो हैं, और उसके अलावा भारत के कोने कोने में ये सेंटर्स स्थापित हैं। तो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: उनका अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। और सद्गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विशेष जो है दादी के निमित्त भी विशेष भोग है, और बड़ा अच्छा लग रहा था सवेरे जो समय हमने बिताया, और बेहद अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभूति के साथ हमने समय बिताया है। और आशा करूँगा कि आप भी अगर अभी सुन रहे हैं तो आपको भी वो खुशी मिल रही होगी। तो आइए, 27 अगस्त 2026 आज का तारीख है, और राष्ट्रीय शक है 1948, 5 गति 11, श्रावण गुरुवार, विक्रम संवत 2083, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, पूर्णिमा गुरुवार, हस्त आज है। इसके साथ ही चलिए मित्रों, आज सीए भवानी देवी और एनवी रमन, इनका जन्मदिन है, जिनके बारे में हम लोग आपसे रूबरू कराएंगे, उनकी बातें उनकी कहानी सुनाएंगे। और आइए, एक दो सवार साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार
0: जी। गुड़ीलाल जी, बोलिए, कैसे है आप?
1: खुशियों को लेकर के एक मेरा भजन है, जनन मरन मिट जाएगा प्रभु, हरि का भजन कर, जनन मरन जरा मिट जाएगा। ये है मेरा भजन सर, ये होगा तो अच्छा रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी प्रणाम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, नमस्कार गुड़ीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर भावनाएं व्यक्त किया आपने, और तेरा जन्म मरण मिट जाएगा ये गीत आप सुनना चाहते हैं, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं आज की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, तेरा जन्म मरण मिट जाए जब गुरु का नाम प्यारे आप लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीरज गुप्ता जी ने आप सभी को बड़े प्यार से गोंदिया से याद किया, और सिक्योरिटी का काम करते हुए रेडियो मधुबन को सुनते रहते हैं। और उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा गीत याद किया है कि कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद आ जाओ, अवतार गोविंद का बन के आप आ जाओ, ऐसी भावना प्रकट की है उन्होंने एक भजन से। तो वो भजन भी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। और आइए, गुरीलाल जी ने भी गीत याद किया था, बड़ा सुंदर, वो भी हमने प्ले किया है। अब आइए सीए भवानी देवी के बारे में बात करते हैं। चंदलवादा आनंदा सुंदर मन भवानी देवी, ये पूरा नाम है इनका। और भारतीय महिला तलवारबाज रही हैं। सफ़र छोटा भले ही हो लेकिन इतना रोचक हो कि ज़माना सदियों तक उसे याद करे, ऐसे ही सीए भवानी देवी का जीवन कहानी है। और इन्होंने इसी वाक्य को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोकियो में जो हुआ उसमें चरितार्थ किया है। भवानी देवी भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी खेलने वाली और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी रही हैं। भले ही टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने अपने साथ भारत का नाम ओलंपिक के इतिहास में दर्ज करा दिया। तो ये अपने आप में एक अनूठा चीज़ है जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। फेंसिंग साल 1896 में ओलंपिक का हिस्सा रहा है, लेकिन 125 साल बाद कहीं जाकर भारत ने इस खेल में पदार्पण किया, जिसका प्रतिनिधित्व सीए भवानी देवी ने किया। अपनी जिम्मेवारी को भवानी देवी ने बखूबी निभाया। तलवारबाजी में अपना हुनर दिखाते हुए उन्होंने पहला मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि अगले राउंड में वह हार गई और इसी के साथ ओलंपिक में उनका सफ़र ख़त्म हो गया। पर अपने इस छोटे से सफ़र में भी भवानी देवी ने भारत के लिए फेंसिंग की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोल दिया। सीए भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज खिलाड़ी बनी। टोक्यो के मुखरी मैसेस हॉल में मैच खेला गया था, और मैच की शुरुआत में भवानी देवी ने पहला राउंड 64 के मैच में टूनसिया की नदिया बिन अजीज़ को 15-3 से हरा कर अपना जीत पहली पारी में दर्ज किया। तो इस तरह से ये भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, और अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप में भी उन्होंने काम किया। फेंसिंग की दुनिया में ऐसी भवानी देवी का नाम नया नहीं है, ये अलग बात है कि ये नाम जब जाकर अपनी अधिक चमक बिखेर रहा है। मैच में भवानी देवी मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, और शुरुआत अपने 2009 के कॉमनवेल्थ गेम से की, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर इंटरनेशनल ओपन, कैडिट एशियन चैम्पियनशिप, अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप सहित कई टूर्नामेंट्स में मेडल्स अपने नाम किए। अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला रही है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। हेलो जी, नमस्कार।
1: बुराराम बोल रहा हूँ से समय।
0: बुराराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं बताइए, स्वागत आपका।
1: बस अभी आपका बोले तो रोज मनोरंजन और अच्छे ज्ञान की बातें सुनता रहता हूँ, और हमेशा बोले तो प्रोग्राम आपका सुनता रहता हूँ। अच्छा, जी, सब जी। मन भाइयों को और सब सुरेश भाई, मदन लाल जी, भूरे लाल जी, सुभाष भाई और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम करना, बाकी आपको भी मेरा राम राम। और एक भजन वो सुनाएंगे तो अच्छा करेंगे। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वो ऐसा है।
0: जी जी, जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, धन्यवाद याद अच्छा। करने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये थे बुराराम जी ओर से, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और आइए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नीरज गुप्ता जी का ये भजन, आपके नाम अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी भक्तों की पुकार सुन ले हे गोविंद, कलयुग में लेके अवतार गोविंद का आजा। तो जब मनुष्य जीवन में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे दुख से छूटने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य आत्माएं जो है परमात्मा को अलग अलग अवतार में आने के लिए पुकारती रहती है। तो इस भाव से ये गीत आपने सुना। आइए इसके साथ ही आप आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एनवी रमन के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्होंने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार सर, सुप्रभात।
0: कंचन भाई बोलिए, स्वागत है आपका।
1: हाँ जी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। और गुरुवार का दिन है आज, और कल रक्षाबंधन का त्योहार है। तो कल आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया, कोशिश तो जरूर करूंगा, लेकिन क्या है कि भाई जो थोड़े कपड़े भी देने पड़ते हैं ग्राहकों को, ये सभी संभालना, खेती का सभी संभालना पड़ता है। तो समय सर बात करनी चाहिए यहाँ तो स्टूडियो में, ठीक है। तो आज एडवांस में सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। और सदगुरुवार का दिन है, तो क्या है सर कि भाई गुरु जीवन में आवश्यकता है, सदगुरु, ठीक है। और क्या है कि भाई बोला है साथी में एक लिखा है कि भाई गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन न मले भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले वांचो त्यारे वेद। गुरु गोविंद दोनों खड़े जिनको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो जीवन में ये जरूरी है, ठीक है। और गुरु की बात माननी ही चाहिए। क्या है कि भाई क्या कई लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, वह जाए ऐसा कर करके आखिर पूरी जिंदगी भटक भटक के ये पूर्ण कर देते हैं। क्या है कि भाई गुरु काला गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, चेला चतुर सु जान है, नित्य करे गुरु पीछे। तो विश्वास रखना चाहिए, गुरु ने जो मार्ग बताया है वो सही है, इसमें क्षण भर भी ये नहीं करना चाहिए हमारी बुद्धि से, ठीक। थोड़ी रेडियो के माध्यम से थोड़ी आज सदगुरुवार की बात दिन था, तो थोड़ी बात करती सभी दोस्तों को आपको।
0: जी जी जी,
1: थैंक यू
0: अंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुने हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए, रमन जी के बारे में बातें कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहा। 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले वो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एनवी रमन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और वे कई सालों से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद इन्होंने संभाला। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में रहते हैं और परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और एनवी रमन ने बीएससी और लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत शुरू की थी। करीब 48 साल तक इन्होंने ये कार्य किया है। रमन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल सर्विसेज और इंटर स्टेट रिवर लॉ में उनका स्पेशलाइजेशन रहा है। उन्होंने विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए पैनल वकील के रूप में भी काम किया है। और एनवी रमन ने केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और हैदराबाद में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में रेलवे के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में सेवाएँ दी हैं। तो इस तरह से इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया और न्यायमूर्ति रमन को अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें पूर्व एवं

के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर भजन बुरा राम जी ने याद किया, मन तड़पत है हरि दर्शन को, अभी आपके लिए सुनते रहो मस्त।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं अभी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग

0: 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00868518242905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
7: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: वो पहाड़ देख रहे हो?
10: हाँ, कितना सुंदर है।
9: और उनको देख रहे हो?
10: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
9: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
11: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शांति नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। सदगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। समाचारों के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आइए, बातें चल रही थी हमारी विशेष रूप से आज के दिन की, और एनवी रमन जी के बारे में हमने बातें की और एसवी भवानी देवी के बारे में बातें की। चलिए, इसके साथ ही रविंद्र केलकर और मुकेश जी और ऋषिकेश मुखर्जी, इन सभी का पुण्य दिवस है, तो याद करते हैं हम उन लोगों को भी जिनका आज पुण्य स्मृति दिवस है, जैसे मुकेश जी का। ऐसा देखा जाता है भारत में संगीत का इतिहास अगर सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक माना जाए तो इसमें से एक नाम उभर के आएगा, वो है मुकेश जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी, स्वागत है। बढ़िया है, बढ़िया
1: बस, हम भी बढ़िया है सर, और बहुत अच्छी बातें हो रही है। अच्छा गाना भी सुना लिया आपने, और सतगुरुवार है तो सबको आज के दिन की शुभकामनाएं सर। हमारे सभी जितने बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, सबको गुरु की कृपा बनी रहे। हमारा संचल भाई ने गुरुराज जी, हमारे गुरा रामदेव जी ने भी बात की। चलो मेरे भैया जी, भजन मुझे याद आ रहे थे जिन्हें समय सुना है सर। एक शायद राजस्थानी गाथा है, मारवाड़ी गाथा में गाना है कि तेरा मेरा मनवा कैसे कहो रे, ये भजन है मारवाड़ी भाषा में। ठीक है, हमारे सभी बहनों के भी नमस्कार। हमारे जो सगुना बहन जी है, हमारे इंदु बहन जी है, कमलेश बहन जी है, कई दिनों से वो नहीं आते हैं, पहले तो बहुत आते थे, आपके कार्यक्रम में भी आते थे, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है इसकी आवाज। चलो आज के दिन की सबको शुभकामनाएं सर। नमस्ते, ओम शांति।
0: नमस्ते सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को याद करने के लिए। आइए, जैसे सुरेश जी ने सभी को याद किया बड़े प्यार से, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ, और मुकेश जी को याद करते हुए भारत में संगीत के इतिहास को अगर सर्वश्रेष्ठ एक पेशे से एक इंजीनियर होने के साथ साथ घर में पैदा होने वाले मुकेश चंद्र माथुर के अंदर वो सहूलियत थी कि वह एक अच्छे गायक बनकर उभरे, और हुआ भी यही। कुदरत ने उनके अंदर जो काबिलियत दी थी वो लोगों के सामने आई, और मुकेश की आवाज़ का जादू पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगा। जी हाँ, मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। इनका विवाह सरल के साथ हुआ था। मुकेश और सरल की शादी 1946 में हुई, और मुकेश के एक बेटा और दो बेटियाँ हैं जिनके नाम नितिन, रीटा और नलिनी। मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता भी हैं। इनके लिए पिता जोरावर चंद्र माथुर अभियंता थे। 10वीं तक शिक्षा पाने के बाद PWD दिल्ली में असिस्टेंट सर्वर की नौकरी मिल गई। मुकेश अपने स्कूली दिनों में अपने सहपाठियों के बीच एक KL सहगल की गीत सुना करते थे और अपने स्वरों में उसे गाया भी करते थे, किंतु विधाता ने उन्हें लाखों करोड़ों के दिलों में बसने के लिए अवतरित किया था। सो विधाता ने वैसे ही परिस्थितियां निर्माण कर मुकेश जी को दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ। मुकेश जी के कुछ खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं और मुकेश जी का सुपर डुपर हिट गाना अभी आपको सुनाते हैं। और मुकेश जी के बारे में बातें हो रही थी, उनका जैसे कि विवाह 1946 में मुकेश की मुलाकात एक गुजराती लड़की से हुई और फिर उनसे मिलते ही मुकेश जी उनके प्रेम में डूब गए। हालांकि मुकेश कास्त थे, इस वजह से एक कड़ा प्रतिबंध उनके परिवार वालों से था, लड़की वालों से, लेकिन मुकेश ने दोनों परिवारों को तमाम बंधनों की परवाह न करते हुए अपने जन्मदिन 22 जुलाई 1946 को उनसे शादी करके अटूट बंधन में बंध गए। और एक बार फिर मोतीलाल ने उनका साथ देते हुए अपने 3 साथियों के साथ एक मंदिर में शादी की सारी रस्म पूरी करवाई थी। तो इस तरह से उनकी शादी हुई थी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ सर।
0: मदन भाई स्वागत है, बोलिए।
1: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ अच्छा लगा आपको और लगता ही है रोज। बच्चे नेपाल में बहुत जोरदार का बाढ़ आ चुका है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं और उनको हम शुभकामना देते हैं और हम भी अपना ख्याल करें ऐसा हम चाहते हैं, दूसरे का भी। और समय बड़ा हर चीज तूफान से चढ़ी है, तो बस हम भी शांत रहें और उनके भी शांत रखें और बस जाना खुल रहेंगे। आज जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार, हमारे दोस्तों को नमस्कार है। रेडियो मधुबन को बहुत अच्छे प्रोग्राम सुने और आज छुट्टी है हमारी, आज भी है कल भी है और ऐसे हम रोज छुट्टी जैसा ही समझते हैं कार्य करते हुए भी। हमारी रोज छुट्टी है, हम कोई बंधन में नहीं है। जी, और बस गाना सुना दी। आना है तो देर न कर, भगवान के दर से बंदे। मोहम्मद रफी का गाना है, बड़ा अच्छा है तरीके चलने जैसा। और रमेश जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, नवी किरण को और सभी शो को, और रोज सुनते हैं अच्छा लगा। बस सुनते जाएंगे और मुस्कुराते जाएंगे आप, और भी अच्छे अच्छे सुनाते रहिए। हम सुन रहे हैं, दोस्तों का भी फोन सुन रहे हैं और जिनका भी जन्मदिन इनको बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति, नमस्कार, ओम शांति।
0: जी जी जी, चलिए मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। मुकेश जी का ही एक और खूबसूरत गाना, आपके नाम, अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम। चलिए मुकेश जी का बहुत ही खूबसूरत दो बैक टू बैक गाने सुने और बात कर रहे थे हम लोग मुकेश जी के पुण्य स्मृति दिवस पर। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश के अनुसार वे प्रतिदिन 5 बजे सोकर उठते थे। मुकेश जी का दिनचर्या इस प्रकार होता था, भले ही 15 मिनट पहले ही सोने के लिए गए हो, लेकिन वो 2 घंटे रियाज करने के बाद बगल के बगीचे में टहलने जरूर जाते थे। हर एक फूल को बड़े प्यार से देखते थे, मानो अपने किसी साथी से वो बात कर रहे हो। भगवान श्री राम के परम भक्त थे और प्रतिदिन सुबह रामचरितमानस का पाठ भी करते थे, जिसे वे हमेशा अपने पास रखा करते थे। और ये कतई नहीं चाहते थे कि नितिन मुकेश एक गायक बने। वे हमेशा कहते थे कि एक गायन एक सुंदर रुचिकर विषय है, मगर बड़ा कष्टदायक व्यवसाय है। वे प्रत्येक स्टेज शो की सहमति पर समाप्ति पर नितिन की तारीफ उनकी माता सरल मुकेश से किया करते थे और कहते थे, आज तो आपके साहबजादा ने अपने पापा से भी ज़्यादा तालियां पा ली है। मुकेश को अपने 2 गीत बेहद पसंद थे, जाने कहा गए वो दिन और दोस्त दोस्त ना रहा। तो इस तरह से वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बहुत ज़्यादा जो है खुश नज़र आते थे और अपने बेटे को गाते हुए भी अच्छा लगता था उन्हें, लेकिन वो चाहते थे कि बेटा कुछ और करे। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश जी की आवाज़ में, मुकेश का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत। आइए, इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार जी। मुकेश का कहे अगर जीवन पे जीत गाता रहो, तू कहे अगर जीवन पर जीत गाता रहो, ये मुकेश जी का गाना कर दिया हमारा तो दिल खुश हो जाएगा।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:48 हो रहे हैं और गिरिलाल जी ने फिर से याद भेजा है। और चलिए, और उन्होंने गीत भी याद किया है, कोशिश करता हूँ कि मैं वो गीत उनका भी सुना पाऊँ। अब बातें चल रही थी मुकेश जी के बारे में, वैसे उनकी कहानी तो लंबी है, फिल्मी दुनिया में कैसे उनको जो है उनके एक रिश्तेदार के ज़रिए फिल्मों में एंट्री मिल गई और फिर फिल्मों के लिए गाना उन्होंने शुरू किया गाना, और अंदाज फिल्म से उन्होंने अपना गाना जो है जो गाया, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी 1949 में, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देख पाए। फिर उनके दर्द भरे गीत के लिए वो बादशाह बन गए और आवाज़ बनी दवा उनकी। कई बार उनकी गानों को सुनकर भी लोग जो है खुश हुआ करते थे। और एक बार एक लड़की बहुत बीमार हो गई, तो बीमार हो गई तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी लड़की बीमार है, तो उनमें मुकेश जी वहाँ गए, उनकी लड़की के लिए एक छोटा सा गीत गाना गाया तो लड़की ठीक हो गई। तो इस तरह से चीज़ें भी उनके साथ रहीं। और 1976 में उनको जो है इसी अगस्त महीने में दिल का दौरा पड़ा, और फिर उस समय वो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और वहाँ पर उनको दिल का दौरा पड़ा। 27 अगस्त के दिन उनका निधन हुआ। मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी और उनके गीत हम सब के लिए प्रेम, हौसला और आशा का वरदान बनते जाते हैं। मुकेश जैसे महान गायक और केवल दर्द भरे गीत के लिए, बल्कि वो तो हम सब के दिलों में सदा के लिए बसने के लिए बने थे। उनकी आवाज़ का अनोखापन, बीघे स्वर, हल्की सी नासिका लिए हुए न जाने कितनी संगीत प्रेमियों के दिल को छू जाती थी। वो एक महान गायक थे, साथ ही एक अच्छे इंसान भी, और सदा मुस्कुराते रहते और खुशी खुशी लोगों से मिलते। उनके निधन पर राज कपूर ने कहा था, मेरी आवाज़ और आत्मा दोनों चली गई। बड़ा शौक से सुन रहा था ज़माना, हामी सो गए दास्ता कहते कहते। तो ये शब्द थे राज कपूर के। 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से मुकेश जी का निधन हुआ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ गए हैं। मुकेश जी के खूबसूरत गाने आपको अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर बताइएगा। आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। और तो चलिए बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में। और सत्ताईस अगस्त को द ग्रेट खली दैरायना, इनका भी जन्मदिन आज है। इंडियन प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर और पावर लिफ्टर है। नेहा दुपैया न्यू दिल्ली से हैं। 1972 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। इंडियन एक्ट्रेस हैं। इसके साथ ही शिवानी दांडेकर, इनका भी जन्मदिन आज है। टीवी पर्सनालिटी है, टीवी एक्ट्रेस है। इसके साथ में जिम सौरभ मुंबई से हैं, इंडियन एक्टर हैं आप। आपका भी जन्मदिन आज है, 27 अगस्त को आपका जन्म हुआ था और मुंबई में। इसके साथ ही सुमा लता जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनका भी जन्मदिन आज है। और चेन्नई से आप बिलोंग करते हैं, 1963 में आपका जन्म हुआ आज के दिन। मदुरई से एक्टर कॉमेडियन सूरी, इनका भी जन्मदिन आज है। 1977 में आपका जन्म हुआ आज के दिन। दौरभजी टाटा मुंबई से हैं, 1859 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था और ये भारत के एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन रहे। डोनल बिशट उत्तराखंड के व्यक्ति हैं, एक्टर है। 1994 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। दिल्ली से मनीष गोयल जी, 1975 में इनका जन्म हुआ। टीवी और फिल्म एक्टर हैं। पटियाला से इंडियन बिजनेसमैन कृष्णा कुमार मोदी जी का जन्म हुआ। 1940 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। सुखी शिवम त्रिची, इनका भी जन्मदिन आज है। इंडियन राइटर हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ। तो आज के दिन जन्मे उन सारे लोगों को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग होते हैं, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर किसी को एलर्जी है, दमा है, तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज के व्यंजन को भला कैसे भूल सकते हैं। आज मैं आपको राजस्थानी सब्जी बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सोचिए कि मैं कौन सी सब्जी सिखाने वाली हूँ, आपको कौन सी पसंद है राजस्थानी देसी सब्जी, उसमें से आप नाम बताइएगा, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं आपको सिखाने के लिए। और आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग होते हैं। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुला करके प्रश्न किया, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े होकर के बोले, महाराज आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार मने गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा जी ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा जी के पास पहुंचे। राजा हक्का बक्का रह गया, दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ, बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी, राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली, हमने उसकी 4 बाटी से की। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से कुछ भी मुझे दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं खाऊंगा आग? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच करके खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं, और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। वो कहते हैं ना, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे भला कैसे खुल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य की रेखाएं अलग अलग होती है। यह हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।
8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय। एलर्जी और दमा हो तो क्या करेंगे, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको पहेली भी पूछने वाली हूँ, उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो एलर्जी और दमा है तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे तत्वों को जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जेन कहा जाता है उसको, ठीक है। स्वस्थ शरीर में इस प्रतिक्रिया को रोकने की क्षमता एक विशेष तंत्र द्वारा होती है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र का प्रमुख तत्व शरीर को श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC कहते हैं। ये कणिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले सभी एलर्जेन से निपटने को तत्पर रहती है, तथा जो तत्व बाहरी होते हैं ना, उनके विरुद्ध एक प्रोटीन तत्व का निर्माण करती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। वही एंटीबॉडी उस बाहरी तत्व एंटीजन को तोड़ने में सहायक होती है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत से एंटीबॉडीज होती है जो उन बाह्य तत्वों के कुप्रभावों को नगण्य कर देती है। तो इस तरह देखिए एलर्जी कैसे होती है, उसका थोड़ा सा आपको डीपली कारण बता रही हूँ। तो ऐसे फिर वायरस हो जाता है, वायरस का रोग होने पर शरीर में इसके एंटीबॉडी बन जाती है, जो पुनः इसके संक्रमण में रोग को उत्पन्न नहीं होने देती। परंतु कुछ बीमारियां जैसे फ्लू, जुकाम के वायरस सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, कारण पूर्व की बनी एंटीबॉडी उपयोगी नहीं सिद्ध होती, अतः बार बार फ्लू व जुकाम होता रहता है। तो ये कारण है। फिर दमा देखिए एक प्रकार की एलर्जी क्रिया है। जब यही क्रिया तत्व मतलब त्वचा में होती है, तब उसे एक्जिमा कहते हैं। जब आँख और नाक में हो तो फीवर, और जब श्वसन तंत्र में हो तो इसको दमा कहते हैं। तो अब इस तरह की समस्या हो तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। दमा में आप खजूर खाइएगा, काफ़ी लाभप्रद रहेगा। एलर्जी भी है, दमा भी है, तो खजूर खाइएगा, बहुत ही फायदा करेगा। फिर देखिए गाजर भी आप ले सकते हैं, दमा में गाजर या इसका रस बहुत ही फायदेमंद है। गाजर का रस 185 ग्राम, चुकंदर का रस 150 ग्राम, खीरा या फिर ककड़ी का रस 125 ग्राम मिलाकर के पीजिएगा, इससे दमा में बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं ले सकते तो आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। अंगूर खाना बहुत ही लाभदायक है। यदि थूकने में रक्त आता हो तो अंगूर खाइएगा, काफ़ी राहत मिलेगी। अंजीर भी आप खा सकते हैं। दमा जिसमें कफ बलगम निकलता हो तो ऐसी स्थिति में अंजीर खाना बहुत ही लाभप्रद है। इससे कफ बाहर आ जाएगा और रोगी को शीघ्र आराम भी मिलेगा। और विटामिन ई का लेना भी ज़रूरी है। दमा ठीक करने में विटामिन ई की अत्यधिक मात्रा आपको लेनी है, मतलब इसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है, इसलिए विटामिन ई की मात्रा आपको लेनी है। यह रक्त कणों के निर्माण में लाभ करता है। वायु प्रदूषण के कारण शरीर में होने वाले हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करने में सहायता देता है। तो इस तरह आप विटामिन ई ले सकते हैं। कैसे मिलेगा आपको वो भी जान लीजिएगा। जैसे अंकुरित गेहूँ, पिस्ता, सोयाबीन, सफोला तेल, नारियल, घी, ताज़ा मक्खन, टमाटर, अंगूर और सूखे मेवों में आपको मिल सकता है विटामिन ई। तो इस तरह आप एलर्जी वाला दमा है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए घरेलू उपाय। आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं, बोलिए क्या। अब ये कौन सा रिश्ता है, जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, आज भी कर रही हो यही रमन। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन। आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको मैं आज का विषय रख रही हूँ। आप सुनिएगा और जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं, आज के विषय में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं। तो आज का विषय है ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार मित्र जिंदगी की जड़ है, क्या कहेंगे आप। और आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। बोलिए ये किस रिश्ते की तरफ संकेत कर रही है आज की पहेली। तो दोनों में ही जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं। तो आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। वही आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, इसलिए आप जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। देखते हैं कौन जुड़ते हैं और आज की पहेली का जवाब देते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप भेज सकते हैं इसी नंबर पर। हेलो
1: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो दीदी।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, और आप आ गए तो और अच्छे हो गए। आप हम तो आपका इंतजार करते थे कि दीदी आएंगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे, लेकिन आज आप आ गए हैं, सीधा प्रसारण चल रहा है तो आपसे बात भी मेरे हो रही है। तो हम सभी दोस्तों को भी कहेंगे कि दीदी आ गए हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो आप जरूर दीदी से जुड़िए, बात कीजिए।
0: थैंक यू भैया।
1: अरे हमारे सभी मित्रों तो जुड़ रहे हैं, शायद हमने समाचार तो पहुँचा दिया है सभी को।
0: जी जी।
1: और विषय तो दीदी आपने किया है, लेकिन जो पहले तो मैं बताऊंगा बाद में जवाब, क्योंकि अभी इच्छा तो उभार आ रहा है।
0: जी जी जी।
1: इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जवाब में।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपने इशारा किया तो, हम समझ गए।
1: और तो आपने पैसा और क्या बोला पता नहीं।
0: जी ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है, क्या कहेंगे आप।
1: वो तो सही है दीदी, पैसा तो देखो पैसा तो आता है जाता है, लेकिन जो मित्र संबंधी है तो मित्र संबंधी दीदी ऐसा है वो जड़ आने के अहमियत के लिए वो अपना एक रिश्ता है दीदी, तो कभी रिश्ते को तोड़ना नहीं है, निभाना है। मित्र और संबंधी बिना तो ये जो हमारा संबंध चल ही नहीं सकता। देखो आज कई सारे ऐसे मित्र हैं कि बहुत इसी कई सारी मुसीबतों से भी हमको निकाल देता है और कई मुसीबत में भी हमको बचाता है, तो ऐसे मित्र को कभी तोड़ना नहीं है और संबंधी को भी तोड़ना नहीं है। संबंध में बिना तो दीदी हमारे कहते हैं ना कि संबंध बिना कुछ नहीं है, परिवार है लेकिन जो संबंध नहीं है तो
0: जी
1: क्या करें, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जड़ है तो उसको जड़ को संभाल के रखना, पैसा तो आएगा जाएगा, ताकत भी आती है और चली जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो एक ही बात करूंगा कि मित्र और संबंधी को कभी तोड़ना नहीं है, उसको जोड़ के रखना है।
0: जी जी जी जी
1: ठीक है दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट में आपने काफ़ी कुछ समझा दिया है। आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए ये प्रैक्टिकल विषय है, ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है, क्या कहेंगे आप। और आज के पहली फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आराम से इसका जवाब दीजिएगा। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, अगर पहेली का जवाब नहीं मिलता है तो बचपन को याद करेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और जवाब देते हैं। बाकी ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है, बहुत ही सुंदर आज का प्रैक्टिकल विषय है। पैसा आता है तो ताकत तो आ ही जाती है ना, लेकिन ये कोई अच्छे कर्मों का फल ही है कि हमारे पास पैसा है, ठीक है, वो भी नीति वाला। तो मेहनत करके काफ़ी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। आपके अंदर जितनी एबिलिटी है आप काम करिएगा और आगे बढ़िएगा, बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आपने सुना होगा कि बचपन में बहुत गरीबी सही होती है, वो धीरे धीरे जब पढ़ लिख कर होशियार होते हैं तो बहुत मतलब पैसा बना लेते हैं एक उम्र आने तक। हेलो,
1: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
1: बस आपका बोले तो कैसे पाँव सही हो गया क्या?
0: हाँ हाँ, हाथ हाथ का।
1: मैंने सुना था सुरेश भाई ने मेरे को मैसेज दिया था कि बोले तो उषा बहन जी को फ्रैक्चर हो गया पाँव में।
0: पाँव में नहीं, हाथ में हुआ, हाथ में।
1: अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी तो अच्छा है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, चल रहा है।
1: ओके
0: हाँ जी,
1: और सब मधुबन भाइयों को सबको मेरी तरफ से राम राम
0: जी।
1: और तो क्या आज से विचार चल रहे हैं, और जो आपने विचार रखा है वो अच्छा है कि मित्र और क्या क्या बोले थे,
0: ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है।
1: ताकत और पैसा तो ये तो आना जाना ही है, कोई ताकत भी कोई जिंदगी भर नहीं चलती है, और पैसा भी बोले तो आना जाना है इसका, तो लक्ष्मी का कोई ये नहीं कि लक्ष्मी जाती और आती रहती, लेकिन संबंध बोले तो जो परिवार का रहता है वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और अच्छे संबंध दोस्तों से भी संबंध अच्छा रहेंगे तो वो मुसीबत में भी काम आते हैं, और अच्छा है कि तरीके से वो प्रेम नहीं तोड़ना चाहिए परिवार में, भाई मिलकर चलते हैं तो वो पूरी जड़ अपने
0: जी। और आज की पहेली का जवाब देंगे? आज की पहेली है
1: अपने को इतना नहीं आता
0: है। अच्छा, फिर से सुनिएगा, फिर आप अपने बचपन को याद करिएगा। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। ये कौन से रिश्ते की बात है? जी देखिए, वो देखिए आपको सोचना है, ठीक है? तो हम तो लिख देते हैं आपका जवाब, आप और सोचिएगा, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी ओर से। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं। तो बात चल रही थी ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, तो अच्छी बात है, कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति जब उनका बचपन गरीबी में बीतता है और जब वो युवा अवस्था में आते हैं तो युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास पैसा बन जाता है, तो लोग ईर्ष्यावश कहते हैं अरे देखो देखो पैसे का जोर है, पैसा बन गया तो घमंड करता है ऐसे, भाई भले नहीं करता हो लेकिन ईर्ष्या जिसके मन में होती है वो क्या कहता है, यही कहता है ना कि अरे देखो देखो। लेकिन बहुत सारे खुश भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं, बहुत सारे संबंधी होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि देखो बचपन इसका भले स्ट्रगल वाला गया हो लेकिन क्या ये इसने मेहनत की कि आज ये खुश है, तो मतलब अच्छा भी लगता है और लगना भी चाहिए। कोई भी इंसान जब मेहनत से ऊपर आता है तो उसकी मेहनत दिखाई देती है और लोग उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, उनसे अच्छा भी लगता है कि देखो मेहनत नहीं करता तो आज वो वही के वही रहते हैं। क्या था इनके पास? कुछ नहीं था, एक छोटे से कुटिया गांव में कितनी बातें होती है ना, लेकिन सामने जब नज़र के सामने कोई भी इंसान तरक्की करता है तो उसको इग्नोर कैसे करे, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा उसका बचपन हमारे सामने बीता है, फिर वो युवा अवस्था हमारे सामने बीत रही है, किसी का बुढ़ापा तक हम साथ में रहे होते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ करके दिखाया है इन्होंने। और बाकी तो बहुतों को तो अभिमान भी आ जाता है, बहुतों को तो ऐसे कि ठीक है नया पैसे का जोर थोड़ा सा तो अभिमान भी आ जाता है, वो फिर सामने वाले की कदर नहीं करते हैं। ऐसा भी कहते हैं ना कि समाज में दोनों ही चीज़ें हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो अच्छा ही भी है तो बुरा ही भी है। कितनी बार कोई इंसान पहले स्ट्रगल करके ऊपर आता है, तब तक वो नम्र बना रहता है, धीरे धीरे जब उसके पास और पैसे आने लगते हैं या मेहनत से कमाता है, तो कोई कोई तो ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव तक भी नम्र बने रहते हैं, सभी के साथ रिश्ता निभाते हैं। और कोई कोई क्या है कि फिर पैसे का अभिमान आ जाता है, तो वही व्यक्ति जिनके साथ बचपन बीता है, जिनके साथ बड़ा हुआ है, उनको ही हीन भावना से देखता है। तो ऐसा भी होता है, क्या कहेंगे हम कि खाली पैसे के दम पर, ताकत के दम पर हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अच्छी बात है आपने मेहनत की, आपने कमाई की, बहुत अच्छी बात है, आपकी सब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप, वो कहते हैं ना कि कितनी बार इंसान मियां मिट्टू बन जाता है और दूसरों को ऐसा देखता है कि जैसे सामने वाला तो मच्छर है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे सोच वालों को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सिर्फ पैसा और ताकत से काम नहीं चलेगा। जब तक परिवार का साथ नहीं होगा, जब तक हमारे मित्र संबंधी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, आप पैसे का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इस विषय को और भी हम अधिक स्पष्ट करेंगे, अभी समय हो चल रहा है एक गीत सुनने का। हम तो चाहते कि आप जुड़े और अपनी बात को रखें, तो आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, और वैसे सुरेश भाई ने भी इंफॉर्मेशन दे ही दी है। तो आइए आज की पहली भी सुनाती हूँ, एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। अब ये पहेली इतनी अपने आप में स्पष्ट है कि मैं इसको स्पष्ट और भी अधिक नहीं कर सकती। हेलो हेलो, नमस्कार। चलिए, जो भी जुड़ते हैं बात करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, और आज की पहेली का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
3: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप
0: सभी? हाँ जी, अच्छे हैं अच्छे हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस बहन जी, है बारिश नहीं आती तो थोड़ी खेती भी है तो थोड़ी डिप्रेशन में है। हम भी क्या करें, अब सबका पक्का सब पके तो ठीक रहता है, लेकिन हमारे तो कुए है, ये है तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन दूसरों का क्या?
0: जी जी, समझ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन में नहीं रहना है, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा।
1: हम तो कहते हैं कि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। देखो आपका ये हुआ, सक्सेस हुआ, हमने सुना था उसी दिन ही हमें बुलाया था
0: जी।
1: लेकिन भगवान ने जो किया ये हटता है आपको, ठीक है?
0: देखिए भगवान नहीं करता है, ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करता है, ये तो अपने थोड़े कर्मों का हिसाब किताब भी आ जाता है ना।
1: हाँ आ जाता है, पैर का होता तो आपको कितने
0: हाँ, इसमें ये पॉजिटिव रहना है कि पैर का होता तो उठ भी नहीं पाते, हाथ है तो कम से कम बोल पा रहे, चल पा रहे।
1: हाँ उसी दिन ही मैंने बोल दिया था कि हाथ का है तो लेके चलेंगे
0: जी,
1: इधर उधर जाएंगे
0: जी,
1: यदि पैर का होता तो काफी हो जाता थे
0: जी।
1: तो
0: इसलिए जो होता अच्छे के लिए होता है।
1: और आज का विषय तो बहुत अच्छा है, बेंदी क्या है?
0: ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार मित्र जिंदगी की जड़ है।
1: हाँ ताकत और पैसा वो तो मैं क्या है कि बेंदी देखो ये समय किसी का तरीका नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करके ये पैसे कमाए है, ये किया है, तो ये किसी को दिखाने के लिए, कोई किसी को डराने के लिए ये नहीं होता
0: जी।
1: हमारी परिस्थिति पीछे की सोचनी चाहिए कि भाई हमने कैसे स्ट्रगल किया है, ये किया, मेहनत की, तो अब हमारे पास ये हमारी परिस्थिति और कैसी कुछ हमारे पास है और परिस्थिति भी ठीक है, तो ये किसी को ये करने के लिए नहीं है
0: जी।
1: नम्रता, जीवन में नम्रता आनी चाहिए, बहुत
0: बिल्कुल
1: परिस्थिति से बाहर आते हैं तो नम्रता होनी चाहिए
0: जी।
1: ये नहीं कि भाई हमारे पास ये है तुम्हारे पास क्या है, अरे भाई तुम्हारे पास भी नहीं था लेकिन क्या किया तुमने वो बताने का है, ठीक है
0: जी।
1: और ये घर परिवार दोस्त ये है ना जिंदगी की जड़
0: जी,
1: इससे कितनी भी हमारी उम्र हो जाए लेकिन हमें ये सबको ये करके रहना है। दोस्तों को भी, दोस्त भी ऐसा कीजिए कि भाई इसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो कई दोस्त हमें बोले कोई प्रसंग में कि भाई हम बैठे हैं
0: जी,
1: नहीं करना
0: बिल्कुल
1: समय सर ये काम हो जाएगा, तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये जड़े है सारे परिवार में, परिवार भाई बहन है, ये सब है, वडील है।

0: हमारी जिंदगी के जड़े
1: जी
0: और दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है। और वो तो मैं बता तो दूंगा, वो ये है आपने बोला है तो ये तो है रो। चलो मैं ये ऑफलाइन।
1: अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
0: हाँ जी बिल्कुल, सभी
1: हाँ
0: दोस्त।
1: जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है, तो विषय फिर से मैं दोहरा रही हूँ। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। आज की पहेली भी बड़ी अच्छी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इससे सही नहीं, मतलब दूरी इनसे सही नहीं। ये किस रिश्ते की तरफ पहेली इशारा कर रही है? तो ज़रूर आप कोशिश करिएगा जवाब देने की। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो,
0: हेलो, कैसे हो? सब
1: हाँ जी, हम अच्छे हैं, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप?
0: अभी रक्षाबंधन का आपको अभिनंदन।
1: जी, दयाराम जी बोल रहे हैं, इकबाल गढ़ वाले। अच्छा,
0: आप पहचान
1: हाँ
0: लिए? क्या
1: हाँ जी, बिल्कुल पहचान
0: बात है,
1: लिया आपको। अरे
0: आपकी बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि।
1: ऐसा कुछ नहीं है
0: क्या चल रहा है अभी?
1: जी। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, जिसको हम दोहरा रहे हैं। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। क्या कहेंगे आप? जी
0: सच बात है, कैसा है, आज ये काल नहीं रहेगा, और परिवार मित्र वो तो रहने वाले, ये दुख में भी रहते हैं। वैसे ही जरूरी है, पर वो गौण है, अधिक वो ही है। जी
1: जी
0: राहुल, और
1: बिल्कुल।
0: सुनाइए, आपके बहुत बहुत ज्ञान की बात है।
1: अच्छा
0: आपके
1: जी
0: आपके मदर के तबीयत अच्छी होगी,
1: जी ठीक है।
0: ठीक होगी?
1: हाँ जी, हाँ जी, अब एज
0: उम्र है ना,
1: है
0: उम्र
1: तो
0: ज्यादा है।
1: एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अभी त्योहार है तो वो घर पर है कि हम घर पर रहेंगे थोड़े दिन। हमने कहा ठीक है।
0: आपको अभिनंदन।
1: जी, और आज की पहेली का जवाब देंगे आप?
0: हाँ देंगे, मैं सोच के थोड़ा।
1: अच्छा, सोच के दीजिएगा। और विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ आपको सुन लिया, मैं दो बार आपने फिर किया।
1: अच्छा, आप अपनी राय व्यक्त करिएगा, क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ वो नहीं ठीक
1: जी, चलिए, कोई बात
0: है,
1: नहीं,
0: तो मैं
1: आप जुड़े
0: और थोड़ी
1: हैं।
0: देर में आपको देता हूँ।
1: जी चलिए, आप जुड़े हैं, शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत आभार। हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को आने वाले सारे
0: धन्यवाद
1: दिनों का।
0: धन्यवाद।
1: जी,
0: हाँ
1: बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। आप कोशिश करिएगा, और भी जो जो भी जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही सरल विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, कि देखिए जिंदगी में जितना पैसा जरूरी है, उतना ही रिश्ते भी जरूरी है। जड़ तो इसी से बनी हुई है। अभी शादी ब्याह हुआ, ठीक है, अब शादी ब्याह में सिर्फ पैसा लगावे और हमारे रिश्तेदार नहीं आए तो कैसा लगेगा, आप ही सोचिए। हेलो
0: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
1: जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
0: बस दीदी अच्छे हैं, और आप भी अच्छे होंगे, ऐसे
1: जी जी जी
0: हम प्रार्थना दुआ
1: बिल्कुल।
0: करते।
1: जी,
0: जी जी
1: और
0: दीदी, और आज का विषय भी बहुत अच्छा है जी। हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ।
0: हाँ दीदी, जो बात रही ताकत और पैसा की, के जो ताकत है ना दीदी, तो जवानी में तो बहुत सारी ताकत रहती, प्यास लगती तो कुआं खोद कर पानी पीती है।
1: हाँ, सही है।
0: अब बुढ़ापन आए तो खटिए पर पानी, बड़े
1: नहीं
0: बड़े खटिए में
1: मिलता।
0: पानी गाना पड़ता है,
1: जी
0: और
1: जी
0: पैसा तो है आजकल है नहीं, आता जाता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज बस यही, जो आप विषय के बारे में आप और दोस्तों ने अच्छी तरह से बताया, कि जो इंसान
2: जो अच्छा रहता है तो वो मरने के बाद उसकी बहुत वाहवाही करते कि ये तो कितना अच्छा था ये, और बुरा होता है, बुरा लोग होते हैं तो उनको भी ये कहते हैं कि चलो ये बात है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिर्फ परिवार या मित्रों तक ही सीमित ना रहे, हर मनुष्य से हम अच्छी तरह से रहने की कोशिश करें, ताकि हम जो इस जीवन में आए हैं ना तो कुछ अच्छा करके जाए, किसी को न दिल लुभाना और ना ही हमारे वजह से किसी को ये करना पड़ेगा दिल। तो
1: यही
2: कहूँगा कि रिश्ते बना कर रखे, आखिर रिश्ते ही काम आएंगे, ना तो ताकत काम आएगी ना ही पैसा, एक वक्त आएगा ना तो आएगा तो सिर्फ रिश्ते।
1: जी जी जी बिल्कुल,
2: बनाकर जरूर रखे दीदी।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
2: जो पहली का जवाब है ब्रदर सिस्टर।
1: अच्छा ठीक है, देखते हैं सुरेश भाई आपका जवाब सही है गलत है, हम कार्यक्रम के अंत में सुनाएंगे। ठीक है
2: जी जी जी,
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, पैसे है तो अच्छी बात है, पैसे का सदुपयोग करिएगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करिएगा, लेकिन अपने जो रिश्ते हैं, जो अपने बचपन के दोस्त हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनसे नाता कभी नहीं तोड़ना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि शादी ब्याह हम करते हैं, शादी ब्याह कोई ऐसे तो नहीं है कि बस दो व्यक्ति का मेल है, कितने सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं, है ना। तो इतने सारे मेहमान अपने व्यवहार पर भी तो आते हैं ना वो, और किसी किसी के यार देख लीजिएगा आप, शादी ब्याह में मैंने एक बार देखा है, गए तो नहीं थे लेकिन सुना है, प्रैक्टिकल बात थी कि पिता डॉक्टर, बेटा इंजीनियर है, दूसरा अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, दो बेटे और पिता, तीनों की अच्छी पोस्ट, बेटी की शादी, मेहमान थे 35 बाराती, 30-32 तो बाराती थे और 35 ये इनके घर समेत 35 जन है, और अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह सब किया, लेकिन अब आप सोचिए कि 60-70 जनों में शादी हो गई। दूसरे सब जो बाराती आए वो कह रहे थे कि क्या ये लोग व्यवहारिक नहीं है क्या, इनका किसी के साथ व्यवहार ही नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर ये लोग हैं फिर भी किसी के साथ व्यवहार नहीं, परिवार के बहने भी नहीं, मतलब जो पिता अपनी बेटी की शादी करने जा रहे, खुद की बहने नहीं, दुल्हन की मतलब बुआ नहीं, अंकल नहीं, ताऊ नहीं, ताऊ की बेटियां नहीं, अंकल की बेटियां नहीं। तो देखिए हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि ये रिश्ते तो इतने गहरे हैं, इतने करीब के हैं कि इन रिश्तों को आप नकार नहीं सकते। कहते कि ये रिश्ते भी राह देखते हैं कि भाई हमारे घर में हमारे भाई की बच्ची की शादी है तो चलो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रिश्ते ही नहीं रखते बहुत सारे लोग, तो फिर क्यों जाएंगे कोई। तो ऐसा है, तो आप भले कितना भी खर्चा करो वो आपका खर्चा उगलेगा नहीं जब तक लोग शामिल नहीं होंगे। मृत्यु देख लीजिए आप, मृत्यु में भी शमशान घाट पर जाते हैं जब मुर्दे को लेकर के, तो कितने लोग साथ में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे भाई देखो इनके तो कितने रिश्ते हैं, कितना व्यवहार है कि कितने लोग आए हैं, और कहीं कहीं पर देख लीजिए चार जने भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे जिंदगी भर किसी के साथ व्यवहार ही नहीं रखा तो क्या करेंगे, कौन आएगा। तो ये हाल है, इसलिए जो अपने हैं ठीक है, आप ज़्यादा मत फैलाइए, ठीक है, कि भाई हमारे कैपेसिटी नहीं है, हम ज़्यादा दूर दराज के रिश्तों को हम नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, उनके पास भी समय नहीं होता आने का, आजकल तो इतने लिमिटेड रिश्ते हो चुके हैं कि बहुत करीब वाले भी आने में सोचते हैं कि कल जाना है परसों निकल जाना है, ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो पहले दिन तो निकल ही जाना है, यही सोच करके अपना प्लान बना करके आते हैं कि भाई जाए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है। फिर भी अगर हमारा रिश्ता मजबूत है, व्यवहार अच्छा है, तो इंसान विदेश में होगा तो भी वो जरूर आएगा। हेलो,
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
1: हाँ जी फिरोज भाई नमस्ते।
3: हाँ, और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कम। और दूसरा के

0: जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज की पहेली का जवाब देंगे आप? वैसे आप दे चुके हैं, चलिए ठीक है, दे दिया आपने। अभी अभी सामने सभी के सामने मत दीजिएगा, सभी को माइंड के एक्सरसाइज करने दीजिए। जी जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि अपने जो मित्र संबंधी है, अपने रिश्तेदार है, घर परिवार वाले हैं, उनको आप साथ लेके चलिएगा। एक परिवार में हमने देखा अचानक वो भाई को कोई भारी बीमारी आ गई, ठीक है, परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं, पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाना तो ज़रूरी है, इंसान को कोई ऐसे तो नहीं खोएगा। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उनका व्यवहार इतना था वो निस्वार्थ सभी के साथ बहुत प्यार से बोलते थे और बहुत ही उनके सुख दुख में जा कर के शामिल होते थे। तो उनको तकलीफ पड़ी तो कितने लोग आ गए और उनके बेटे को बोलने लगे, बेटा चिंता मत करो, ऑपरेशन चालू कर दो, पैसे की चिंता मत करो। कहाँ किसने पैसे भरे पता ही नहीं चला, हॉस्पिटल में छूटने तक किसी को पता नहीं, घर पर आ गए तो भी नहीं बताया कि किसने भरे। और वो आश्चर्य कर रहे हैं, उनके खुशी के प्रेम के आंसू बह रहे हैं कि किसने मदद की, कोई तो बता दो, भले आप, मैं नहीं दूंगा, मुझसे मत लेना, लेकिन बता दो, लेकिन बताया तक नहीं। तो इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। ये जड़ जब हिल जाती है ना तो हमारा पैसा भी काम नहीं आता है, और ये जब जड़ जमीन से जब मजबूत होती है, मतलब रिश्तों में मजबूती होती है, तो कितनी भी परेशानियां आ जाती है जीवन में, लेकिन वो टिकती नहीं, पता ही नहीं चलता कि मुश्किलें आई है। ठीक है, तो बस इस विषय को हम यही समाप्त करेंगे, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए अब आज की पहेली की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज की पहेली है, एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। यह आज की पहेली है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.

0: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ, अब तो बस करो।
0: बहू, क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आपने जवाब ही नहीं दिया, मैंने कहा कि आज मैं आपको राजस्थानी देसी सब्जी सिखाने जा रही हूँ, कौन सी वाली आपने बताया नहीं। तो चलिए हम अपनी पसंद की सब्जी सिखाते हैं, गोविंद गट्टा। गट्टे की सब्जी तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ गोविंद गट्टा। ठीक है, तो ये गोविंद गट्टा की सब्जी के लिए मैं सामग्री आपको ज़रूर लिखाऊंगी, लेकिन इसके पहले आज की पहली सुन लीजिएगा। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का, पर दूरी इनसे सही नहीं। तो ये किस रिश्ते की ओर इशारा करती है आज की पहली? अब तो आपको इतना हिंट मैं दे चुकी हूँ कभी का, तो आप जवाब दे सकते हैं। और गोविंद गट्टा के लिए आइए सामग्री लिखवा देती हूँ आपको। बेसन आपको लेना है, ठीक है, फिर आप लीजिएगा पनीर, और आलू, हरी मिर्च, अदरक, जीरा लीजिएगा, हरा धनिया लेना है आपको, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये हो गई सामग्री। अब मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ठीक है। हाँ, दही लेना है और आपको थोड़ा सा। तो फिर से आप सामग्री कहीं छूट गई हो तो लिखिएगा, बेसन, पनीर, आलू, फिर आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, दही, तेल तो लेना ही है, हरा धनिया, अदरक, राई, जीरा, हींग और धनिया पाउडर। अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी है, बहुत ही एक नई वैरायटी की सब्जी है जो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको। तो जो बेसन लिया है उसको छान लीजिएगा, ठीक है। छान करके इसमें आप अच्छा सा तेल का मोवन डालिए, क्योंकि हमारे जो हम गोविंद गट्टा बनाने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट होने चाहिए, इसलिए अच्छे से इसमें थोड़ा सा मोवन डालिए, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिए। घोल आपको एकदम लूज़ नहीं रखना है, गाढ़ा रखना है, ठीक है, और इसको तैयार कर दीजिए। इसमें थोड़ा हींग पाउडर भी डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको तैयार करके रख लीजिए। अब जो पनीर है, चलिए हम अपने श्रोता बंधु से बात कर लेते हैं, फिर आपको सिखाएंगे। हेलो, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो पनीर जो लिया है हमने, इसको आप कद्दूकस कर लीजिए, ठीक है। फिर इसी में आलू मैश कर लीजिए। आप पनीर के दो पीस ले रहे हैं तो आपको तीन आलू लेने हैं मीडियम साइज के, ठीक है, इस तरह मात्रा लीजिएगा। तो पनीर कद्दूकस कर लीजिए। अब आलू की धुलाई करके आलू को पहले बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद इसको भी कद्दूकस कर लीजिए पनीर के अंदर ही। फिर हरी मिर्च अदरक धो करके इसके पेस्ट तैयार कर लीजिए, और इसकी पेस्ट थोड़ी सी आप इसमें ऐड करिएगा आलू के मसाले में। हेलो हेलो, नमस्कार। तो आप इसमें अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, हल्का सा अजवाइन इसमें डालना है, और नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, ठीक है। और फिर इन सब को, और थोड़ा सा आप काली मिर्च पाउडर डालिए, और सब मसाले को अच्छी तरह मिक्स करिए, ठीक है। मसाला मिक्स करके अच्छी तरह, आपको ज़रूरत पड़े तो हाथ से थोड़ा सा दबा करके मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद अब आप, जैसे हम आलू बड़े बनाते हैं उसके गोल गोल मसाले को गोल गोल लड्डू की तरह कैसे बनाते हैं, ऐसे आप गोलाई में ये गोले तैयार करिएगा, और गोले तैयार करके अब इधर रखिएगा, ठीक है। सारे गोले तैयार हो गए, अब उधर बेसन भी आपका तैयार हो गया। फिर से उसको अच्छी तरह थोड़ा सा गूंद लीजिए, और अब बेसन थोड़ा सा लीजिए। कढ़ाई में तो आप तेल रख दीजिए तलने के लिए, ठीक है। और तेल गर्म हो जाए तो इधर आप क्या करेंगे, बेसन का भी छोटा छोटा सा लुआ बनाइए, उसको थोड़ा सा फैलाइए। फैला करके ये जो हमने पनीर आलू का जो गोल गोल राउंड बनाकर गोले बनाकर रख रखे हैं, इसको आप बेसन के अंदर फोल्ड करिए। फोल्ड करके तेल में तलना है। हेलो,
5: फोन क्यों कट हो रहा है, फोन बार बार कट हो रहा है।
4: अजी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी।
5: आवाज भी नहीं आ रही है क्या, और कट भी हो रहा है।
4: अब आ रही है, उधर आपके नेटवर्क समस्या होगी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। कैसे हैं आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ। 8-10 बार फोन लगाया, ऐसा ही बोला है।
4: अच्छा,
5: और दूसरी बात, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, श्रोता भाइयों ने भी अच्छी बातचीत की, और सभी को नमस्कार। और सवाल का जवाब तो भाई बहन का रिश्ता रंग क्या बंधन है। और सभी को नमस्कार दीदी, ओम शांति।
4: जी ओम शांति, बहुत बहुत आभार आपका। तो आपको मैं सिखा रही थी कि हाँ, ये जो गोल गोल आपने मसाले का बना रखा है राउंड, इनको आप बेसन में लपेट करके तलिए मध्यम आंच पर, ठीक है। इस तरह सारे गोले तैयार कर लेने हैं, और सारे गोले तैयार करके तल के निकाल दीजिए। अब चलिए हम सब्जी बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप रखिए फिर से कढ़ाई, जैसे ये तेल एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। सारे बाउल आपने तल लिए हैं, निकाल दीजिए एक्स्ट्रा तेल, थोड़ा सा रखिएगा। अब इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, फिर अदरक हरी मिर्च की पेस्ट भी इसमें डाल दीजिएगा, और अब आप क्या करेंगे, जो हमने ये जो गोले तैयार कर रखे हैं ना तल के, इनको आप 2-3 को इसको अच्छी तरह मसल देना है, बाकी सब साबुत रखिए, 2-3 को मसल देना है, ठीक है। और अब जो आपके हरी मिर्च अदरक की पेस्ट अच्छी तरह हो गई है फ्राई, तो आप इसमें थोड़ा सा दही डालिए, दही डाल दीजिए, और दही ऐसा होना चाहिए जो एकदम डालते ही झाली बन जाए, तो आप हिलाते रहिए हिलाने के साथ ही साथ आप नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, धनिया पाउडर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला डालिएगा और इसको हिलाइएगा। हिलाने के बाद अब आप ये जो दो तीन बाउल है उसको भी मसल करके इसमें डाल दीजिएगा और फिर से हिलाइएगा। अब देखिए ये अच्छी सी ग्रेवी जब तेल छोड़ देवे, अब आप पानी डालिएगा, एक ग्लास डेढ़ ग्लास पानी डालिएगा और उबला आ जाए फिर आप ये डालिएगा, सारे गोले डाल दीजिएगा। तो ये बन गई गोविंद गट्टे की सब्जी। एक दो उबाला लेने के बाद गैस बंद कर दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिएगा, बहुत पतला नहीं करना है और दही की झाली इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, स्वाद भी बढ़ता है इसका। और इस तरह गोविंद गट्टे की सब्जी बनाई जाती है जो बच्चे और सभी बेहद पसंद करते हैं, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
6: अर्जिया सारी मैं

मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आ

0: मत मुकदर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया।
1: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कैसे दमा एलर्जी वाला हो जाता है और क्या उसमें करेंगे, कौन से नुस्खे फॉलो करेंगे, वह आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में आपको जो गोविंद गट्टा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली भी बड़ी सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। एक ही घर की दो कहानी, एक राजा एक रानी नहीं, बचपन में झगड़ा रोज का पर दूरी इनसे सही नहीं। तो बहुत ही सुंदर पहेली थी आज की, जिसका जवाब है भाई बहन का रिश्ता। सही जवाब दिया है फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई जोटाना से, फिर कंचन भाई मंडाली से, और सुरेश भाई धानेराव से, भूरा राम जी और से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से। तो आप सभी का जवाब सही है, इसके लिए तो एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। और बाकी जुड़े हैं दयाराम जी इकबालगढ़ से, और आप सभी तो विषय में भी जुड़े हैं, तो पुनः आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूँगी। हवा की ठंडक में सुनो, सूरज की गर्माहट में सुनो, प्रभु के आने का एहसास हर आहट में सुनो। अब मैं आपको गुरुदेव पर प्यारा सा भजन सुनाऊँगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

तेरा बेड़ा पार है। संत समागम हरी कथा भी गुरु कृपा से पाओगे, खुद आएंगे श्याम प्रभु घर, गुरु की ठोकर खाओगे। बलिहारी गुरु कृपा के बिना जिंदगी बेकार है। गोता एक

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
0: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहाँ पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़ को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
2: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है, हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
0: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
1: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोपअप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आधी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी, उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था, जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोकर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है, तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है, तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया, आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहाँ हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है, वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है, उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी, जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया, उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं, वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द। और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं, और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट, मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाएं।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी
1: होती है। बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्जेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीज़ें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीज़ें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज़ गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज़ बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही हैं, अभी हूँ और यही इन्जॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें। ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
0: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज की इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
3: क्या आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मन की आंखों से एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारी मन की आंखों से हम दुनिया को देख सकें। ये मन की आंखें होती क्या है? हमारी स्थूल आंखों से वो कुछ अलग है क्या? क्या हम जो दुनिया मन की आंखों से देखते हैं, क्या हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं? अगर देखते हैं तो ऐसा क्या कमी रह जाती है जो हम मन की आंखों से जो देखते हैं वो इस स्थूल आंखों से दिखता नहीं है? दोस्तों बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, जो दिखता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं देखने के बारे में। लेकिन आज कुछ ऐसे ही अनोखे अनुभवों के साथ हमारे बीच में है अभिषेक कुलहरी जी। आप वैसे मूलतः राजगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप जयपुर में रहते हैं। आपका जीवन तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में एक ऐसी दुर्घटना घटी और उनके पूरे जीवन को बदल दिया। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और उसके बाद उनकी जीवन कैसी है और अभी वो अपने जीवन में इस बदलाव को एक नॉर्मल बना करके कैसे जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमें सुनने, सीखने और समझने की है। तो इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हम स्वागत करते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में अभिषेक कुलहरी जी को। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: शुक्रिया निधि, शुक्रिया।
0: अभिषेक जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआत की जीवन, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, और वो समय का क्या जीवन था, और जब आपकी जीवन में एक मोड़ आया और जब जीवन पूरा बदल गया और आपसे जब बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं एक नया जीवन जीना सीखा है तो वो क्या है?
1: नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मेरे को दिखाई देता था तो दुनिया की आपाधापी के अंदर है ना, कुछ ढंग से पता नहीं चल पाता था, अपने आप को जज नहीं कर पाते थे, अपने बारे में नहीं सोच पाते थे कि क्या है ये। जैसे मतलब बाहरी दुनिया में अपन बात करें तो थोड़ी सी मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल था वो अच्छा था, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे मुझसे, तो जिनका वो कोई काम निकलवाना होता था वो मतलब मेरे को फ़ोन कर लेते। तो उस टाइम पे बिल्कुल यंग था तो मैं तो ये सोचता था कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ और मेरा कर्तव्य है ये इन सभी का मतलब काम करना, चाहे वो रात को मेरे को 12 बजे फोन कर दें, चाहे रात को 2 बजे कर दें, मैं एटलीस्ट काम करता था उनका, अपना काम छोड़ के।
0: जी,
1: तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम पे राजकुमार जी शर्मा, यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उनके पीए थे वो मेरे मित्र थे।
0: अच्छा।
1: अब एक जो पीए होता है मतलब मंत्री जी का, तो फिर अपन तो कोई भी काम करवा सकते हैं, एटलीस्ट उस विभाग में तो करवा ही देंगे।
0: जी।
1: अब मेरे दोस्त थे वो डॉक्टर थे, तो कुछ दोस्त वो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब उसको बोलें तो अपन थोड़ा सा चालाक भी बोल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, पहले उस टाइम पे नहीं पता थी।
0: जी।
1: और ये बातें है ना, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा से जब से मैं जुड़ा हूँ ना, तो मेरे को ना सभी के बारे में बाबा ना टच करवा रहे हैं कि जिसके बारे में तू सोचता था वो कैसे हैं, उनकी बातें बताते हैं वो मुझे। स्थूल आंखों से मैं मतलब उस टाइम पे नहीं सोच पाया ये बातें। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को फोन किया कि मेरा ट्रांसफर करवाना है, वो मतलब MBBS के बाद पोस्टेड था मेडिकल ऑफिसर वहाँ अनूपगढ़ में।
0: जी।
1: गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी।
0: जी।
1: उसमें अब वो था झुंझुनू का, तो वो उनको ये पता कि अभिषेक के पास फोन करेंगे ना तो एटलीस्ट काम हो जाएगा अपना, कैसे भी हो जाए।
0: जी।
1: तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि अभिषेक यार ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, कहाँ करवाना? तो वो बोले कि तेरा जानकार है ना यार वो मंत्री जी के पीए, तो उनसे ट्रांसफर करवा दे यार मेरा, तो इतना सा वो काम कर ही देंगे वहाँ, बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें क्या होता है कि अपन को मतलब जब एक तो होता है कि मतलब अपन दिमाग से काम करें, एक अपन दिल से काम करें। अब दिल से काम करते हैं ना तब दिमाग नहीं लगाते उसमें, तो

0: मैंने उसको ही नंबर दे दिए सीधे पिए के, मैं ये नंबर पकड़ और इनको बोलना कि मैं अभिषेक का फ्रेंड हूँ तो तेरा काम हो जाएगा। बोले ठीक। अब मैंने उनको नंबर दे दिया, अब मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपना तो ट्रांसफर करवाया, अपनी रेपो बढ़ाने के लिए 5-6 लोगों के और ट्रांसफर करवाए।
1: अच्छा।
0: रोजाना फोन करते, आज इधर से इधर करना, उनकी नहीं बनती किसी से तो ट्रांसफर करवा देते
1: जी।
0: ये बातें मेरे को नहीं पता
1: जी
0: उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो वो काम कर दिया मेरे को जो करना था। मेरा 2018 में रोड एक्सीडेंट हो गया मार्च में, तो उसके बाद में मेरे को मतलब दूसरी रियल टाइम जो है ना, मतलब जो सही दुनिया क्या है उस टाइम पे शुरू हुआ, जब मैं बाबा से जुड़ने लग गया, मेडिटेशन करने लग गया, सूरज भाई की वीडियो सुनता, मेरा यही काम था। तो एक साल तक मैंने खूब वीडियो सुने सूरज भाई के, मतलब सोचता रहता नींद तो।
1: ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका?
0: एक्सीडेंट मेरा जब मैं घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं MBA पढ़ाई कर रहा था मेरी जयपुर से, तो मैं घर पे आया हुआ था, तो काम चल रहा था, मिस्त्री को छोड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पे गया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने हेलमेट नहीं पहना। अदरवाइज मैं हेलमेट पहनता था, लोग मेरी मजाक बनाते थे मेरे हेलमेट की वजह से, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ हेलमेट कोई नहीं पहनता, छोटा क्षेत्र है वो, तो इस वजह से मेरे को आदत पड़ी हुई थी कि हेलमेट पहने, भाई अपन को सीधी हवा भी नहीं लगती आंखों में तो सेफ्टी रहती है, सेफ्टी भी है, तो इस चक्कर में लोग मेरा दोस्त मजाक बनाते थे कि भाई तू हेलमेट क्यों पहनता है, अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है तेरे पास तो तू यार कम से कम इसको दिखाए, अगर दिखे तो सही कि कौन जा रहा है इस बाइक के ऊपर।
1: अच्छा।
0: तब मैं यार इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो मैंने सुविधा के लिए ले रखी है, दिखाने के लिए थोड़ा ना ले रखी है। तो एटलीस्ट चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ, मैं हेलमेट नहीं पहना और मिस्त्री जी को शाम को छोड़ने गया, तो जैसे मैं उनको छोड़ के आया तो मैंने मेरी बाइक को घर की तरफ आ गया था, मैं वापस मेरे इंटेंशन हुआ दिमाग में कि अपने को तेल डलवाना चाहिए, मेरी बाइक है ना रिजर्व में आ गई थी ऑन से, तो मैंने सोचा तेल डलवाना चाहिए, तो फिर मैं मुड़ गया वापस, जबकि मेरे को शाम को 7 बजे की बात है वो शाम को, तो मेरे को वापस कहीं नहीं जाना था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है
1: जी।
0: वो मतलब मैं जानबूझ के ना वहां पे गया कि इंसिडेंस बने
1: जी।
0: हाँ मतलब ये हकीकत है, क्योंकि उसी दिन मैं सही बताऊं तो उसी दिन मेरे एक्सीडेंट से 1 घंटा पहले जब मैं मिस्त्री को छोड़ने जा रहा था, दिन में साथ में उनके काम करवाता, मैं हेल्प करता, तो शाम को नहाने के बाद मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ, अब इनको छोड़ने का टाइम हो गया। मैं जो ही नहा के आया बाथरूम से, तो मेरे दिमाग में अचानक से विचार आया उसी वक्त कि एक जादूगर होता है वो आंखों की पट्टी बांध के कैसे चला सकता है बाइक, और कोई बिना आंखों के मतलब कैसे सर्वाइव करते होंगे जिनको नहीं दिखाई देता। तो उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा था, उसी दिन की बात है 6 मार्च की ही, 1 घंटा पहले की
1: जी।
0: अब मैं मिस्त्री को छोड़ने गया ना, तो वापस मतलब वो मैं उसको टच करता हूँ बात को, कि जैसे मैं घर के पास पहुंच गया, अब वापस मतलब मैं सेफ आ जाता, घर पे पहुंचने वाला था
1: जी,
0: 200 मीटर की दूरी है बस स्टॉप की
1: जी
0: मेरे घर से, तो वापस मैंने मोड़ी है बाइक को, और वापस मोड़ी के मतलब मैं जो ही चला तो रोड के ऊपर बस स्टॉप के जैसे ही आ गया, तो फिर ऑटो ने मेरे को रॉन्ग साइड से आके हिट कर दिया, मेरे बराबर में बस चल रही थी, तो मेरे पास और कोई मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक्सीडेंट हो गया, पता भी नहीं लगा, न संभलने का मौका मिला
1: जी।
0: तो उसी वक्त फिर मेरे को कैजुअलिटी में लेके गए हॉस्पिटल में, सेमी कॉन्शियस मोड पे, तो 1-2 दिन बाद में होश में आया, तो फिर पता लगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं तो वहीं पे मतलब डॉक्टर्स को यही बोल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है, और शुरू शुरू में तो देखो डर भी लगा था कि मेरे साथ में क्या हो गया, मैं मतलब मेरे को हाथ पकड़ के चलाते थे पापा, तो मैं उनका हाथ खींचता था पीछे की तरफ, वो मेरे को मतलब इंश्योर करते थे इस बात के लिए कि मैंने हाथ पकड़ रखा है बेटा तो तेरे को गिरने नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कोई बैरियर आएगा तो आगे, इतना क्यों डर रहा है, लेकिन मैं मतलब इतना डर था वो अचानक से दिमाग में, पता नहीं मैंने सोचा कि उस टाइम पे सोचता था कि ये पता नहीं धरती नीचे ही मेरे ऊपर आ जाएगी, मतलब मैं चल भी नहीं पाता था बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ी, फिर हॉस्पिटल में 3-4 महीने ट्रीटमेंट चला मेरा, और दोबारा एक्सीडेंट ऐसे हो गया जो डॉक्टर को मतलब आंखों का करना चाहिए था ट्रीटमेंट, उन्होंने किया नहीं, मेरी ब्रेन की सर्जरी कर दी एक थोड़े से पैसे के लिए
1: जी,
0: क्योंकि उनके पास आई सर्जन भी नहीं था उस हॉस्पिटल में, जबकि घर वालों ने बोला था उनको कि भाई

0: ना ब्लड आ गया तो ये दिखाए इसको, मतलब दिख जाएगा इनको, वो ब्लड हटाएंगे तो। लेकिन जो डॉक्टर को पता है, अब मेडिकल के अंदर क्या है कि मतलब उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कोई भी पेशेंट की कैजुअलिटी अगर है ना, अगर आंखों पे लगी है तो 72 घंटे के अंदर उसको ऑपरेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज रोशनी बचने की कम चांस हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। अब डॉक्टर को ये पता है, ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, जितने मैंने हॉस्पिटल विजिट किए हैं वहां से पता लगी कि ऐसा होना चाहिए था। तो उन्होंने वो पैसे बनाने के चक्कर में फिर मेरी ब्रेन की सर्जरी कर दी और 10 दिन वहां पटके रखा मेरे को वही हॉस्पिटल में। फिर घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मतलब इसकी आंखों को चेक ही नहीं कर रहे हो अभी और इसको दिखाई नहीं दे, तो इसका तो इलाज करिए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कर देंगे। वो सिर्फ मतलब मेरे को ना बस वो अपना वो चार्ज बना रहे थे सिर्फ। तो फिर घर वालों ने वहां से फिर वो बोला कि ऐसा कीजिए आप छुट्टी कर दीजिए हमारी। वो जबरदस्ती ना छुट्टी दिला के मेरे को जयपुर लिया है SMS हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे फिर SMS जयपुर में दिखाया मेरे को, तो फिर डॉक्टर ने कहा यार आप है ना मतलब 10 दिन लेट हो गए हैं। अब वो मेरे जो दोस्त थे डॉक्टर थे वो SMS में PG कर रहे थे उस टाइम पे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा हुआ था। अब उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको तो पता ही है ना वो बातें कि भाई इनको कैजुअलिटी में पेशेंट की आंखों को चेक करना जरूरी होता है। उन्होंने मेरे को देखते ही मतलब पापा को पास कटे थे मेरे, तो उन्होंने कह दिया कि अंकल मतलब बहुत लेट हो गई, 10 दिन निकाल दिया आपने और आंख अभी तक इनकी ऑपरेट नहीं की है, अब हमें लगता है कि इसकी रोशनी नहीं बच पाएगी, बहुत 1% चांस बचे हैं। वही सेम बात डॉक्टर ने आंखों के जो रेटिना सर्जन थे वो उन्होंने कही कि 1% चांस है, अगर आप चाहो तो हम ऑपरेट कर लें और अगर आप ऐसा सोचो कि और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं एम्स दिल्ली में चले जाइए आप, वहाँ पे और भी अच्छे डॉक्टर हैं। सभी आदमी ये चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट जगह जाऊँ, ऑपरेट कम से कम मतलब थोड़ा चांस बचाए उसको सही में तो मतलब अच्छे से जगह से कन्वर्ट करें कि भाई थोड़े चांस बच जाएं रोशनी के। इसलिए मैं फिर दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पे भी मेरा ऑपरेशन हुआ, 4-5 घंटे की सर्जरी की और वो सर्जरी बीच में छोड़ दी क्योंकि उसके अंदर डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे थे। एक कागज़ को जैसे मतलब अपन हाथ की मुट्ठी के अंदर भींच के रखेंगे और उसमें सलवटें कैसे पड़ेंगी, रेटिना में वैसे सलवटें पड़ गई थी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा मेरे को, और वो बीच में छोड़ दी और उन्होंने कहा कि रोशनी अब नहीं आ पाएगी
1: जी।
0: फिर मेरा मैंने सोचना शुरू किया वहाँ से कि अपन इसमें क्या, शुरू में तो देखो गुस्सा आता था। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा करते हैं डिसेबिलिटी का वो सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर्टिफिकेट बनाएंगे तो अच्छी जगह या फॉरेन भेजेंगे अपन को कहीं जहाँ अपना ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो सर्टिफिकेट आप किसका बना रहे हो सर? तो बोला कि आपको ट्रांसपोर्टिंग में कंसेक्शन मिल जाएगा। बोले यार आपका दिमाग खराब हो गया डॉक्टर, आप कंसेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो रियलिटी थी, उनको पता था रियलिटी क्या है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इन चीजों को क्योंकि अचानक से मतलब चेंजेस हो गए थे लाइफ में।
1: आपकी फैमिली की रिएक्शन क्या थी जब ये पता चला कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता है और आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेशन बना रहे हैं?
0: देखो पापा तो साथ में घूम रहे थे, पापा शुरू में तो देखो मेरे को बाद में पता लगा कि पापा बाथरूम में बैठ के रोते थे मेरे लिए कि भाई अपना एक ही बेटा है उसकी आंखें चली गई और डिपेंडेंसी होगी, इसकी लाइफ कैसे कटेगी अब आगे। तो पापा ने तो कह दिया था कि हाँ ठीक है आप बना सर्टिफिकेट तो बनाइए, क्योंकि वो मेरे पापा आर्मी में थे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन है और स्ट्रांग है वो थोड़े मेंटली भी, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब मम्मी, रही बात मम्मी की, तो मम्मी जी कहती थी, मम्मी शुरू में से बहुत मतलब कहती थी। एक दिन मैंने उनको सुना अपनी बहन से बात करते हुए यानी मेरी मौसी जी से, वो कह रही थी कि इससे अच्छा ना ये बढ़िया रहता कि भगवान हमको ना ये बेटा नहीं देता, एक लड़की ही, एक मेरी सिस्टर है, हम दो भाई बहन है, वो बोल रही थी कि मतलब लड़की, एक लड़की रह जाती ना तो अच्छा था, आज दुख नहीं देखना पड़ता हमें कि हमारा बेटा अंधा हो गया है और इसकी लाइफ कैसे कटेगी, ये भी दुखी है। लेकिन इसके अपोजिट था मेरे साथ में, उस टाइम तक मैंने सूरज भाई की क्लासे मतलब सुनता था मैं फोन के ऊपर, मुझे मतलब समझ में आ गई थी चीजें।
1: सूरज भाई जी की क्लासेस सुनना कैसे शुरू हुआ आपका?
0: वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने वो सुनते थे पहले, तो

0: उन्होंने फिर जैसे मेरी वाइफ ने मेरे को सुनाया फिर।
1: अच्छा।
0: हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, साली हैं, वो मतलब जुड़ी हुई हैं, ज्ञान मार्ग में हैं,
1: ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई
0: हैं, जुड़ी हुई हैं, वही मेरे को सेंटर पे लेके गए थे वहाँ
1: जी,
0: बापूनगर जयपुर वाले सेंटर पे लेके गए थे
1: जी।
0: तो उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया तो मेरे पे ना लोगों के तो कमेंट देखो उल्टे उल्टे आते थे कि धरती पे बोझ बन गया है, इसकी किस्मत खराब है। अब वो कमेंट ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते थे हकीकत में। अब मैं उनको तो जवाब नहीं देता था, लेकिन मन ही मन सोचता कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। समय आएगा एक दिन ऐसा जरूर, जब इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, अपन को देने की जरूरत नहीं है। मैं किस किस को जवाब दूंगा, सेम बातें होती थी लोगों की, वही किस्मत खराब है, आग गई तो संसार गया। और कुछ लोग तो हाँ ऐसे भी बोलते थे कि हीरो से जीरो बन गया, और कुछ कमेंट भी मारते थे, अब सुन चिड़िया की आवाज, मतलब यही बचा है, ठीक है। बहुत मतलब उठपटांग से कमेंट, नेगेटिव चलता था ओरा में चारों तरफ
1: जी।
0: लेकिन वो इन सब के बीच मैं तो यही सोच रहा था कि देखो, एक इंद्री के खत्म हो जाने से ना कुछ नहीं हो सकता। अभी अपन जिंदा है ना, तो फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि अपने पास ऊपर वाले ने अपन को एक दिव्य बुद्धि दी है, उसका विवेक, उसमें एक विवेक है, उसका अपन अगर सही से उपयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या का मतलब समाधान नहीं हो सकता। अपन उसको इजी वे में डाल सकते हैं, इजी भी प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है
1: जी,
0: वहाँ से मतलब श्री कृष्णा जी पूनिया हैं जो एथलीट निकली हैं, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ओलंपियन हैं
1: जी,
0: पीछे विधायक भी थी वो, और श्री देवेंद्र झाझड़िया हैं जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, दो बार ओलंपिक में, एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो मेरा इंटेंशन वहाँ गया कि अपन स्पोर्ट्स में करते हैं
1: जी।
0: तो फिर मैंने शुरू किया, अपने घर में थोड़ा जिम का सामान मंगवाया, मैंने सोचा कि शॉट पुट है वो मतलब फील्ड गेम है, तो उसमें ज़्यादा ट्रैक गेम है, वो फील्ड गेम है सॉरी, तो उस पर अपन को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, अपन घर से तैयारी कर सकते हैं उसकी
1: जी।
0: तो मैंने उसका सामान मंगवाया, जिम का सामान मंगवाया, वेट लिफ्टिंग डम्बल्स वगैरह, तो घर से शुरू किया मैंने।
1: कौन सी स्पोर्ट की तैयारी कर रहे थे?
0: शॉट पुट की कर रहा था मैं।
1: अच्छा, शॉट पुट।
0: शॉट पुट की। हाँ, तो 6-7 महीने मैंने मतलब कम से कम भी मैं करता था 10-12 घंटे, मेरे को नींद आनी वैसे बंद हो गई थी, 4-5 घंटे ही मैक्सिमम सो पाता था मैं एक्सरसाइज करने के बाद भी, जबकि क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही चलता था कि लोगों को जवाब जल्दी से जल्दी कैसे मिले। तो मैंने तैयारी शुरू की, रनिंग करता मैं, मैंने डोरी बांध ली घर में, साइड में खाली प्लॉट था उसमें, और उस डोरी के सहारे मैंने दौड़ता, सुबह 5 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, उसको नाप लिया मैंने इंच टेप से, और जब तक 5 किलोमीटर के चक्कर ना हो जाएं, उसमें 260 चक्कर बनते थे मेरे, तो 5 किलोमीटर रनिंग, और फिर मैं 3-4 दिन जिम करता हूँ। जिम,
1: ये सारी चीज आपने खुद से सोच के किया?
0: खुद से सोच के किया मैंने।
1: आपको कैसे जीना है?
0: हाँ,
1: बिना विजन का।
0: हाँ, बिना विजन के मैं क्या बेटर कर सकता हूँ दुनिया को, मतलब ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इनको
1: कुछ तो करके दिखाएं।
0: हाँ, करके दिखाएं, इनको जवाब कैसे मिले, और दुनिया के लिए मतलब जो रास्ता भटक चुके हैं, जो आत्माएं मानो भटक गई हैं, और वो ऐसे जैसा डाइवर्जन हो जाता है, वो ऐसे सोचते हैं, तो मेरे दिमाग में चलता है इनके लिए अपन एक दिन मोटिवेशन बनेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे अपन, भाई आप बैठ नहीं सकते किसी भी कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन कोई भी हो जाए, यही सोच के मैं ना एक्सरसाइज वगैरह मतलब मैंने शुरू कर दिया। और जस्ट 1 साल बाद में मेरे फिर यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप होनी थी अपने राजस्थान की, SMS स्टेडियम में होनी थी, 6 मार्च 2019 की बात है ये, और 6 मार्च 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, सेम डेट को 1 साल बाद में मैंने ना शॉट पुट में गोल्ड मेडल लगा दिया था।
1: अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस।
0: और उसी दिन मेरा इवेंट होना था डिस्कस का, मैं डिस्कस की भी तैयारी करता था, मेरे को बाद में पता लगा कि एक खिलाड़ी 3 इवेंट में भाग ले सकता है
1: जी।
0: तो मैंने उसमें सिल्वर भी खेला, डिस्कस के अंदर फिर मेरा सिल्वर मेडल लगा,
1: ये स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन।
0: हाँ, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन था। तो उसमें बिलो विजन भी आते हैं
1: जी,
0: मतलब पार्शली ब्लाइंड होते हैं और बिलो विजन है ना, वो सभी खेलते हैं उसमें। और उसमें थोड़ा क्या है कि करप्शन भी होता है, अपनी टेक्नोलॉजी है ना इंडिया में इतनी एडवांस नहीं है कि वो आंखों को देख के मतलब एग्जैक्ट बता दे इसकी इसका विजन कितना बचा हुआ है। ये मतलब फैसिलिटीज है ना फॉरेन में होती हैं, तो उसमें करप्शन ज़्यादा चलता है। उसमें जनरली मतलब जिनको कम दिखाई देता है ना वो है ना मतलब सर्टिफिकेट बना लेते हैं और वो मतलब उससे खेलते हैं। वो हमारे कंपटीशन में खेलते हैं जो मतलब कंप्लीट ब्लाइंड है, क्योंकि उसकी तीन कैटेगरी होती है F11, 12 एंड 13। तो उसमें कंप्लीट जो होता है ना वो F11 में आता है, लेकिन वो F12 और 13 के जो क्राइटेरिया है ना वो भी F11 में खेलते हैं, क्योंकि वो मतलब बता नहीं पाते ना वहाँ पे। और वो वहाँ पे है ना ऐसी ही एक्टिंग करते हैं कि वो मतलब दूसरे को ऐसे लगे कि वो ब्लाइंड है, जब वो मतलब उनका टाइम आता है गेम का मतलब फेंकने का शॉट पुट को डिस्कस को, उस टाइम पे वो ऐसे ही नाटक करते हैं, वैसे नहीं करते। क्योंकि ये बातें तो मुझे पता लगी कि जब वाइफ साथ में जाती थी तो वो मतलब बोलती थी कि वो इतना इजी घूम रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए घूम रहे हैं, पूरे फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं अपने आप ही। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक ब्लाइंड पर्सन है ना बिना स्टिक के तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट वो नहीं चल सकता है अकेला। स्टिक तो उसके होगी हाथ में, उसको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, असिस्ट करने की आवश्यकता है उसको। तो वहां पे वैसे ही चलता है। फिर चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं मतलब उनसे आगे निकल गया फिर भी
1: जी।
0: तो फिर मेरे को ये पता लगा तीसरा इवेंट और कर सकता हूँ, जेवलिंग भी कर सकता हूँ। तो जेवलिंग का मैंने
1: जेवलिंग थ्रो
0: तो फिर मैंने सोचा कि इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। उसका दूसरे दिन इवेंट होना था 7 मार्च को
1: जी।
0: तो मैंने पूछा कोच साहब से, वहाँ जो SMS स्टेडियम में कोच हैं लगे हैं, कि मैं जेवलिंग फेंक लूंगा। वो बोले कि पहले फेंकी है, मैं बोला नहीं फेंकी, लेकिन मेरे को ये पता है कि कैसे फेंकी जाती है, देखा है मैंने
1: जी।
0: तो बोले कि यार फिर भी है ना प्रैक्टिस भी नहीं की तो यार नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस 6 तारीख की बात है, ये दूसरे दिन होना था। मैं बोला यार मैं अभी मेरे पास शाम का टाइम है और सुबह मेरा कब होगा इवेंट, टाइम तो मतलब 12 बजे के बाद होना है, तो सुबह का भी टाइम है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसकी, तो हो सकता है मेरा काम हो जाए, मतलब कोई पोजिशन आ जाए। तो बोला कि उन्होंने फिर जेवलिंग लाए, वो मेरे को 1-2 थ्रो करवाए। तो फिर मैंने शुरू शुरू में तो देखो ढंग से थ्रो नहीं कर पा रहा था मैं जेवलिन को, लेकिन वो मतलब मैंने कम से कम 100-200 बार ट्राई किया उस टाइम पे
1: जी।
0: तो फिर वो मतलब परफेक्शन आ गया
1: जी।
0: क्योंकि वो ना फिर जैसे
1: खड़े होने जितना स्टैमिना आ गई
0: हाँ, और फेंक सकते हैं अपन उसको
1: जी।
0: 3-4 स्टेप लेके भाई मैं ज्यादा रनिंग ना करूँ तो थोड़ी रनिंग कर लूंगा, और वहां पे ना फिर आवाज करते हैं वो मतलब ताली बजाते हैं ऐसे, तब रिलीज करनी होती है उसको साउंड के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने वहां से फेंक दिया और वो भी फाइनली ब्रॉन्ज पे तो लग गया मेरा निशाना।
1: वेरी नाइस।
0: तो कोच ने फिर मेरे को ये कहा कि ठीक है तुम कोशिश तो कर ले, लेकिन कुछ मेडल पे तो नहीं लगेगा यार तेरा। तो मैं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, अपन ट्राई तो करें, चलो नहीं लगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अपन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैं कोशिश करते हैं देखते हैं, लेकिन वो फाइनली हो गया काम। फिर उन्होंने कहा कि तू 12 मीटर ही फेंक पाएगा इसको। तो मैं ठीक है, मतलब उन्होंने मेरे थ्रो देखे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो मैंने उस टाइम पे फेंका मैंने ना 24 मीटर फेंकी मैंने उसको।
1: अच्छा
0: 24 पॉइंट समथिंग, मतलब उससे उन्होंने जितना बताया उससे डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही फेंकी मैंने।
1: ओके।
0: तो फिर मैंने उनकी बात को भी गलत साबित कर दिया। वैसे वो मतलब
1: लक्ष्य था ही वैसे भी सबको गलत साबित करना।
0: तो मेरे कोच वैसे देवेंद्र झाझड़िया जी है ना, उनके सानिध्य में किया था मैंने प्रैक्टिस। उनका नाम है RD सिंह, वो अपने राजस्थान से पहले द्रोणाचार्य अवार्ड ही है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मतलब पहला द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हीं को मिला है अपने राजस्थान से, जिन्होंने पैरा खिलाड़ियों को तैयार किया है। अब देवेंद्र झाझड़िया जी है उनके वो गुरु है, तो उन्होंने गोल्ड मेडल लगाए ना, तो उसके लिए उनको सम्मानित किया गया द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो ऐसे चलता रहा। फिर दूसरे साल मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे, फिर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हो गया
1: जी।
0: और 2019 में फिर लास्ट में क्या हुआ, कोविड आ गया था
1: जी
0: उस टाइम पे
1: जी।
0: 2020 में, तो 2020 में वापस वो मेरे स्टेट वाले होने थे, तो स्टेट में तो मैं चला गया, जोधपुर हुए उस टाइम पे फिर स्टेट वाले चैंपियनशिप। तो उसमें भी फिर मेरा सेम लगा, शॉटपुट में गोल्ड और उसी में डिस्कस में सिल्वर, और उस टाइम पे वो हटा दिया था, जेवलिंग हटा दिया फिर अपने राजस्थान से, तो वो मैं नहीं कर पाया फिर दो इवेंट ही। उसमें दूसरी बार, दूसरी साल भी मैंने सेम रिपीट किया फिर गोल्ड और सिल्वर उसमें। फिर कोरोना, फिर मेरा नेशनल में हो गया, लेकिन नेशनल फिर डिले कर दिए कोरोना की वजह से, नहीं हो पाए। फिर मैं तैयारी कर रहा था तो दोबारा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। मैं वेट लिफ्ट कर रहा था, वो बार है ना पसीने की वजह से स्लिप हो गई मेरे हाथों से शोल्डर के ऊपर, मतलब वेट गिर गया,
1: फिर
0: इंजरी हो गई फिर शोल्डर में। अब जिस वजह से थ्रो करना वही वापस इंजरी हो गई। अब डॉक्टर को जैसे दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अभी तो यार एक्सीडेंट हो, वो भी मतलब आश्चर्य में थे, जैसे मेरे ब्रेन की सर्जरी हो तो वो टांके वो वैसे मतलब दिखते निशान गए नहीं थे वहां से।
1: अच्छा।
0: उस टाइम तक तो बोले यार अभी सारा लोड है ना सर पे आता है, तेरी जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो मतलब सर को है ना प्रभावित करती है, और ब्रेन की सर्जरी करवा रखी है ताजा ताजा, इतने डैमेजेज हैं आपके साथ में, तो यार ये एटलीस्ट और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मेरे कुछ वैसे लेफ्ट ईयर के अंदर है ना थोड़ी सी, जब मैं वेट लिफ्ट करता था ना भार पड़ता था तो मेरे को जैसे जैसे प्लेन में बैठते हैं तो अपन वो कानों के पर्दे बंद से खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, ऐसे आवाज आने लगती थी मैं जो ही वेट लिफ्ट करता था। अब मेरे दिमाग में चलता कि यार कहीं पर्दा वर्दा है ना कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, अब सुनाई भी नहीं दिएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा वैसे डर हो गया, और फिर डॉक्टर ने भी फिर मेरे को कहा कि यार एटलीस्ट ये तो मत करो, अभी मत करो, इसको कम से कम है ना 3-4 साल आप वेट करो थोड़ा,
1: तो पूरा हील हो के नॉर्मल,
0: तो हील हो के नॉर्मल हो जाए।
1: जी
0: डैमेजेस ज्यादा है क्योंकि मेरे चेहरे पे भी फ्रैक्चर हुए थे कई, कम से कम ऐसे मानो 25-30 फ्रैक्चर थे मेरे फेस के ऊपर
1: एक एक्सीडेंट के कारण।
0: एक एक्सीडेंट के कारण आंखों की मतलब जो मैक्सिलोफेसियल सर्जरी होती है फेस की, वो करने के लिए रिकमेंड किया था मेरे को, लेकिन वो मैंने नहीं करवाई फिर।
1: लेकिन आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि इतनी सर्जरीज हुई है?
0: नहीं वो लगता नहीं है, वो फिर मैंने करवाई भी नहीं। ब्रेन सर्जरी तो हुई थी, आंखों की भी हुई है, लेकिन वो ज्यादा नेसेसरी नहीं लगा मेरे को, क्योंकि भाई अपन एक्यूरेट वैसी चाहे ना, अब 19-20 का फर्क है मेरे मतलब चेहरे में सिर्फ, वो भी उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने मेरे को एक्सीडेंट से पहले देखा और बाद में देखा। जिसने बाद में देखा वो जज नहीं कर पाएगा कि कुछ है इसमें डिफरेंस। फिर वो डॉक्टर ने कहा तो फिर मैं बैठ गया फिर वापस। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर उस टाइम पे ना राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है
1: जी,
0: तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है ये अपनी स्ट्रीम की है तो इसमें अपन ट्राई करते हैं। तो पहली बार वैकेंसी आई थी राजस्थान में उसकी इंस्ट्रक्टर की
1: जी,
0: तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अब वो कोचिंग से जो नोट्स दिए ना उन्होंने
1: जी,
0: वो मैंने एज इट इज एक एक वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया। अब मेरा ये चीज
1: तो
0: के लिए
1: आप तो कैसे पढ़ते थे, ब्रेल में पढ़ते थे?
0: नहीं ब्रेल में नहीं पढ़ता था, ब्रेल तो मैं मतलब मेरे लिए सीखना इतना इजी नहीं था क्योंकि मैं बर्थ ब्लाइंड नहीं था
1: जी।
0: मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर रखी थी। अब जैसे ब्रेल में डॉट्स पे चलता है
1: जी,
0: तो उसमें 6 डॉट होते हैं वो। अब तो मुझे पता है कि वो कैसे है, थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया
1: जी
0: काम चलाओ, लेकिन वो उस टाइम पे तो मैं पढ़ाई करता था तो वो क्लासेस सुनता था ऑनलाइन उनकी घर से
1: जी,
0: ऐप के द्वारा, उनका ऐप होता है कोचिंग वालों का, तो ऐप से
1: आपको मतलब कोई मदद भी करते थे, कोई किताब पढ़ के सुनावे या रिकॉर्डिंग करके?
0: कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी वाइफ है ना मेरे को नोट्स पढ़ के सुना देती थी।
1: आपकी वाइफ ने क्या पढ़ाई किया है?
0: उन्होंने वो किया है बीए बीएड है, एमए बीएड है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है वो भी
1: जी।
0: तो वैसे उनको टाइम कम ही मिल पाता है क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी भी होती है, घर के काम भी होते हैं
1: जी,
0: और फिर मुझे पढ़ाने वाला काम, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े
1: जी।
0: नहीं वो मेरे दिमाग में ना देखो पहले ऐसे ही आता था कि मैं ना कम से कम हेल्प लूं, चाहे वो मतलब अपने घर वाले ही क्यों ना हो। स्टार्टिंग के अंदर मेरी सेविंग करते थे पापा, तो मुझे अंदर से गिल्ट फील होता था कि मेरे साथ में ऐसा देखो क्या हो गया कि मुझे सेवा करनी चाहिए माता पिता की, आज मुझे करवानी पड़ रही है। तो मैं सोचता बहुत था, मतलब पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं क्या करूँ, मतलब जितना मुझे पढ़ना हो। पढ़ाई वाला सीन तो बाद में शुरू हुआ है, ये तो एक्सीडेंट 18 में हुआ है, तैयारी तो मैंने 21 में शुरू की थी। एक्सीडेंट वो दोबारा मेरा वेट गिर गया था तब उसके बाद
1: जी।
0: तो फिर मैंने ना धीरे धीरे अपने आप को ये सोच लिया कि काम अब मतलब अपन को जीना पड़ेगा, तो जहाँ पर मतलब अपन को नेसेसरी है ना वहीं अपन सहायता लें, उससे पहले नहीं। तो फिर मैंने सारे काम करने अपने सीख लिए थे।
1: अब मैं कभी आपकी वाइफ को लगता था कि ये कहाँ से मेरे जीवन में आ गया, अभी अभी शादी हुई और अभी अभी ऐसे जीवन है, सपने क्या देखा और हकीकत में क्या हो गया है अभी, क्योंकि नया नया शादी है तो वो छोड़ के भी जा सकती है।
0: हाँ जा सकती है, मेरी सास ने बोला था, उनको रिकमेंड किया था इस बात के लिए कि एक अंधे व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है बेटी
1: जी
0: तो
1: उन्होंने डाइवर्स दे दो।
0: हाँ मतलब उन्होंने ये कहा था
1: जी
0: कि पूरी जिंदगी नहीं गुजर पाएगी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड भी कर दिया जल्दी कि हो गया इनका काम, अब मतलब आप छोड़ सकती है चाहो तो, अगर आपकी मतलब जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे। उन्होंने वो मतलब कहा कि नहीं नहीं, वो स्ट्रॉन्ग थी वैसे मेंटली मेरी वाइफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा आगे, स्पोर्ट्स में भी कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई में भी करूँगा, ये तो बातें अब हुई हैं
1: जी,
0: उनको नहीं पता था, ये तो अर्लियर स्टेज पे उन्होंने ये कर ली थी फिर। लेकिन उसका डिसीजन था कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी, मैं इनके साथ ही रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी कंडीशन हो।
1: कितना समय हो गया था शादी को जब आपका एक्सीडेंट हुआ?
0: मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब 4 साल हो गए थे
1: शादी को।
0: हाँ शादी को 4 साल हो गए थे।
1: तब तक तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो चुकी है।
0: हाँ बस वही है, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मतलब शायद हो सकता है कि वो मेरे साथ रहना पसंद किया उन्होंने,
1: छोड़ा ना।
0: हाँ तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था, हाँ इंस्ट्रक्टर के निकले तो फिर वो मैंने तैयारी शुरू की, कला से सुनता था कभी कभी, वो मुझे पढ़ के सुना देती थी, तो मैंने वो वर्ड बाई वर्ड याद कर लिए थे। अब अनफॉर्चुनेटली उस साल है ना इतना पेपर डिफिकल्ट आया, क्योंकि पहली भर्ती थी, किसी को आइडिया नहीं था इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का, नेचर क्वेश्चन की नेचर कैसी होगी इसमें पेपर में। तो जैसे उन्होंने तैयारी करवाई ना, मेरे कोचिंग से 12% ही आए 100 में से
1: जी।
0: अब उसके लिए कम मिनिमम मार्क्स लाने थे 35%, मतलब 35 नंबर लाने जरूरी थे उसमें। तो मेरे जो मतलब नोट्स में पर्सन ही अगर मैंने नहीं पढ़े उसके अलावा, तो फिर मैं कैसे पास करूँगा, मैं नहीं पास कर पाया उसको
1: जी।
0: 12% तो नोट्स में थे और कुछ मैंने तुक्के लगाए थोड़ा, मतलब आसपास के ज्ञान को बढ़ा के मतलब मेरे अकॉर्डिंग किया, तो 21 नंबर तक पहुँचा मैं वहाँ।
1: अच्छा
0: लेकिन 35 मैं नहीं कर पाया क्रॉस
1: जी,
0: तो मैं उसमें रह गया। उसके बाद नगर पालिका ईयू की भर्ती निकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की
1: जी।
0: मैंने सोचा इसमें लगाएंगे, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज आती थी, थोड़ा सिलेबस छोटा था उसका और धाराएं याद करनी थी नगर पालिकाओं की। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती, लोग आते जाते रहते हैं
1: और
0: मम्मी की और वो मतलब वाइफ की, उनकी भी मतलब आपस में कभी कभी वो हो जाती है नोकझोंक हो जाती है अब इधर माताजी मेरे को कहती हैं, इधर वो कहती है, मैं यार ये तो पंगा तो है, गड़बड़ी यहाँ पे
1: जी।
0: मैंने फिर सोचा कि अपन बाहर चलते हैं, घर को छोड़े ना
1: जी।
0: तब अपना कल्याण हो सकता है।
1: अच्छा
0: तो मैंने छोड़ दिया फिर घर को।
1: अच्छा जी।
0: अब शुरू शुरू में तो फिर
1: श्री राम जी वनवास चले गए जी।
0: तो उसके बाद शुरू में तो देखो मेरी वाइफ आई मेरे साथ में
1: जी
0: 3-4 महीने, तो मेरे जो असिस्टेंट बैठे हैं मेरे पास में, इन्हीं की बिल्डिंग में मतलब आया था मैं।
1: अच्छा।
0: इनके जो दादाजी है ना वो गार्ड हैं।
1: अच्छा।
0: उस बिल्डिंग के
1: जी
0: चौकीदार हैं वो, तो इनके यहाँ पे आके मैंने रेंट पे रहना शुरू किया इनके बिल्डिंग में। तो शुरू में तो वो 4-5 उसने 4 महीने की छुट्टी ली, अब गवर्नमेंट में वो छुट्टियां भी अपन लिमिटेड ले सकते हैं
1: जी,
0: तो जैसे तैसे करके है ना 1 साल निकल गया 4 महीने की। फिर वो मतलब और छुट्टी आगे गर्मियों की छुट्टियां आ गई
1: जी,
0: फिर थोड़ा मतलब 2-3 दिन 4-5 दिन चली गई वापस स्कूल में और वो मेरे को साथ लेके जाती, मैं यार ऐसे नहीं चलेगा ये फिर मतलब ऐसे काम। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अपन एक कंपटीशन का पेपर दें उसमें सिलेक्ट हो जाएं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब वो मैंने पेपर तो देखो क्लियर किया उस टाइम पे ईओ का कर दिया, लेकिन वो पेपर आउट हो गया, किस्मत खराब थी मेरी पेपर आउट हो गया तो सरकार ने कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी
1: जी।
0: अब दोबारा तैयारी तो वही दिमाग में आएगी, अब की बार तो हो गया लेकिन अगली बार हो जाए भाई 1% तो मतलब दिमाग में देखो रियलिटी रियलिटी होती है हमेशा, प्लान बी भी होना चाहिए आपके पास। तो मैंने सोचा कि ठीक है। अब वो बोले कि चलो अब तैयारी कर ली, घर पे चलते हैं। मैं यार घर पे मैं नहीं जा सकता। तो मैंने उसको क्लियर बोला कि दुनिया को पता लग गया अब ये तैयारी करने गया हुआ है, और घर पे मैं चला जाऊँ, घर पे मेरी तैयारी भी नहीं होगी, तो यार दुनिया को जवाब क्या मिलेगा
1: जी
0: कि तैयारी करके आ गया, लोग मनाएंगे, मजाक मजाक तो पहले ही बना रखा है लाइफ ने और लोगों ने भी बना रखा है साथ में
1: जी,
0: और अब नहीं होगा तो फिर ये तो नाक का सवाल हो गया है
1: जी।
0: अब मैं ना तभी जाऊंगा जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा
1: जी,
0: वरना नहीं जाऊंगा मैं घर पे। तो फिर उन्होंने मेरे पास जो मेरे असिस्टेंट बैठे हैं विशाल भाई को, इनको स्टार्टिंग में मैंने रखना शुरू किया मेरे साथ में
1: जी।
0: अब ये उस टाइम पे थे शायद 9th क्लास में थे विशाल,
2: 9th
0: हाँ 9th क्लास में थे उस टाइम पे, बच्चा था ये बिल्कुल। तो ये भी थोड़े दिन में इसकी स्कूल होती, अब शाम को थोड़ा टाइम मेरे को देते, लेकिन मेरा मकान वाले मैंने इनके घर को छोड़ दिया था उस टाइम पे, दूसरे मकान में आ गया फिर मैं
1: जी,
0: क्योंकि उसमें थोड़ा वेंटिलेशन का वगैरह ये प्रॉब्लम था। तो मैंने वो फॉर्चुनेटली मेरे मकान वाले का वो भी अच्छे मिले मेरे को वहाँ पे जो दीदी रहती थी वो ओनर थी, लैंडलॉर्ड थी, वो मेरी क्लासें लगा देती
1: जी।
0: थोड़ा ये मतलब मेरे को टाइम दे देते, तो फिर इससे भी लंबा टाइम इनको भी लंबा ये मेरे को लंबा टाइम नहीं दे सकता था, क्योंकि इसके भी खुद के पर्सनल काम होते थे, बच्चा था, इसका खेलने का भी मन करेगा, ये खेल दोस्तों को भी टाइम देगा उस टाइम पे, खेलेगा भी
1: जी।
0: तो फिर वो मेरी दीदी है ना, वो मतलब लैंडलॉर्ड थी, वो क्लासें लगाती थी मनीषा दीदी, और मैं क्लासे सुनता रहता। मैं रात को 11 बजे तक लास्ट मतलब उनका पूछ लेता मैं कब सोने का टाइम होगा आपका, तो वो बोलते कि हम 10-10:30 तक लगा सकते हैं। तो मैं लास्ट मतलब 11 बजे तक क्लास लगवाता, और दो क्लासे है ना
1: करंट पढ़ के सुनाती थी सारी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐप में क्लास लगाता ना मैं, ऐप से सुनता मैं क्लासे, चालू करके दे देती थी मेरे को
1: जी।
0: और मैं मतलब उसको
1: आप सुनते थे
0: और मैं उसको स्पीड में सुनता था, वो भी 2x पे सुनता था, 1.75 पे या फिर 2x पे।
1: अच्छा।
0: वो इसलिए कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कवर करना था। अब मैं मान लो नॉर्मल स्पीड पे सुनूंगा तो मेरी क्लासेस, जैसे मैं 10 क्लासेस सुनूंगा और मैं वही 2x में सुनूंगा तो मैं 20 क्लासेस सुनूंगा एक साथ में
1: जी।
0: तो ऐसे मैंने ना 2x मोड पे शुरू किया, और मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सुनता था, और बीच में कभी मेरा मूड होता ना ऐसे भाई थोड़ा भारी हो गया है, सर भी दर्द करने लगता था, क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन जा रही थी
1: जी।
0: अचानक से दिमाग में
1: जी।
0: तो बीच में फिर वो मूड फ्रेश के लिए मैं सूरज भाई के वीडियो सुन लेता।
1: अच्छा। थोड़ा फ्रेश सुनने का ही काम कर रहे थे पूरा दिन में।
0: हाँ पूरा दिन
1: या तो ये सुनो या तो वो सुनो,
0: हाँ बस दो ही काम,
1: ज्ञान है
0: ज्ञान
1: है ज्ञान है जी।
0: भाई दुनिया से तो देखो कट हो ही गया था मैं, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था दुनिया में अब
1: जी।
0: मेरे को ना मतलब वो खाने को दौड़ते थे, वो जैसी बातें करते थे मेरे साथ में, और वो मेरे को ना अजीब नजरिए से देखते थे, दूसरी बात ये और है। तो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं ऐसे मतलब मेरे मन में यही सोचता था कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, सीधी सी बात है, और मैं आज भी यही सोचता हूँ
1: जी। मैं ऐसे ही सोचना चाहिए, अब नॉर्मल क्या है इसमें।
0: मैं ऐसे नहीं सोचता कि मैं अब नॉर्मल हूँ या फिर मेरे कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर मतलब क्योंकि अपन सीधी सी बात है समस्या के बारे में सोचेंगे ना तो समस्याएं आएंगी, और समाधान के बारे में सोचेंगे तो समाधान मिलेगा अपन को
1: जी।
0: तो ये तो नॉर्मल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। इस चक्कर में मूड फ्रेश के लिए सूरज भाई सुन लेते थे, क्लासेस सुन लेते थे, फिर दोबारा मेरा ईओ में नहीं हो पाया। उसके बाद निकली आईए की भर्ती, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, वो भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थी। अब की बार हो जाएगा अपना सिलेक्शन इसमें, इसकी तैयारी करते हैं। फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, और साथ साथ में मैंने शुरू की उस टाइम पे आरएएस की
1: जी,
0: दोनों पैरेलल कर रहा था, क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की करी थी वो सेम सिलेबस था उसमें आईए में, कंप्यूटर साइंस वाला ही। तो मैंने सोचा कि होएगा ना तो इस नॉलेज पे ही हो जाएगा अपना, और साथ साथ में आरएएस की तैयारी करते हैं। फिर मैंने आरएएस की शुरू किया, और वाइफ भी चली गई थी, मैं अकेले रहता था, और अभी भी मैं अकेले रहता हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ तो
1: वाइफ अपनी बेटी के साथ, आपकी ससुर, हाँ, आपकी मायके में मतलब, हाँ, आपकी पेरेंट्स के साथ,
0: पेरेंट्स के साथ वही रहती हैं।
1: उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स?
0: मेरे पेरेंट्स हमारे घर पे रहती है
1: जी।
0: बेटा मेरे वैसे एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है, तो अब अकेले रह के मैं खूब क्लासेस सुनता था, और साथ साथ में नोट्स पढ़ता था, और मेरे को कोचिंग में मतलब मेरे को कोचिंग अच्छी मिली, मैं कोचिंग में जाता था, फिर मेरे को वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे मित्र बन गए थे, तो वो मेरे को पढ़ाते नोट्स
1: जी।
0: कभी मेरे को जरूरत पड़ती ना कि ये चीज मेरे को पढ़ के सुन लेनी चाहिए 2-3 बार, तो वो मैं उनसे रिकॉर्ड भी करवा लेता था फिर नोट्स को, नोट्स रिकॉर्ड किए हुए वो कभी कभी वो सुन लेता और वो कभी मेरे वो दोस्त पढ़ा देते और क्लासे सुनता। 14 से 15 घंटे पढ़ाई की रही है मैंने
1: जी,
0: और पिछले मतलब 4 साल से लगातार करी इतनी मैंने पढ़ाई
1: जी।
0: तो 2023 में तो देखो आईए के अंदर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, मतलब जनवरी में था उसका एग्जाम, तो फिर वो उसमें सिलेक्ट हो गया मैं 23 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरे साथ में दिक्कत ये हुई कि मेरे को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने अयोग्य करार दे दिया मेरे को। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप डिसेबल मतलब आंखों से होना तो फिर हम आप हमारे विभाग आपको अलाउ नहीं करेगा, आपने चाहे एग्जाम क्लियर कर दिया हो। मैं यार ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, विज्ञप्ति में डालनी चाहिए थी ये बात। मैंने ना देखो प्रयास किया ईमानदारी से, मैंने मेरा टाइम भी खराब किया है स्पेशली आपके लिए इस भर्ती के लिए, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो आप ये कह रहे हो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपके विभाग के लिए। आप मुझे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी देके देखिए तो सही, मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा तब आप कह सकते हैं। मैं चाहे असिस्टेंट रखो किसी को भी रखो, मैं मेरा काम करूंगा, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा मैं पूरा। वो बोले फिर मेरे को, मैं अधीनस्थ बोर्ड में गया वहाँ पे सचिव के पास, तो वहाँ पे भी मजाक बनाया मेरा। वो क्लर्क थे वो बोले यार भाई यार तू क्या, अगर पहली बात तो रेस्पेक्ट तो देगा ही नहीं कोई।
1: हाँ।
0: मुझे ऐसे लगता है।
1: हाँ।
0: तू तो पार्ट में ही बात करते हैं वो
1: जी,
0: अरे तू क्या कर पाएगा, तेरे को दिखाई देता नहीं यार,
1: कितने भी पढ़ा लिखा सक्सेसफुल हो जाओ फिर भी जस्ट बिकॉज आपको विजन नहीं है इसीलिए आपका कोई वैल्यू नहीं है।
0: हाँ वो मेरे को ऐसे बोलते कि आप बोझ बन जाओगे, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला। तो फिर मैंने उनको समझाया यार आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो
1: जी।
0: मैं मेरे दिमाग में ना फिर उस दिन है ना ये सोच लिया मैंने कि अब मैं आरएस ही बनूंगा, प्रशासनिक अधिकारी ही बनूंगा मैं, और एक दिन इनको मतलब साबित करके दिखाऊंगा अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ काम
1: जी।
0: तो उस टाइम से फिर मैंने शुरू कर दिया आरएस का, मैं कर ही रहा था साथ में। तो फिर फाइनली मैं 2023 में तो रह गया था, 4-5 नंबर से रहा था मैं फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग फिर मेरी फॉर्चुनेटली 2024 में भी है ना बराबर भर्ती निकल गई, मैं लकी था बैक टू बैक भर्ती आ गई आरएस की, वरना 2-3 साल में आती है हर बार
1: जी।
0: तो फिर मेरा 2024 में फाइनली है ना सिलेक्शन हो गया आरएस में।
1: कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने जीत लिया।
0: हाँ अब लोगों का ना जो लोग ये बात बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग ये बात बोलते हैं कि हमें पहले ही पता था ये सब कुछ कर सकता है। सेम पर्सन सेम बात कर रहा है
1: जी।
0: जिसने ये बोला कि ये नहीं कर सकता था,
1: हाँ।
0: आज वही ये बात है ना, कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि हमें तो पहले ही विश्वास था कि ये कर सकता है कुछ भी। वही उन्हीं लोगों की जो बोल रहे थे हीरो से जीरो बन गया,
1: हाँ।
0: आज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो साथ में मेरे आके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, स्टेटस लगाना चाहते हैं कि अभिषेक हमारा दोस्त है।
1: अच्छा।
0: ये आरएस भाई आरएस बन गया प्रशासनिक अधिकारी तो हो सकता है कि हमारे काम आ जाए, आज वही लोग है ना मतलब आके है ना फोटो खिंचवा रहे हैं स्टेटस लगा रहे हैं जो मतलब किस्मत की दुआई देते थे धरती पे बोझ बताते थे, आज वही मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को
1: जी।
0: लोगों का मतलब काम है कहना, लोग कहते रहेंगे लेकिन आपको जो करना है ना वो करिए, मेरा तो मानना ये है
1: जी।
0: लोगों अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे ना
1: जी
0: तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप जवाब दे देता है
1: जी। सो अभिषेक जी, इतनी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ लर्निंग है, जब आप अपने आप को देखते हैं, वैसे आपने बातचीत के दौरान कई बातें शेयर की है, विजन के पहले और विजन के बाद, अब अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं?
0: वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है
1: जी,
0: अगर मैं पर्सनली देखूँ तो बस इतना फर्क है कि मैं थोड़ा सा इस जीवन के बारे में थोड़ी सच्चाई को ट्रूथ को है वो अच्छे से समझ पाया हूँ
1: जी,
0: कि क्या रियलिटी है
1: जी।
0: इस भागा दौड़ में अपन यूं ही भागे जा रहे हैं, अपन को कुछ पता ही नहीं है, फालतू के माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। फाइनली है ना मेरे को तो ऐसे लगता है कि कोई आना जाने नहीं है इन बातों में, कुछ नहीं है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अपन सांसारिक वस्तुओं के मोह माया में उलझे हुए हैं और कुछ उनका पार्ट भी होते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी ऐसा करें
1: जी,
0: ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जैसे मतलब अपन बात करें कि हर व्यक्ति हर फैमिली वाला ये सोचता है कि मेरा बेटा बेटी है ना डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए, तो वही बात है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बच गए बन जाएंगे तो फिर वो क्लर्क कौन बनेगा टीचर कौन बनेगा तो वही है मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, मैं अगर मैं पहले टच में आ जाता तो हो सकता है मैं सब कुछ छोड़ देता। अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मेरे को जैसा गृहस्थ जीवन मिला है तो मैं इसके साथ में रह के।
1: तो आध्यात्मिकता आपको कैसे मदद किया?
0: आध्यात्मिकता तो देखो, हकीकत तो ये है कि कुछ अच्छी चीजें होती है ना लाइफ में, वो चाहे अपन यहाँ बैठ के बातें कर लें और चाहे साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे जाके बातें करें तो भी वो वही रहेगी। तो मेरे को याद है कि मैं जब 18 साल कॉलेज में था ना, तो एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया था, हु एम आई, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और उसके नीचे भी लिखा मे बी अ सेकुलरी एल्स सर्चिंग और डॉट डॉट के। तो ये बातें है ना, वो प्रश्न मेरे को है ना सूरज भाई से जुड़ने के बाद पता लग गए
1: जी।
0: आई एम ए सोल
1: जी,
0: और अपना है सुप्रीम सोल से नाता है, ये हकीकत है। जैसा अपन सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं
1: जी।
0: अपने मतलब ओरा को अपन इतना प्योरिटी रखें उसमें
1: जी,
0: और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों से दूर रहेंगे ना तो कॉस्मोस आपकी है ना अपने आप सहायता करने लगता है, ये हकीकत है।
1: ये अपने अनुभव की
0: है। जो मैं सोचता हूँ ऐसे सोच के बैठ जाऊं कि मुझे इसका जवाब मिले तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरनली मन में ऑटोमेटिक कभी कभी विचार आते हैं तो जनरली 90% ऐसा ही होता है कि उनका जवाब है ना अपने आप में मिल जाता है
1: जी।
0: मैं मतलब बाहर जाके भी नहीं देखूं। तो एक बार मैं एक मजाकिया किस्सा शेयर करता हूं आपके साथ में
1: जी।
0: तो मेरे पड़ोस में आंटी है, वो उनके हस्बैंड है डॉक्टर
1: जी।
0: अब वो थोड़े से है ना वो ऐसे है, मतलब उनका व्यवहार है ना थोड़ा ऐसा है कि अगर उनसे जाके अपन गार्बेज के लिए भी हेल्प मांग लेंगे ना कि आपका ये कचरा पड़ा है ये मेरे को दे दीजिए, तो वो भी ना दें वो चाहे वो उनके काम का नहीं है
1: क्योंकि आप मांग रहे हैं इसलिए कुछ तो है इसलिए
0: हाँ, मतलब वो फिर ऐसा सोचेंगे इसमें कुछ ना कुछ ये काम की है अपनी चीज। तो एक दिन फिर अब मेरे को दुनिया के बारे में मैंने खूब सोचा एक्सीडेंट के बाद में
1: जी,
0: क्योंकि अपने जिस आसपास में जितने लोगों से टच में है सब के बारे में सोचेंगे अपन कौन कैसा है
1: जी।
0: तब उनके बेटे की मतलब डॉक्टरी है उनका बेटा भी
1: जी।
0: उनके बहू आ गई, उनकी कोरोना हो गया है, कोरोना टाइम की बात है। अब मैंने सोचा कि यार ये औरत मतलब अपनी बहू की मतलब कोरोना हो गया तो वो सही हो गई, मुझे ऐसे पता लगा। तो मैं यार ये आने दे सकती है क्या नीचे, मम्मी मन सोच रहा हूँ अब मतलब अपने साथ रख रही होगी क्या आंटी जी
1: जी।
0: अब मैंने तो सोच लिया। अब दूसरे दिन ही है ना वो बहू ना छत से मतलब वैसे दूरी पे है थोड़ा सा 50-100 मीटर की दूरी पे, वो छत से है ना अपनी वो आंटी जी को बोल रही कि मम्मी अब तो मैं सही हो गई नीचे आ गए आ जाऊं क्या
1: शायद ये आवाजें नहीं सुनते आप जब आप देख सकते तो
0: हाँ पहले नहीं सुनता था तो फिर उन्होंने जवाब दिया आंटी ने नहीं नहीं नहीं वो देसी भाषा मारवाड़ी में बोला उन्होंने ना तू ऊपरी बड़ी रहे तू नीचे बारह और कोरोना लगा देगी हमारे भी कोरोना लगा देगी फालतू तो, जबकि वो है ना मतलब उससे है ना कोरोना सही हो गया उसका
1: जी। फिर
0: लेकिन वो मानसिक दिवालियापन है ना उनका, मतलब वो ऐसे मतलब अपन को पहले पता होता है कि कौन पर्सन कैसा है
1: जी।
0: तो जब मैं बाबा से टच में आया ना तो मुझे मतलब ये चीजें ऐसे पता लग जाती है, हाँ सिक्स सेंस से, मतलब फिर है ना जवाब अपने आप मिल जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, और मैं शेयर भी नहीं करता ज्यादा बातें।
1: सही बात,
0: क्योंकि किसी का देखो प्रभाव है ना कम भी नहीं करना चाहिए किसी के आगे, अपन क्यों बोल के कहें किसी के बारे में, हमें पता है तो पता है ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपन को कोई मतलब भी नहीं है उस बात से।
1: सही बात है अभिषेक जी, आपने बहुत सारी बातें जो अपनी जीवन की हकीकतें हैं उन चीजों को समझना देखना गौर करना आपने ये सीखा समझा और कर भी रहे हैं। अंत में जाते जाते जैसे हमारी मन की आंखों से कार्यक्रम है उसका जीवंत आपने आपके जीवन के उदाहरणों से तो आपने बहुत सारी बातें कही है, अब अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं अभी?
0: देखो फ्यूचर तो मैंने अभी यही सोचा है कि मैंने प्रशासनिक सेवा को चूज भी इसीलिए किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा है ना सेवा भाव से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और कोई व्यक्ति अंतिम लाइन में खड़ा है और अंतिम पंक्ति में जहां मतलब अंतिम पायदान पे है ना वहां तक मैं पहुंच सकूं मेरी सेवा के माध्यम से, जो भी मुझे सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी जिस भी विभाग में भेजेंगी मैं मेरा काम ईमानदारी से करूँगा, और जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा मतलब लास्ट व्यक्ति तक कैसे पहुँचे वो पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसको वहां तक पहुंचाने की, जिस वजह से उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके
1: जी। एक बात और है इसमें, जब भी हम दिव्यांगों की बातचीत करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड सोशल इक्वालिटी, इन चीज़ों की बहुत हम चैलेंजिंग देखते हैं। ये चीज़ें बहुत कम मिलते हैं दिव्यांगों के लिए। एक सोशल एक्सेप्टेंस कम मिलता है, एक्सेसिबिलिटी भी कम मिलती है, एक्सेप्टेंस भी कम मिलता है, और कई चीज़ें आपने खुद भी अपने जीवन से शेयर किया है। तो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मैं आरएएस बनूंगा तो मैं सेवा करूंगा।
0: नहीं, बन गया हूँ मैं, अब सेवा करूंगा, मेरे को विभाग अलॉट हो जाएगा तब।
1: हाँ, आप जैसे आरएएस अभी बने हैं,
0: हाँ,
1: तो आप सेवा करने की जो आप सोच रहे हैं, एक होता है कि जब आप देख पा रहे थे दुनिया को अपने स्थूल नेत्रों से, उस समय हमको इतना अंदाजा नहीं होता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड की दुनिया क्या होती है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। अभी आप खुद वो जीवन जी रहे हैं, तो अभी आप क्या सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसी एजेंडा या क्राइटेरिया है कि सबसे पहले मैं इस वर्ग के लोगों के लिए ये चीज़ें करना चाहता हूँ?
0: देखो, फाइनली तो मैं अब जब ही बता पाऊँगा, जैसे मेरे को अभी मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, जैसे जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर मिलेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में
1: जी,
0: तो वहाँ पे हो सकता है, जैसे मतलब मंडी के अंदर शोषण होता है किसानों का, जो उनके अनाज पैदा होता है खेतों में, उनका उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता अपनी फसल का। तो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं ईमानदारी से प्रयास करूँ और उनको मतलब उनका सही उपज का जो सही मूल्य है वो मिले, उनका शोषण ना हो मंडियों के अंदर बनियों के द्वारा, उनको एक्चुअल कीमत मिले। और दूसरा, लेबर वेलफेयर ऑफिसर बन सकता हूँ मैं, सेकंड प्रेफरेंस है उसमें श्रम कल्याण में, तो मैं वहाँ भी ये देखूँगा, अगर मुझे ये डिपार्टमेंट अलॉट होता है तो फिर मैं देखूँगा कि जो भी फैक्ट्रियों में मजदूरों का मतलब शोषण होता है, उनको टाइमिंग मतलब जितना भी होता है उनका, उससे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, उनको अलग मेहनताना भी नहीं दे पाते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट्स ने निर्धारित कर रखे हैं उनको वेजेज वो नहीं दे पाते हैं, तो मैं उनका एनालिसिस करूँगा जाके और देखूँगा उनकी हालत कैसी है। अगर उनका शोषण हो रहा होगा तो मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि उनको सही उनका वेजेज मिले उनके मेहनताना के अकॉर्डिंग।
1: जी, सो कुल मिला के आपको जो भी डिपार्टमेंट मिले उसमें जो भी लूप होल से आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिव्यांगों के बारे में सोचें।
0: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं दिव्यांगों के बारे में सोचूं, मतलब वो तो है, ये तो मैंने देखो अभी मैं जहाँ से आता हूँ सेंटर से जुड़ा हूँ, वहाँ की हमारी इंचार्ज जो सेंटर इंचार्ज हैं सादलपुर की शोभा दीदी हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अगर डिसेबल हो चाहे नॉर्मल हो, अगर किसी को आवश्यकता है ना अपनी मदद की तो मुझे वो कभी भी बता सकती हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि लोग शिक्षित ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो शिक्षित होंगे ना तो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होंगे, तो मैं वैसा समझता हूँ कि अगर वो शिक्षित हों और उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है शिक्षा लेने में, चाहे वो मतलब उनको पैसों की हो, तो मैं बेझिझक उनकी हेल्प करूँगा, चाहे वो डिसेबल हो चाहे डिसेबल ना हो।
1: थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत ही आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बातचीत करके। वाकई में मन की आंखों से ये कार्यक्रम जो है वो हमारी मन की आंखों से दुनिया को देखने की एक दिशा देती है। आप सभी के जीवन के अनुभव तमाम श्रोताओं की आंखें खोलती हैं और एक एक्सेप्टेंस कहे या फिर हमारी जो साथ में रहने वाले दिव्यांग साथी जो हमारे आसपास में रहते हैं उनके साथ हमें कैसे जीना है, उनको कैसे समझना है और उनको किस तरीके की मदद की आवश्यकता होती है, ये सारी बातें समझने को मिलता है। तो आप इतने खुल के सच्चाई के साथ अपनी जीवन की कहानी को हमारी श्रोताओं के साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका, शुक्रिया।
1: दोस्तों, अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं और अभी तक आप सुन रहे थे अभिषेक कुल्हारी जी को। आप मूलतः राजगढ़ से हैं लेकिन वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं। आपने आरएएस की परीक्षा को क्रैक किया है और बहुत जल्द वो नियुक्त होने वाले हैं अपने पद पर। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष लेफ्टिनेंट कर्नल विकास जी उपस्थित हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देखेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग फौजी भाइयों को देखते हैं। तो आप विशेष रिटायर्ड कमीशन इन द आर्मी ऑर्डनेंस क्रॉप्स इन जून 1996 और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से आप हैं और एंड नॉमिनेशन स्पेशलिस्ट हैं आप। मोस्ट मेमोरेबल टेंचर इन साइचेन ग्लेशियर एंड लेयर लद्दाख फॉर मोर देन 4 ईयर्स, सर्व इन इंडियन आर्मी फॉर 25 ईयर्स। अभी आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है मार्च 2021 में। तो हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। जय हिंद विकास जी।
1: जय हिंद
0: और
1: भाई साहब।
0: जी, तो चलिए हम लोग। हाँ

0: एक यूनिक अनुभव हम लोग सुन पाएंगे आपसे और सबको अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियों के साथ विकास जी।
1: थैंक यू भाई साहब।
0: आइए, मैं हमारे साथ ब्रजभूषण जी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा ब्रजभूषण जी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर के लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत के साथ विकास सर चौहान का स्वागत कीजिए आप।
1: ओम शांति लेफ्टिनेंट
0: ओम
1: कर्नल
0: शांति।
1: विकास सर।
2: ओम शांति भाई साहब।
1: आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ बीइंग विद यू।
2: थैंक यू।
1: मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। फॉर्चुनेटली मैंने काम भी जो मेरा किया उसमें मैं डिफेंस से, मिलिट्री से, एयरफोर्स से जुड़ा रहा,
2: क्या बात है।
1: तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देशभक्ति से जुड़ा ये गाना आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो आई थिंक यू विल लाइक इट।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया है भाई साहब, बहुत
1: बहुत
0: अच्छा।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, अच्छी शुरुआत हो गई है और बहुत ही अच्छी बातचीत होगी।

0: मैं इनका कर्नल विकास राव चौधरी हमारे साथ है, जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आशा करूंगा कि जब भी हम लोग फौजी भाइयों से बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एक मन में सुकून फील होता है कि भाई
1: जी
0: वहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में। और हम लोग सुनते हैं कि इतना बर्फ, हम लोग तो ठंड हवाएं चलती हैं तब भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इतने बर्फीली जगह पे भी आप कैसे रहते हैं, तो ये एक कल्पना हो जाती है हमारे लिए कि हाउ द थिंग्स वर्किंग। तो बहुत बहुत स्वागत है विकास राव सर,
1: थैंक यू भाई साहब।
0: और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आर्मी में जुड़ने का शुरुआती दौर की, क्या आपको पहले से ही पसंद था आर्मी में जाने का, या कुछ ऐसा स्टोरी बना कि आप इसमें ज्वाइन हुए, थोड़ा सा बताइए। जी
1: भाई साहब, सबसे पहले तो मैं शिव बाबा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप सभी
0: जी
1: से इस प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिला, और ये
0: जी
1: मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि इतने श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर जो कि रेडियो मधुबन, ये अपनी ऐसी एक पावन भूमि पर है, और वहाँ से आप हमें लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और फिर इस कार्यक्रम के द्वारा सभी इसको जोड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वंडरफुल फीलिंग आ रही है। और ब्रजभूषण भाई साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा, इतना अच्छा गीत दिल से और बहुत प्यार और जज्बे से आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। रमेश भाई, आपने जैसा पूछा, मेरे फादर भी
0: जी
1: आर्मी में थे और मैं एक पूरी तरह से आर्मी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता जी के
0: जी
1: तो तरफ से सभी गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, और पिछले 5 पुश्तों से सभी मतलब मेरे,
0: अरे
1: हाँ, आर्मी में थे। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी फौज के हैं, तो बचपन से हमने जो भी माहौल देखा वो फौज का ही माहौल देखा, यूनिफॉर्म का माहौल देखा घर में, जब से हो संभाला। तो
0: जी
1: इसके अलावा कुछ और भी चीज जीवन में होती है वो कभी सोचा नहीं था, हमेशा से यही एक मन में था कि बनना है तो बस यही बनना है।
0: बिल्कुल
1: और लेकिन बहुत सी चीजें आती है जीवन में कि आपको अगर एज एन ऑफिसर अगर ज्वाइन करना है फोर्सेस को, डेफिनेटली फिर आपके अंदर वो सारी काबिलियत भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर का जो सिलेक्शन होता है वो अपने आप में एक बहुत ही नवीनता के साथ किया जाता है, भले ही ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है ऑफिस के सिलेक्शन की, क्योंकि ऑफिसर मतलब कोई ये नॉर्मल ऑफिसर की बात नहीं है, ये एक ऐसे संस्था का ऑफिसर की बात है जहाँ हमें मालूम है पहले दिन से कि हमें बलिदान देना पड़ेगा और लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा देश पर कुर्बान जाने के लिए, तो ये कोई आम ऑफिसर की बात नहीं है। हालांकि आज के समय में, आज के परिवेश में देखें तो आज के परिवेश में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि आज ऑफिसर मतलब लोग सोचते हैं 100 फिकर, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें हैं, भले एक उसके साथ बहुत अच्छा एक मतलब नाम जुड़ा हुआ है, एक शोहरत है, एक अपने आप में एक स्थान की महत्व है, लेकिन फिर भी लोग आज जिस तरह से करते हैं काम, बहुत स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं, जो कि थोड़ा सा वो लगता है कि आज हमारी ट्रेनिंग में कुछ लैकिंग है। बट यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगा इस चीज को रमेश भाई जी, कि जो मैंने इस संस्था में देखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में, वो एकदम डिटो हम आर्मी के हिसाब से ही चलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये जो संस्था है आर्मी के हिसाब से चलती है, या बोलो कि आर्मी इस संस्था के हिसाब से चलती है, कुछ वंडरफुल कनेक्शन है इस संस्था में और आर्मी में, और यही चीज है जो कि मुझे इसने आकर्षित किया पहले आर्मी की तरफ बचपन से, और जब मैं फौज में आया
0: जी
1: और जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तब मैं इस संस्था की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है दोनों संस्थाओं में।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपके 5 जो है पीढ़ियाँ इसी आर्मी में ही अपनी सेवा दे रहे हैं, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। गोरखा रेजिमेंट में तो बहुत बहुत साधुवाद आपको कि अपने बारे में सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि भाई अलग अलग जगह पे आपका रहना हुआ है, लेकिन आपको एम्यूनिशन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एम्यूनिशन स्पेशलिस्ट क्या है।
1: रमेश भाई, जैसे हम लोग अपना सारा जो देश का जो साजो सामान होता है, लड़ाई का साजो सामान, उसमें खास जो एक होता है शस्त्र, हाँ, अस्त्र शस्त्र
0: जी
1: जो भी हैं हमारे देश के, उनका
0: बिल्कुल
1: भंडारण, उनका साजो मतलब पूरा
0: ओके ओके
1: रखना, उनका रख रखाव, उनको पहले तो जहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं वहां से लेके आकर रखना, और फिर उनको ठीक से हिफाजत से रखना जिससे कि वो स्टोरेज के दौरान अच्छे कंडीशन में रहें, और फिर उनको जब भी जरूरत पड़ती है हमारे फील्ड फोर्सेस की, तब उनको उनको देना एकदम सुचारू तरीका होता है इसका, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से दिया जाता है। और फिर जब मान लो वो उसमें कोई कमी आ जाती, कोई खराबी आ जाती है, तो जाकर उनको रिपेयर भी करना, ये भी हमारा काम आता है।
0: अच्छा।
1: और साथ साथ अगर खराबी हो जाती है और रिपेयर होने के काबिल नहीं है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना, मतलब उसको फिर खत्म करना उस सेफ ढंग से, तो ये भी हमारा कार्य है। तो इस हिसाब से फिर हमने कोर्सेज किए हैं जो कि हमारे संस्थान है उसमें कराए जाते हैं, तो वो कोर्सेज करके ये एम्यूनिशन स्पेशलिस्ट का हमें ये मिलता है, औहदा मिलता है, और हम इस कार्य को करते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को सुनते ज़रूर हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता, तो आप ये आपने बताया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो आपने अगर अपने पूरे यात्रा के दौरान आर्मी सर्विस 25 साल आपने किया है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो युद्ध का समय रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें शेयर किया है तो और अच्छा लगे। जी
1: भाई जी, मतलब मैंने पूरे सर्विस में के दौरान जो मेरा सबसे अच्छा जो टेन्योर रहा है वो लद्दाख और लेह के इलाके में ही रहा है। हाँ जी, अच्छा। लेह लद्दाख में। और मैं जो कह सकते हैं आप जो ऑपरेशनल फोर्स में, मतलब मैं जो रूप से रहा हूँ, तो मेरा लद्दाख में ही जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर रहना हुआ, और ऑपरेशनल रूप से मैं उसमें उस समय वहाँ पर था, एकदम बॉर्डर पे थे हम, जहाँ पर सामने ही हमारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ की फोर्सेस तैनात थी। और कई बार ऐसे मौके आए कि जहाँ पर हमें उनके, मतलब उनके जो ऑब्जर्वेशन का इलाका है, जहाँ उनको सीधी रूप से हम दिख रहे हैं, हम हरकत कर रहे हैं उस लाइन पर, जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर फायर कर सकता है, लेकिन मेरा कुछ कह सकते हैं कि कुछ परमात्मा से कनेक्शन ऐसा था कि मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ हमेशा शांति ही रही है, कभी कोई अशांत वातावरण या माहौल कभी हुआ ही नहीं। चाहे अपने मतलब जितना भी मेरा एंटायर 25 इयर्स का जो रहा है, वो कभी मेरे को ऐसा मौका नहीं लगा कि कभी ऐसे एक्टिवली हमें जंग में उतरना पड़ा हो। बाकी क्योंकि डेफिनेटली फौज में हमारा जो मेन होता है करियर में, हमें कई बार जाकर ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है, मैं ऐसे स्थानों पर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि शायद परमात्मा से कुछ कनेक्शन ऐसा है कि जहां पर भी मैं रहा हूँ हमेशा वहां भले ही ऑपरेशनल माहौल था, वहां पर माहौल था जहां पे काउंटर इंसर्जेंसी है, उग्रवाद है, लेकिन मैं जहां भी रहा हूँ कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि किसी के साथ कोई हमें, मतलब मेरे को आवाज भी ऊंची करके बात करने की जरूरत पड़ी हो। तो ये मैं कह सकता हूँ भगवान का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी भी अपनी आवाज ज्यादा ऊंची करकर सिचुएशन में। तो जहाँ फौज का अगर हम तरीका सोचे कि मेरे को अपने हथियारों के साथ उतरने की जरूरत पड़ी, वैसा कभी ऐसा मौका नहीं आया। जरूर हमने जब पेट्रोलिंग की है, एकदम बॉर्डर के इलाकों में गए हैं, सारा साजो सामान होता था, हमने अपना अपने गले में टांग के अपना हथियार लेकर चलते थे, उसमें सारे मतलब जितने भी गोलियां होती थी वो सारी मैगजीन में भरी रहती थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया। बहुत शांत तरीके से मेरा पूरा सर्विस लाइफ हुआ है, और बहुत अपने आप में एक ये अचीवमेंट भी रहा है, मेरे को कभी किसी के ऊपर कोई ना हाथ, मतलब कोई हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, ना हाथ, ना कभी आवाज ऊंची करने की जरूरत पड़ी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और लकी है आप इस मामले में, और जहाँ भी आप रहे शांति का माहौल रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो आप रहे हैं, तो वहाँ का जो मौसम है वो किस तरह का रहता है, और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा बताइए।
1: भाई जी, सियाचिन ग्लेशियर जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का एक ऐसी जगह है जो अपने आप में बहुत करीब है कुदरत के, जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, बहुत ठंड है वहाँ, -30 -40 डिग्रीज भी होता है, ऐसे इलाके हैं वहाँ पे हवाएं इतनी सर्द हैं और इतनी तेज चलती हैं कि उस हवाओं की तेजी की वजह से जो गर्मी मतलब ठंड का लेवल है वो और ज्यादा माइनस में चला जाता है, उसे विंड चिल फैक्टर कहते हैं, मतलब अगर हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो। वहाँ पर -30-35 के टेम्परेचर्स रहते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो वही सारी बर्फ बहुत तेजी से पिघलती भी है, तो उसके अलग उसके मतलब हादसा होने के चांसेस हो जाते हैं कि उसकी वजह से एवलांचेस आते हैं, जो कि कहते हैं कि पूरे बर्फ का पहाड़ खिसक जाता है नीचे, और जिसकी वजह से एक बार जो उसमें चपेट में आता है तो बहुत ही रेयर है कि कभी कोई बच पाता है। हाँ, तो वो मतलब वो गर्मी के डेंजर्स हैं, सर्दी के डेंजर्स हैं कि अपने आप में मौसम इतना सर्द है और माइनस में टेम्परेचर्स हैं कि वहाँ एक तो भूख बिल्कुल मर जाती है, खाने को बिल्कुल इच्छा नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो शरीर की अपने आप में जो बोलते हैं जो शक्ति है या बोलो कार्य क्षमता है वो घट जाती है काफी हद तक। लेकिन मनुष्य का जो ये शरीर है और इसको जो चलाने वाली शक्ति है, मतलब हम सभी आत्माएं, वो इतने वंडरफुल हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम अगर अपने को ध्यान रखें, अपना पूरे ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि हम उस परिस्थिति में डील कर सकते हैं और बहुत खुशी से। और कुदरती ये मतलब मैं बहुत शुरू से ही मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिस करता था, तो मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं खुश रहता था और मेरे आसपास भी लोग खुश रहते थे, और कभी ऐसा माहौल नहीं, मतलब समय नहीं आया कि कोई हमें तनाव की जरूरत पड़े। जीवन में ऐसा नहीं था कि तनाव वाली परिस्थितियां नहीं आई, लेकिन जो हमने सीखा है उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। खासतौर पर मैं इस बारे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, जो ये हमारी इतनी वंडरफुल संस्था है, इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट मानता हूँ कि मेरे जीवन को बहुत स्मूथली 25 ईयर्स जो मेरे आर्मी में रहे हैं वो उसमें इस संस्था का बहुत बड़ा हाथ है, परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुधीर सिरसाट जी, बदलापुर से आपके लिए ओम शांति बाय हैंड पिंक वेविंग करके मैसेज किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी याद करने के लिए। अच्छा, आप जैसे कि हम लोग आर्मी की बात करते हैं और वहाँ पर रहने की बात करते हैं, तो एक लाइफस्टाइल अपना जो है दिनचर्या है, तो मैं चाहूँगा कि आपका डेली रूटीन का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है वो थोड़ा सा एक बार बताइए। खास आप ये सियाचिन ग्लेशियर में किस तरह का रूटीन होता है, क्या जनरल रूटीन जैसे वो रेगुलर सब जगह होता है वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि मौसम के हिसाब से फिर कुछ बदलाव भी किए जाते हैं?
1: भाई साहब, जो हमारा रूटीन होता है आर्मी में, वैसे सब जगह रूटीन बहुत अर्ली टाइम से शुरू होता है। जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो हमारा रूटीन तो तकरीबन सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। हमें सुबह 3 बजे से उठ के फ्रेश होकर फिर अपने सारे काम करके तैयार होके पीटी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, और उसके बाद बाकी सारी हमारी जो पूरी ट्रेनिंग का रूटीन दिन भर चलता है। फिर आकर वापस आकर नाश्ता किया, नाश्ता करके दोबारा नहा के यूनिफॉर्म पहन के फिर हम वापस ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जब हम कमीशन हो जाते हैं या फौज को एक बाकायदा ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ज्वाइन करते हैं, तब हमारा रूटीन थोड़ा सा, मतलब हमारे लिए, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हमें सवेरे करीब तकरीबन जनरली 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, और अगेन अपने आप जो हमारा सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट करके फिर हम लोग का नॉर्मली फर्स्ट जो परेड होती है हर जगह 6 बजे से शुरू होती है।
0: अच्छा,
1: और 6 बजे शुरू होती है, और अगर हम फील, मतलब ऐसे सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके में है तो वहां पर फिर ये जनरली डिपेंड करता है हमारे पोस्ट कमांडर के ऊपर, जैसे पोस्ट का जो अपना रूटीन होता है। सियाचिन ग्लेशियर में क्योंकि बहुत सीवियर टेम्परेचर्स होते हैं तो वहां हम भले ही सवेरे उठ जाते हैं लेकिन फिर हम वहां उठ के बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर टहल नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, माइनस में होते हैं। तो वहां पर फिर ये है कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं, हम अपना नॉर्मली कोशिश करते हैं अपना रूटीन कंप्लीट करके नहाना धोना अपना जो भी अपना फ्रेश होना वो करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तो कई बार ऐसा जब इतना माइनस में टेम्परेचर्स होता है तो रोज लोग नहा भी नहीं सकते हैं, तो वहां पर नहाना भी एक अपने आप में एक बहुत मतलब दिन होता है कि जिस दिन नहाया जाता है सभी प्रॉपर पानी पे बर्फ पिघला कर पानी होता है, फिर मतलब रूटीन से नहाते हैं सब लोग ना, बारी बारी से नहाते हैं, तो बड़ा वो भी अपने आप में एक दिन होता है। तो वहां तो संडे हो या मंडे सारा दिन ऑपरेशनल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, दुश्मन की गोलाबारी होगी तो हम लोग को फिर बर्फ की गुफाओं के अंदर घुस के बैठना पड़ता है कि भाई बर्फ की जो गुफाएं होती वहां पर हम सेफ रह सकते हैं। हालांकि हमारे जो रहने के स्थान होते हैं वो फाइबर ग्लास हट्स होते हैं लेकिन वो दुश्मन के गोले बारूद से तो के चपेट में आ सकते हैं, उसका खतरा रहता है। तो हमारा रूटीन मतलब हर देखा जाए तो बहुत ही एक्टिव रहता है और बहुत ही वंडरफुल रूटीन होता है, और इसी वजह से हमारी फिटनेस भी आर्मी में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो बोलते हैं सवेरे का साईं, तो जो उठते हैं सवेरे वो तो वैसे भी जनरली फिट ही रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जैसे कि अब ये सारी चीजें तो हम बड़ा वंडर ही आपने बताया पूरा कि माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो फिर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल होती है?
1: भाई जी, प्रोटेक्शन के लिए तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग के पास बहुत अच्छे स्पेशल क्लोथिंग होते हैं, और
0: अच्छा
1: एक एक मैं बात कर रहा हूँ, जब ये 1996-97 के टाइम में मैं वहाँ पे तैनात था, तब भी हमारे पास काफ़ी अच्छे स्वीडन के क्लोथिंग होते थे जो कि हमारे देश निर्यात मतलब आयात करता था, और उसको हम यूज़ करके रहते थे। और वो क्योंकि वो जो ठंडे कंट्रीज हैं वहाँ पर इस तरह के क्लोथिंग बहुत अच्छे से डेवलप हुए, रिसर्च हुए। अब तो इंडिया में भी हमारे बहुत देश में हमारे अपना मेक इन इंडिया के तहत, या बोलो पहले से ही हमारा जो R&D है उसमें डेवलप करके बहुत अच्छे क्लोथिंग बनाए गए जो कि माइनस टेम्परेचर्स में हम रह सकते हैं। और बेसिक अगर आप
0: अच्छा
1: देखा जाए, माइनस टेम्परेचर्स में रहना कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि अगर हम लेयर्स बनाएं तो लेयर्स से हम बहुत सेफ रहते हैं। तो क्योंकि मैं
0: अच्छा
1: लद्दाख में भी रहा हूं तो वहां पे भी -10 तक तो टेम्परेचर जाता ही है लेह लद्दाख में। तो वहां पर भी सिर्फ हम अगर अपने कपड़ों के लेयर्स बनाएं, मतलब जितने हम ज्यादा लेयर में कपड़े पहने, भले ही वो पतले पतले कपड़े हो, लेकिन जितनी ज्यादा लेयरिंग हो तो उतने ज्यादा बीच में एयर के गैप्स आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो काम
0: अच्छा
1: करता है जो ठंड से बचाव का, वो एयर ही है। तो आप
0: ओके okay.
1: अगर लेयर्स पहनेंगे, लेयर्स में क्लोथिंग पहनेंगे, तो वो सबसे अच्छा साधन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका मन शक्तिशाली है तो फिर कैसे भी आप मौसम में रहेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी जो दर्शक मित्र हैं जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। तो आइए मैं फिर से ब्रजभूषण जी को जोड़ना चाहूंगा, और कुछ पूछना
1: यस
0: चाहे तो ब्रजभूषण जी पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक छोटा ब्रेक और एक गीत आपसे मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।
2: जी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से।
0: विकास
2: तो
0: जी से
2: ये एक अच्छी चीज जानने को मिली कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ शांति रहती है, और फॉर्चुनेटली आपने
0: जी
2: जो है ये ज्वाइन की है ब्रह्म कुमारी संस्था को, तो अभी सिविलियन में भी आप शांति स्थापित करेंगे ऐसा मेरे को लगता है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं?
0: बिल्कुल
1: भाई साहब, मैं अभी मध्य प्रदेश जबलपुर, और जबलपुर हमारे देश का केंद्र बिंदु है, आप कह सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ अगर लाइन खींचे तो ये जबलपुर से क्रॉस होती है, और जबलपुर एकदम सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है। और भारत को तो आप जानते हैं, भारत पूरे विश्व का सेंटर है। तो देखा जाए, मैं पूरे विश्व के सेंटर से आपसे बातचीत कर रहा हूँ।
2: वेरी गुड,
1: और विश्व का सेंटर अगर आप कहें तो भगवान का दिल भी है, तो आप कह सकते हैं मैं भगवान के दिल से बात कर रहा हूँ।
2: बिल्कुल। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप जहाँ रहे, मतलब ये इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है कि ऐसे जहाँ पे लड़ाई होना ये तो बहुत मामूली बात है, और बीइंग मतलब एक बड़े पोस्ट पे रह के आदमी बच तो नहीं सकता, बट भगवान की दया से आप महफूज रहे हैं, तो ये बड़ी
0: पच्चीस
2: कृपा है
0: साल
2: भगवान
0: पूरा
2: की,
0: नहीं हुआ
2: बहुत बड़ी बात है ये। तो
1: जी
2: जबलपुर में भी आप कुछ इस तरह का कार्य कर रहे हैं शांति स्थापित करने का,
1: भाई साहब,
2: मतलब
1: एक्चुअली मैं जब इस संस्था में जुड़ा हूँ, 1999 की बात है जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। और कारगिल युद्ध भी, अब आप देखिए, मैं आपको अपना ये जो अनुभव शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात निकाली तो मेरे को ध्यान आया इस चीज का, कि 1996 में हम ग्लेशियर में थे, और वहां 97-98 तक रहे हम सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख के इलाके में। फिर वहां से हम नीचे आ गए। जब हम नीचे आ रहे थे तब कारगिल की छुटपुट घटनाएं शुरू हो चुकी थी। तब तक वहां खटपट शुरू हो गई थी, दुश्मनों ने वो ऊपर की चौकियां कब्जा वब्जा करना शुरू कर दिया था। उस समय पूरी तरह से ये चीज खुलासा हुआ नहीं था, क्योंकि ये बहुत गुप्त रीति से कर रहे थे। तो जब हम कारगिल से वापस निकल भी रहे थे तब हमारे कॉन्वॉय के ऊपर उन्होंने गोलाबारी भी की थी, लेकिन हम लोग तो वेट किया, जब अंधेरा हो गया उसके बाद गाड़ियों को छोड़ा गया, और हम लोग जब अपने नीचे मेरठ पहुंच गए जो हमारा स्पीस लोकेशन था, और वहां जब पहुंचे हैं तब तक ये कारगिल की छुटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी। आपको ध्यान होगा 99 मई में ये कारगिल वॉर का फर्स्ट जो घटनाएं जो सबके ध्यान में आई, जब वो पेट्रोल को, जो कैप्टन हनीफुद्दीन के पेट्रोल को बहुत नुकसान पहुंचाया था उनके साथ, वो बर्बरता पूर्वक जिस तरह के कार्य हुए थे। उसके बाद जून 1999 में ये कारगिल युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका था, और मेरी यूनिट पूरी तरह से मोबिलाइज होके वॉर के लिए जा रही थी, और मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिल गया कि मेरे को अब अपने नई यूनिट में जाना है, और मेरी नई यूनिट मुंबई में थी। तो आप देखिए, मेरी यूनिट जा रही थी वॉर के लिए और मैं जा रहा था मुंबई के लिए। हाँ, और मुंबई जाते ही आप देखो, जब वॉर पीक पे था तब मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की दो बहनें मेरे ऑफिस में आई, और मैं तो अपने, हम तो जानते भी नहीं थे ये कोई इस तरह की कोई संस्था भी होती है, और वो उन्होंने आकर मुझे थोड़ा सा पूछा कि भाई भाई साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ये जबरदस्ती आके टाइम वेस्ट करेंगे, और हम लोग तो क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में थे पूरे टाइम, भाई देश में लड़ाई लगी हुई और हमारा सारा काम उसमें बाधित होगा। लेकिन बहनों से मैंने पूछा ऐसे ही थोड़ा सा कड़क अंदाज में, क्योंकि पहले इससे पहले मैं ऐसा नहीं था जैसा अभी आपको दिख रहा हूँ। तो मैंने बोला भी क्यों राखी बांधना चाहते हैं, तो बहन ने बड़े प्यार से बोला कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, लेकिन हमारा ये विश्वास है हम यहाँ अपने फौजी भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहनों से मिलकर भी बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा था। तो मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए और मुझे ये बताइए कैसे ये मुंबई से कारगिल 3000 किलोमीटर दूर है, ये कैसे दिल की दुआ जाती है। और मैंने तो थोड़ा उनकी मतलब ना खिंचाई के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो बहन सामने बैठ के मुस्कुराने लगी और बोलती है मेरा नाम पढ़ा यहाँ लिखा हुआ था, बोलती है विकास भाई आप भगवान को मानते हैं। मैंने कहा हाँ बहन जी बहुत मानता हूँ मैं भगवान को। बोलती है भाई जी आप भगवान को याद करते हैं। मैंने बोला अरे हम फौज में हमें बहुत याद करना पड़ता है भगवान को, कई बार ऐसे दिन भर में हमारे ऐसे सिचुएशन आती है कि हमें भगवान को याद करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा भाई साहब मैं सोच में पड़ गया, उन्होंने बोला क्या भगवान को जानते हैं। मैंने बोला नहीं बहन जी इतनी जानकारी नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन मैं मानता बहुत दिल से हूँ। चौथा सवाल पूछा मैं एकदम जैसे बोलते हैं ना जमीन पे आ गया अपने लेवल पे आ गया। उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे कैसे याद करेंगे भाई। तो उन्होंने बोला बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हैं बताइए। और भाई साहब मैं सचमुच मैंने ऐसे किया हाथ, मैंने बोला बहन जी आप ही बता दीजिए मैं क्या करता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम। बहन ने बोला मुस्कुराते हुए कि आप भगवान से फरियाद करते हैं, और याद करना और फरियाद करना में जमीन आसमान का फर्क है। और उस दिन मेरे को समझ में आ गया ये बात कि सचमुच हम तो एक भिखारी की तरह मांग ही रहे भगवान से। और बहन ने बोला कि अगर आपको मतलब अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमारी संस्था में आइए। और मुझे अंदर से बहुत उत्सुकता हुई उनसे मिलकर क्योंकि अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला बहन जी आप ये बताइए कि आप क्या सिखाते हैं। बहन ने बोला हम राजयोग सिखाते हैं, आपको अगर सीखना है तो आइए। और मतलब आज से करीब 23-24 साल पहले जब मैंने ये शब्द सुना था राजयोग, मुझे लगा ये रामदेव बाबा की तरह फूंकना वूकना सिखाएंगे, कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह सिखाएंगे। और मुझे शुरू से ही बहुत शौक था फिटनेस का, तो मैं उसी दिन शाम को बाकायदा ट्रैक सूट पहन के सीखने चला गया सोच के कि भाई वहां ऐसा कुछ होगा। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई भाई साहब। पहले दिन ही जाकर जब मुझे पहले दिन जो चैप्टर था वो सुनने को मिला आत्मज्ञान, मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि मैं जहां आया हूं यहां मैं एकदम सही जगह पहुंचा हूं और सही समय पे पहुंचा हूं। जरूर दिल में लगता था कि काश ये नॉलेज मुझे पहले मिल जाती जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, मेरा इतना टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया होता, टाइम एनर्जी बहुत कुछ वेस्ट किया हमने। लेकिन चलो भगवान तो कहते हैं कि जब मिला, बोलते हैं जैसे कहावत भी है ना जब जागो तभी सवेरा, तो ये जागने का समय है, जागरण दुनिया में लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, मौका मिला मुझे जानने का। तो इस तरह से इस संस्था में जुड़े और जहां गए भाई साहब बिकॉज हम संस्था से जुड़े रहे तो हमेशा एक जैसे छत्र छाया होती है परमात्मा की वैसी थी। तो मतलब सिचुएशंस आती थी बहुत सारी कठिन मुश्किलें आती थी लेकिन अपने आप थोड़े दिन में हल हो जाती थी, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता था। कभी कभी हम चिंतित भी हो जाते थे, ऐसा नहीं कि हमने कभी चिंता नहीं की, चिंतित भी होते थे लेकिन भगवान है वो सबकी चिंताएं दूर करने वाला, उसने सब ठीक कर दिया।
2: दो युग हो गए आपको ये संस्था ज्वाइन किए, तो आप तो एक बेसिकली भी आप के ऊपर भगवान की कृपा थी और एक ये एडिशनल और कृपा हो गई। तो
1: जी अब मैं जहाँ पे हूँ, अब मैंने एक्चुअली ये रिटायरमेंट भी भाई साहब इसीलिए लिया था जब कोविड का फर्स्ट फेज हो चुका था, काफी लोगों का मतलब लोगों ने शरीर छोड़ दिया था, बहुत माहौल ऐसा था तब। मतलब दोनों ही मतलब मैं और मेरी जो युगल हैं वाइफ हैं, हम दोनों के दिल से ही आया कि अब समय इशारा दे रहा है, परमात्मा भी इशारा दे रहे हैं कि अब हमें जो ये सेवा है यहीं पर रोक कर अब हमें ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए। तो तब मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि अब मैं सेवानिवृत्त के लिए मैं अप्लाई करूंगा। और भारत सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस चीज को समझा और मुझे सेवानिवृत्ति के लिए परमिशन दिया, क्योंकि हम लोग तो भाई हमारा प्रॉपर मतलब देश के साथ वो है हमारा करार रहता है, तो सरकार ने छोड़ा, उसके लिए मैं सरकार का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा मेरी इस जरूरत को। और फिर आज तो हम जहाँ पर हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत घर के पास में हमारा सेंटर है जहां हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज के साथ रेगुलरली कार्यक्रम करते हैं। और बहुत अच्छी एक गुड न्यूज भी मैं आपको देना चाहूँगा कि 28 मई को स्वयं हमारी शिवानी दीदी यहाँ जबलपुर में आ रही है हमारे पास। हाँ, और बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं उनकी, और मैं समझता हूँ लाखों लोगों को फायदा होगा जब वो यहाँ आएंगी। तो ये परमात्मा का बहुत अच्छा एक मौका है। एक्चुअली बोलते हैं जब मौके पे डिसीजन लो तो वो हमेशा मौका भी मदद देता है, वो जो समय, और दूसरा परमात्मा की मदद तो हमें मिलती ही है हर चीज में।
2: सिस्टर शिवानी का तो मैं भी बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपसे एक चीज मेरे को और सीखने मिली कि लेयर से अगर कपड़े पहने जाए
1: बिल्कुल
2: तो ठंड कम लगेगी। ये एक बाइट मेरे को मिला है आपसे। तो देखिए, मैं कुछ आपके मनोरंजन के लिए थोड़ा लीक से हटकर एक गाना आपको सुनाता हूँ। होप यू विल लाइक इट।
3: जाने बहार हुस्ने तेरा बेमिसाल है,

0: जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है।
1: क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत खूब।
0: बहुत
1: अगर मैं इसमें
0: बढ़िया
1: एक लाइन जोड़ सकूं कि जो आपने जैसे पहला गीत गाया था और दूसरा गीत, पहला गीत जो हमारे वतन की याद दिलाता है, तो ज्ञान में मैंने यही सीखा, जब परमात्मा बताते हैं तो हमारा असली वतन हम सभी आत्माओं का तो परम धाम है, मूल वतन है, तो वहां की जो शांति है वो हम सबको आकर्षित करती है। और दूसरा जो गीत आपने गाया कि बेमिसाल है, हाँ, तो वो भी परमात्मा का ही है, बोलते ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जो सबसे खूबसूरत एक्चुअली इस पूरे विश्व में या बोलो पूरी कायनात में जो है, वो परमात्मा शिव निराकार से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और वो फिर जिसको बनाते हैं, वो नंबर जो वन है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसका कितना बेमिसाल आप कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा गीत भाई साहब, बहुत अच्छा लगा।
0: वेरी
1: आगे रमेश भाई
0: नाइस।
1: साहब।
0: चलिए, श्याम चंद्र जी भी याद कर रहे हैं आपको, ओम शांति लिख के भेजा है,
1: ओम
0: धन्यवाद शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि बातचीत हो रही है, रूहानियत की बातें चल रही हैं, और मैं चाहूँगा कि एक ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ पर हमें जो है जीवन में ज्ञान मिल गया तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी मुश्किलें आती भी है तो वो हमें समझ आती हैं कि इसका हल है या फिर हम उसको समझ लेते हैं।
1: जी
0: जी, जब
1: जी
0: अज्ञान काल में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई होगी, सिचुएशन आई होगी, तो कैसे अपने आप को आप रिलैक्स रखते थे, टेंशन रिलीज करते थे अज्ञान काल में, वो थोड़ा सा बताइए।
1: भाई जी, एक्चुअली अज्ञान काल की बात करें तो मैं वैसे ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करता नहीं था। नॉर्मली मेरे को सिर्फ एग्जाम्स के टाइम में बहुत मेहनत करता था, यहाँ तक कि मैं क्योंकि बहुत अर्ली एज में मेरी जो माता जी हैं वो बहुत उनके मैं करीब रहा हूँ, मुझे सवेरे उठा देती थी 3-4 बजे और मैं पढ़ाई करता था, लेकिन वो सिर्फ मैं एग्जाम्स के दौरान ही करता था। और पहले का जो समय था, जो पढ़ाई का तरीका था, वो वैसे ही था, पर्याप्त था उतना पढ़ाई, लेकिन वो मेरे अंदर एक शिद्दत थी। तो मैं बाद में जैसे हम बोलते ना अपने युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो और भी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजों में हमारा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ध्यान जाता है। और उस समय मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैगजीन में, और उसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे सीखने को मिली, वो ये ली थी कि जब भी हम किसी मतलब प्रॉब्लम के सामने आते हैं और हम मुस्कुराते हैं, तो हमारा ये जो यहाँ पर ग्लैंड है, ये ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है,
0: जी
1: वहाँ
0: जी
1: वो बहुत ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है हमारे पूरे जिस्म में जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं। और जब भी हम किसी समस्या में होते हैं और हम उस समस्या में उलझ जाते हैं और खुद परेशान होते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तब यही पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि है हमारे ही कल्याण के लिए, ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करती है हमारे शरीर में पूरे खून के माध्यम से कि तब हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचता है। तो जो स्ट्रेस है, आज लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या एंग्जाइटी में आते हैं, बहुत ऐसी नेगेटिव टेंडेंसीज में, इसके लिए मैंने जो शुरू से वो जो पढ़ लिया था और कुछ कुदरती भगवान ने वो दिया है कि कोई चीज मेरे लिए अच्छी है, फिर मैं उसे पूरी तरह से करता हूँ, मैं उसमें फिर कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, तो मुझे ये
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा। तो कभी भी कोई सिचुएशन आती थी जहां मुझे बहुत मुश्किल होती थी तो मैं मुस्कुराने लगता था, वो मुस्कुराता था तो मेरी वो हल्का हो जाता था, मतलब ना भार हल्का हो जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था और मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मैंने इस चीज को
0: हाँ
1: समझ लिया था, पिट्यूटरी ग्रंथि काम करती है और मैं रिलैक्स रहूंगा। तो कई बार ऐसा हुआ, मैं 26-26 घंटे की जर्नी करता था और मैं एक सूटकेस के ऊपर बैठता था और पूरी जर्नी
0: हाँ
1: मैं 26 घंटे, मतलब लखनऊ से मैं चल के मुंबई पहुंचता था और सूटकेस के ऊपर
0: बिल्कुल
1: और जनरल डब्बे में ट्रेवल करता था, तो बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन मैं वहां सबसे पहले जाके मुस्कुराता था। तो क्या होता था कि पहले तो मैं रिलैक्स हो जाता था, मेरे आसपास भी रिलैक्स हो जाते थे, तो पहले जो खड़े सूटकेस पे बैठता था उतनी जगह मिल जाती थी उसको नीचे बिठा के, फिर उस पे मतलब लिटा के उस पे बैठता था मैं, इतनी जगह मिल जाती थी। तो मैंने ये देखा, ये मुस्कुराहट मेरे को बहुत फायदा करती थी। जब मैं ट्रेनिंग में गया तो यही मेरे को काम आई, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता था, अब ट्रेनिंग में हमारे सीनियर्स पकड़ते हैं तो वो लोग हर छोटी से छोटी गलती पर हमें चेक करेंगे और पनिशमेंट देते हैं। तो मैं
0: बिल्कुल
1: ट्रेनिंग में कई बार गलतियां तो हम सब करते ही हैं, तो गलतियां करता भी था, तो मुझे पकड़ते थे वो और मैं मुस्कुरा देता था, और वो मुस्कुराहट पे पता नहीं क्या होता था, वो बोलते थे यार यू गेट लॉस्ट, मेरे सामने गायब हो जा तू बस। तो मैं पनिशमेंट से बच जाता था। तो ऐसे करते करते मतलब ट्रेनिंग भी हो गई, फिर उसके बाद यूनिट्स में भी जाते थे, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं स्माइल कर देता था। तो मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे तो उन्होंने तो यूनिट्स में मेरा नाम भी रख दिया था, किसी यूनिट में मेरे को कहते थे स्माइलिंग बेबी जब मैं यंग ऑफिसर किसी में हंसमुख नाम रख दिया किसी में। लेकिन ये चीज जब मैंने राजयोग सीखा तब मुझे पता चला ये जो बाहरी रूप से हम मुस्कुराते हैं कई बार हम दूसरों को ऑफेंड भी कर देते हैं, मतलब उनको खराब भी लग जाता है भाई कि मैं इतना सीरियसली कोई चीज समझा रहा हूँ और ये मुस्कुरा रहा है, ये मेरी बात को
0: बिल्कुल
1: समझ नहीं रहा है, मतलब ना हल्के से ले रहा है। और फौज में क्या होता है जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कोई आपको सामने से बता रहा है कोई बात, आप बहुत गंभीर स्वरूप में आकर उस चीज को समझो। आप इसको यज्ञ में भी देखते होंगे कई बार, जैसे सामने से कोई बोले और आप ज्यादा गंभीर नहीं है तो सोचते हैं कि शायद किसी इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। तो ये मैंने सीखा
0: बिल्कुल
1: कि एक्चुअली असली जो खुशी है वो अंदर की है, और ये मतलब अंदर से जब आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट रहती है, सबकी दुआएं ले रही है और अपने बोलते ना एक खुशी की अवस्था में, एक आनंद की अवस्था में है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो रहेगा कि आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति में आप बहुत हल्के रहेंगे। परिस्थितियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट हल्के रहेंगे, और आप हल्के रहेंगे तो परमात्मा की जो कनेक्शन है जिसको हम बोलते हैं टचिंग बोलते हैं या और भी तरीके से हम बोलते हैं, तो वो आपको रिसीव
0: बिल्कुल
1: होती रहती है। और साथ साथ अगर हम शांत रहते हैं तो दूसरी आत्माओं की दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती है भाई साहब। तो ये मेरे को मतलब मेरा था तरीका किस तरह से मैं स्ट्रेस या टेंशन को दूर रखता था अपने आप से, अभी भी ऐसे ही रखता हूँ अगर कुछ भी होता है। हाँ जी और बाकी रमेश भाई मैं आज इस प्लेटफॉर्म का एक और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैंने आज का हमने टॉपिक रखा था वो इसलिए मैं
0: अग्निवीर और महावीर।
1: यस अग्निवीर महावीर ये स्पेशली मैंने रमेश भाई सब इसलिए रखा था कि जो आज के समय में आपको पता होगा हमारे देश के जितने भी अग्निवीर हैं, हाँ जितने भी
0: जी
1: हमारे यंग बच्चे हैं जो अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो सब अभी इस समय आप देखिए उनको साथ एक सरकार ने नया वो निकाला है और उसको 4 ईयर्स का है ना शॉर्ट कर दिया है। पहले तो जो भी
0: जी
1: फौज ज्वाइन करता था वो परमानेंट रहता था उसमें, उसको निश्चिंत था कि भाई उसका फ्यूचर सेफ है। अब समय के हिसाब से आजकल जो भी है जो भी हमारे डिसीजंस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण डेफिनेटली समाया हुआ है। तो अब जो है तो आज पहले से ही ट्रेनिंग के दौरान से ही एक मतलब जो हमारे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जिन्हें अग्निवीर कहते हैं, वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं आप कि उस उनके पास भी एक दिल में एक ऐसा भाव है कि अगर मेरा परमानेंट वो हुआ सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि 75% 4 साल के बाद हमें छोड़ जाएंगे और बाकी 25% कंटिन्यू करेंगे एज परमानेंट। तो मेरी उन्हीं के लिए ये मैंने सोचा है कि ये मेरे अग्निवीर नहीं है हमारे देश के, ये वो महावीर हैं जो कि अपने निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे देश की सेवा करेंगे और बहुत खुश रहकर बहुत शांत रहकर बहुत अच्छी सेवा देंगे, जिससे इनको हमारे पूरी देश की जो जनता है वो खासतौर पे इस समय में जो हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं वो सभी इन बच्चों के लिए प्रे करेंगे, उनकी सकुशल ट्रेनिंग और उसके बाद उनके, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं और बाकी हमारे देश की जो फोर्सेस हैं ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर तैनात है, तो वहां पर हमारे इन सभी बच्चों को हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के दुआओं की जरूरत है कि वो बहुत अच्छे से अपना ये 4 साल का टेन्योर करें। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो परमानेंट ही रहें, बहुत अच्छा हो जाए कि वो सभी उनका ये जीवन मतलब ये जो है, और आगे देखते हैं भगवान ने जैसा कह सकते हैं जो भी उनके लिए सोचा हो, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा उनके सबके हित के लिए होगा। तो हम सभी जो खास तौर पे जो हम यज्ञ के हैं वत्स हैं वो उनके लिए हम जरूर मनसा सेवा करें, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे बहुत खास हैं, इनको अग्निवीर नाम ऐसे ही नहीं दिया है, तो ये हमारे महावीर हैं और जरूर इनको परमात्मा की और हम सभी की भी दुआएं मिलेंगी, उसकी वजह से ये वो कार्य कर पाएंगे जिसके लिए परमात्मा ने शायद इनको इस तरह से चुना है। भाई जी वॉइस नहीं आ रहा, सॉरी।
0: दयाराम जी ने याद भेजा है हम सभी को, कर्नल साहब को भी ओम शांति जी भेजा है और बड़े प्यार से याद किया है। आप ब्रह्म कुमारी का प्रेम आपको मधुबन लेकर आया, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, मैं जैसे कि अग्निवीर और महावीर की बात चल रही थी, तो उन सभी के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 साल के बाद उन्हें परमानेंटली जो है जिस तरह से रेगुलर चीज़ें बनती हैं वैसे बने उनके साथ में, और अग्निवीर इसलिए कहा गया है कि स्पेशल है और इन्होंने 4 साल अपना अगर देश के लिए समर्पित होने के भाव से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा और काफी कुछ सीखेंगे भी 4 साल में। वो सारी चीजें सीखेंगे तो वो देश के लिए तो काम करेंगे ही और साथ ही साथ अपना भी जो है उन्नति करेंगे ही निश्चित तौर पर। ये 4 साल उनके जीवन का एक गोल्डन पीरियड भी हो सकता है या फिर उसके बाद उनका जो है गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला भी हो सकता है, तो दोनों चीजें हैं संभवता। और हम सब देशवासियों की ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ फिर से ब्रजभूषण जी जुड़ गए हैं। ब्रजभूषण जी कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं।
2: कर्नल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो अग्निवीर आए हैं, ये माना कि 4 साल के बाद इसमें 75% जो है वो ऑफ ड्यूटी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि और सिक्योरिटी जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ इनका अपॉइंटमेंट तुरंत हो जाएगा।
1: जी सर, डेफिनेटली नहीं, ये सरकार ने प्रावधान किए हैं कि इनके लिए वैकेंसीज क्रिएट की हैं अलग दूसरे फोर्सेस में, क्योंकि दूसरे फोर्सेस को ये फायदा होगा कि उन्हें भारत सेना के द्वारा ट्रेन किए हुए वेल ट्रेन्ड एक ऐसा एक यूथ मिल जाएगा जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि दूसरे फोर्सेज में भी जो भारत के जो सेना का जो एक जज्बा है, जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका जज्बा दूसरी फोर्सेज में भी वो आ जाएगा। और मैंने ये देखा है भाई साहब, हम लोग सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के साथ हम ब्रह्म कुमारीज में कार्य कर रहे हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से ये सेवाएं दे रही है पूरे भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जो हमारी बाकी फोर्सेज हैं वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल रहेगी, क्योंकि फिर ये एक तरह से पूरे देश को यूनिफाई करने की बात हो गई कि सारे एक ही जगह से ट्रेन होके निकल रहे हैं और बाकी संस्थाओं में भी जाकर वो लोग दोबारा से ट्रेनिंग करके उसका हिस्सा बन जाएंगे, तो अपने आप में एक तरह से एकीकरण हो जाएगा। लेकिन क्या है भाई साहब कि ना, जैसे अगर मान लीजिए मेरे को ही अगर बोल दिया जाए कि भाई आपका कार्यकाल इतने ही समय का है, ठीक है, तो उसमें कुछ नेगेटिव टेंडेंसीज भी होगी कि क्यों ना मैं ये जो 75% है इनके ऊपर किस तरह से बढ़ू, क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, समय ऐसा है कि हर कोई सिर्फ पॉजिटिव रूप से ही नहीं लेगा इस चीज को, दूसरा तरीका भी अपनाएगा, क्योंकि दुनिया में तो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो वो दूसरा तरीका भी अपनाएगा, कैसे मैं 75% के ऊपर चढ़ के मैं आ जाऊं उस 25% में। तो वो चीज को अगर मतलब हम सोचे कि अगर वैसा हो तो उसमें भी फिर एक तरह से नुकसान हो जाएगा, फिर क्या होगा कि संस्था से अच्छे लोग निकल जाएंगे, जो रहेंगे फिर वो कैसे रह जाएंगे, ये आप समझ रहे ना। तो खैर हम इन सब चीजों की डिटेल में ना जाएं, बट हम इनसे इन सब के प्रति दिल से दुआ करें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा देखिए कल्याणकारी शिव पिता है, वो तो हमेशा यही कहते हैं जो हो रहा है उसमें ही कल्याण है, तो अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो मैं तो समझता हूँ डेफिनेटली उसमें कल्याण है, सिर्फ इन बच्चों को हमारे दिल की दुआओं की जरूरत है कि ये वही कार्य करें जो सबके लिए सही है, सबके हित के लिए है, उनके हित के लिए।
2: जी मैं देखिए अभी मैं समझता हूँ कि जैसे जो लोग बहुत से रिटायर भी हो जाते हैं तो उनकी सेवाएं लोग जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं, एमएनसी वाले हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं
1: बहुत अच्छे,
2: क्योंकि उनको मालूम है कि दे आर मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो डिसिप्लिन का एक गुण जो है उनमें रहेगा। तो हम समझिए कि बहुत सारे अग्निवीर अगर आएंगे तो जैसे अब आज आप देख रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी जो है संस्थाएं हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी पे भी होती हैं, तो वो और कहीं से रिक्रूटमेंट करने के बजाय इन लोगों को लेना मेरा ख्याल से ज्यादा बेहतर समझेंगे। और जहां तक देखिए गवर्नमेंट सब लोगों को ये तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा नहीं, लोग प्राइवेट में ही जाएंगे। मान लीजिए अभी 75% का हम अगर आकलन करें तो लोग प्राइवेट में ही जाएंगे, सारे लोग गवर्नमेंट में जाएंगे नहीं
1: जी।
2: तो अगर इनको जो पे स्केल अभी दे रहे हैं या जो आगे के लिए इनका हो रहा है हर साल जो बढ़ रहा है पैसा या जो भी है, लमसम भी पैसे वो लास्ट में शायद दे रहे हैं, तो कुल मिला के ये विन विन सिचुएशन मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से। देखिए नेगेटिव का तो कोई अभी देखिए जैसा भी अभी देखिए जैसे पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिक्स में जैसे होता है कि भाई अगर कोई अच्छा काम करते हैं कि भाई कोई बाहर गए तो एक बोलेगा कि भाई ये अपना देश का संबंध सुधारने गए हैं, दूसरा बोलेगा कि वो मस्ती करने गए हैं। तो ये
1: चलिए भाई साहब बिल्कुल ये इन डिटेल्स में ना जाए हम, तो अच्छा है इस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, जो हो रहा है वैसे तो उसमें कल्याण ही समाया हुआ भाई साहब। बस ये है कि मेरा ये है कि हम सभी उनके लिए अच्छी दुआएं करें कि उनका भला हो, हमारे देश का कल्याण हो, जिसके लिए उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है, उनको स्पेशल नाम दिया गया है, तो वो हमारे सिर्फ अग्निवीर ना हो, अग्निवीर महावीर।
0: बिल्कुल
1: जी रमेश भाई जी,
0: कर्नल साहब बहुत ही अच्छी भावनाएं अपने व्यक्त किया और बहुत अच्छा विषय था और आपके अनुभव सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी देशवासियों के लिए।
1: भाई साहब मैसेज तो मैं अगर आज अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो ये जो समय चल रहा है, इस समय की नजाकत को देखते हुए हमारा ये त्योहार, कल जो त्योहार है होली का, तो परमात्मा में एक ही चीज हमें बताते हैं कि बच्चे आप कौन हो, और जिस दिन हमें वो स्मृति आ जाती है, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जैसे भक्ति में दिखाया गया है कि हनुमान को याद दिलाया गया कि वो कौन है, उसकी शक्तियां कितनी थी, और जैसे ही उसे स्मृति आई वो एक सेकेंड में उड़ गया और अपने जो कार्य करना था उसको कर लाया। वैसे ही हम सबको भी, आप देखिए होली में आज अभी रात को इस समय कई जगह हमारे भी कॉलोनी में आज वो जलाने की चल रही है प्रहलाद को, तो अगर हम इस चीज को समझ जाएं कि हम वो प्रहलाद हैं, हम सभी बच्चे वो आत्माएं प्रहलाद हैं जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कोई वो अपना ही क्यों ना हो, ठीक है, जैसा उस कथा में दिखाया गया, तो हम सभी आत्मा रूप में वो प्रहलाद हैं जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सदा हमारा पिता परमात्मा हमारे साथ है। तो हम जरूर इस समय, इस होली के पावन त्योहार पे इस चीज को समझें कि जो हुआ पास्ट इज पास्ट, हमने पहले जो भी कुछ किया वो बीती तो बीती, उसको छोड़ दें, लेकिन आज से मुझे क्या करना है, आज से मुझे अपने को आत्म स्वरूप में स्थित करके परमात्मा का सच्चा बच्चा बनकर हाँ आगे बढ़ना है, और वो करना है जिसके लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि भगवान ने किसी को भेजा वो व्यर्थ नहीं होगा, अगर उसने भेजा है जो क्रिएटर है तो उसने बहुत सोच समझ कर कुछ बड़े पर्पस के साथ हर आत्मा को इस धरा पर उतारा है, तो हम अपने उस पर्पस को ढूंढे अपने जीवन को, और जिस दिन हमने अपने उस पर्पस को ढूंढ लिया तो वो प्राप्त भी हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है और वो सदा साथ है। तो ये होली के लिए कहो या बोलो जीवन के लिए मैसेज यही है कि जरूर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस संस्था में आए, सत्य ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि परमात्मा जो सच सुनाने वाला है, सच खंड की स्थापना करने वाला है, अब वो आ गया है और वो बहुत क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि बच्चे आओ और अपना जन्म से अधिकार प्राप्त करो, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई भक्त नहीं है, हम उस परम शक्ति के बच्चे हैं और हमारा जो जन्म से अधिकार है वो है सुख शांति समृद्धि जो सदा की है, कभी कभी की नहीं, ठीक है ना, और वो हम सबको देने आया है, और जरूर अपना समय सफल करें हर जगह। आज पूरे विश्व में मेरे हिसाब से तो 156 देशों से ज्यादा देश हैं जहां पर हमारे सेंटर्स हैं, तो जरूर अपने नियरेस्ट सेंटर में जाएं, इस ज्ञान को प्राप्त करें, और मैं आपको अपनी तरफ से मैं मतलब भगवान की गारंटी कर सकता हूं कि आपको वो सुख शांति मिलेगी जो आज तक आप खोजते आ रहे हैं, और वो शक्ति का अनुभव करेंगे जो आप चाहते हैं। एक्चुअली में हर इंसान चाहता है कि मेरे अंदर पावर्स हो, आज इसलिए वो जो दिखाते हैं देश में सब चाहते हैं कोई ऐसा पावर पोजिशन ग्रैब करना चाहते हैं, वो हमें ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान ने हमें सबको भरपूर दी हुई है। तो जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो अपनी महसूसता की शक्ति है, उसको लगाते हुए इस राह में आगे बढ़े तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप वो कर पाएंगे जिसके लिए भगवान ने हमें चुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई साहब का भी, स्पेशली थैंक सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम।
0: चलिए कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, और जय हिंद आपको फिर से एक बार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू ब्रजभूषण जी, दो प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा कन्वर्सेशन, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक मित्र जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को अगर कर्नल साहब की बातें अच्छी लगी हो तो जरूर उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को ऊंचा बनाए, श्रेष्ठ बनाए, सुंदर बनाए और देश के काम में अपने जीवन को लगाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति
2: ओम शांति।
3: हेलो, हाँ हाँ पहुंचा दूंगा, आप समय से पहुंचा दूंगा।
4: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुंचा दोगे हैं? कहाँ पहुंचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
5: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, कल मुझसे किसी ने एक पहेली पूछी लेकिन मैं उस पहेली को बूझ ही नहीं पाया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ मीना के पास। अरे भाई मीना आज बाजार से पहेलियों की किताब जो लेके आ रही है वो देखो, चलो जल्दी से वहीं चलते हैं।
1: नमस्ते शोभा काकी।
2: अरे मीना बेटी खुश रहो, कुछ लेने आई थी क्या बाजार में?
1: जी काकी, स्कूल के लिए ये किताब।
2: पहेलियों की किताब? तुम्हारे स्कूल में पहेलियों का भी कोई विषय है क्या?
1: काकी, हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये सब मजेदार चीजें भी होती हैं।
2: अच्छा, और क्या क्या होता है?
1: हाँ, जैसे अभी पिछले सोमवार को ही हमारी बहन जी ने हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने एक कविता पढ़ के सुनाने को कहा था, ताकि हर बच्चे में सबके सामने बात करने का आत्मविश्वास आए। और कल हम सीखेंगे पहेलियाँ सुलझाना।
3: पहेलियाँ सुलझाना, दिमाग लगाना।
2: पता है मीना, मैंने एक बहुत सुंदर मटका खरीदा है।
1: अच्छा, लेकिन मटका है कहाँ काकी?
2: अरे मुझे ये सब्जियाँ खरीदनी थी ना, तो मैंने मटका वो वहाँ उस पेड़ के नीचे रख दिया था। आओ तुम्हें दिखाती हूँ।
0: लेकिन जब शोभा काकी और मीना पेड़ के पास पहुँची तो शोभा काकी हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ उनका मटका टूटा पड़ा था।
2: अरे ये मेरा मटका, ओफो, मेरा मटका किसने तोड़ा?
1: अब क्या करें काकी?
2: अब कर भी क्या सकते हैं मीना बेटी, नुकसान होना था हो गया।
0: और कुछ दिनों के बाद मीना और सुमी अपनी बहन जी के साथ स्कूल से लौट रहे थे।
2: मीना, सुमी, चलो अब जरा ये पहेली बूझ के दिखाओ।
4: तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर?
1: तीन।
4: हाँ, चलो अब ये पहेली बूझो।
2: बहन जी नमस्ते।
4: नमस्ते शोभा बहन, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ बहन जी।
1: नमस्ते शोभा काकी। नमस्ते शोभा काकी।
2: जीते रहो बच्चों।
4: अरे हाँ शोभा बहन, याद आया, मीना बता रही थी कि कुछ दिनों पहले आपका मटका टूट गया था।
2: हाँ बहन जी।
4: लगता है आप अभी तक वो बात नहीं भूली हैं, इसीलिए कुछ उदास।
2: उदास नहीं बहन जी, थोड़ी सी हैरान हूँ।
4: हैरान?
2: हाँ बहन जी, पता नहीं 3-4 दिनों से मेरे घर के सब काम अपने आप ही हो जाते हैं।
4: अपने आप हो जाते हैं? मतलब?
2: हाँ बहन जी, परसों रात को घर के आंगन में मैंने खाली बाल्टी रखी थी, लेकिन सुबह उठ के देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था, और कल दोपहर को जब मैं बाजार से वापस लौटी तो देखा पूरे आंगन में झाड़ू भी लगा हुआ था, और आज सुबह मैंने कुछ कपड़े धोए। इससे पहले कि मैं गीले कपड़ों को तार पे सूखने डालती, मुझे कहीं जाना पड़ गया। पता है जब लौट के आई तो क्या देखा मैंने?
1: क्या देखा काकी?
2: मीना, वो गीले कपड़े तार पे लटके हुए थे।
1: काकी, जरूर कोई चुपचाप आपकी मदद कर रहा है।
2: मदद?
4: मीना ठीक कह रही है शोभा बहन,
2: आप सच मानिए बहन जी, ये सब काम अपने आप ही हो रहे हैं। अगर कोई सच में मेरी मदद कर रहा होता तो मुझे कम से कम दिखाई तो देता।
4: शोभा बहन, जो भी ये काम कर रहा है उसे अच्छी तरह पता है कि आप कब घर से निकलती हैं और कब वापस लौटती हैं। बस पीछे से वो सब काम झट से कर देता है।
2: लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि मेरी मदद करने वाला है कौन?
4: मीना, सुमी, आज सुबह जैसे स्कूल में तुमने कड़ियाँ जोड़ जोड़ के पहेलियों के उत्तर ढूंढे थे, वैसे ही शोभा बहन की भी पहेली हल करने की कोशिश करो, ठीक है?
1: जी बहन जी।
0: शोभा काकी मीना, सुमी और बहन जी को लेके अपने घर के आंगन में पहुंची। वहां तार पे गीले कपड़े अभी भी टंगे हुए थे।
1: सुमी, ये देखो पानी की ये बाल्टी कितनी बड़ी है।
5: हाँ मीना, और ये तार भी कितनी ऊंचाई पे बंधी हुई है।
2: लो, अब भला बाल्टी के बड़ा होने से और तार के ऊंचे बंधे होने से उस मदद करने वाले का पता थोड़े चलेगा।
1: शोभा काकी, इन दोनों चीजों से हमें ये पता चल गया कि आपकी मदद करने वाला कोई बच्चा नहीं बल्कि बड़ा है।
2: बात तो सही है।
3: बात तो सही है, मीना ने जो कही है।
1: चुप मिट्टू शरारती कहीं का। मीना ये देखो, काले रंग का घुंघरू। सुमी, ये तो चांदी का घुंघरू है।
5: लेकिन चांदी

0: भूल गई सुमी, बहन जी ने हमें बताया था कि पानी और हवा लगने से चांदी का रंग काला पड़ जाता है।
1: शाबाश मीना,
2: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जी, अब ये घुंघरू भला क्या बताएगा?
0: शोभा काकी, इस घुंघरू से हमें ये भी पता चल गया है कि जिसने आपकी मदद की है वो एक लड़की है, क्योंकि ये घुंघरू किसी की पायल का है।
2: अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी।
0: काकी, अब तो आप बस ये सोचिए कि आपके घर के आसपास ऐसी कौन सी लड़की है जो चांदी की पायल पहनती है।
2: घर के आसपास? अरे हाँ, तारा।
0: तारा दीदी?
2: हाँ मीना, शोभा बहन चलिए। कहाँ बहन जी? तारा के घर।
3: मीना की बहन जी मीना सुमी और शोभा काकी के साथ तारा के घर गई।
2: तारा बेटी, तो तुम हो जो छुप छुप के मेरे घर के सारे काम कर जाती हो।
4: आपको कैसे पता चला शोभा काकी?
2: तुम्हारी पायल के इस घुंघरू से। तुमने ऐसा क्यों किया तारा?
4: वो मैं
0: मैं बताती हूँ काकी। तारा दीदी, उस दिन बाजार में वो मटका आपसे ही टूटा था ना?
4: हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली मीना?
0: क्योंकि उस दिन एक ऐसा ही घुंघरू उस टूटे हुए मटके के पास भी पड़ा था।
4: शोभा काकी, मुझसे आपका मटका गलती से टूट गया था। मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई, बल्कि मैंने सोचा कि मैं चुपचाप आपके घर का काम करके उस नुकसान की भरपाई कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए काकी।
2: अरे इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं तारा, तुमने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा था मेरा मटका। वैसे तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने का तरीका अनोखा है तारा। मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही थी कि आखिर कौन है जो मेरे घर के सारे काम चुपचाप कर जाता है, बल्कि मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अरे हाँ, धन्यवाद तो मुझे मीना और सुमी को भी करना है जिन्होंने मेरी ये पहेली सुलझा दी।
1: देखा शोभा बहन, बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत सी बातें सीखते हैं। समस्या को समझना, उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, उसके हर पहलू पे विचार करना और फिर सोच समझ के उसका हल निकालना। ऐसे ही अभ्यास करते करते उन्हें समस्या सुलझानी आ जाती है, जिससे आगे जाके वो अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले ले सकते हैं।
2: आप ठीक कह रही हैं बहन जी, अगर मैं भी स्कूल गई होती तो इस पहेली की कड़ियां खुद ही जोड़ पाती।
5: जोड़ पाती, ऐसे ना घबराती।
3: भाई वाह, मानना पड़ेगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, चाहे वो मुश्किल काम की हो या घर की। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता।
0: पढ़ना लिखना तो सिखलाता, जीना भी सिखलाए,
5: स्कूल के बच्चे हर मुश्किल को झट से हल कर जाएं।
3: क्या बात है, इन दोनों की कविता का तो जवाब ही नहीं। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता हुआ गाना।

0: भाई वाह, गाना तो मजेदार था, है ना? अब जल्दी से चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे एक नया खेल। मैं आपको 3-4 कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे उसका सही जवाब बताना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: आज की पहेली है एक मशहूर व्यक्ति के बारे में। पहली कड़ी, इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कोई बता सकता है इनका नाम?
3: समझ गया बहन जी, सही जवाब है अमिताभ बच्चन।
1: अमिताभ बच्चन, वो क्यों दीपू?
3: क्योंकि उनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था।
1: सन 1889 में, यानी कि अब श्री अमिताभ बच्चन 121 साल के हैं।
4: दूसरी कड़ी बताइए ना।
1: रानो, अगली कड़ी है, ये अपनी अचकन पे हमेशा एक गुलाब का फूल लगाते थे।
5: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है कृष्णा, तो सुनो, तीसरी कड़ी, बच्चे प्यार से इनको चाचा कहकर पुकारते थे।
4: मैं समझ गई बहन जी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, छठा पाठ, कबाड़ी वाली, पृष्ठ 60। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दो चित्र बने हैं। बाईं ओर वाले चित्र में कुछ टायर रखे हैं और साथ ही एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। और दाहिनी तरफ एक दूसरे चित्र में एक महिला को बैठे दिखाया गया है। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती है? ये किरण की सच्ची कहानी है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। किरण ने कहा, मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूं। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज्यादा काम आता है। मैं स्कूल में ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? रिक्त स्थान। तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? रिक्त स्थान। किरण ने कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी मां को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मां ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके दो भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। पृष्ठ 61। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। एक चाय की दुकान पर, रिक्त स्थान। और होटल में, रिक्त स्थान। चींटी बोली, अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वो 10 दिन में कितना कमाएगा? रिक्त स्थान। एक महीने में? रिक्त स्थान। तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। किरण ने कहा, मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपए उधार लिए। पता लगाओ उधार क्या है? क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? रिक्त स्थान। कितना उधार लिया गया था? रिक्त स्थान। कितना पैसा वापस किया गया? रिक्त स्थान। हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं।
3: मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा।
4: बाबू ने कहा, लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपए लिए। 6 महीने बाद उसे 360 रुपए लौटाऊंगा।
2: किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? रिक्त स्थान। पृष्ठ पर सबसे नीचे बाईं ओर हरिया का चित्र और दाईं ओर बाबू का चित्र बना है। पृष्ठ 62। यहां पर किरण का चित्र है। किरण ने कहा,
3: लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है।

0: जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। यहां पर एक घर के अंदर का चित्र बना है जहां पर विभिन्न वस्तुएं दिखाई गई हैं, और साथ ही इसके नीचे एक अन्य चित्र बना है जहां पर रिक्शे, बोरियां, पेटियां इत्यादि वस्तुएं दिखाई गई हैं। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूं, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। किरण 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है? एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, इसलिए वो 9 रिक्शों से रिक्त स्थान रुपए कमाएगी। तुम ये कैसे करोगे? छींटा बोला। देखो, मैं इसे इस तरह करूंगा। 9 बार 2 हो तो 18 होता है, इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा। दूसरा चींटा बोला, लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया है। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपए गुणा 10 बराबर 200 रुपए। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपए 200 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान रुपए मिलेंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है? शिक्षकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रेरित करें कि वो अपने ढंग से इसको करें। इस पर भी चर्चा करवाई जा सकती है कि वो उत्तर तक कैसे पहुंचे। इसी पृष्ठ पर सबसे आखिर में 2 चींटों का चित्र बना है, पृष्ठ 63। किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें। अब आप इन्हें स्वयं करके देखें। 2 × 6 बराबर रिक्त स्थान, 20 × 6 बराबर रिक्त स्थान, 2 × 60 बराबर रिक्त स्थान, 3 × 42 बराबर रिक्त स्थान, 4 × 80 बराबर रिक्त स्थान, 4 × 81 बराबर रिक्त स्थान, 9 × 25 बराबर रिक्त स्थान और 31 × 9 बराबर रिक्त स्थान। यहां पर एक चींटी का चित्र है, वो कह रहा है 4 × 80 से 4 × 81 4 अधिक है, क्या ये सही है? यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें किरण खड़ी हुई दिखाई दे रही है और साथ में कुछ अन्य व्यक्ति काम करते दिख रहे हैं। किरण ने कहा, मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूं। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीदकर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूं। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं? किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? यहां पर सबसे नीचे एक चींटे का चित्र बना है, वो कहता है, 1 किलो अखबार 5 रुपए में बिकता है। 30 किलो की कीमत हुई 5 × 30 बराबर 150 रुपए। 31 किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे रिक्त स्थान रुपए। शिक्षकों के लिए निर्देश, ये अभ्यास बच्चों को गुणा करने की अलग अलग विधियों, मानक विधि के अतिरिक्त का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पृष्ठ 64। यहां पर एक रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट, कबाड़, कीमत प्रति किलो 1, बेकार कागज 4 रुपए, 2, अखबार 5 रुपए, 3, लोहा 12 रुपए, 4, पीतल 170 रुपए और 5, प्लास्टिक 10 रुपए। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। क 22 किलो प्लास्टिक, ख 23 किलो बेकार कागज और ग 12 किलो लोहा। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? यहां पर एक चींटी का चित्र है जो कह रहा है,
1: सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे, 600 रुपए से ज्यादा या 600 रुपए से कम?
0: सयानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वो मोबाइल फोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। यहां पर एक चित्र में किरण को फोन पर बात करते दिखाया गया है। आज फिर वो दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। यहां पर सबसे नीचे दो चित्र हैं। बाईं ओर के चित्र में दो ठेले दिखाए गए हैं और कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है। दाहिनी तरफ वाले चित्र में कुछ सामान रखा है। पृष्ठ 65। क दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? यहां पर एक रेट लिस्ट है जिस पर लिखा है, दीनू की रेट लिस्ट, कबाड़ और कीमत प्रति किलो। एक अखबार 6 रुपए, दो लोहा 14 रुपए, तीन पीतल 180 रुपए, चार प्लास्टिक 12 रुपए और पांच बेकार कागज 4 रुपए 50 पैसे। एक किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपए है, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत 63 × 12 रुपए होगी। याद करो, कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। यहां पर एक बॉक्स दिखाया गया है जिसमें दो खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर 60 लिखा है और दूसरे खाने में 3 लिखा है और बाईं तरफ 10 और उसके नीचे 2 लिखा है। आइए गुणा करके देखते हैं। पहले हम 60 को 10 से, उसके बाद 3 को 10 से गुणा करेंगे और फिर 60 को 2 से और 3 को 2 से गुणा करेंगे। आइए पहले 60 को 10 से गुणा करते हैं। 60 × 10 = 600 और 3 × 10 = 30। उसके बाद 60 × 2 = 120 और 3 × 2 = 6। चींटा बोला, 63 × 12 का मतलब हुआ 63 संख्या 12 बार। 12 बार 60 हुआ 720, अतः उत्तर 720 से ज्यादा होगा और 800 से कम होगा। बता सकते हो क्यों? दीनू ने बॉक्स में अंकों को जोड़ा, 600 + 120 + 30 + 6 = 756। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू 756 रुपए देगा। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपए में बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? रिक्त स्थान रुपए। फिर 63 किलो बेचने के बाद वो कितना पैसा कमाएगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 66। किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? रिक्त स्थान। किरण 1 किलो लोहा 12 रुपए में खरीदती है, लेकिन 14 रुपए में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वो कितना पैसा कमाएगी? रिक्त स्थान रुपए। ग 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपए, अतः 152 किलो अखबार की कीमत होगी 6 × 152 रुपए। दीनू ने लिखा,
1: यहां पर भी एक बॉक्स है जिसके तीन खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर लिखा है 100, दूसरे के ऊपर 50 और तीसरे के ऊपर 2 लिखा है और खाने के बाईं तरफ 6 अंकित है। आइए अब हम गुणा करते हैं। अब हम 6 को पहले 100 से, उसके बाद 50 से और सबसे बाद 2 से गुणा करेंगे। तो आइए अब हम गुणा करते हैं। 100 × 6 = 600, 50 × 6 = 300, 2 × 6 = 12। यहां पे एक चींटी का चित्र बना है जो कह रहा है
2: 6 × 100 = 600, इसलिए उत्तर 600 से अधिक होगा। क्या उत्तर 1000 से कम आएगा? तुमने अंदाजा कैसे लगाया?
1: उसने फिर बॉक्स में अंकों को जोड़ा। 600 + 300 + 12 = 912। यहां पर सबसे नीचे दाहिनी तरफ किरण का चित्र है जो सोच रही है,
2: मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपए में खरीदा लेकिन 6 रुपए में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए?
1: इसलिए 152 किलो अखबार के लिए वो किरण को 912 रुपए देगा। घ, दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? रिक्त स्थान। यहां पर एक चींटी का चित्र है। चींटा बोला,
2: पहले उत्तर का अंदाजा लगाओ।
1: पृष्ठ 67। पहले अंदाजा लगाओ फिर गणना करो। क, 37 × 18 = रिक्त स्थान। ख, 45 × 24 = रिक्त स्थान। ग, 69 × 52 = रिक्त स्थान। घ, 77 × 55 = रिक्त स्थान। ळ, 142 × 5 = रिक्त स्थान। च, 382 × 3 = रिक्त स्थान। छ, 2 × 175 = रिक्त स्थान। और ज, 4 × 206 = रिक्त स्थान। अब तुम दिए गए इन रिक्त स्थानों को भरो। मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। उसने उन्हें 841 रुपए दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। यहां पर एक चित्र में कुछ नोट और एक सिक्का दिखाया गया है जिन पर लिखा है 100 रुपए के 6 नोट, 20 रुपए के 7 नोट, 5 रुपए के 8 नोट, 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 6 नोट और 1 रुपए के 4 सिक्के। किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा। यहां पर डायरी का एक पेज का चित्र है जिस पर दाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा है 11 मार्च 2007 और उसके बाद लिखा है, मैंने दिए 841 रुपए, मुझे मिले 600 रुपए जमा 150 रुपए जमा 140 रुपए जमा 60 रुपए जमा 40 रुपए और जमा 4 रुपए, कुल बराबर 994 रुपए। मैंने कमाए 994 रुपए घटा 841 रुपए बराबर 153 रुपए। पृष्ठ 68। उसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपए दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले। यहां पर कुछ नोटों और एक सिक्के का चित्र बना है। ये इस तरह से हैं: 5 रुपए के 28 सिक्के, 100 रुपए के 5 नोट, 50 रुपए का 1 नोट, 10 रुपए के 18 नोट और 20 रुपए के 9 नोट। अब तुम उसकी डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार उसने क्या कमाया। यहां पर भी डायरी का एक पेज दिया गया है। डायरी के इस पेज पर दाहिनी तरफ सबसे ऊपर लिखा है 18 मार्च 2007। अब तुम डायरी के इस पेज पर लिखो कि उसने कितने रुपए कमाए। इसी के साथ छठा पाठ कबाड़ी वाली अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: मेरी हॉबीज तो बहुत सारी है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
7: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
8: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
7: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
9: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव क्रिएटिव कभी सुनाई दे रहा है, खेलना कभी आर्ट कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
10: हॉबीज के बारे में।
9: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना। जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा। आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
11: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
12: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
13: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
14: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
15: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
16: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
9: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
17: खाना बनाना।
9: खाना बनाना, और
17: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
9: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
18: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना।
19: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
16: दीदी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
9: दो बताओ उनमें से।
16: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
9: हंसाने के लिए क्या?

0: करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना,
1: जोक सुनाना.
0: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है ना. और राघव को क्या पसंद है?
2: आर्ट और डांसिंग.
0: और शिवांशी को?
3: डांस करना और खाना खाना.
0: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
2: दीदी मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं.
0: सिंगिंग पसंद है आपको? ओके, वेरी नाइस. मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
2: दीदी हॉबी टैलेंट होता है.
0: वेरी गुड.
2: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है.
0: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है. रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो.
2: दीदी मेरी एक और हॉबी है.
0: क्या?
2: पियानो बजाना.
0: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है. अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है?
2: दीदी उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. पहले जब अपा छोटे होते हैं तो अपा धीरे धीरे कम आर्ट करते, फिर अपा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर अपा आर्टिस्ट बन जाते हैं.
0: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट.
3: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते.
1: और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताएं तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है.
0: राइट, बिल्कुल.
4: हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते
0: हैं. सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का. बहुत सारे फायदे हैं, है ना, हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं. तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए,
2: लॉन्ग टाइम,
3: जिंदगी भर करना,
0: जिंदगी भर करना चाहिए. बिल्कुल. तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
4: दीदी हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे.
0: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब,
2: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं.
4: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ.
0: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
5: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं.
0: okay.
5: हमें कुछ सीखना हो तो
3: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था उसमें भी कर लेते हैं हम.
0: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
6: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं.
0: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
6: रात को
0: मिलता है, दिन में नहीं मिलता है. ओके.
1: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क.
0: अच्छा, होमवर्क बाद में.
1: हाँ.
0: ओके.
1: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है इसलिए.
0: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब. ओके.
3: दीदी पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में.
0: फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा फिर?
1: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मैम
3: प्लीज.
0: हाँ, होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना.
4: हाँ
0: हाँ, लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए. अच्छा, ये बताओ हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए, मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज बहुत समय से है ना आपकी,
1: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस.
0: इस साल अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ.
2: हम कहीं से सीख भी सकते हैं.
0: कहीं से सीख सकते हैं? ओके.
1: साथ में.

0: बना रहे हैं, तो कुछ इसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारे स्किल को और बढ़ाए. आजकल YouTube पे भी तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो. जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो. तो अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं, और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो. और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
1: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है. अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा. फिर
2: मेरे माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना है, गुस्सा हो जाता है.
0: ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना. अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो करते रहना है. और आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग. तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी

0: हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
1: हाँ जी दीदी। दी।
0: क्या करके देखा है बताओ?
1: क्लासिकल डांस।
0: क्लासिकल डांस, ओके ग्रेट। और किसने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो?
2: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे, मंडला आर्ट।
0: मंडला आर्ट, ओके।
1: शास्त्रीय संगीत
0: किसने सीखा? आपने? सीख रहे हो अभी?
1: हाँ।
0: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
1: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते पियानो पर।
0: क्या कोई राग होता है उसमें?
1: हाँ।
0: अरे वाह, वेरी गुड। और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है? आप तो बच्चे हो अभी, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग। नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो।
3: नहीं, मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की।
0: ओके, हाँ अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
4: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है।
0: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज़ है ना? खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है लेकिन ज़रूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना। एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो।
3: ज़्यादा खाना बनाने में को कम आता है, मतलब ऐसे ही हूँ, जैसे चावल छोंकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीज़ें।
2: नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में है।
4: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ।
0: क्या बनाना आता है आपको?
4: मैगी।
0: मैगी बनानी आती है?
1: दीदी मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ।
0: नई नई डिशेज ट्राई करते तो हो आप।
4: और दीदी मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गई।
0: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
4: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी।
0: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो। वेरी गुड। अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे।
4: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ।
0: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को।
4: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते है, पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है अभी इसमें?
0: हाँ, ये तो कोई गलती नहीं है आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो।
4: शिवांशी तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होएगा, मैं खुद बनाऊंगी।
0: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
4: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू।
0: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है।
1: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया।
0: ओके।
3: दीदी मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर पूरे घर वालों को पिलाती
0: हूँ। सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
3: सोचो कि नहीं, जैसे पापा घर में मुझे तो जन बोलते सबके लिए नींबू पानी बना।
0: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना।
2: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था।
0: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना, मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। आपकी हॉबीज, एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती है। हमारी हॉबीज कैसे बेनिफिट देती है दूसरों को बताओ?
1: कुकिंग से।
0: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है अच्छा अच्छा।
2: किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं।
0: हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्या लगता है आप लोगों को?
4: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बनाया है।
3: और अगर दीदी कोई स्टेप नहीं आता तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
0: राइट।
3: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
4: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
0: सिखा सकते हैं, है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो, तो भी जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को।
3: तो मदर्स डे था, मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
0: मम्मी को।
3: अरे वाह,
4: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था।
3: दीदी आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी।
0: वेरी गुड, क्रिएटिव। तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी है, आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना।
4: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली और जब वो खोलते हैं तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे।
0: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए
3: दीदी। उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना, उससे पता चलता है कि हाँ इनको

0: गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
1: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
0: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी,
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ।
2: और दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
1: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो।
3: डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है,
1: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
3: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
1: राइट।
0: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया है कि मेरे पास ये हो और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
1: हाँ, कॉम्पिटिशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं।
2: और दीदी अगर हमें कुकिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दीदी, मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमको खुशी भी मिलती है,
1: हमको खुद को खुशी मिलती है।
5: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी।
1: हाँ भूख लगने लगी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी, और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है, खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें। तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
6: नहीं,
1: कभी नहीं। और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ। कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो जाता है छू मंतर। ठीक है, तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स। तो फिलहाल रेडियो मधुबन से लेते हैं इजाजत और हमारे दोस्तों को कहते हैं बाय बाय
6: बाय बाय,
1: और थोड़ा खुशी से
6: बाय बाय।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म, उन्वान है बढ़े चलो, शायर हैं मुस्तफा खामद्दाहा। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है, आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: उठो उठो उठो उठो, कमर कसो कमर कसो, शहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो बढ़े चलो, झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, जरा न डगमगाओ तुम, खुदा से लौ लगाओ तुम, मलूल ओ मुस्तरब न हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, उठा दिया कदम मगर तो खत्म है बस अब सफर, है राह साफ ओ बेखतर, न कोई खौफ है न डर, चले चलो चलो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, तुम्हारे हम सफर जो थे वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, जरा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला, के है बुलंद हौसला वो सामने है मरहला, वहीं पहुंच के सांस लो, बढ़े चलो बढ़े चलो।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलुकार हैं देवाशीष, अनुजा बिसारिया और बच्चे। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साईराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता।

0: कार्यक्रम का नाम बाल संसार, वक्ता डॉक्टर अजय शुक्ला, एंकर आरजे रमेश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल संसार में।
1: बाल संसार, बाल संसार।
0: और हमारे साथ हैं हमारे विशेष वक्ता डॉक्टर अजय शुक्ला। आज हम बात करेंगे अभिरुचि में सकारात्मक व्यवहार का स्वरूप और बच्चों की अभिरुचि के अनुसार गतिशीलता पर। अभिरुचि में सकारात्मक व्यवहार का स्वरूप, अभिरुचि किसी भी गतिविधि, विषय या क्षेत्र के प्रति उत्सुकता, आकर्षण और जुनून की भावना है। यह हमारे जीवन को अर्थ, उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। सकारात्मक व्यवहार जैसे जिज्ञासा, लगन, सकारात्मक दृष्टिकोण, लचीलापन, कृतज्ञता, सहयोग और योगदान अभिरुचि को और अधिक मजबूत और फलदायी बनाने में मदद करती हैं। इन व्यवहारों को अपनाने से हम अपनी अभिरुचि में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की अभिरुचि के अनुसार गतिशीलता। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की इच्छा उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। उनकी रुचि के अनुसार गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमें उनकी रुचियों का पता लगाना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान करना, उन्हें सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से खोज करने देना, प्रोत्साहन और सकारात्मक मजबूती प्रदान करना और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बाल संसार, बाल संसार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं और पिछले हमने जो एपिसोड शुरू किया था अभिरुचि, उसी के आगे हम लोग अभी चलते हैं, उसी का दूसरा भाग आपको सुना रहे हैं। जी हाँ, आइए, कुछ सवाल रह गए थे कल, वो सवाल मैं अजय जी से पूछना चाहूँगा आज। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते।
3: ओम शांति भाई जी।
2: ओम शांति जी, स्वागत है आपका,
3: बहुत बहुत आभार।
2: तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जब हम लोग अभिरुचि की बात कर रहे हैं तो अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से सकारात्मक व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताइए।
3: जीवन में जब कोई इंसान गतिशीलता की ओर उन्मुख होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने टेस्ट को एक बार आइडेंटिफाई करे, देखे कि मैं किस एक कार्य को अपने हाथ में लूँगा तो लंबे समय तक कर पाऊँगा। होता क्या है कि कोई भी कार्य अगर बच्चों ने अपने हाथ में लिया है तो वो एक क्षणिक आकर्षण के वशीभूत होकर लेते हैं। उदाहरण के लिए वो कोई फिल्म देखते हैं तो उनको लगता है कि उसमें आज डॉक्टर का रोल बहुत अच्छा था और डॉक्टर इतने शान और शौकत में रहते हैं, बड़ी इज्जत होती है, जैसे ही वो आते हैं तो लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, उनको सी ऑफ करने जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये एक एक्सटर्नल फॉर द टाइम बीइंग के लिए एक दृश्य और श्रव्य को उन्होंने एक साथ देखा है। मैंने पूरी फिल्म में वो डॉक्टर का करेक्टर, या इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ कुछ जो भी उन्होंने ऑपरेट किया होगा वो सक्सेसफुल हो गया होगा और लोग पेशेंट के साथ में एक जश्न मना रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे कि बिल्कुल अस्पताल में मंदिर जैसा बिहेवियर हो रहा है। तो उस स्थिति में बच्चे के मन पर एक बड़ा ही सकारात्मक असर हुआ और उनको लगा कि नहीं, अभी जिस प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। अचानक क्या होता है कि माता पिता उनको एक लॉन्ग ट्रेवलिंग में लेके जाते हैं किसी दूसरे केस में, तो आप वहाँ देखेंगे कि बच्चा अगर मुंबई से दिल्ली उसने ट्रेवल किया है तो इंडियन सिनेरियो में 1 से 1.5 आवर तक में उड़ान होती है, पूरी हो जाती है। अब उसकी प्रोसेस में 1 घंटा और लग जाता है, तो 2-2.5 घंटे तक तो वो बच्चे ने इन्जॉय किया, लेकिन जब माँ ने यहाँ से लेके और दुबई तक का टिकट निकाला और बच्चा गया तो उसके मन में था कि मेरे को पायलट ऑफिसर बनना है। अब पायलट ऑफिसर बनना है तो जब उसने इतनी लंबी उड़ान भरी तो बच्चे ने कहा कि ऐसा साल में 2-3 बार हुआ कि जिस जहाज़ को मैं चलाने की कल्पना कर रहा हूँ और जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ वो तो बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे, अगर इतनी जर्नी करनी पड़ी तो मैं कैसे इस ड्यूटी को निभा पाऊँगा। तो वही बच्चा कुछ समय तक अपने आप के मन में या हृदय में कुछ भाव लेके कि नहीं, मुझे उड़ान भरना है और मेरे घर के ऊपर से एक जहाज़ रोज़ निकलता है, तो मुझे हवाई जहाज की ओर जाना चाहिए। तो ये सब उसकी कल्पना जो अलग अलग शब्द भाव और अर्थ लिए थी वो एक स्वरूप में आती है कि नहीं मुझे पायलट ऑफिसर बनना है। लेकिन जब वो धरातल पर आता है और देखता है कि ये बड़ा दर्द बड़ा प्रोफेशन है या मैं इसमें उतना एंजॉय नहीं कर पाता हूँ या कर पाऊँगा, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा अपने आप को एक नए डायमेंशंस में देखता है। तो ये दो मैंने केस दिए आपको कि एक तरफ बच्चा पायलट ऑफिसर बनना चाहता है, एक तरफ वो डॉक्टर बनना चाहता है। दोनों के बारे में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल उसने देखा और उसके स्वरूप को देखा तो उसमें इमेज बिल्डिंग उसको मन में घर कर गई और उसको लगा ये करना चाहिए। तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जिस अभिरुचि की ओर है उसका फ्यूचर क्या है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ज्ञान हमें कराना होगा। बच्चा स्वयं तो बताएगा ही, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो चिंतन करते हैं या मैनेजमेंट सिनेरियो में जो लोग वर्क कर रहे हैं, वो चूंकि कॉरपोरेट कल्चर में एवरी पर्सन का अलग अलग लेवल पर इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो मूल्यांकन करने के बाद में पता चलेगा कि एक बच्चा क्या कर सकता है। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट हमारे शहर में या प्रदेश में उपलब्ध हैं उनसे हम जरूर बातचीत करें। केवल देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप ऐसी स्थिति में अपने आपको कन्वर्ट ना करें, नहीं पेरेंट्स उनको कहें कि पड़ोस के बच्चे ने ऐसा कर लिया तुमको भी ऐसा करना चाहिए बड़ा नाम होगा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अपने बच्चे का भविष्य हम तय नहीं कर सकते। कुल मिला के अभिरुचि को भी अगर हम और प्रोफेशनली और टेक्निकल रूप से आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं तो भविष्य में वो जो दुर्लभ संयोग है जहाँ वियोग नहीं होगा, वो बच्चा निरंतर रूप से जो अभिरुचि के तहत वो जॉब प्रोफाइल में जाएगा उसको वो लाइफ भर निभा पाएगा। तो अभिरुचि और उस निभाना दोनों का सानिध्य आवश्यक है। जी
2: जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूँगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपने बहुत ही सुंदर जो है फिल्म में जिस तरह से एक डॉक्टर की छवि का करियर आपने बताया और ट्रैवलिंग में दूसरे छवि को बताया, और इसमें बच्चा जो है 3 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ देख लेता है और सोचता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में डॉक्टर बनने के लिए पूरे 5 साल, उसके बाद भी सफल होगा या नहीं होगा, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करेगा उसमें जो उसको सफलता मिलेगा वो अलग बात है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ये ज्ञान से भी अवगत कराना, सिर्फ चीज़ें देखने से नहीं होता, जो आपने बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे के बताया। इसके साथ एक और प्रश्न आता है यहाँ पर, ये कि बच्चों की रुचि के अनुसार गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है?
3: जी देखिए, बच्चे तो बाल सुलभ चेष्टाओं से घिरे होते हैं और बाल मनोविज्ञान निरंतर उनके अंतःकरण में कार्य भी करता है, और कई बार हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि वो उछल कूद कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज़ के प्रति चूँकि हमारे मन में ये कभी नहीं रहता कि ये इनकी लाइफ में करियर बन सकता है, तो उन्हें एज ए गार्जियन तो यही लगता है कि भाई सुबह हुई है और इनकी आँख खुली है तो इनको कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जो टफ सब्जेक्ट हैं उसको लेने का प्रयास करना चाहिए, उस पर कुछ काम करना चाहिए, मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है या तमाम चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि भाव और बाल मनोदशा दोनों को हम देखने का प्रयास करें तो बच्चा सुबह उठने के बाद में वो कौन सा कार्य करे, पढ़ाई लिखाई में भी वो किस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल कि बहुत अच्छा उसको हिंदी के अंदर पोइट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये है कि ये टाइम तुम्हारा पोइट्री पढ़ने का है, तुम इन्जॉय कर रहे हो, तुम्हें बैठ के इंग्लिश का कोई क्वेश्चन उसका आंसर याद करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए, एग्जाम आया है या कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये सब जो थोपी गई व्यवस्था होती है उसके तहत में भी बच्चों को दिक्कत होती है, वो वहाँ पर एज ए गार्जियन एडवाइस तो वो फॉलो करके और आप जो चाह रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि बाल संसार का जो मन है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में अगर वो पोएट्री पढ़ता है तो पोएट्री पढ़ के या कोई गेम्स खेल के या थोड़ा सा मुस्कुरा के या हंस के या गाना सुन के ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके वो रिलैक्स होता है और वो प्रिपेयर होता है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, और मन भी करता है ना, जैसे एग्जाम में आप देखें कि यू कैन सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, अब 10 में से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो ये उसमें अगर और साथ में लिख दिया जाए कि ये सॉल्व जब बच्चा कोई करेगा ये पेपर को सॉल्व करते समय हर एक प्रश्न के क्रम के अनुसार ही होना चाहिए, मतलब पहला प्रश्न अगर सॉल्व आप करते हैं तो सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि परीक्षा का जो मनोविज्ञान है उसमें ये ऑप्शन है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो इंसान उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने वाला है वो 5th नंबर क्वेश्चन को फॉलो कर सकता है, 4th को 3rd को जो भी उसके मन में आए, तो वहाँ जो फ्लो क्रिएट होगा, जो उसके मन में विचार की प्रवाहित स्थिति है वो बड़े सुंदर ढंग से वहाँ अभिव्यक्त हो जाएगी, और बाद में धीरे धीरे जो टफ क्वेश्चन है या थोड़ा सा उसको रिकॉल कम हो रहा है उस पर भी वो अपनी कलम चला सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने च्वाइस दिया, अब बाई च्वाइस जब कोई चीज़ क्रिएट होती है तो वहाँ अंतर्मन हमारा अलग ढंग से अभिभूत होता है। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे गार्जियन मेरे पास कई बार आए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा इतनी शैतानी करता है कि स्कूल से आने के बाद में सभी पेन पेंसिल से और स्केच पेन से पूरी दीवारों को ख़राब कर देता है। तो उनकी दृष्टि में ये बात ठीक नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो उसको बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं और मेरे से भी ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी थोड़ा इसको गाइडलाइन दे दो कि दीवारों को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। इसी बीच में एक काउंसलर होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को वहाँ देख पाता हूँ और ये देखता हूँ कि मुझे गार्जियन के दबाव के वसीभूत होकर कोई भी काउंसलिंग नहीं करना होता है, मुझे वहाँ निष्पक्षता को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम न्याय करना चाहें तो मैं उनको बताता हूँ कि जिस क्रिया को देखने के बाद में आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो इसे हम एक दिशा देते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें दिशा कैसे देंगे, तो मैंने कहा कि अपने ड्राइंग रूम में बच्चे की हाइट के हिसाब से लगभग इसका हाथ 5 या 6 फीट तक चले जाता है, तो नीचे आप क्या करें कि पूरी वॉल में वाइट जो सीट लगा दें उसको टेप से चिपका दें। अब आपने उसको पूरा सेट कर दिया और नीचे छोटे छोटे एक डेस्क वहाँ रख दें या वॉल में कुछ छोटा सा अलमीरा टाइप का सेट कर दें प्लास्टिक का या लकड़ी का, तो उसमें कुछ स्केच पेन कुछ मार्कर कुछ कलरफुल और चीज़ें आप वहाँ रख दें। अब अचानक बच्चा स्कूल से आता है और देखता है कि पूरी दीवारों में वाइट सीट है, तो आप देखिए वेल प्लान तरीके से किसी अभिरुचि को आइडेंटिफाई करना और उसमें एक गतिशीलता देने का प्रयास करना, जब आपकी मनसा में ये भाव आता है तो वही बच्चा अपना बैग उतारता है, आपसे कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन एक स्ट्रेंज फुली तरीके से वो दोनों हाथ अपने कमर पर रख के देख रहा है कि वंडर हो गया जिस दीवार पर लिखने या पढ़ने या कुछ बनाने से मेरे को डांट पड़ती थी आज तो पूरा घर मेरे लिए एक प्लेग्राउंड बना हुआ है और मेरी भावनाओं को समझा गया है। वो तुरंत अपने आप को प्रिपेयर करता है, जहाँ वो आने के बाद में सोता था रिलैक्स होता था कुछ भी नहीं, उसने बैग उठाया एक साइड में रखा और आप एक चेयर पर छोटी सी टेबल के पास साथ में लेके बैठ गया। अब जब वो बैठता है तो उसके हाथ में पेन होता है और उसके मन में जो मनोभाव होते हैं, तो अभी तक उसको बहुत व्यवस्थित व्यवस्था नहीं मिली थी इसलिए वो बॉल को अपने तरीके से एक्सप्रेस करता था और कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। अब एक्सप्रेशन और एक्सपेक्टेशंस के बीच में यहाँ पर अंतराल समाप्त हो गया, उसे एक व्यवस्था मिली और उसने एक शानदार पेंटिंग बना दिया। अब जब शानदार पेंटिंग बना दिया उस पर कैप्शन भी लिख दिया, अब वो रिलैक्स हुआ और चला गया। अब उनके मदर फादर शाम को आते हैं और देखते हैं, अरे तो कमाल हो गया, जो इनपुट हमने नए तरीके से बच्चे को दिया था, तो कहा कि बेटा ये कैसे बनाया आपने, बोले मैं तो आया और मैंने रेस्ट भी नहीं किया और ये सब काम कर लिया, होमवर्क तो बाद में करूंगा लेकिन जो मेरी रुचि थी ना इंटरेस्ट था उसको करके तो मैं बिल्कुल गार्डन हो गया हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ एक और पेंटिंग बनाता हूँ। तो बोले नहीं नहीं रुक जा बेटा, एक काम कर इस पेंटिंग के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन तू बता। और वो बढ़िया अच्छे तरीके से बहुत अच्छा स्पीच देता है। वो कहते हैं कि एक साथ दो काम हो गया, इसने एक पेंटिंग बना दी, ये इसका एक क्रिएशन और एक तरफ ये स्पीच दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल की बात भी हो गई। पता चला कि जहाँ हम दुखी और परेशान और हैरान थे, दो चीज़ें यहाँ उसकी अभिरुचि के हिसाब से आइडेंटिफाई हो गई, अब हमारा कर्तव्य और बढ़ गया।
2: बिल्कुल,
3: जो कार्टून बनाया है एक प्रदेश में या देश में अच्छे कार्टूनिस्ट आप देखें तो आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा कार्टून बनाने के लिए एक एम्प्लाई वहाँ ऑफिस में बैठता नहीं है, ओनर कहता है दुनिया में कहीं भी घूमो हमें तो एक शाम को शानदार कार्टून चाहिए। तो फ्रंट पेज में कार्टून कोने में है लेकिन पूरी देश के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना है उस पर उसका विजनरी अप्रोच है और वो उस निगाह से एक कार्टून बना के मेल कर देता है, उसे अपनी सैलरी मिल रही है, वो एंजॉय कर रहा है क्योंकि कार्टून बनाने के लिए उसको दुनिया में घूमना पड़ेगा देखना पड़ेगा और सारी फैसिलिटी अखबार उनको प्रदान कर रहा है। कहने का अर्थ कि मैं उस कार्टूनिस्ट की बात कर रहा हूँ आर के लक्ष्मण जी की जो दुनिया में फेमस भी है, उनकी कई किताबें भी आई। कहने का अर्थ है कि अब केवल ट्रेडिशनल अप्रोच में हम जाके डॉक्टर इंजीनियर वकील का दबाव से अपने बच्चों को मुक्त करें, स्वयं भी मुक्त हों और इतने सारे एस्पेक्ट पर चीजें आज उपलब्ध हैं
2: तो उसके ऊपर काम करें,
3: उसके ऊपर काम करने का प्रयास करें तो ज्यादा सटीक सही होगा।
2: डॉक्टर अजय जी बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके आपने बताया और मुझे लगता है हमारे माता पिता अभिभावक इस बात को सुनकर खुश हो रहे होंगे कि हम लोग तरीका ढूंढे और अपनी चीजों को भी सेफ रख सकते हैं और बच्चे को बिना डांटे भी उसको जो है उसका काम करने के लिए भी ओपननेस दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताया। और इसी के साथ एक और सवाल आता है, लेकिन उस सवाल के पहले मैं चाहूँगा कि अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर बातें करेंगे। आप सुनाए हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आपने देखा कि अभिरुचि के अनुसार जो चीज़ें करनी चाहिए, हम बच्चों को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे उसको अपना काम भी और हमारा अपना भी काम हो जाए, इसके लिए हम जो है अपने आप को ओपननेस में रखें। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, मैं चाहूँगा कि इसी के अंतर्गत एक और प्रश्न आता है कि बच्चों की जो गतिशीलता है, बच्चों की जो रुचि है, रुचि के अनुसार गतिशीलता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए।
1: बहुत अच्छा सवाल है और इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि बच्चों की जो रुचि है उसको हम थोड़ा सा इनर साइड से इनपुट तो दे ही रहे हैं और उसमें एक प्रोफेशनल लॉजिक को भी हम इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल कि बच्चे ने वहाँ 50 कार्टून बना दिए, अब एक सवाल आएगा कि आप पूछें कि इसका जो बैकग्राउंड है कि तुमने कब अपनी क्लास में कार्टून बनाया था टीचर का, जब आप ये पूछेंगे ना तो वो अपनी पास्ट लाइफ में जाएगा। पास्ट लाइफ का मतलब एकदम नहीं इस जन्म के पहले, अभी जो 4-5 साल में उसने जिया है ज़िंदगी को, तो वो जब आपको केस शेयर करेगा कि जब मैंने स्कूल में टीचर का कार्टून बनाया लंच के टाइम में और टीचर आए तो उस समय हमारी मनोदशा क्या थी, तो बच्चों ने उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी, क्योंकि टीचर के लिए एक ही बड़ी अजीब टाइप की बात है कि उनका कार्टून बनाया जाए, एट ए ग्लांस ये दिखाई देता है, लेकिन जब गार्जियन को ये बात पता चलती है और उन्हीं के बच्चे ने ये काम वहाँ पर किया था, लेकिन बच्चों ने क्या किया कि हमारी बातें टीचर को नहीं पता चले, उनके आपस में उन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया था कि हम बताएंगे नहीं कि किसने बनाया है, तो क्या हुआ कि एक बच्चे के कारण सारे बच्चों ने डांट खाई, लेकिन टीचर ने वहाँ पर जो भी डांट डपट किया, अब प्रश्न उठता है कि वही टीचर उदाहरण के लिए उसी फैमिली में हो और वही पिता हो तो एक नया डायमेंशन क्रिएट होगा, और वो पिता धीरे से बच्चे से कह रहे हों कि बेटा मैंने उस समय तो डांटा था लेकिन मैं इसके बाद में एक NCERT की ट्रेनिंग में गया था और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक ऐसे इंसान आए थे जिन्होंने एक ऐसे ही बच्चे का उदाहरण दिया और मेरा मन एक नई दृष्टि की ओर गया, और उन्होंने कहा कि जब वो बाहर हैं और वो कार्टून किसने बनाया, तो यहाँ पर वो बच्चे के ही पिता थे और पिता ने कहा वो मैंने बनाया और हमने भी यही कमिटमेंट किया था कि हमें सर को नहीं बताना है, लेकिन अब मेरी भूमिका वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है। भारत के अंदर अभी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, एक्सपेंडिचर मानते हैं, और जब ये इन्वेस्टमेंट होगा, आज अब्रॉड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट है, हर आदमी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रति इतना इन्वॉल्व है कि अगर ट्रेनिंग के लिए किसी को कॉल आता है तो वो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में वो ट्रेनिंग को कैंसिल कराया जाता है, जबकि उनको ये बताना चाहिए कि ये ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारी नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, नॉलेज स्किल पर तो हम निरंतर काम कर रहे हैं लेकिन नॉलेज और स्किल दोनों को प्लस कर देते हैं तो एटीट्यूड में चेंज आता है, तो उस एटीट्यूड के लिए ट्रेनिंग है। और यहाँ हमें ये बताया गया उस कार्टून बनाने के बाद में ये रिक्वेस्ट किया गया कि कार्टून पूरा नहीं बन पाया है, और मैंने कहा कि जो भी आप में से नहीं बताना चाहते हो लेकिन जो कार्टून के एरिया में थोड़ा बहुत भी चिंतन रखते हो वो आए और चौक से उस कार्टून को पूरा करें। अब ऐसे में उनको मौका मिल गया तो बोले मैं जाके उस कार्टून को मैंने पूरा किया, और सर ने फिर जब उसका डिस्क्रिप्शन दिया और उसमें तमाम संभावनाओं को बताया तो वहाँ पिता ने कहा कि वो जो केस तुम बता रहे हो उसको इस रूप में मैंने अपने अंतःकरण में डिलीवर किया है, एक्सेप्ट किया है, एक्वायर किया है, जिया है, इसलिए मेरे मन में इस कार्टून को बनाने और इसके करियर से जुड़ी हुई बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैं इसको एक गतिशीलता देना चाहता हूँ। तो गतिशीलता कैसे देंगे कि बच्चे को स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर टाइम निकाल के छुट्टियों में आप अच्छे कार्टूनिस्ट से मिलवाएं। मैं मिलवाने को इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में भी हम क्या करते हैं, एक एस्टेब्लिश डॉक्टर से मिलवाते हैं, उसके इन्वायरमेंट से परिचित कराते हैं, उसके एकेडमिक और प्रोफेशनल नॉलेज को इन्हांस करते हैं। इवन हम ये भी कहते हैं कि एज ए डॉक्टर आप मेरे बच्चे को बताइए कि इस लाइफ में क्या क्या केस स्टडीज आएंगी और क्या एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होगी। ऐसे ही अगर मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत एस्टेब्लिश नामी ग्रामी व्यक्ति से मिलवाते हैं, उससे पहले हम हिस्ट्री पढ़वाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भारत के अंदर डॉक्टर मोक्षगुणम विश्वेश्वर रैया हुए हैं और वो भारत के निर्माता कहे जाते हैं, तो उन्होंने इंजीनियरिंग को एक डिफरेंट डायमेंशन से देखा, उनको मोक्ष गुणम की पदवी दी गई। तो ये सब बातें इसलिए कि बैकग्राउंड हिस्टोरिकल हम पढ़ाएं, करंट अफेयर्स में लेके जाएं और जो इंस्टेंट अभी है उपलब्ध, अगर एक IAS अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भारत में तो आप समय लें, अपने बच्चे को लेके जाएं, आप मिलवाएं,

0: आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर एक नया स्वरूप डेवलप हो गया और अभिरुचि में इतनी बड़ी गतिशीलता उसकी लाइफ में इंस्पायर होने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा।
1: जी चलिए, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है। और जाते जाते एक और आखिरी प्रश्न छोटा सा कि बच्चों की रुचि के अनुसार गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और शिक्षकों का भी विशेष कुछ कर्तव्य बनता है?
0: बहुत अच्छा, ये दोनों ही मिलके एक अच्छी बात आई है कि कई बार हमें लगता है कि माता पिता गुरु ये तीनों की भूमिका है। अब तीनों की भूमिका अगर बहुत पॉजिटिव डायमेंशंस में है तो मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि जो शास्त्र हमारा है उस अनुसार आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। वेद वाक्य है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अगर ये तीनों देवो भव हैं तो हमारा बच्चा सत्यम वद और धर्मम चर इसका अनुसरण कर लेगा, बशर्ते कि ये तीनों का सपोर्ट उसको निरंतर मिलना चाहिए। इसमें अगर एक सपोर्ट दे रहे हैं एक नहीं दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो, तीनों आपस में बातचीत करें और फिर तय करें कि ये जो भावी भविष्य है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको गतिशीलता देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं अगर क्वेरी में हम लेके जाते हैं तो पता चलेगा आपको कि जितने भी संदर्भ और प्रसंग हैं वो सब एक धरोहर के रूप में बच्चे के लिए काम करेंगे और उस बच्चे को ये लगेगा कि मेरे पीछे माता पिता और गुरु तीनों का ब्लेसिंग्स भी है, तीनों का गाइडेंस भी है और तीनों मेरे प्रति कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। इसलिए उसके अंदर जितने भी प्रश्न और जितने भी समस्याएं क्रिएट भी होंगी तो वो फटाफट इनको रिकॉल कर लेगा, इनसे मिलने का प्रयास करेगा और कुल मिला के इनसे भय की बजाय इनसे प्रेम करने की स्थितियाँ बन जाएंगी। जी
1: चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही विस्तार से आपने इन चीज़ों को बताया है और मुझे लगता है कि अभिरुचि जो है एक बहुत बड़ा विषय है और जिसको लेकर हम माता पिता शिक्षक अगर जागरूक हो जाते हैं तो बच्चों में बहुत सारी क्रिएटिविटी को हम लोग ला सकते हैं और बच्चे की क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सहयोग देने में आसानी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात आज के इस विषय में निकल कर आया है और आशा करूंगा हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, बाल संसार में मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए 27 अगस्त की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और आज विशेष रोहिणी नक्षत्र है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ सीए भवानी देवी और एनवी रमन, इनका जन्मदिन है। मुकेश ऋषिकेश मुखर्जी, रविंद्र केलकर, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा। कुछ लोगों की जीवन कहानी से हम लोग रूबरू होते हैं और सुनकर बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी कहानी सुनते हैं। तो आज भी दो लोगों की कहानी तो आपको सुनाना ही है मुझे, है ना। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कभी हार मत

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और बात करते हैं सीए भवानी देवी के बारे में। भारतीय महिला तलवारबाज है। सफर छोटा भले ही हो लेकिन इतना रोचक हो कि जमाना सदियों तक याद करें। सीए भावना देवी ने इसी वाक्य को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक में चरितार्थ किया। सीए भवानी देवी भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी खेल का प्रतिनिधित्व किया और ये करने वाली पहली एकमात्र महिला खिलाड़ी रही हैं। भले ही वो टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकी लेकिन उन्होंने अपने साथ भारत का नाम ओलंपिक के इतिहास में दर्ज करा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फेंसिंग साल 1896 में ओलंपिक का हिस्सा रहा है लेकिन 125 साल बाद कहीं जाकर भारत ने इस खेल में पदार्पण किया जिसका प्रतिनिधित्व सीए भवानी देवी ने किया। अपनी इस जिम्मेवारी को भवानी देवी ने बखूबी निभाया और तलवारबाजी में अपना हुनर दिखाते हुए उन्होंने पहला मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि अगले राउंड में बाहर हो गई पर इसी के साथ ओलंपिक में उनका सफ़र ख़त्म हो गया। पर अपने इस छोटे से सफ़र में भी भवानी देवी ने भारत के लिए फेंसिंग की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोल दिया। सीए भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज

खिलाड़ी हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कई बार जो है कुछ चीज़ें हमारे बीच में ऐसी आ जाती हैं, हम एंट्री कर जाते हैं लेकिन पास नहीं मिलता, फिर भी एंट्री करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप में फेंसिंग की दुनिया में सीए भवानी देवी का नाम नया नहीं है, ये अलग बात है कि ये नाम का अब जाकर अपनी अधिक चमक बिखेरा है। फेंसिंग मैच में भवानी देवी कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और शुरुआत उन्होंने 2009 में कॉमनवेल्थ गेम से की थी, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर इंटरनेशनल ओपन कैडेट एशियन चैम्पियनशिप, अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप सहित कई कार्टूनिस्ट में मेडल्स अपने नाम किए और अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप जीतने वाली वो पहली भारतीय है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आप बात करते हैं श्रीकांत गुप्ते सर से। गीत उपनिषद की कुछ सुंदर बातें वो हमारे साथ हमेशा शेयर करते हैं हफ्ते में एक बार, तो आइए इस बार मैं उनको जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ फिर से। जी डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते सर,
2: आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने इस अध्याय के पहले श्लोक के बारे में जाना था, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रश्न किया था कि हे केशव, कर्मयोग और कर्म त्याग, इसमें अधिक कल्याणकारक क्या है। आइए हम जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगा विशिष्यते। ये है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का दूसरा श्लोक। यहां पर भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निस्संशय कल्याणकारक है, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग की विशेषता, कर्मयोग का महत्व अधिक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले 6 अध्याय कर्मयोग से संबंधित है। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का विवेचन किया हुआ है। निष्काम कर्मयोग यानी कि अपने कर्म के फल की इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, कामना नहीं रखते हुए किया हुआ कर्म। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण उसी निष्काम कर्मयोग के बारे में हमें कह रहे हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तृत विवेचन किया हुआ है। उन्होंने कहा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवापससी। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ऐसे सब परस्पर विरोधी जो भावना है उनको दूर रखते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगो अस्तु अकर्मणी। भगवान ने कहा था कि अपना जो कर्म है वो करते रहना, इसी के ऊपर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, वही सब तुम फिर सिर्फ तुम्हें करना चाहिए। उस कर्म का फल तुम्हें क्या मिलेगा और जो कर्म का फल तुम्हें मिलेगा उसके ऊपर तुम्हारी कोई सत्ता नहीं, उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आगे उन्होंने कहा था कि माँ कर्म हेतु कर्म फल हेतुर्भु। भगवान ने कहा था कि मेरे कर्म का ऐसा फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसा जानकर ऐसा सोचकर कभी भी कर्म मत करो। और माँ के संगो अस्तु अकर्मणी यानी कि मुझे मेरे कर्म का फल नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसा भी कभी मत सोचो। आगे उन्होंने कहा था, योगसा कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा था कि योगस्थ बनकर अपना कर्म करते रहो, यानी कि जो समत्व बुद्धि रखो और अपना कर्म करते रहो, किसी भी फल के ऊपर या किसी भी कामना के ऊपर अपना अधिकार मत रखो, अपनी इच्छा मत रखो, और ऐसा सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा जो मेरा कर्म है उसमें मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी भावना को छोड़कर अपना कर्म करते रहो, इसी को योग कहते हैं। इस तरह से समत्व बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म यानी कि कर्म के फल की इच्छा मन में रखते हुए कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का कथन है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं, निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना चाहिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठति अकर्मकत। भगवान कहते हैं कि कोई भी एक पल, वो कहते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी मात्र कभी भी किसी भी क्षण कोई भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, इसलिए कर्म तो होता ही रहेगा, लेकिन वो कर्म किसी भी लगाव के बिना होना चाहिए। भगवान हमेशा कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपिचते न प्रसिद्ध अकर्मणा। शरीर भगवान हमेशा कहते आए हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव या जो कर्म है उसे तुम्हें करते ही रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कुछ भी नहीं करने से तो अपना जो कर्म है, नियत कर्म जो है, वो कर्म कभी भी करना अच्छा है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा यानी कि तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं नेह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति किसी का द्वेष नहीं करता और किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, ऐसा सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से रहित पुरुष इस संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। आज हमने दो श्लोकों के विषय में विचार किया हुआ है। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा यह आप मुझे जरूर बताइए। आपके विचार आपके मंतव्य मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसके लिए आपके विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आपको मेरा जय श्री कृष्ण।
1: डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा आपने जो है गीता उपनिषद सुनाते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इंतज़ार करते रहता हूँ कि कब आपका नया एपिसोड आता है। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सफ़र इस कार्यक्रम में एक छोटी सी कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। कई बार इस कहानी को सुना होगा, लेकिन मैं चाहूँगा बार बार सुन के अपने आप को मोटिवेशन ज़रूर कर सकते हैं। एक बार की बात है, जब शेर जंगल में सो रहा था, उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। और फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे, और वो उस कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब तो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीने के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध कर रख दिया। ऐसे में परेशान और शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ कर न सका। ऐसे में वह जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वही पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था, और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे अभ्यास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को गुजरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया। और उसने चूहे को धन्यवाद भी दी, और बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चल दिए। कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। आप सुनाए हैं रिमोट बन 107.8 FM पर सफ़र इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा कहानी बहुत बार सुनी है, लेकिन उदार मन अपने अंदर हमेशा बना के रखिएगा, और जब आप प्यार से किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट पूरी भी हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपका मांगने का तरीका सही है तो आदमी जो है आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। कहानी अच्छी लगी होगी आपको, कहानियां हम बहुत बार सेम कहानी भी सुन के कभी कभी हम अपने जीवन में वो चीज़ें ला नहीं पाते, इसलिए याद दिलाने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि हम अपने ट्रैक पर बने रहें। आइए एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कहानी के हैं हम लोग, मैंने इस एपिसोड के आखिरी मोड़ पे पहुंचे हैं। आइए अब एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। एनवी रमन का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहा और 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फिर न्यायमूर्ति एनवी रमन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और वे कई सालों से उच्च सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हैं। 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद इन्होंने संभाला था। और आइए इनके बारे में बात करते हैं। एनवी रमन, इनका जन्म 27 अगस्त यानी आज ही के दिन 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में हुआ था। परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था और रमन ने बीएससी और लॉ डिग्री पूरी की। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत शुरू की और करीब 38 साल के साथ कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते रहे। एनवी रमन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सेंट्रल और आंध्र प्रदेश डॉक्यूम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस तरह से क्रिमिनल सर्विसेज और इंटरस्टेट रिवर लॉ में उनका स्पेशलाइजेशन रहा है और विभिन्न सरकारी संगठनों के इस पैनल में वकील के रूप में काम करते हुए अपनी महारत हासिल की। एनवी रमन 27 जून 2000 से लेकर 1 सितंबर 2013 तक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे और फिर इसके बाद अलग अलग अन्य चीज़ों पर रहे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद इंटरनेट प्रबंधों से जुड़े अनुराधा भासीन मामले में न्यायमूर्ति रमन लिखे गए फैसले की अनेक लोगों ने सराहना भी की थी। उन्हें इस प्रगतिशील निर्णयों से एक करार दिया था कि न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और इंटरनेट पर कारोबार करना स्वाधीनता के तहत संरक्षित है। और इस तरह से अलग अलग जगह पर इन्होंने अपनी समीक्षा के साथ न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पूर्व और मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निस्तारण में बहुत देरी का मुद्दा उठाया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें एनवी रमन के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए एक और कहानी छोटी सी आपको सुनाते हैं। गर्मी के एक दिन में जंगल के एक शेर को बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा और कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बदले में उसे उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत ही छोटा लगा। फिर जब कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला, उसने उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि वो बहुत बहुत से खाने की तलाश कर रहा था, ऐसे में वो थक गया था जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब वो वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। वही जब वो वापस उसी स्थान पर आया तो उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। अब शेर काफ़ी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। साथियों, यहाँ पर इस कहानी से छोटी सा मैसेज मिलता है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना कभी भी फलदायक नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अब चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
1: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
0: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को। सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर, वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें

है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पे स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जिसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय अन्य स्कूल भी देते हैं और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है। और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो कहेंगे कि आप कॉमर्स दो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेकर कत्थक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा। और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो वो भी घर बैठे आप, कई एप्स हैं जैसे उबर है, उबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी

0: भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर यह आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में है और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज। एट द सेम टाइम अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं, तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा। तो चुनाव केवल
1: जी
0: आप
1: सर,
0: अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी दो प्रकार की होती हैं और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे? जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से और ये अलग करना होगा। रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं तो हम वैज्ञानिक तरीके से, साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से, एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
0: जी
1: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसके से मेरे को क्या होगा करके। अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब हम जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें ज़रूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीज़ें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन से स्किल्स हैं, पहली चीज़ तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं।
0: देखिए, स्किल्स जो होती है ना दो प्रकार की होती हैं, अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक एमएस ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहैंसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर
1: जी
0: वो
1: सर,
0: डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है, और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे, या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
1: जी सर। और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं,
1: जी सर,
0: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर 1 महीने के या 3 महीने के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 डेज अ वीक या ऑल्टरनेट 3 डेज अ वीक, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया। तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में, वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए, जो कि युवा अवस्था होती है, वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं, या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो, या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं, ऋषि यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप, जो कि सोनीपत में है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किंडरगार्टन, प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ कई प्रकार के। आज तो पिन इंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY, जिसको कहते हैं डू इट योर सेल्फ, वो सीखने को मिलता है। या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हाँ इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन मन दुरुस्त भी, जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है। आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान अकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही हैं, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा?
0: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपरलेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050, इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है, बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं, और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं, या विंड एनर्जी पे काम करते हैं, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है। तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है, और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं? आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
1: सर, जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे।
0: हाँ देखिए, आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया। तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग, जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है। तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं, और वो भी पढ़े लिखे ठग। तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में, भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है। और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है। तो
1: जी
0: अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
1: सर। और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि
0: जी
1: इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहां पे कुछ नई चीजें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए, और हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं, या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
0: देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय वर्तमान का समय चल रहा है ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, विच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुअरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुअरीज में। एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसकी वो लिस्ट बनाता है। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके। तो इसी प्रकार से, और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है। फिर आप उनको भी दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर, हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें, हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं, उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए और उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
1: जी सर जी।
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि एमबीए स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
1: जी सर, सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एडीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
0: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप सीवी भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए एचआर ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं अभी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के एचआर को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर एचआर सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इम्प्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे। तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इफ द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ। जैसे मैं बात करूँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए। आप समझ रहे हो? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेज निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें, हाँ, और स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो।
1: जी सर,
0: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज आल्सो लुकिंग फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
1: बहुत कमी चल रही है,
0: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम लोगों को मिलती है फिर, हाँ, वो इसी कारण से। तो सीवी जो हम लिखेंगे सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10-20-30 कंपनी में नहीं भेज सकते, हम ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए, और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए, और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है. ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू और ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिक्यूट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नोलेजमेंट रिप्लाई, और इफ समथिंग इन बी लुक्ड इनटू इट आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस. जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए भी तैयार हैं. कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम. आप तो कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया कि अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हैं. हाँ, ऐसा बोलते हैं जी.
0: सो यू और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है. दे हैव दिस मेंटालिटी, सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन अ बलून इन अ बबल.
1: यस,
0: क्योंकि जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है.
1: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है तो वो फिर वो ये समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता. लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है.
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है. तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन बस है, बस उतना ही है. बट जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड एंड टू बी अ यू नो अ रोल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस.
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था. लास्ट अब हम शो को खत्म करते हैं सर, आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर.
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और द की टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूँ मैं टू बी सक्सेसफुल. पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्प्ररी नहीं. अगर टेम्प्ररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है, अगर वो स्थायी रहता है बना रहता है और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है. दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें. हम हर तीसरे साल दूसरे साल अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें. तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है. और हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया. तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है. फिर चौथा, गोल सेटिंग. गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहें. और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल्स. पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग. आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे. तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है. और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए, फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है। तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे। हाँ, जैसे अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया कोर्स करें, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब टाइम निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं। तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में। फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं। आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया, किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने ऐसे मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शन हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करें लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ, कुछ क्या मैं बोलूं।
1: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इस तरह अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। Thank you, sir. Thank you so much.
0: Thank you so much for inviting me. I wish everyone a very successful and a bright career ahead.
1: Thank you.
0: Abhidan ji, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
1: Thank you, sir. तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं। और कल है राखी की पूर्णिमा। पूनम के इस महापर्व, राखी के इस महापर्व के साथ साथ आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन कहानी, मज़ेदार कुछ बातें, साथ ही साथ आई डोनेशन। जी हाँ, जहाँ राखी इम्पॉर्टेंट है, रक्षा करना इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर दान का भी बहुत महत्व है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आ रही हूँ नेत्रदान पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम, छोटा सा ज़रूर। तो चलिए उसे भी ज़रूर सुनेंगे। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ। कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो, हैं?
2: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
1: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
0: वेल दोस्तों, जब आज नेत्रदान के कई जो पहलू हैं उन्हें हम नहीं जानते हैं, उसी को याद रखते हुए नेत्रदान करने पर पूरी आंख क्या निकाली जाती है, इसी पक्ष पर कुछ बातें हैं जो अहम है, वो जानकारी के तौर पर आज के इस कार्यक्रम में उड़ान में ही इसे देते हैं।
4: आपको पता है हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, और इसकी एक बड़ी वजह है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्निया आंखों की सबसे आगे वाली परत को कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें खराबी आने के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर कुछ लोगों में एकदम कम हो जाती है। पर इसको ठीक किया जा सकता है एक सिंपल सी सर्जरी की मदद से। इस सर्जरी का नाम है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। पर मुद्दा यह है कि नया कॉर्निया, या बोलचाल की भाषा में बोलें तो ये नई आंखें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं उन लोगों से जो अपनी आंखें डोनेट करते हैं। आंखें डोनेट करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी आंखें निकाल कर किसी और को दे देते हैं। आंखें डोनेट इंसान की मौत के बाद ही होती हैं। बस ये लोग अपनी जिंदगी में इस बात की रजामंदी दे जाते हैं कि मरने के बाद उनकी आंखों से दूसरे लोगों को रोशनी मिल सके। पर इंडिया में आंखें डोनेट करने का रेट बहुत कम है, जिसकी एक बड़ी वजह है आई डोनेशन को लेकर फैले हुए झूठ यानी मिथक। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि आंखें डोनेट करने का मतलब है पूरी आंख निकाल ले जाना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप कुछ ही देर में अपने कानों से सुन लीजिएगा। साथ ही आपको आई डोनेशन से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी भी मिलेगी। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं।
5: 1 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो कॉर्निया डोनेट कर सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एज के बियॉन्ड ही लोग आई डोनेट कर सकते हैं। आई डोनेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है। जिन लोगों ने पहले से ही अपनी आईज प्लेज की होती हैं, उनके मृत्यु के बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो नियरेस्ट आई बैंक को या किसी भी आई हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आई डोनेशन के लिए, और विद इन 6 to 8 hours कोई ना कोई आके वो आई कॉर्निया हार्वेस्ट कर सकता है। इस प्रोसेस के अंदर पूरी आंख हम नहीं निकालते हैं, सिर्फ आगे का जो कॉर्नियल लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है आंख का, वो ही हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद कोई डिसफिगरमेंट भी नहीं होती है। जब ये कॉर्निया हार्वेस्ट किया जाता है तो ये इमिजिएटली किसी एक पेशेंट को जिसका ऑलरेडी कॉर्निया ओपेक हो चुका है, वो कॉर्निया निकाल के ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस सर्जरी को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और ये काफ़ी

0: ये सिंपल सर्जरी है, इसके अंदर सिर्फ कॉर्निया जो है वो टांकों के साथ आई में स्टिच किया जाता है। सबसे बड़ा मिथ है कि पूरी आंख निकाली जाती है मृत्यु के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है। सिर्फ आगे का जो पार्ट है जिसको कॉर्निया कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंख की, जिसको डेला भी कहते हैं, वो निकाला जाता है, पूरी आंख नहीं निकालते हैं। और यही कॉर्निया जो आदमी कॉर्नियल ब्लाइंड है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक आदमी की जब दो आंखें आप नेत्रदान करते हैं तो उससे दो पेशेंट्स की लाइफ सुधर जाती है। ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए रिजर्व है जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, माने जिनका कॉर्नियल कंडीशन खराब है और उसी के कारण उनको कम दिख रहा है। बाकी किसी कंडीशन में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से कोई फायदा नहीं होता है। एक ये भी मिथ है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है और काफ़ी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक टोटल मिथ है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इससे काफ़ी पेशेंट्स को फायदा होता है। एक मिथ है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही सिर्फ आई डोनेशन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक बेबुनियाद मिथ है। इसमें सिर्फ ये है कि 1 साल से ऊपर कोई भी इंसान अपनी आईज डोनेट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन। किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, वो लोग भी आईज डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मेडिकल कंडीशंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड रिसेंटली एडेड COVID-19 इन्फेक्शन। इसके अलावा सारे पेशेंट्स या कोई भी मेडिकल कंडीशन से किसी को भी ट्रीटमेंट चल रहा हो वो लोग अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छा हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर शरीर स्वस्थ है तभी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। अगर हमारा काम सिस्टम जैसे सिस्टम रिलेटेड है, अगर हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें हर 30 मिनट में 30 सेकेंड का ब्रेक लेना ज़रूरी है। यही हम एज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जिससे आपकी आँख के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और नियमित रेगुलर आई चेकअप कराना ज़रूरी है।
1: उम्मीद है आई डोनेशन को लेकर आपके मन में जो भी गलत फहमियाँ थी डॉक्टर स्वाति की बातें सुनकर वो दूर हो गई होंगी। वैसे बता दूं, 13 अगस्त यानी कि कल मनाया जाएगा ऑर्गन डोनेशन डे। ये दिन मनाया जाता है ताकि किडनी, लिवर, हार्ट, आंखों जैसे अंगों के डोनेशन के बारे में सही जानकारी फैलाई जा सके। तो जो भी लोग अपनी आंखें डोनेट करना चाहते हैं वो किसी रजिस्टर्ड आई बैंक या फिर आई हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। सोचिए, आपकी आंखों के जरिए कुछ लोग ये दुनिया पहली बार देखेंगे, इसलिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हम पल के झपकाए बिना रह क्यों नहीं पाते। हम लोग 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 15 से 20 बार अपनी पलके झपकाते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें ज्यादा देर तक पलके झपकाए बिना रह नहीं पाएंगे। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर हम अपनी पलके झपकाते क्यों हैं? पहली बात तो पलके झपकाना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी आपकी बॉडी इसे ऑटोमेटिकली करती है, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पलके झपकाने से आपकी आंखों में ल्यूब्रिकेशन होता है, उसे नमी मिलती है, आंखों से ऑयल निकलता है और म्यूकस सेक्रेशन होता है, यानी एक तरह का कॉकटेल निकलता है, फ्लूइड होता है ये, जिसमें और भी कई सारी चीजें शामिल होती हैं। ये आंखों की बाहरी परत को साफ करता है, साथ ही आपकी आंखों को ड्राई होने से बचाता है। ये आपकी आंखों को बचाता है डस्ट, तेज रोशनी या फिर और कोई भी बाहरी चीज को अंदर आने से। एक बात और, जब आप पलके झपकाते हैं तो आपकी आंखें कुछ माइक्रोसेकंड के लिए बंद भी होती हैं, पर उस वक्त आपको अंधेरा नहीं दिखता। क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे ब्रेन के पास एक स्पेशल टैलेंट है उन कुछ माइक्रोसेकंड्स को इग्नोर करने का। जब आप अपनी आंखें झपकाते समय बंद करते हैं तब आपके ब्रेन के कई हिस्सों में जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, खासतौर पर वो हिस्से जो आपके आसपास बदलाव को नोटिस करते हैं, ताकि आपको सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में दिखे, यानी चीजें वैसी ही दिखें जैसी हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से। हेल्दी आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक जैसे पोषक तत्वों वाले फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए। इसके लिए मछली जैसे कि सामन, मेवे, बीज और दाल शामिल करने की सलाह दी जाती है अपनी डाइट में। आप अखरोट, काजू, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मूंगफली और दालों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। नींबू, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फल शामिल करिए अपनी डाइट में। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, शकरकंद जैसी चीजें खाइए। इसके
2: ऊपर देख रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार हम आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं और इसी के विषय पर ढेरों जानकारियां आज भी नेत्रदान से जुड़ी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाए। तो चलिए बेहतरीन सा गीत हो जाए, फिर लौट कर आएंगे आगे एक कहानी के लिए।

ये आसमान है मेरा। जी हाँ, भारतीय सेना का एक अंग एयरफोर्स, और ये जाबाज एयरफोर्स सदा भारत की रक्षा, देशवासियों की रक्षा, सरहद की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं उड़ान, और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए, मज़ेदार कहानी आप तक पहुँचाने के लिए मैं मोना भी तैयार हूँ। तो यही वादा किया था ना कि दो बेहतरीन कहानी आप तक ज़रूर हम पहुँचाना चाहेंगे, क्योंकि उड़ान के इन कहानियों से बहुत कुछ हम और आप सीखते हैं। और क्या है भाई, त्योहार का दिन है, तो क्यों नहीं एक मज़ेदार कहानी सुन लेते हैं आप और हम।

मिटा देती है सब अंधियारे। आहा, मेरे घर में आती है चांद की रोशनी। आज मैं बहुत खुश हूँ।

0: क्या बात है महाराज, आप कुछ सोच रहे हैं?
1: हाँ महारानी, कुछ सोच तो रहा हूँ। अच्छा महारानी, क्या ऐसा कोई इंसान है जिसे कोई भी लालच उसे उसके लक्ष्य से हटा ना सके?
0: शायद हो सकता है।
1: इतने वर्षों से मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई भी इंसान अभी तक नहीं देखा। रुपए पैसे का लालच हर किसी को हरा देता है, और जो नहीं हार मानता उन्हें मेरी जिद के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है।
0: क्या पता, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हो सकता है आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिल भी
1: हो
0: जाए।
1: हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है।
2: मेरे पास 1 रुपया बचा है, अगर 1 रुपया और मिल जाता तो गांव के हाट से जाकर एक कंघी खरीद लाती।
3: मेरे पास 1 रुपया है, मैंने उसे मैदान में बूढ़े से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। कल सुबह उसे तुम्हें लाकर दे दूंगा। तुम शाम को गांव के हाट में जाकर अपने लिए नई कंघी खरीद लेना, ठीक है?
2: हम तो राशन भी नहीं खरीद पाते, तो आपने जमा कैसे कर लिए?
3: अरे ऊपर वाले ने दिया है, आज काम करने के बाद मुझे बख्शीश मिली, वही पैसे है ये।
2: ऊपर वाला कितना कठोर है, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा।
3: दुखी क्यों हो रही हो, हम जैसे भी हैं सुखी ही हैं। ज्यादा पैसा हो जाए तो सुख नहीं रहता है, बिल्कुल सुख नहीं रहता, समझी? इस टूटे घर में पैसे रखूंगा कहाँ? मेरे इस टूटे घर में देखो चांद की रोशनी कैसे आ रही है, राजा के महल में चांद की रोशनी तक नहीं पहुँचती।
4: चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ, कल बहुत सारे काम कर रहे हैं, मुझे आज बहुत थक गया हूँ।

0: 同士に。
1: अरे अरे मेरा रुपया मत लेके जाओ, नहीं लेके जाओ मेरा रुपया, छोड़ दो छोड़ दो मेरा रुपया छोड़ दो। ये तो सपना था, और कहीं ये सपना अगर सच हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे कंघी खरीद के जरूर दूंगा। मैं अभी अभी अभी जाकर वो रुपया लेकर आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी के अभी।

0: कितनी अच्छी सुबह है। अरे वो क्या है, इतनी सुबह सुबह वो आदमी दौड़ क्यों रहा है? वो कोई चोर है या किसी मुसीबत में है?
1: सैनिको सैनिको,
2: आदेश दीजिए महाराज।
1: वो जो आदमी दौड़ रहा है उसे पकड़कर मेरे पास लेके
2: आओ। आज्ञा महाराज।
3: ए, रुको, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।
4: हाँ? के महाराज मुझे?
3: हाँ तुम्हें, जल्दी चलो, महाराज का आदेश है, चलो।
4: मैं थोड़ी देर में आऊँ तो महाराज को कोई परेशानी तो नहीं
3: हो, या फिर तुम्हें बांध कर ले चलूँ? चलो।
4: ज्यादा बहस की तो ये मुझे बंदी बना सकता है, फिर मैं हार्ट भी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ।

0: ए, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो?
1: महाराज, मैं पश्चिम दिशा में मैदान के पास रहता हूँ। मेरा नाम है बुधुआ।
0: इतनी सुबह सुबह दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहा है तू? चोरी करने?
1: नहीं महाराज, नहीं। मैं चोर नहीं हूँ। मैं राज की पूर्व दिशा में नदी के किनारे जा रहा था।
0: तो फिर इतनी हड़बड़ी में दौड़ के क्यों जा रहे थे?
1: जी वो वहाँ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जा रहा था मैं। उस पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपा कर रखा है। वो मेरे बचाए हुए पैसे हैं महाराज, अगर कहीं गुम हो गए तो। इसीलिए उसे लाने के लिए दौड़ के जा रहा था मैं।
0: बस 1 रुपए? अगर वो गुम हो गया तो? लेकिन अचानक तुम्हें उस रुपए की क्या जरूरत पड़ गई?
1: जी उस रुपए को लेकर आज हम गांव के हाट में जाएंगे। अपनी पत्नी को मैं सुंदर सी कंघी खरीद कर दूंगा।
0: तुम्हें अब इतनी दूर जाकर 1 रुपए लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूँ। अपनी पत्नी को लेकर बाजार चले जाओ। सैनिक, मंत्री को बुलाओ।
1: महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपके दिए वो रुपए अवश्य लूंगा, पर अपना वो रुपया लेने भी मैं अवश्य जाऊंगा। अगर वो रुपया ले लूंगा तो मेरे पास 11 रुपए हो जाएंगे।
0: अगर तुम उस 1 रुपए की बात को भूल जाओ तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा।
1: नहीं महाराज।
0: क्यों नहीं?
1: मेरा वो 1 रुपया मेरी कमाई का रुपया है महाराज।
0: अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है। देखता हूँ कब तक अपने लालच को छुपा पाता है। 500 स्वर्ण मुद्राएं?
1: महाराज मैं अपना वो रुपया जरूर लूंगा।
0: 1000 स्वर्ण मुद्राएं?
1: नहीं महाराज।
0: 10000 स्वर्ण मुद्राएं?
1: नहीं महाराज।
0: मतलब क्या तुम बेवकूफ हो?
1: महाराज वो बूढ़ा बरगद पेड़ नदी से काफी दूर है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे।
0: या तो तू बेवकूफ है या बहुत चालाक। ठीक है 50000 स्वर्ण मुद्राएं?
1: नहीं महाराज।
0: 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं?
1: नहीं महाराज। वो 1 रुपया तो सिर्फ मेरा ही है ना।
0: तू सचमुच में बेवकूफ है? तुझे क्या लालच नहीं आ रहा है? कितना चाहिए बोल, कितना चाहिए बोल। कितनी मुद्राएं मिलने पे तू वो 1 रुपया छोड़ देगा? बोल।
1: मुझे छोड़ दीजिए महाराज।
0: 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तुझे। सोच कर देख, वो 1 रुपया या 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? अरे तूने देखा है कभी?
1: मैं फेरी करके कमाता हूँ महाराज, रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। इतने रुपए तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखे। किंतु महाराज जो मेरा है वो तो मेरा है ही ना।
0: चुप, मैं अपना आधा राज्य दान में दे दूंगा। आधा राज्य, पर शर्त सिर्फ एक ही है, उस 1 रुपए का मोह छोड़ना पड़ेगा।
1: आधा राज्य महाराज।
0: मुझे पता था मुझे। प्रत्येक मनुष्य को खरीदा जा सकता है, बस तरीका आना चाहिए।
1: महाराज आधा राज्य क्या आप मुझे अभी ही देंगे?
0: जरूर। मंत्री इंतजाम करो।
2: जी महाराज, वो वसीयत में राज्य का कौन सा हिस्सा बुद्धुआ के नाम लिखूं? बताइए।
0: बताओ राज्य का कौन सा हिस्सा तुम्हें
1: मुझे
0: चाहिए?
1: पूर्वी हिस्सा चाहिए।
0: क्यों? पूर्वी हिस्सा क्यों? तुम तो पश्चिमी हिस्से में रहते हो, उस बड़े मैदान के पास। पश्चिमी हिस्सा लेने में ही तुम्हारा फायदा है।
1: महाराज वो पूर्व की तरफ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपाए हुए हैं। वो लेकर मैं श्यामली को दे दूंगा। श्यामली उसे एक सुंदर कंघी खरीदेगी और वो आधा राज और 1 रुपया अब दोनों मेरे हैं। अब दोनों मेरे ही हैं। दोनों मेरे हैं।
3: कुछ चीजें बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये गीत हमारी सोच को जरूर बदल सकता है। चलो सुन लेते हैं आज की उड़ान में।

0: मेरे राम गाड़ी वाले। चलिए दोस्तों, सोने की, जी हाँ सोने की फसल, ये कहानी लेकर आते हैं उड़ान में।
1: और नहीं होगा, बहुत थक गया हूँ।
2: अरे क्या बात है हरिया, क्या हुआ?
1: अब क्या बताऊँ मदन, पिछले हफ्ते से बहुत बुखार है मुझे और बहुत खांसी खांसी भी आ रही है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ।
2: तो क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे बीमार हालत में क्या कोई खेतों में कुदाल चलाता है?
1: मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। घर पे तीन तीन पहाड़ जैसे बेटे हैं, पर सब बेकार है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है।
2: घर हरिया, अभी तुम घर जाओ, कुछ दिनों तक आराम करो, उसके बाद जब स्वस्थ हो जाना तब खेतों में आकर काम कर लेना। हाँ।
1: अरे लेकिन घर जाने से कैसे चलेगा, मुझे काम खत्म करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों में ही बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए जो करना है इन दो चार दिनों में ही करना पड़ेगा मदन, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास।
3: माँ, ओ माँ, माँ!
4: क्या हो गया, सुबह सुबह बकरी की तरह चिल्ला क्यों रहा है तू?
3: क्या कहा माँ, मैं बकरी हूँ।
4: और क्या कहूँ, तू जैसे बेकार लड़के को सिर्फ बकरी ही कहा है, किस्मत अच्छी समझ अपनी।
3: सवेरे सवेरे इतनी बातें मत सुनाओ, हाँ, और जरा 50 रुपए लेके आओ, आज जरा शहर जाऊँगा।
4: अरे अय्याशों के सरदार, तेरा बाप एक मामूली किसान है, कोई राजा महाराजा नहीं जो सुबह सुबह इतने पैसे मांग रहा है। 5 रुपए की कमाई नहीं होती और 50 रुपए मांग रहा है।
3: इसका मतलब तुम रुपए नहीं दोगी?
4: मेरे पास होंगे तब दूंगी ना। जा खेत में जा, तेरे बाबा अकेले मेहनत कर रहे हैं, तुम सब जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो।
5: खेतों में काम करने जैसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, और ऐसे तो माँ हमें कोई पैसा नहीं देने वाली है। घर में पैसे कहाँ रखे हैं, हम ही चलकर ढूंढ लेते हैं।
3: तुम दोनों कमरे के दोनों तरफ ढूंढो और मैं बिस्तर के नीचे देखता हूँ, पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं मैं ढूंढ कर ही रहूँगा।
4: अरे दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? देखो तो इन लड़कों को, ओहो हो, सारा सामान बिखरा के रख दिया है, काम बढ़ा दिया मेरा।
5: अरे वाह, मिल गया मुझे।
3: क्या मिला, दिखा तो जरा।
5: ये देखो, पैसों से भरा हुआ गुल्लक।
4: नहीं नहीं रुक जाओ, बिल्कुल नहीं, गुल्लक तोड़ना मत, ठीक है ना रामू शामू मोहन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो।
3: अरे कितने सारे पैसे हैं, चलो चलो तीनों मिलकर आपस में बांट लेते हैं।
4: गुल्लक का 1 रुपया भी मत लेना, मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, वो तुम्हें।
6: हाय हाय हाय, सारे पैसे ले गए, अब मैं क्या करूं, हमारी मेहनत की कमाई ले गए।

0: अरे वाह, कितना बड़ा सलून है।
1: क्या बात है भाई, क्या देख रहे हो आंखें फाड़ के?
0: अरे आपका सलून देख रहा हूँ भाई साहब, अरे एकदम रापचिक।
1: क्या कटवाना है भाई, बाल या दाढ़ी? अच्छे से काट दूंगा, एकदम चकाचक।
0: अरे वाह वाह, यही तो चाहिए, जरा अच्छे से मेरे सर के बाल काट दीजिए तो भाई, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह।
1: बताइए किस स्टाइल में काटूं? एकदम चकाचक। मार्केट में एक नई स्टाइल आई है, पहाड़ के नीचे घास स्टाइल, उसी स्टाइल में काट दूं क्या चकाचक?
0: वो कैसा है भाई साहब?
1: सिर के बीच वाले बाल को बड़े रखकर दोनों किनारे के बाल को छोटे छोटे काट दूंगा चकाचक। आप सिर्फ आराम से कुर्सी में बैठिए और उसके बाद मेरे हाथों का कमाल देखिए चकाचक।
2: अरे भाई जरा एक अच्छी सी ड्रेस दिखाना तो।
0: अच्छा ठीक है, किस तरह के कपड़े दिखाऊं जनाब?
2: एकदम चटक लाल शर्ट दिखा दो और नीले रंग की पैंट दिखा दो।
3: ये लीजिए आपका लाल शर्ट और नीला पैंट। ठीक है, पहनने के बाद आपको बहुत स्मार्ट लगेंगे भाई।
2: हाँ वो तो लगूंगा ही, बिल्कुल लगूंगा। एक बात याद रखना, मेरा नाम श्यामू है और मैं बचपन से ही स्मार्ट पैदा हुआ हूँ। अच्छा क्या मैं ये ड्रेस पहनकर देख सकता हूँ?
3: हाँ क्यों नहीं भाई, वो रहा ट्रायल रूम, जाकर पहन कर देख लीजिए।
2: तो कैसा लग रहा हूँ मैं? हा?
3: पूरा एक लाल बंदर लग रहे हो। अरे भाई क्या लग रहे हैं आप, जैसे कोई फिल्मों के हीरो हो।
2: ओहो तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
4: क्या जी आप इतनी देर से क्यों आए, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे?
5: तुम भी कैसी बातें कर रही हो, इस बीमार शरीर से 4 बीघा खेत के इतनी जल्दी खोद पाऊंगा? तुम ही बोलो लड़के कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे वो लोग, कहाँ है कहाँ है वो लोग?
4: आप क्या बताऊँ, सवेरे ही तीनों कहीं चले गए और अभी तक लौटे नहीं हैं। और गुल्लक में जो पैसे हमने जमा किए थे ना, वो सारे के सारे ले गए।
5: क्या कहा? गुल्लक के सारे सारे पैसे लेके चले गए। क्या किया, क्या किया उन्होंने? आज आने दो, आने दो उन्हें, आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा, आने दो।
4: देखिए आ गया हमारा एक लाल।
1: माँ माँ आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ।
5: क्या कहा, बाहर से खा के आया है? बाहर से खा के आया क्या मतलब?
1: अरे पिताजी शहर गया था, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें बिक रही थी तो खा ली, फ्राइड राइस चिकन कबाब।
5: तुम्हारी इतनी हिम्मत, गुल्लक के पैसों को तुमने ऐसे ही उड़ा दिया? बोल।
1: माँ से 50 रुपए मांगे थे पर माँ ने दिया ही नहीं, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था तो क्या करता?
4: वो देखिए अपने बेटों की नवाबी देखिए, घोड़ा गाड़ी की सवारी कर आ रहे हैं।
5: क्या रे क्या रे, क्या किया तुम लोगों ने, क्या किया पैसों का? घर के सारे पैसे बर्बाद करके नवाबों की तरह ऐश कर रहे हो, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या?
2: देखिए पिताजी अब हम बड़े हो गए, जो हमारा मन करेगा अब हम वही करेंगे, और मैं तो जा रहा हूँ हिंदी फिल्मों का हीरो बनने।
0: अभी तो सिर्फ घोड़ा गाड़ी में घूम रहा हूँ, इसके बाद मोटर कार में घूमेंगे।
5: ऊपर वाले मेरे इन नालायक लड़कों को सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें कोई रास्ता दिखाइए ऊपर वाले।
4: अरे आप कहाँ जा रहे हैं?
5: अरे मैं खेत में जा रहा हूँ, ऐसे पीछे से आवाज क्यों दे रही हो?
4: पर देखिए बादल गरज रहे हैं।
5: वो तो गरजेंगे ही, आसमान में बादल घिरा है, लगता है 2-3 दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी पूरा खेत जोतना बाकी है, क्या करूं अब क्या करूं?
4: अगर हमारे सारे बेटे लायक होते तो 2 दिन में ही पूरे खेत की जुताई हो जाती।
5: हाँ, मुझे उपाय मिल गया, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। लड़के हीरो बनना चाहते हैं ना, तो अब उन्हें अभिनय द्वारा ही सही रास्ते पे लाना होगा। अरे सुनो सुनो, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, तबीयत बहुत खराब लग रही है।
4: क्या हुआ, क्या हुआ आपको?
5: सुनो सुनो बेटो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है, लगता है अब मेरी आयु ज्यादा नहीं बची है, इसलिए मरने से पहले तुम लोगों को राज की एक बात बताना चाहता हूँ।
6: कैसी राज की बात?
5: तो सुनो, तुम लोगों की वजह से मैंने घर में कभी भी ज्यादा रुपए पैसे नहीं रखे, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम वो सारे रुपए पैसे बर्बाद कर देते, इसलिए मैंने अपने जीवन भर की कमाई और कुछ सोना जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। सुना ना, जमीन के नीचे गाड़ दिए थे।
6: कहाँ गाड़ के रखे पिताजी?
5: मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ सब कुछ।
1: भूमिका क्यों बना रहे, जल्दी बताइए ना।
5: हमारे जो खेत है ना, उसी के नीचे है, उसके नीचे, लेकिन कहाँ रखा है ये याद नहीं आ रहा है।
2: अरे फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी से चलकर पिताजी के गड़े धन को निकाल कर ले आते हैं।
0: हाँ, और फिर उन पैसों से हम फिर से शहर में मौज मस्ती करेंगे, हीरो बनेंगे। ओह, इतनी बड़ी जमीन में पता नहीं पिताजी ने पैसे और सोना कहाँ दबा कर रखे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
1: खड़े खड़े सोचने से तो अच्छा है, क्यों ना हम लोग सब मिलके पूरी जमीन ही खोद डाले। चलो चलो।

0: अरे भाई ये क्या, हमने तो पूरी जमीन खोद डाली पर रुपया सोना कुछ भी नहीं मिला है।
1: चलो पिताजी को जाकर बताते हैं।
2: पिताजी आपने आपने हमसे ऐसे झूठ बोला, जमीन में कोई सोना नहीं है और कोई रुपया पैसा भी नहीं है।
3: बाप रे।
4: अरे नहीं नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला।
3: असल में मैं तुम लोगों को एक चीज देना तो भूल ही गया था।
2: इसमें क्या है?
4: इसमें मंत्र वाले धान के बीज हैं। तुम लोग जाओ और इस धान को पूरे खेत में छीट दो। खेत में जहाँ भी सोना और रुपए पैसे छिपे होंगे उसी जगह पे 4 महीनों के बाद धान के पौधे उगेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
2: अब चलो चलो।
0: अरे चलो चलो चलो जल्दी घर चलो, बारिश शुरू हो गई है, जल्दी चलो।
2: क्यों पिताजी, आपने तो कहा था कि 4 महीनों के बाद जहाँ जहाँ सोना छिपा है वहाँ वहाँ धान के पौधे होंगे।
5: देखते देखते 4 महीने बीत गए पर यहाँ तो पूरी जमीन में ही धान के पौधे तैयार हो गए, पर सोना कहाँ है?
4: अरे पागल, तुम लोगों ने सिर्फ धान के पौधे ही देखे, पौधों के ऊपर वो देखो सोने के जैसी फसलें उगाई है। मतलब सब पौधों पे देखो कैसे सोने जैसे धान उगे हैं। अब हम धान काट के सारे धान अलग अलग कर लेंगे तो हमें बहुत चावल मिलेगा। कुछ चावल हम अपने खेतों के लिए रख लेंगे और कुछ चावल बाजार में बेच के पैसे कमाएंगे। बेटा पैसे कमाएंगे पैसे।
2: अच्छा तो आपने इसी वजह से हमसे सारी जमीनें खुदवाई थी।
4: सही कहा। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे ना, इसलिए मैंने छल बल और कौशल से तुम लोगों से खेती करवाई है। समझ गए, नहीं तो तुम लोग इतने बड़े होकर भी अपनी इच्छा से कभी स्वावलंबी नहीं हो पाते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा।
6: हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी, आप हमें माफ कर दीजिए।
4: सुनो, एक दिन मैं नहीं रहूंगा पर ये जमीन तो रहेगी ना, और अगर तुम लोग मिलजुल के इस जमीन पे खेती करोगे तो तुम्हें कभी भी किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ समझे?
0: हाँ समझ गए पिताजी।
4: तो फिर देर किस बात की, जाओ जाओ जल्दी से हंसुआ ले आओ, हम बाप बेटे मिलके धान काटना शुरू करते हैं। जाओ जाओ जल्दी ले आओ।
6: अब भी लेकर आता हूँ पिताजी।
7: तो देखा, सोने की फसल इनके परिवार में तो मिल ही गया। और आज के लिए इतना ही। जी हाँ, कल मिलने का वादा करते हैं, ठीक शाम 6 बजे। तब तक राखी के त्योहार के साथ जरूर लौटेंगे। तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
8: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
9: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
8: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये 3 चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
9: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल कितना खुशी लगता है। माय मैंने मेरा में इतना प्यार है, स्नेह है और लगाव है। मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा शब्द आता है कि नहीं, और मैं और मेरा दो शब्द है ना, क्योंकि आप लोग गाएंगे आज, हमारे श्रोता मित्र भी सुन रहे, आपका आवाज को सुनेंगे, तो हमें बहुत खुशी है। राज के विद्यालय, खासकर राजेश्वर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिलित सहयोग से रेडियो मधुबन आज बच्चों का हुनर को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज दे रही। आज तो हमें बहुत खुशी है, सभी बच्चे टैलेंट है, सिलेक्टेड बच्चे, तो देर किस बात की। एक प्रार्थना का रूप में माँ सरस्वती का वंदना सुनेंगे, क्योंकि हर कार्य शुरू करने का पहले माँ सरस्वती को याद करते हर विद्यालय में। तो राजेश्वर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिलेगा, हमें बहुत खुशी है। बच्चे आज बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, इसलिए माँ सरस्वती का एक हृदय से एक संगीत सुनाएंगे। तो रेडी बच्चे? ओके सभी, ओके शुरू करिए
1: जी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जैसे विद्यालय उस तरह बच्चे सभी राजा रानी बनेंगे, है ना, आत्मा तो राजा ही है, आत्मा तो राजा है। और जो पुरुष शरीर में रहता है तो हम राजा कहते हैं, और स्त्री शरीर में बालिका शरीर में रहते हैं तो हम रानी कहते हैं। क्या कहेंगे? राज, राजेश्वरी, राजेश्वर। तो राजेश्वर, राजेश्वरी और राजेश्वर दो आज आवाज मिल रहा है, क्योंकि आत्मा तो जो शरीर धारण किया, एक तो पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर, बालक और बालिका मिलकर आज गा रहे। हमारा ढोलक में भी क्या नाम है?
1: निकुल।
0: निकुल, अरे वाह। और आप?
1: आयत।
0: आयत, आयत में रहते हैं, बड़ा कंट्रोल। आयत मतलब क्या है? कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना। आगे आज खुद का कंट्रोल आया?
1: जी सर,
0: पहले भी कंट्रोल करते थे, लेकिन आज खुद का बारे में मालूम पड़ा।
1: जी सर।
0: हम कौन है?
1: आत्मा।
0: और ये मेरा शरीर,
1: शरीर है।
0: और आयत मेरा नाम है, मेरी नाम कहेंगे ना। नाम क्या है आपका?
1: पहचान।
0: पहचान है। और आयत को क्या है?
1: निशानी।
0: निशानी, अरे वाह। चलिए, देर किस बात की। और एक प्रार्थना होगा, माँ सरस्वती का वंदन अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि एक माँ सरस्वती का वंदन जो कि हम पहले कहे थे, जो पहले कोई भी कार्यक्रम होता तो माँ सरस्वती को याद कर

एक सरस्वती वंदना होगा विद्यालय का आवाज, सभी बच्चे फिर मिलकर गाएंगे सभी आवाज से, ओके। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज तो बच्चों का आवाज को कोई रोक नहीं पाएगा, आज तो बच्चे पूरा बुलंद है। बहुत सारे बच्चे मंडर राजेश्वर विद्यालय के, तो चलिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक का पहले हम बच्चों से एक प्रेरणादायी गीत सुने और प्रार्थना सत्र में भी कहते मन को मार के बटना नहीं है, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। जितना भी संकल्प, जितना भी थॉट, जितना भी इच्छा, जितना भी विचार मन से आता है कि नहीं बच्चे?
1: जी सर।
0: इसलिए मन को कोई मारना नहीं है, मन को सुमन बनाना। क्या बनाना है? सुमन, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ विचार, सात्विक विचार, अच्छा विचार, परोपकार विचार। जो हमारा संकल्प अच्छा आएगा तमाम अच्छा कर्म करेंगे, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। मन से सोचते हैं और बुद्धि से करते हैं। करते हैं ना बच्चे? बुद्धि से करते ना, दिमाग से करते ना, तो दिमाग से करने के बाद हमारा संस्कार बनता है। क्या बनता है? संस्कार। ये जैसे बोलने का संस्कार बन गया आपका, ऐसे बार बार करेंगे तो रेडियो में आपका बोलने का संस्कार आएगा कि नहीं?
1: आएगा।
0: तो संस्कार किसको कहते पता चल गया?
1: जी सर।
0: पहले गीत गाने के लिए इच्छा हुई, ये हो गया आपका मन से। फिर बुद्धि बोला हाँ चलो हम भी भाग लेंगे। बुद्धि बोला डिसाइड किया, हाँ निर्णय किया, परे के लिए हाँ चलो। एक नहीं, सभी लोग आकर अपना काम बुद्धि से कर रहे ना। बुद्धि से जो सोचे उसको काम में लाए, कार्य में कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे ना, गीत गाए, उसको कहते बुद्धि। क्या कहते?
1: बुद्धि।
0: ये आत्मा का दूसरा काम, पहला काम सोचना, दूसरा काम करना। कर रहे ना, गीत गाए रहे?
1: जी सर।
0: और इसको बार बार, अगला बार कोई आएगा तो उनका सामने भी गाएंगे तो संस्कार बन जाएगा। बार बार गीत गाएंगे तो क्या होगा?
1: संस्कार बनेगा।
0: तो आत्मा का तीन काम हो गया, एक तो सोचना, बुद्धि दे करना, और एक बार बार करना, उसको संस्कार बन जाए, अच्छा संस्कार। ओके चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे प्रार्थना के रूप में।

सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हर विद्यालय में इस तरह कार्यक्रम करते हैं और बच्चे अपना दिल का भाव भावना संगीत के रूप में माँ सरस्वती तक पहुंचाते हैं और ज्ञान का देवी माँ सरस्वती को कहते हैं। जब अंधेरे से प्रकाश की ओर हम जाते हैं और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सिंगल के रूप में एकल गान, लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और ये था खासकर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर मंडार का आवाज बारी बारी सुनने को मिल रहा है। तो एक ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे एक एकल प्रस्तुति के लिए।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: और एक वंस मोर और एक गीत एकल में प्रस्तुति करेगी और खड़े होकर अभी से बैठ कर गा रहे थे तो उमंग आएगी एकल गान के लिए। तो ढोलक मंजरा साथ इसमें नहीं होगा, एकल ही करेगी और आवाज को बुलंद रखते हुए उनका परिचय भी देंगे, स्कूल का नाम और कहां से और खुद का नाम।
2: मैं क्लास 8 के छात्रा हूँ। मेरा नाम आयत परवीन है। मैं बिहार गाँव से हूँ। मैं श्री राजेश्वर विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से आप सभी को एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। ओ

0: नहीं, धन्यवाद।
1: चलिए और एक प्रस्तुति, वंस मोर उनका दोस्त है, तो अपना प्रस्तुति दे नाम का साथ।
0: मेरा नाम हेतल कुमारी है, बड़ेची गांव से हूँ।
1: और क्या प्रस्तुत करेगी, सुनाओ।
0: राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।

0: राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए वंस मोर, और उनका दोस्त लोग भी उपस्थित है, और एक एकल गान के लिए हमारा छोटी सी कन्या आओ नाम बताएगी और प्रस्तुति देगी, अपना परिचय दे।
2: मैं जिनल कुमारी क्लास 8 की छात्रा हूँ, राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं मंडार की हूँ। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
1: ओके शुरू करिए।
2: श्री

0: वासुदेव, धन्यवाद।
1: क्या नाम बताया था?
0: जीनल कुमारी।
1: और बड़े क्या बनेगी, कुछ एम रखा है?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, वाह। डॉक्टर का काम क्या होता है?
0: इलाज करना।
1: हाँ, सुई नहीं देना, इलाज। बच्चों को जब पूछते हैं डॉक्टर का काम क्या है तो सुई का ध्यान जाता है, लेकिन ये बोले इलाज। बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। और डॉक्टर का थोड़ा हाइट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए और एक प्रस्तुति इसी कड़ी में लेंगे, और एक एकल गान के लिए हमारा और एक छात्र उपस्थित है, तो वेलकम करते हैं उनको भी, माइक देते। तो अपना परिचय का साथ नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे और हमारा श्रोता भी और ध्यान से सुन रहे। अपना नाम बताइए और क्या प्रस्तुति सुनाइए।
2: मैं वंशिका कुमारी क्लास 11 की हूँ। मैं वर्मान से आती हूँ और मैं राजेश्वर विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं एक गाना प्रस्तुत करूंगी।
1: जी,
2: यहाँ गाना एक भोलेनाथ का है, गलती हो तो क्षमा करना।
1: जी जी, बहुत अच्छा। सभी बच्चे भी आपको सुन रहे हैं।
2: कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास।

0: ओम शांति,
1: ओम शांति के लिए ओम शांति। आज ओम शांति वाले आपके पास पहुंचे और गीत में भोला बाबा का महिमा गान कर रहे हैं। और भोला बाबा सबका बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। भोला शिव भी बाबा कहते हैं, जटिया बाबा पार करेगा कहते, राम बाबा नहीं कहते हैं, कृष्ण बाबा नहीं करते हैं। लेकिन चलिए एक प्रस्तुति हुआ, एकल प्रस्तुति, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: प्रभु।
1: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वंस मोर ब्रेक के बाद हम बच्चों को सुन रहे भोला बाबा का महिमा अपरंपार है और उसको देखते हुए बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। अगला प्रस्तुति के लिए दो छात्र उपस्थित है तो उनको स्वागत करते नाम का साथ रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे, अपना परिचय देंगे प्लीज।
1: मेरा नाम भावना कुमारी है, मैं कक्षा 8वीं C में पढ़ती हूँ और मैं राजपुरा गांव से आती हूँ।
2: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं कक्षा 8वीं C में पढ़ती हूँ, मैं मालीपुरा गांव से आती हूँ।
0: चलिए शुरू करिए।
1: दर दर

0: गोरे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सब बड़े होकर लक्ष्य रखे हैं और इस तरह माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जब आकाशवाणी में उनका आवाज आएगा तो उनका माँ बाप परिवार जन और शिक्षकगण तो बुला रही, तो हमारा ऋतिका का आवाज है, उसका आवाज है, तो बहुत खुशी लगेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और एक दो गुड्डा है, छात्र है, तो आइए अपना परिचय देंगे और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो लड़की तो है ही है, लड़का भी कम नहीं है, पांडव और शक्ति, शक्ति सेना और पांडव सेना है ना, बॉय बालक और बालिका, छोकरा और छोकरी दोनों का आज मिलित सहयोग में आज हमारा कार्यक्रम सुंदर में हो रहा है। तो अपना परिचय देंगे प्लीज।
2: मैं खुशील कुमार पांचवी बी से
1: जी।
2: मैं मोहम्मद सईद पांचवी बी से।
1: वेरी गुड, चलिए शुरू करेंगे, रेडी।
3: उमारी घुमर से नखर लिए माँ, राजा जी घुमर हमें जासिया।
1: छोटा सा गीता, लेकिन कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और राजस्थान पूरा वीरों का भूमि है। राणा प्रताप को याद आता है क्योंकि राजस्थान, और स्कूल का नाम भी श्री राजेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और हमारे साथ दो।
4: मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं क्लास सेवेंथ में पढ़ती हूँ, मेरा गांव मंडार है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, भोलेनाथ का।
1: चलिए शुरू करिए।
4: नीला है प्रचंड तेरी शक्ति है, खंड तेरी दुनिया है, जो भीड़ तेरी कर दे खंड खंड में, मिल जा तू कह तार में या किसी अवतार में, मैं खड़ा हूँ शंकरा तेरे ही दरबार में, शिव शिवाय महादेव मिल भी जाओ महादेव, नाजुके नाजुको यू भोलेनाथ है, क्यों दर्द आए महादेव मिल भी जाओ महादेव, दर्द आए महादेव मिल जाओ महादेव।
1: अरे वाह, चलिए और एक गुड्डा हमारे पास आए, तो गुड्डा गुड्डी मैंने बालक बालिका है ना, और हीरो हीरोइन कहते हैं, राजा रानी कहते हैं, सब अपना नाम राजा बनेंगे।
5: यस।
1: हाँ, राजा बनेगा, वाह, क्या नाम है राजा?
5: सिवाय।
1: सिवाय, चलिए शुरू करें।
5: युग युग की साखले मन में बहरागले, संतों का मेला प्रयागराज में, धूड़ की आगले दान पुण्य त्यागले, संतों का मेला प्रयागराज में, ये महाकुंभ पर्व है जिस प्रथा पे गर्व है, ये महाकुंभ पर्व है जिस प्रथा पे गर्व है, धर्म के पुजारियों को फिर बुला रहा, धर्म ध्वज हाथ लो हिंदुओं को साथ लो, ये महाकुंभ फिर बुला रहा, धर्म ध्वज हाथ लो हिंदुओं को साथ लो, ये महाकुंभ फिर बुला रहा, धर्म को रखेगा उसे धर्म रखेगा, धर्म थारी मानवों का भर्म रखेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा साथ, और एक छात्रा उपस्थित है, पहले से रेडी है। तो सर हमें कब बुलाए, हमें कब बुलाएंगे, इशारा कर रहे थे तो उनको बुला दिए, तो अपना परिचय दीजिए।
6: मेरा नाम सुरेखा है, मैं मंडार से हूँ और राजेश्वर विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ।
1: जी जी, सुनाओ क्या सुनाएगी।
6: ओ नीले घोड़े रा असवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी, ये मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी, ओ नीले घोड़े रा असवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी, ये मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी, हे राणा थारी डकारी सुनने अकबर धूजो जाए, हे राणा थारी डकारी सुनने अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रंगे खून सो नहालो बैतो जाए, उचाली मेवाड़ी तलवार वे गया खूनारा खंगाली राणा, सुनता ही जा जो जी, ये मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुत के लिए, ताली बजा बच्चे, बहुत अच्छा। एक के बाद एक सभी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, और हमारे साथ और एक छात्र है, तो उनको भी मिलेंगे, सभी प्यार से दिल से गीत गा रहा है, रेडियो तो कार्यक्रम तो पूरा हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन रहा है। चलिए और एक प्रस्तुति, बच्चे रेडी है, ओके शुरू करिए।
7: मेरा नाम बुरा नाम है, मैं कक्षा 9 से। हो अटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा, अटलो जन्म सुधारो, આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારા, આટલો જન્મ સુધારો. મઢુલે કામણ ગારે બાવલિયા તારે, મઢુલે કામણ ગારે, મઢુલે કામણ ગારે બાવલિયા તારે, મઢુલે કામણ ગારે. વતન ગણતી બાવાજી આવ્યા, વતન ગણતી બાવાજી આવ્યા, તર ભગવા મકાન ધારે બાવલિયા તારે. મઢુલી મઢુલી કામણ ગારે.
1: ધન્યવાદ કે લે, ધન્યવાદ. ઓર એક પ્રસ્તુતિ વાન્સ મોર, કડી કો આગે બઢાને કે લે કોઈ આ રહા હૈ, આ જાઓ, વેરી ગુડ. ચલિયે ચલિયે, ઓર એક સુનિયે પ્રસ્તુતિ. આજ તો મુજે જાને નહીં દે રહે, સભી બચ્ચે, ઇતના બચ્ચે આજ ભાગ લે રહે, તો મને આશ્ચર્ય લગ રહા હૈ, ક્યોંકિ કોઈ બચ્ચે તો બોલને કે તૈયાર નહીં, લેકિન રાજેશ્વર વિદ્યાલય કા જો બચ્ચે, માનના પડેગા. ચલિયે શરૂ કરીએ મંડળ કા આવાજ.

0: वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और एक प्रस्तुति, हमारा बहुत बच्चे इसलिए सबको कम कम समय मिल रहा है, तो चलिए और वंस मोर करते हुए इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए, हमारा होनहार बच्चे हैं और नाम रोशन करेंगे बड़े होकर, और स्कूल का तो नाम रोशन करते ही है, और विद्यालय में जो आते हैं, हमारा इसमें आईडी कार्ड में लिखा है निशा कुमारी, और इसका आईडी में लिखा है अध्याय, बस अध्याय आज तो शुरू होगा अध्याय कि नहीं, चलिए शुरू करते हैं। नाम तो अध्याय और निशा, चलिए शुरू करते हैं। निशा, और कौन सा क्लास में निशा?
1: सिक्स बी।
0: सिक्स, और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? निशा। गुड, निशा इसलिए उसका दोस्त है। चलिए शुरू करते हैं।
1: समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कब की बता दिया, तरह तरह के शाप मिले, अश्रु की बूंदे सूख गई।

0: लगा तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत जैन की नाम मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का प्रथम देखा, बलब्रीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीर हरण, अभिमन्यु का अकाल हरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भाई भीम विध्वंस
1: देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों को, आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब इनका आवाज सुनेंगे, इनका माँ बाप भाई बहन चाचा चाची नाना नानी दादा दादी सुनेंगे तो अरे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, आवाज का दुनिया में हम पहुंचे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सब हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आप सुनने जा रहे हैं और सब अपना नाम बता रहे हैं।
1: मेरा नाम ऐश्वर्या कुमारी है।
2: मेरा नाम पुष्पा कुमारी है।
0: चलिए शुरू करें।

0: चलिए वंच मोर सभी बच्चों को ध्यान देते हैं, सभी बच्चों का आवाज होना चाहिए। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा साथ आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं। और इतने बच्चे लगभग तो 20-30 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सभी नाम फटाफट दे रहे हैं और अपना क्लास का भी बता रहे हैं। सुना,
1: मेरा नाम रितिका कुमारी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम यशोदा कुमारी, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ।

0: सही में बहुत सुंदर प्रस्तुत प्रेरणादायी गीत है, संगीत है। तन को धुलाना साफ करना अति सहज है, लेकिन मन को धुलाना बहुत कष्ट होता है। लेकिन मन को मारना नहीं, मन के बारे में जान गए, मन मतलब अच्छा संकल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और एक प्रस्तुति हमारा दो तीन छात्रा है तो सुनेंगे उनका आवाज को, बुलंद से नाम बताएंगे सभी। ओके,
1: मेरा नाम प्रियांशी डिंगर, मेरा गांव मंडा, मेरी क्लास 5वीं बी।
2: मेरा नाम मनीषा कुमारी, कक्षा 5वीं बी से, गांव मेरा जुआद्रा।
3: मेरा नाम मीतल कुमारी, गांव मंडार से।
0: अभी शुरू करेंगे।
4: पार्वती बोली शंकर से, सुनिए बोल नाथ जी, रहना है हर एक जगह।

0: नाथ जी, ओ शंभु नाथ जी, ओ भोले नाथ जी, ओ शंभु नाथ जी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। और
2: मेरा नाम वसंत और मैं राजेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ मंडार से। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये

0: सदाम में तो राम चंद्र जपता तुम्हारा सदन मेरी राम जी सके देना जय सिया राम। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद लास्ट अंतिम प्रस्तुत लेंगे सभी को, लेकिन अल्प विराम का बाद।
2: आप खबर रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।

0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम प्रस्तुति की ओर जा रहे हैं और सभी, अभी तो मुझे लग रहा है एक ही प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय को देखते हुए सभी को चांस मिलेगा, एक एक अंतरा एक मुखड़ा भी देंगे, फिर सर को बोलेंगे तो बच्चे फिर देंगे प्रोग्राम, लेकिन आज समय को देखते हुए चलिए एक एक अंतरा सुनाएंगे सभी नाम का साथ।
1: धरती के शान तू है मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा मान है, भूल मत भूल मत।

0: मुझको वरदान। धन्यवाद
1: धन्यवाद के लिए धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, छोटे छोटे गुड़िया है। तो चलिए और एक इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाम बताइए।
2: मेरा नाम तनिषा है, मैं क्लास 7th की हूँ।
3: मेरा नाम विनीता है, मैं क्लास 8th की हूँ।

0: चलिए चलिए चलिए। और पीछे तो लाइन लगे हुए, हमारा बच्चों किसे छोड़ेंगे, इसे जाने के लिए मन नहीं कर रहा। चलिए एक प्रस्तुति।
1: मेरा नाम है मीनल जोशी, मैं देशभक्ति गाना गाना चाहती हूँ।

0: हाँ, तो सबको चांस मिल रहा है और हम जाने के लिए मन नहीं कर रहा, और एक दिन लगेगा, इतना बच्चे को हम क्या छोड़ेंगे, फिर भी और एक प्रस्तुति।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए,
2: मेरा नाम श्रुति है।
3: मेरा नाम चित्राक्षी कुमारी है।
2: हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे। हम

0: रहोगे कामयाब। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े होकर क्या बनेगी रे?
0: डॉक्टर बनूंगी।
1: मेहनत करना, मेडिटेशन करना है ना।
0: हाँ।
1: ध्यान करेंगे ना, मन बुद्धि और संस्कार के बारे में पता चला ना, मन बुद्धि और संस्कार आत्मा तीन काम करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय करती है और हमारा संस्कार बनती है ना। नाम बताओ? चित्रा की। और बड़ा क्या बनेगी तुम?
2: डॉक्टर।
1: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। इतने बच्चे, 1000 बच्चों में कम से कम तो 100 बच्चे आ गए, हम क्या करें? तो इसलिए और 2 प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए एक अंतर एक मुकड़ा सबका लिए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था श्री राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
2: आप सभी हमारे बीच उपस्थित हुए उनके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सुनत रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जय जय
1: जय जय लाला जी।
0: शाबाश प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तेने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
0: मजूरी? अहले मजूरी एक पंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?
2: इक्का।
0: एक रुपया?
2: पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है।
0: अबे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
2: इसीलिए दुखी हैं जैसे तुम।
0: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
2: इसीलिए सुखी हैं जैसे हम।
0: अरे चल देखे सुखी की सूरत।
1: लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, यह है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय।
0: अबे जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाए फिरता है और ऊपर चपाते की बात कर।

0: है।
1: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

रास्ते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

कभी हमने

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है लेकर आ गए हैं और पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे आदरणीय गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन कहानी, कैसे वो गुजरात के एक गांव से निकले और उनको जैसे परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति हुई, उन्होंने सोचा है कि अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करें, इस देश की सेवा करें और इस संसार की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। सेवा की भावना जो जागृत हुई है उनके अंदर, लेकिन उसको कैसे हासिल किया? जैसे आप सभी को याद होगा कि उनके बहुत सारी कठिनाइयां थी उनके लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि हर किसी को मंजूर नहीं था इस तरीके की सादगी और योगी जीवन जीने का। कैसे वो आगे बढ़े और वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, अपने जीवन को वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे उन्होंने कैसे जिया है, आइए आज जानते हैं आगे की कहानी को। जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। आदरणीय गंगाधर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको घसीट कर लेके गया है उसके बाद फिर क्या हुआ?
1: तो इसी दौरान एक जब मैं गुरुवार को सेंटर पे गया था, 85 की बात है, फरवरी मार्च की बात, तो वहाँ एक बुलेटिन आता था। उस टाइम तो ये मोबाइल की ये सुविधा नहीं होती थी, एक मधुबन से जो डायरेक्शन आता मुरली के अंदर लिखा हुआ आता था और वो दीदी पढ़ती थी और जिसको जो है डायरेक्शन देती, तो उसमें आया कि एक पदयात्रा का निकलने वाली है भारतवर्ष से, 13 पदयात्रा का आयोजन 1985 में, ये बुलेटिन आई। तो उसमें पढ़ा और फिर बोला कि शाम का समय था, हम सेंटर पर थे, तो कहा कि कौन कौन जाएगा, किसको जाने की इच्छा है तो हाथ खड़ा करो। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा जैसे दीदी ने, पुष्पा दीदी थी हमारी, तो हाथ खड़ा किया। तो फिर ठीक है, मैं ना जाना ना पहचाना, क्योंकि घर में तो छुट्टी थी नहीं, और वो कितनी लंबी यात्रा, 5000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से दिल्ली पद यात्रा, और करीब करीब 6 महीने समय। मैं फाइनल ईयर में था तो मार्च में मैंने एग्जाम देने के बाद जून से स्टार्ट होने वाली वो पद यात्रा। तो मुझे अभी वो फॉर्म भरना है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, घर से स्वीकृति पत्र चाहिए और खुद की स्वइच्छा चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, तो ये सारी बातें थी। तो ये फॉर्म भरना था, तो अब फॉर्म की तारीख लास्ट लास्ट थी और मधुबन वो फॉर्म भेजना था, वहाँ से सिलेक्शन होगा। और फिर तो लास्ट डेट आ गई, तो दीदी फिर मेरे को बोले कि आपका तो कुछ आया नहीं, तो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जाने नहीं मिलेगा। अब भाई से कैसे बोलूं क्योंकि वो तो विरोध थे, रोज बाबा को अमृत वेले 2 से 5 योग करके, बाबा आज तो मैं बोलूंगा, आज तो मैं बोलूंगा। तो जब भाई के सामने जाओ ऐसे जैसे मुंह बंद हो जाता था, तो ऐसे बहुत हुआ। अब लास्ट लास्ट है, अभी तो देना ही है, 2-4 दिन ही बाकी है। तो उस टाइम गुरुवार का दिन था, तो अमृत वेले में फिर अपना आज तो बोलूंगा ही। तो जैसे 2-3-4 दिन मैंने से आज तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन उस टाइम बाबा की मुरली चलती थी, मैं युक्ति रचता था कि मुझे अभी भाई मैं अभी गुजरात जाऊंगा और मेरी एग्जाम भी हो गई है, पापा को मिलने चला जाऊंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान ऐसी युक्ति रहता, तो मुरली में बहुत अच्छी बात आई, बच्चे कभी भगवान के बच्चे कभी झूठ नहीं बोल। अब ये बात आई, अभी मैंने युक्ति रची, लेकिन ये युक्ति मेरी वो बाबा की मुरली से, मैं बोला ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, बस तो वहाँ खत्म हो गया, मेरी युक्ति फेल हो गई। बाबा कहता है उसमें मेरा फायदा है, मेरा खुद की मनमत में तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इस तरह से मन में द्वंद्व चला और फिर मैंने बोला नहीं ये तो युक्ति है, तो वो दिन चला गया। फिर दूसरा दिन भी दूसरी युक्ति रही, वो भी फेल हो गई। फिर तीसरा अभी लास्ट लास्ट है, तो अभी क्या करूँ, अमृत वेले बाबा करो, मुझे तो जाना है पदयात्रा, कुछ भी हो जाए ये आपको करना। तो हुआ क्या कि लास्ट में जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो सारे ऑर्डर्स वगैरह आते थे, तो हम

0: तो मेरा भाई का पता नहीं क्या हुआ, अभी जा तो मैं भी चलूंगा। जो विरोध करने वाला, तो ऐसे हुआ। तो मैंने तुरंत मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में A4 का पेपर ले आया और उसको ब्लैंक पेज पे साइन करा दिया। लिखना क्या वो पता नहीं, तो लिखना है वो तो दीदी को बोलूंगा, इसमें जो लिखना है लिख दो। और मैं बस ऐसा, जैसे कि शाम को खाना बना एक तरफ रह गया और यहाँ हम 15 किलोमीटर बस ये काम पूरा करके जो भी है, तो भागा भागा भागा दीदी के पास जाके आया, दीदी मैं ये ले आया और उसमें सारा लिखा और मेरे को पद यात्रा में जाने मिला। फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको, उसे ले लिया और ये स्वीकृति मिल गई और इन्हें भेजा और मेरा फिर आना हुआ मधुबन और पद यात्रा का मेरा फाइनल हो गया। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत में चलते हैं, तो वो न जाने, अब मैं तो भाई के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता था, लेकिन बाबा का चमत्कार के कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये बात मेरे जीवन से बिल्कुल ये ज्ञान में आने से कि दृढ़ता है वह सफल, ये बात मेरी वहां से स्टार्ट।
1: आपके जीवन में आदर्श कौन रहे?
0: आदर्श तो फिर जैसे मैं 85 में जो पदयात्रा में आया, तो पहले तो हम गीता पाठ ही थे, तो गीता का ही सारा ये योगेश्वर और ये सब चलता था। लेकिन यहाँ जब आए तो मधुबन में आए तो पहले पहले मुझे सेवा मिली ओम शांति भवन, वो भी एक मजेदार कहानी है कि भाई अभी 6 महीना मुझे निकलना है, 6 महीना कोई अपने बेटे को कैसे छोड़ेगा, तो हम जाना है तैयार भी हो गया, तो भी मैं अभी भाई से हिम्मत नहीं कर पाया 6 महीना, लेकिन बाबा की ये मदद के उन्होंने मैंने बोला कि अभी मेरी डेट आ गई मुझे जाना है, तो वो मुझे वाजते गाजते सेंटर पर ले आए सभी परिवार को लेके, और वहाँ सेंटर पर ले, मैं इसको छुट्टी दे रहा हूँ आपने हमें नहीं बताया। फिर वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आए, रेलवे स्टेशन छोड़ने आए तो विदर्भ जोन है हमारा, तो विदर्भ जोन ने सभी सेंटर की इंचार्ज जो बहनें थी वो व्हाइट व्हाइट कपड़े, उन्होंने कभी देखा नहीं था बहनों को ब्रह्मा कुमारी को, तो व्हाइट व्हाइट 25 बहनें जो, क्योंकि पदयात्रा का जो ओपनिंग था ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे वो वहाँ ओपनिंग करने वाले थे, ज्ञान कलश देके यात्रा का शुभारंभ ओम शांति भवन में करने वाले थे। तो जो डेकोरेशन की, जो मधुबन में डेकोरेशन करने की ड्यूटी नागपुर जोन को दी गई थी, परिणाम स्वरूप हम सारा सामान लेके आ रहे थे, तो 25 मुख्य बहने थी सेंटरों की वो भी आ रही थी हमारे साथ, दीदी भी साथ में, तो हम दो भाई सिलेक्ट हुए थे, एक भंडारा से और नागपुर से, दो भाई थे तो हम आए और यहाँ आए, और फिर यहाँ हमें जो अभी आप देखोगे पांडव भवन में राजू भाई की जो ऑफिस है वो देवधाम करके था, वहाँ हमें रहने का भी मिला और वहाँ सारा डेकोरेशन का सामान, ऑफिस तो बाद में बनी और हम यहाँ आ गए मधुबन।
1: सो जैसे लगभग 1985 से आप संस्था में समर्पित रूप से अब सेवा,
0: हाँ फिर वहाँ ही रह गए और बीच में गए जो भी कार्यवाही थी कि भाई समर्पित के लिए किया है तो वैसे करके गए, और फिर दिल नहीं लग रहा था और रिजल्ट भी आ गया और सब, फिर यहीं रहने लगे।
1: तो आपने क्या पढ़ाई पूरी की थी?
0: मैंने BCom ग्रेजुएट किया, MCom मैं कर रहा था, तो MCom का सेकंड ईयर के बीच में ये घटना घटी और फिर मैंने
1: काम छोड़ दिया,
0: वो परीक्षा भी नहीं दिया और आधे में ही मैं फिर मधुबनी आ गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मन में यही है कि मुझे जीवन ऐसे ही जीना है, तो फिर यहाँ मधुबन आ।
1: क्या प्रेरणा रही समर्पित होने के लिए आपको?
0: समर्पित लेके बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, हम क्योंकि ज्ञान गीता पढ़ते थे तो ज्ञान में जो उसमें एक श्लोक आता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नर्क के द्वार, और तो नर्क के द्वार पढ़ते तो उस टाइम समझ में नहीं आता था, अब यहाँ ये पता है काम क्रोध लोभ मोह नर्क के द्वार है, तो चेतना से अंदर कॉन्शियस से भी ये नहीं होना चाहिए, ये अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो ये तो हिंसा है, और हिंसा है तो बाबा से प्यार कैसे जुटे, बाबा से नजदीक तो हम नहीं जाएंगे,
1: परमात्मा के नजदीक,
0: हाँ नजदीक परमात्मा से नजदीक हम नहीं जा पाएंगे, तो वो एक अंदर मन में चलता रहा, तो फिर ये जीना है, तो नशा खूब रहता था, बाबा ने जो कहा है तो मुरली बस सुनना है, और फिर हमें ड्यूटी भी शुरू शुरू में 15 दिन के लिए वहाँ शांतामणि दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती सेवादारी, उसके बाद फिर चंद्रमणि दादी ने भी हमें, क्योंकि और मनोहर दादी हमारे विदर्भ जोन की क्षेत्र की वो प्रभारी थी, तो उनसे सारा मेल मिलाप होता रहा और बड़े प्यार से, उसके बाद मैं टोली में गया, टोली डिपार्टमेंट है हमारा जो प्रसाद वितरण का, उसमें रामनाथ भाई के पास गया, रामनाथ भाई भी बड़े ज्ञानी थे, तो मुरली सुनना और एक

0: क्यूरेट करना, वो खुद भी ध्यान रखते थे और हमारा भी ध्यान रखते थे कि नहीं पढ़ाई पर मुरली सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, एक छोटी सी बुक पॉकेट में रखते थे क्योंकि वो सुना थे
1: जी।
0: तो आदर्श में फिर आपने जैसे पूछा बहुत अच्छी बात कि आदर्श कौन रहा, तो उसमें ये रहा कि हम जहाँ डिपार्टमेंट है उसके बाजू में दादी का नाश्ते का कक्ष है, तो दादी रोज आती थी हमारे पास, हमें रोज जैसे छोटे बच्चों की तरह, तो दो बातें जरूर पूछती थी, आपने अमृत वेला किया, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा बताओ, तो उनको बताना पड़ता था। उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो माइक भी नहीं था डिपार्टमेंट जो माइक आता था, तो और हमें ड्यूटी थी तो उस टाइम हम तोसा को पैकिंग वगैरह करते थे, मुश्किल से 2,000-2,500 की, तो लास्ट में पार्टी हुई 2,500 मानना सबसे बड़ी पार्टी, तो 1,500-2,000 ऐसे लोग आते थे पार्टी बाबा को मिल, तो हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम मुरली सुनने जा पाए, और मुरलियाँ हाथ में नहीं मिलती थी, तो एक ही मुरली दादी के पास ही होती थी और सुनाएंगे उससे ही हमें सुन, तो थोड़ा सा हम जाते थे तो प्रसाद वितरण के लिए जो ओम शांति भवन में, तो वहाँ माइक थे तो वहाँ सुन लेते, तो वो नोट कर लेते, वो नोट करके फिर दादी आएगी पूछेगी तो हम बताएं और दादी बड़े प्यार से, और इतना सा प्रसाद लेंगी ना, तोसा का एक उस टाइम तोसा ही होता था, मोन थार दो ही चीज होती, इतना लेंगे और खाएंगे और बड़े प्यार से चली जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ कि अब 2-3 साल हो गए मुझे वहाँ, 3-4 साल 5 साल ऐसा मुझे हो गया वहाँ, तो दादी जी ने जो ज्ञान स्वरूप प्रोजेक्ट है इसके बारे में सेवा का वृत्ति के कारण बाबा का मैसेज आया, तो फिर वो ज्ञान का जमीन ली गई और उसका डेवलपमेंट का काम चालू, तो अभी वहाँ कौन जाएगा ये सारा देख रेख करने के लिए, तो ये बात मधुवन में दादी ने सभी के सामने रखी। दादी जी का शाम को लगभग रोज क्लास होता था, तो उसमें मधुवनवासी होते थे और उसमें कहा था, सभी कहते थे भाई माँ दादियों को छोड़ के कौन जाएंगे, इतना मधुवन छोड़ के कौन, एक भावना थी ना बॉन्डेज, तो कोई जाना नहीं चाहता था, वो तो जंगल था ज्ञान सर, वहाँ भालू रहते थे तो कोई जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। तो अभी मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ तो निर्वर भाई और दादी ही सारा कारोबार संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो निर्वर भाई ने कहा कि वो जो बच्चा आया है ना टोली डिपार्टमेंट में, वो पढ़ा लिखा है दादी, उनको भेजो वहाँ, जो सारा हिसाब किताब का, फाइनेंस का, ये सारा मैनेजमेंट करना, लिख के हिसाब देना, अकाउंटिंग करना, तो इनको भेजो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर दादी जी हमारे पास रोज आती थी, तो दादी मेरे को पूछती थी मैं तेरे को एक दूसरी सेवा दूंगी, तो रामनाथ भाई हमें सहमत नहीं होते थे कि दादी मैंने हैंड्स तैयार किया है आप नहीं ले सकते, मना मेरी सहमति नहीं है ऐसा दादी रामनाथ भाई बताते, लेकिन दादी ने फिर रोज आती थी तो तेरे को एक बड़ी सेवा, इतना तोसा लेंगे और फिर चली जाएंगे। मैं बोला दादी रोज मुझे पूछ रही है, ऐसा 10-15 दिन चलता रहा तो मेरे से रहा नहीं गया, दादी जी आप जो कहेंगे मैं हाँ जी, वहाँ भाषा ही हाँ जी की थी, मेरे को ये आता है नहीं आता ये बात नहीं, जो दादी जी के वो करना है इसको। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक बार दादी ने कहा तुम 2 घंटे है ना ज्ञान सरोवर जाना, दादी इतनी रॉयल थी और हमें जैसे कि बच्चों का माँ का प्यार जैसे एकदम पालन पोषण, इतना स्नेह होता था दादी के सानिध्य में, आप लोगों ने भी जानते हो, तो उसके कारण मैं कहा कि ठीक है, और फिर मेरे 2 घंटे दिन में जाना और रामनाथ को बोला इसको 2 घंटे छुट्टी दो और ये हिसाब किताब करेगा और आपके पास भी सेवा करेगा, ऐसी मेरी सेवा चालू हुई। फिर वहाँ कारोबार बढ़ता गया, कहाँ ज्ञान सरोवर का कारोबार बढ़ा, तो फिर बोला कि 4 घंटा ऐसे करते करते फिर दादी ने कहा कि अच्छा इसको अभी रामनाथ तो दूसरा हैंड्स तैयार कर ले, और तो मेरा
1: ज्ञान सरोवर रह गया।
0: ज्ञान सरोवर का यज्ञ का बड़ा पहला प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का ऐसा वैसा उसका दायित्व तो मुझे दिया गया, जो फिर मैं उसके सारे उसी में रच बच गया और ज्ञान सरोवर का कार्य।
1: तो ये जो पीरियड आप देखते हैं 4 दशकों से अधिक समय से आप संस्था से जुड़े और सेवाएं कर रहे हैं मुख्यालय में रहते हुए, अपने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि या प्राप्तियों को आप अनुभव करते?
0: कहते हैं ना जो आदि में हमारा जैसे जन्मपत्री होती है ना ऐसा ही हमारा जीवन बन, तो हमारा जन्मपत्री में जैसे मैंने कहा कि 5-6 बजे से 7 बजे वो योग कर रहे थे, मैं वो गीता पाठशाला में एंट्रेंस हुआ नया और वहाँ योग चल रहा था, उसमें गीत बहुत सुंदर बज रहा था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए है, पावर और सुख का वर्षा देने आए, ये गीत बहुत सुंदर गीत है, अभी भी है अपने मधु अपने यहाँ। तो वो गीत से मेरा जन्म हुआ कि भगवान स्वयं आया है, हमें वर्षा देने आया, सुख का वर्षा देने आया। तो उसी से वो वाइब्रेशन और योग में बड़ी रुचि थी, रुचि रही। और हम 2 से 5 मधुवन में भी आए तो 2 से 5 हम योग करते थे और मज़ा आता था, यंग थे तो वो रुचि रही। तो अंदर में अंदर कि नहीं, मुझे बस बाबा को मैंने जान लिया और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब वैराग टाइप का, और बाबा जो कहे वो ही फॉलो करना, उसको स्टडी करते थे। और रामनाथ भाई हमें अच्छे मिले तो वो भी ज्ञान के चिंतन कराते, आज बाबा ने क्यों कहा, कैसे कहा, तो ये भी एक हमारा एक सपोर्टिव, और मुझे संग अच्छा मिला। तो इस तरह से कि जीवन में जो बाबा कहते हैं, अब बाबा आया तो हम अभी बाबा के, बाबा का सेवा और बाबा के भी ज्ञान योग करना, यही जीवन का उद्देश्य रहा। और दादी का सानिध्य जो मिला, वो जो एक प्रकाशमणि दादी जी का जो सानिध्य मिला, और मैं जब घर से, मेरे जो बैकग्राउंड में घर से मैं 6 किताब पढ़ के, तभी लगभग 10 बरस का होगा, तब से मैं घर से बाहर ही चला गया, तो माँ बाप का प्यार मुझे इतना नहीं मिला था। तो मैं कभी कहता था कि जैसे राखी बांधती थी बहने, तो मैं कहता था मुझे तो बाबा का चित्र देते थे और उसके पीछे स्लोगन लिखे थे, हाथ से लिखा हुआ स्लोगन देते थे, उस टाइम ये सब प्रिंटिंग का नहीं होता था। तो एक जब राखी आई तो मैंने कहा कि मुझे तो मम्मा का चित्र आना चाहिए राखी में, क्योंकि मैं मम्मा माँ है मेरी, वो माँ का तो प्यार मुझे नहीं मिला, तो ये माँ मेरी में, तो वो सच में वही मेरे को मम्मा का चित्र के साथ वो स्लोगन लिख के आया। तो उसे और विश्वास बैठता गया। तो दादी ने जैसे माँ का प्यार दिया तो वो बॉन्डेज एक बहुत हो गया, और ये मेरा आदर्श रहा कि दादी ने जो कहा वो कहा, और वहाँ भाषा ये रही कि जो बड़े कहे उसको हाँ जी करना, ना जी करना, ये भाषा नहीं। ज्ञान में सफल होना है तो जो बड़ों ने कहा उसमें हमारा कल्याण, ये आदर्श रहा और यही ज्ञान से हम आगे बढ़े।
1: जी, सो भाई साहब वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, कौन सी सेवाएं संभालते हैं यहाँ पर?
0: बात यह हुई कि जब ये ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद फिर ये शांतिवन का जो बातें चलने लगी, तो दादी ने कहा कि शांतिवन में अभी करना, तो यहाँ भी कोई आना नहीं चाहता, भगवान नीचे कौन आएगा, यहाँ भोपाल भाई और अशोक भाई करके थोड़े रहते थे और यहाँ खेती बाड़ी हुआ करते। तो मेरे को बोला कि आपने तो सारा किया, अकाउंट का सारा सब कुछ दिया है, तो आप भी नीचे जाओ और ये कारोबार। तो फिर मैं पहली बार दादी को थोड़ा सा सहमे आवाज से बोलने लगा, दादी मुझे दूसरी सेवा दे दो ना, क्योंकि हम मन में तो ये था कि अभी मधुवन छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, तो ये मन में था। दादी को कहा तो दादी ने कहा अच्छा, तो रमेश भाई थे हमारे जो अकाउंट में, तो उससे तो छुट्टी ले ली थी, और लेकिन सेवा में मुझे रखा था नीरज भाई ने, दादी और नीरज भाई संभालते थे उस टाइम, तो रमेश भाई तो मधुवन से आते थे अकाउंट के हिसाब से, तो मैंने छुट्टी ले ली थी, अभी मेरे कोई दूसरी सेवा दे दो दादी, लेकिन मधुवन में, भले झाड़ू पोछा की दो लेकिन मधुवन में रहेंगे। दादी ने पहली बार मुझे थोड़े मतलब डर डर के भी दादी को ऐसे मैंने बोला, कभी ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ ऐसा बोलेंगे तो घर भेज देंगे, ये डर रहता था मधुवन में हमें घर भेज देंगे, इसलिए बोलने नहीं होता, लेकिन मैंने बोल दिया। तो दादी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर दादी मुरली सुना कर वो आंगन में बैठती आते थे, फिर 2-3 दिन हुआ, फिर मेरे को बुलाया, तुमको है ना वो सेवा करनी है, अभी अकाउंट की ही करनी है, लेकिन शांतिवन में जा, यहाँ दर गर्मी वहाँ ठंडी, तो मन में ये कहने हम नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बार बोला तो अच्छा तू रमेश से मिल लेना, रमेश भाई ने बोला कि नहीं तुमको ही करनी है ये सेवा, तुमने ये ज्ञान सरो तेरे को आता है सब तुम कर। लेकिन मैंने बोला भाई मुझे सारा हिसाब किताब करना, कोई कागज मिलता है वो उसमें सारा मगज उसमें जाता, ज्ञान योग छूट जाता है मेरा। मन में ये था। तो फिर ठीक है, ऐसे जो भी हुआ उसके बाद फिर मैंने कहा, तो दादी ने फिर से मुझे जो महादेव नगर है ना, जो चंद्रिका दीदी का उनका मकान का ओपनिंग था, उसके पूर्व दिन जो दादी दूसरे दिन ओपनिंग करने जाने वाली, तो रात को मीटिंग हुई, इसमें ये नीरज भाई, दादी, करुणा भाई और वही लोग संभालते थे ऊपर मधुबन में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको अभी ज्ञान सरोवर की सेवा जो से मुक्त है। तो करुणा भाई ने बोला कि हमें भी एक सीनियर भाई चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा कारोबार है, जब साउंड का इसका सारा उसका भी अकाउंट करना है तो मुझे दे दो। तो ऐसा डिसाइड हो गया। तो दूसरे दिन मेरे को दादी से, अशोक गाबा जो अभी है, उसने मेरे को बोला कि तुमको अभी ज्ञान सरोवर में करुणा भाई के पास सेवा कर। तो मेरे मन में बोला अच्छा ठीक है, मधुवन तो रहने मिला ऐसा करके। हाँ, दादी जी ओपनिंग करने चली गई, लेकिन तीन दिन तक मन में खुंदक रही, मेरे को तो मधुवन रहता फिर ज्ञान सरोवर ये। तो इस तरह से मन में एक जो मधुवन मना बाबा का, उसमें गीत बहुत सुंदर कि मधुवन स्वर्ग भूमि है और स्वर्ग भूमि को छोड़ के अभी मधुबन में मुख्य मुश्किल से हमें मिला है मौका, फिर से मेरे पास छोड़ के कैसे लेकिन सेवा। तो ये एक मन में थोड़ा सा था, तो क्योंकि यज्ञ में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं, भगवान तो आबू में ही आएगा, कहीं नीचे थोड़ी आएगा, नीचे जाओ फिर बाहर वाले लोगों से काम कराना ये सब, थोड़ा हम अपने परिवार में पवित्र भाई बहनों के साथ रहना संग ये सब अच्छा लगा। तो मैंने ये भावना मन में थी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा तो फिर मैं ओम शांति मीडिया का कारोबार, पहले तो मैं अकाउंटिंग करता रहा और मीनवाइल विंग की सेवा आरंभ हुई। तो विंग की सेवा में फिर मीडिया में था, तो मीडिया में फिर मुझे ये दायित्व दिया गया, जो हमारी मासिक पत्रिका ओम शांति मीडिया निकलती है उसका उत्तरदायित्व दिया गया, क्योंकि मुझे तो कोई जर्नलिस्ट का नॉलेज नहीं था। लेकिन दादी जी ने मुझे बुला के कहा कि तुमको अभी ये सेवाएं वृद्धि हो रही है तो ज्ञानामृत तो है ही, लेकिन ओम शांति मीडिया में ऐसा समाचार सुनाना है और दो बातें याद रख, तुझे ये सब लिखना करना। उस टाइम क्या है कि दादी को जिसके ऊपर नजर हो जाती थी ना, ये काम ठीक कर लेता सेवा ठीक, तो उसको वो दादी सेवा देती जाती थी। तो हम उस टाइम तो पेपर तो पढ़ते नहीं थे, बाबा की महावाक्य में आता था बच्चे है ना रावण की मुरली पसंद करते ज्ञान का मुरली, कि रावण बाबा कहते हैं कि उसमें जो खराब आजकल के न्यूज़पेपर है उसमें तो खबरें ऐसी आती हैं जो, तो हमने वो टच नहीं किया था 10 साल से, ये रावण की मुरली हम टच नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिस राह पर हमें जाना नहीं उस राह का समाचार सुन के क्या करेंगे, ऐसा भाव मन में आता था। तो लेकिन हमें सेवा ही, वो मेरे जीवन में ये रहा कि समर्पित होने के बाद भी जो मेरी कमजोरी थी, मेरे को जो कम आता था वही मेरे सामने पेपर होता था, वही मुझे सेवा देते थी दादी। तो अकाउंट में भी हमारे फैक्ट्री में तो एक अकाउंटेंट रखते थे और उसको पैसे देते थे, वो अकाउंटिंग करके चला जाता था फैक्ट्री से तो सारा। लेकिन यहाँ मेरी कमजोरी थी अकाउंटिंग करना, ये पढ़ना, हालांकि मैंने पढ़ाई की थी अकाउंटेंसी में, लेकिन यही करना ये माथा पच्ची है। तो यहाँ भी मुझे वही डिपार्टमेंट मिला, ज्ञान सरोवर का सारा हिसाब किताब ये सब करना, तो जो मेरी कमजोरी है वही मुझे सेवा मिलती थी। अब ये मैं सोचा कि अभी ये रावण की मुरली मिलती थी तो दादी ने मुझे वही सेवा दे दी, लेकिन दादी यहाँ तो सेवा ईश्वरी सेवा समझा। तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया और अभी कौन सिखाए कैसे लिखना है क्या करना है, तो मैं लाइब्रेरी में गया और एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें राजस्थान पत्रिका होती थी, भास्कर नहीं आया था तब, दिव्य ज्योति नव ज्योति वगैरह होते थे, तो वो मैंने पढ़ने लगा। तो उसमें से मैंने सुना कि न्यूज़ कैसे बनती है, अब कौन सिखाए, यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं। तो मैं पढ़ा तो उसमें दो चार बातें थोड़ी समझ में आई, एक तो उसमें नाम लिखा है कि कहाँ का है, भीनमाल का है या रेवदर का है, न्यूज़ का नाम लिखा रहता था। दूसरे फिर ये बात समझ में आई कि कौन से संदर्भ में है, तो भाई ये मेला है, ये कृषि मेला है, गऊ मेला है, उसमें इन्होंने ये बात कही। फिर कौन VIP है, तो उसके वो फिर स्थान व्यक्ति कौन बोल रहा है, ये 5 बातें। तो ये बात समझ में आई, तो वो उसके आधार से मैंने, मेरे को ड्यूटी देती थी दादी ने कि आपको 15-15 दिन में चलाना है। तो मीनवाइल फिर मुझे, मैंने लिखा और फिर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो अभी शरीर छोड़ा, कमल दीक्षित जी करके, आप भी जानते होंगे, तो वो कमल दीक्षित जी जो भोपाल में रहते थे और राजस्थान पत्रिका के एडिटर भी रहे हुए थे, तो वो मीडिया कॉन्ट्रोवर्स में और बाबा के यज्ञ से जुड़े हुए। तो फिर करुणा भाई ने कहा कि भाई ये है तो इनके साथ मिलो और सीख लो जो भी है, तो मैं सीखा, फिर वो मेरे को हेल्प करते थे। तो A4 साइज का जो पेपर है ना उतना ही ओम शांति मीडिया निकलता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ज्ञानामृत में चला। तो अब जर्नलिस्ट ना होने के कारण और हमारी हिंदी भी एक साहित्य के रूप में लिखना और बोलना वो अलग बात होती है, तो एक लाइन में मेरी 17 मिस्टेक होती थी वो कहे ठीक करो, फिर वो बड़े प्यार से कहता था कोई बात नहीं, और वो ऐसे ही छप जाती थी गलतियां, बिंदी नहीं लगा कोई तो, लेकिन वो मुझे ढांच दे सीख जाएगा सीख जाएगा, और वो फिर चले जाते थे, दो चार दिन आते थे फिर चले जाते थे, तो ऐसा महीने में एक दो बार आते थे। तो ऐसे करके मैंने फिर ये जर्नलिज्म बाबा ने, बाबा ही कहो समझ लो, मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारी विशेषता, यहाँ सच कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जिसको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का बारे में एक अगर सही में अगर समझना चाहते हैं तो ये हम स्वयं परमात्मा ही सब कार्य कराते हैं और परमात्मा ही नियुक्त करते हैं, परमात्मा ही उसको वो विशेषता भरते हैं, चाहे उसके लौकिक योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो योग्यता भर के उसको परफेक्ट बनाते हैं। और एक सुंदर कारोबार ये ब्रह्मा कुमारी में, और मेरे को भी ये दायित्व मिला जो आज भी चल रहा है, ओम शांति मीडिया पत्रिका जो अभी पहले पाक्षिक थी, अभी इस साल से हमने उसको मासिक किया है, और सारे गांव-गांव में जाती है और विदेश में भी जाती है, और लाखों पाठक है उसके, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही है, और उसमें ईश्वरीय सेवा समाचार भी बड़े, जो हमें कहीं मालूम नहीं है तो हम एक दूसरे से पढ़ के भी और सुन के भी, और ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा चल रहा है। और वर्तमान समय इसका दफ्तर अभी शांतिवन में और आनंद भवन में, और मैं वही सेवा करता हूँ, एडिटिंग की सेवा करता हूँ। तो बाबा ने मुझे जो कुछ नहीं आता था, तो जो भी इतनी सेवा बदलते बदलते तो मुझे एडिटर बनाया, और एडिटर से और एडिटर ही नहीं लेकिन सारा मैनेजमेंट पे करना, सारा डेवलप करना। आज हम मेरे साथ 10-12 भाई बहन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और समर्पित रूप में हम ये कारोबार चलाते हैं शांतिवन में आनंद भवन।
1: बहुत सुंदर जर्नी रही भाई जी, एक समर्पण भाव और एक निश्चय, और जब ज्ञान की समझ होती है और क्लैरिटी मिलता है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो जीवन में दृढ़ता अपने आप आती है, और हम जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। या आपकी इस जीवन यात्रा से हमें ये समझ में आता है, आज आपने अपनी समय निकाल करके आप आए, और एक योगी जीवन क्या होता है, एक लौकिक काम करते हुए भी एक अलौकिकता को उसमें दर्शाना, और अलौकिकता अपने जीवन में जब आता है लौकिकता अपने आप जो चली जाती है और हम खुद एक आदर्श बन जाते हैं, ये भी आपने हमें आपके इस जीवन की यात्रा से परिचय कराया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत आपको भी, रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों, जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम से आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौर परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौर परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौर परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
9: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
10: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
10: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
3: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
9: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
10: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
9: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
10: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
10: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
9: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
2: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
9: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
1: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
1: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
11: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
2: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाई साहब के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाई साहब रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
15: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाई साहब का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां, वो प्यार कहां खो जाता है। खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना। बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आशियाना में इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे तुलसी पर बहुत ही अच्छे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे कि अपने दृष्टिकोण को बदल करके तो देखिए, खुशियाँ बनी रहेगी। और रेसिपी में परवल का अचार जो बनाएंगे जरूर बना करके खाइएगा। और फिर जीके, अब आप इंतजार कर रहे हो ना कि उषा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आशियाना जरूर सुनना। अरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपने बच्चों को संस्कारशील बनाना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा सर्विस करते हुए देखना चाहते हैं तो आशियाना जरूर सुनना। तो मनीषा जी भोसले, जिनका मैं परिचय आपको दे रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी के 10वें वंशज है, उनके कुल की कुल बहू है और आप साइकोलॉजिस्ट है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको उसी समय बताएंगे जब आप जीके सुनेंगे। तो मनीषा जी बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे कि किस तरह गर्भवती बहनें गर्भ में ही अपने बच्चे का ख्याल रखे तो बच्चा आपके मन पसंद का होगा, संस्कारशील बनेगा। और जो आप करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस, बिजनेस, वो करेगा, लेकिन शुरुआत में 13 सप्ताह बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत के जो 13 सप्ताह होते हैं उसी समय दिमाग डेवलप होता है। और अगर इस समय आप पॉजिटिव किरणें अगर देते हो आप अपने बच्चे को तो आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो, उसके बाद भी ध्यान देना है। तो ये सारी बातें मनीषा जी के द्वारा जानेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसके संबंध। बच्चे के जन्मते ही संबंध उसे सौगात के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये संबंध ही उसके भविष्य की उन्नति का आधार बनते हैं। संबंध वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द रहकर व्यक्ति अपने अंदर अनेक योग्यताओं कलाओं का विकास करता है। श्रेष्ठ संबंधों के माध्यम से ही छिपे हुए आंतरिक मानवीय मूल्यों व दैवीय गुणों को जीवन में अनुभव किया जा सकता है। संबंध वह सीढ़ी है जिसके सहारे व्यक्ति कुशलता पूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए कहा गया है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और सुखी रहना हो तो अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

कहानियों। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। जैसा कि मैंने गीत की लाइन गुनगुनाई है, तुलसी मेरे आंगन तुलसी का झाड़। तो तुलसी के ऊपर आपको नुस्खे दूंगी। तुलसी वैसे ही बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और तुलसी को पवित्र भी माना जाता है। दूषित जल में तुलसी की हरी स्वच्छ पत्तियां डाल दीजिए, आप जल का दूषितपन समाप्त हो जाएगा। 4 लीटर पानी लीजिए, 4 लीटर पानी में 25-30 तुलसी की पत्ती डालिए। अब कैसे डालेंगे वो आपको बता रही हूँ। पानी छानते हैं ना, छानते समय ही कपड़े में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए 25-30, ठीक है। फिर 4 लीटर पानी उससे छान लीजिए ताकि तुलसी का कस पानी में चला जाए, तो पानी का दूषित समाप्त हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएंगे। तो कितना अच्छा नुस्खा है, कोई खर्चा ही नहीं है, और तुलसी तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। आप 4 लीटर पानी लीजिए, पानी छानते समय कपड़ा, जो कपड़े से छानते हैं ना, स्वच्छ कपड़े से, उस कपड़े में 25-30 तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। फिर आप पानी छानिए तो तुलसी का कस पानी में उतरेगा और पानी स्वच्छ हो जाएगा, तो दूषित पानी के होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तुलसी की पत्तियों में खाद्य वस्तुओं को विकृत होने से बचाने का अद्भुत गुण है। तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी खाना बचता है हमारा, तो उसमें या तो डाब डालते हैं या तुलसी के पत्ते। अब डाब तो हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन तुलसी हर जगह मिल जाती है, क्योंकि तुलसी, भले आप शहर में जाओ, गांवों में जाओ, तुलसी के पौधे सभी अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो बस तुलसी के पत्ते खाद्य सामग्री में डाल दीजिए तो खाद्य सामग्री विकृत नहीं होगी, और उसको बाद में आप खा सकते हैं, शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। ग्रहण में भी ऐसी मान्यता है। तो तुलसी के पत्ते इस तरह फायदेमंद है, और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है ना, उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए आज से ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो गमला लाइए और गमले में लगा दीजिए। इसका ज्यादा खर्चा नहीं है, और गांवों में तो खुली जगह भी बहुत होती है, तो आप एक छोटी से जगह देख करके वहाँ एक क्यारी बना दीजिए और क्यारी में तुलसी लगा दीजिए। तो इस तरह भी आप तुलसी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके घर में कोई बाल्टी है, बाल्टी टूट गई हो, फूट गई हो, तो उस बाल्टी में भी आप खाद भरकर, मिट्टी भरकर के तुलसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना फायदा है कि तुलसी का पौधा जहाँ पर भी होता है उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान दीजिएगा। और दूषित जल सेवन से बच्चों के पेट में कृमि से बचने के लिए अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक अवस्था के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए। दूषित जल सेवन करने से बच्चों के पेट में कृमि हो जाती है, और फिर पेट दर्द होता है, तो कृमि ना हो इसके लिए आप इस नुस्खे को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक आवश्यकता के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए, तो बच्चों के पेट की समस्या से भी बच्चे बचे रहेंगे, और पेट दर्द भी नहीं होगा, कृमि भी नहीं पड़ेंगे, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरह सारे ही नुस्खे लाजवाब है, इनको आजमा करके स्वयं भी ठीक रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए फिर से सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहे। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा दृष्टिकोण में बदलाव करके तो देखो। कहते हैं कि दृष्टि बदली तो नजरिया, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगी खुशनुमा जीवन में दृष्टिकोण का किस तरह बदलाव करेंगे, इस बारे में बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको सुना रही हूँ। एक बार एक यूनानी दार्शनिक का शिष्य, जिसे उसके गुरु ने 3 साल तक हर उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा जो उसका अपमान करता था, जब परीक्षण की अवधि समाप्त हो गई तो गुरु ने उससे कहा, अब तुम एथेंस जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब शिष्य ने एथेंस में प्रवेश किया तो उसे छत पर एक ज्ञानी पुरुष बैठा मिला जो हर आते जाते व्यक्ति को अपमानित करता था। उसने शिष्य को भी अपमानित किया तो वह शिष्य जोर से हंसा। ज्ञानी पुरुष ने उससे पूछा, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रहे हो? शिष्य ने उत्तर क्या दिया होगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप अंदाजा लगा सकते हो? चलिए मैं ही सुना देती हूँ कि शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इस तरह की बात के लिए लोगों को पैसा देता रहता हूँ और तुम मुझे ये मुफ्त में दे रहे हो। नगर के भीतर प्रवेश करो। ज्ञानी पुरुष ने कहा, ये नगर तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी में डेजर्ट फादर्स ने, जो कि सन की पात्रों का एक संकलन था, स्किटी के निकट रेगिस्तान में जाकर के पूजा और त्याग का जीवन जीते हुए त्याग एवं परेशानियों के महत्व को दर्शाने वाली ये कथा बताई। हालांकि वह सिर्फ कष्ट नहीं था, उसने शिष्य को ज्ञान के नगर में प्रवेश दे दिया। कठिन परिस्थितियों में उतने प्रभावी ढंग से जीने के पीछे दृष्टिकोण में बदलाव लाने की स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की उसकी क्षमता मुख्य कारण था। नजरिए में बदलाव लाने की क्षमता एक अत्यंत ताकतवर एवं प्रभावशाली उपकरण है जो हमें जीवन में रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। दलाई लामा ने बताया, चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता बहुत लाभकारी होती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति कुछ अनुभवों, कुछ त्रासदियों की मदद से दिमाग को शांत कर सकता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर बात और घटना के विभिन्न पहलू होते हैं, हर चीज सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए मेरे मामले में मैंने अपना देश खो दिया, उस दृष्टिकोण से ये बहुत दुख की बात है। इससे भी ज्यादा दुख की और कई बातें हुई है, हमारे देश में बहुत तबाही हो रही है, परंतु मैं अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि यदि स्थिति यथावत होती, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो बहुत से अवसरों पर आज सिर्फ चलते रहते हैं, आप दिखावा करते रहते हैं। परंतु जब आपके सामने निराशाजनक विपरीत परिस्थितियां आती है तो दिखावा करने का समय नहीं मिलता, तो उस दृष्टिकोण से वह दुख भरा अनुभव मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये बात कौन कह रहे हैं? दलाई लामा। मैं नहीं कह रही हूँ, दलाई लामा। तो शरणार्थी होने के नाते कई नए लोगों से भेंट होने के अवसर मिलते हैं, भिन्न धार्मिक परंपराओं और अलग अलग व्यवसाय के लोग मिलते हैं, जिनसे यदि मैं अपने देश में रह रहा होता तो कभी ना मिला होता, तो इस नजर से ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। ऐसा देखने में आता है कि जब कभी समस्या आती है तो हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। हमारा पूरा ध्यान उस समस्या के बारे में चिंता करने पर होता है और हमें ऐसा लगता है मानो उस तरह की समस्या सिर्फ हमें ही हो रही है। इससे व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है, जिसके कारण समस्या और भी बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से चीजों को अलग नजरिए से देखने से काफी मदद मिलेगी। जैसे ये सोचना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की समस्या का सामना किया है और जिन्हें इससे भी बुरे अनुभव हुए हैं। किसी विशिष्ट बीमारी या पीड़ा के समय इस तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत लाभकारी हो सकता है। पीड़ा के समय निश्चित रूप से शांत रहने के लिए औपचारिक ध्यान का अभ्यास करना बहुत कठिन होता है, परंतु यदि आप तुलना करें उस स्थिति को किसी अन्य नजरिए से देखें, तो कैसे भी कुछ हो ही जाता है। अगर आप सिर्फ उस घटना को देखते रहेंगे तो वह और भी बड़ी लगने लगती है। अगर आप किसी समस्या को बहुत नजदीक से बहुत ध्यान से देखने लगेंगे तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ज्यादा बड़ी घटना से उसकी तुलना करेंगे तो वह आपको छोटी दिखाई देगी और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। तो समझे, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। समस्याएं तो आएगी, लेकिन हमें किस नजरिए से उसे लेना है, किस दृष्टिकोण से उसे लेना है और उसका सामना करना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो आइए अभी तो सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
3: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। ये खुश मिजाज दोस्ती का बंधन भी बड़ा अजीब है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। ये शेर तो ऐसे ही मुझे याद आ गया तो आपको सुना दिया है। हर शेर में अच्छे अच्छे भाव छिपे हुए होते हैं, तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सुना ही देती हूँ आप सभी को कि इसके भाव कितने सुंदर है। तो हम बात कर रहे थे दृष्टिकोण के, दृष्टिकोण किस तरह का रखना वो अपने हाथ में होता है। मान लीजिए किसी पर आपको गुस्सा आता है, आहत होने के बाद स्वाभाविक और तत्काल प्रतिक्रिया गुस्सा आना है। बहुत से मामलों में दुख होने के बाद सिर्फ गुस्सा आने की बात नहीं है, आप उस घटना के बारे में बाद में सोचते हैं और हर बार उसके विषय में सोच करके गुस्सा आता है ना? इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जिस व्यक्ति के कारण आपको गुस्सा आता है उसमें कुछ अच्छी बातें कुछ गुण भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस बात से आपको गुस्सा आता है उसी ने आपको कुछ अवसर भी दिए हैं, जो अन्यथा आपके अपने नजरिए से मिलना संभव नहीं थे। तो प्रयास करने से आप एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इससे लाभ होता है। परंतु यदि आप उस व्यक्ति की अच्छी बातों को देखना चाहें लेकिन उसमें ऐसा कुछ न हो, तो यहाँ मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ समय निकाल करके उस परिस्थिति पर किसी अलग नजरिए से विचार कीजिए, परंतु ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अत्यंत पेने और प्रत्यक्ष ढंग से। आपको तर्क करने की अपने समस्त सामर्थ्य का उपयोग करके उस स्थिति को जितना हो सके निष्पक्ष रूप से देखना होगा। उदाहरण के लिए आप ये सोचे कि जब आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है तो वह आपको 100% गलत दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपको कोई अच्छा लगता है तो उसमें आपको 100% गुण ही नजर आते हैं। परंतु ये सोच सच्चाई से मेल नहीं खाती। यदि आपका मित्र, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपको किसी तरह की हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो अचानक आपको लगेगा कि आपके मित्र में 100% अच्छे गुण नहीं है। इसी तरह आपका शत्रु, जिसे आप ना पसंद करते हैं, यदि आपसे क्षमा मांगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो शायद आपको वह 100% बुरा नहीं लगेगा। तो बदल गया ना दृष्टिकोण। इस तरह समय समय पर हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कोई अच्छा गुण नहीं है, तो भी यह सच है कि कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता। अगर आप कोशिश करें तो आपको उसमें कुछ सद्गुण मिल जाएंगे। किसी को बुरा या नकारात्मक मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के असली स्वभाव के कारण नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक सोच पर आधारित धारणा के कारण है। इसी तरह जिस परिस्थिति को शुरू में आप 100% नकारात्मक मान लेते हैं उसमें भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। परंतु मेरा ख्याल है कि अगर आपको खराब परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल भी जाए तो ये काफी नहीं होता। आपको इस विचार को पुष्ट करना चाहिए, आपको वह सकारात्मक बात तब तक बार बार याद दिलानी होगी जब तक आपकी भावना न बदल जाए। सामान्य तौर पर बात करें तो अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति हो तो किसी विचार को एक या दो बार अपनाने से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। सीखने, प्रशिक्षण लेने और नए दृष्टिकोण से अभ्यस्त होकर ही आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और इस तरह अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। तो यह हुआ आज का खुशनुमा जीवन की बातें। तो बस हमेशा अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखें और सदैव खुश रहे। तो आइए, समय हो चला है फिर से आपको एक गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में परवल का अचार। परवल की सब्जी तो हम बनाते ही है, आइए आज आपको अचार बनाना सिखाएंगे। तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और सामग्री लिखिएगा 250 ग्राम परवल, फिर आप लीजिए 2 चम्मच राई के, 2.5 चम्मच सौंफ लेना है और 1.5 चम्मच लीजिएगा जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, थोड़ी सी हींग ले लीजिए चुटकी भर और 3 कच्चे आम ले लीजिए, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो ये हो गए परवल के अचार की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। परवल 250 ग्राम, 2 चम्मच ले लीजिए राई और 2.5 चम्मच सौंफ लेना है, फिर आप 1.5 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए और कच्चे आम ले लीजिए 3, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद परवल का अचार कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है परवल का अचार। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। परवल, राई, सौंफ, जीरा, हल्दी, हींग, कच्चे आम, सरसों का तेल और नमक। आइए अब अचार बनाएंगे। आप पहले तो परवल की धुलाई कर लीजिए, पोंछ लीजिए इसको स्वच्छ कपड़े से, फिर परवल को खुरच कर गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। फिर राई बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीस लीजिए। अब आप एक पतीले में पानी उबाल लिए और जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ठीक है, जिससे परवल हल्का नरम हो जाएगा। इसे अब धूप में कपड़े पर सूखने डाल दीजिए। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम को कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो इस तरह परवल का अचार बन गया है। अगर आम न हो तो, आम नहीं मिलता हो तो अमचूर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इस मिश्रण को आप एक बर्नी में भर दीजिए, यदि तेल कम हो तो ऊपर से तेल डाल दीजिए और 8-10 दिन धूप दीजिए। धूप में लगा करके फिर आप हींग डालिए बारीक, ठीक है, बारीक थोड़ी सी हींग डालिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और बस फिर आप खाइए और खिलाइए। तो इस तरह परवल का अचार बनाया जाता है। पुनः विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परवल की धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके खुरच करके गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। फिर राई को बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीसना है। अब आप एक पतीले में पानी उबालिए, जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए ताकि परवल हल्के से नरम हो जाए। फिर इसे अब धूप में कपड़े पर सुखाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है, स्वच्छ कपड़े पर सुखा दीजिए और धूप लगाइए इसको, ठीक है। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम अगर हो तो कद्दूकस करके डालिए, नहीं है तो बस आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए इसमें। और इस मिश्रण को एक बर्नी में भर दीजिए और इसमें अगर तेल कम हो तो डाल दीजिए, तेल तरमा रखिए, मसाला डूब जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको 8-10 दिन धूप में लगाइए बर्नी को। उसके बाद बस आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके अब आप खा सकते हैं। तो ठहरिए, खाएंगे तो जरूर लेकिन पहले क्या करेंगे, आप सभी को पता है, तो लीजिए एक सच्चा थाली। थाली में परोठे रखिए क्योंकि अचार के साथ परोठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो परोठे रखिए, अचार रखिए, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा परवल के अचार का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
5: अर्जिया सारी मैं

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे

जो भी तेरे दर आया झुकने जो सो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आ

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया।

मत मुकदर की कर दो मौला, टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, टूट के बिखर

सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितने

जब तू रूबरू आया नजरे ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, हो सर झुका के।

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला। मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आइए, अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, और आप छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके ही वंशज है। तो मनीषा जी भोसले हमारे साथ बने हुए हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो आपको पहले ही बताया है कि आप छत्रपति शिवाजी के 14वें वंशज हैं, उनके ही कुल की बहुरानी हैं। फिर BIT आपने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं, और आप MBA HR एंड मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, और माइंड साइकोलॉजी का भी आप काम करते हैं, सोशल वर्कर भी है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब किन किन विशेषताओं का आपके सामने बताऊं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आइए उनसे मिलेंगे। और आज हमको बहुत ही अच्छे सामान्य जानकारी देंगे कि गर्भवती बहनें, जैसे कि शिवाजी जब जीजाबाई के गर्भ में थे तो किस तरह जीजाबाई ने शिवाजी को अच्छे अच्छे संस्कार दिए गर्भ के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बातें हमको बताएंगे। मनीषा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार सभी श्रोतागणों का।
1: तो मनीषा जी आप हमें बताइएगा कि किस तरह गर्भवती बहनें जो है वो अपने बच्चों को गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे सके।
2: पहले तो गर्भ संस्कार, हम तो पहले से जानते हैं कि शिशु एक चैतन्य जीव है जो अपनी माता के गर्भ में हर बातें माता की ग्रहण करता है, सुनता है, और जो भी व्यवहार है वो सभी आदि को ग्रहण करता है। हमारे पूर्वजों के काल से ही ये बातें सुनते आए हैं कि गर्भ संस्कार होते हैं, और वो हम जानते हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। जैसे कि आपने कहा कि शिवाजी महाराज की माता छत्रपति शिवाजी को अपनी माता जीजा माता ने उनको

0: बच्चों से जुड़ा होता है। वो माता की हर बात को ग्रहण करता है, माता की हर बात इंक्लूडिंग माँ का खाना पीना, विचारधारा, मानसिक स्थिति और परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में रह रही है, इन सभी बातों का सूक्ष्म असर अपने बच्चों पे पड़ता है।
1: गर्भ में भी चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो,
0: वो सभी परिस्थिति को वो महसूस करता है। चैतन्य जीव है तो उसको हर चीज ग्रहण कर लेता है। तो इस सभी बातों को गहराई से समझने की बात है। इनका परिणाम हम प्रत्यक्ष जो समय के बाद ही देख सकते हैं, अभी तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले तो जानते हैं कि हमारा साइंस भी इस बात से सहमत है और उसको सिद्ध कर चुका है। हम लोगों ने देखा है, साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे गर्भ के बच्चों में असर पड़ता है माता का। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक प्रिंसेस है, उन्होंने मतलब जिस परिस्थिति में किसी लड़के से शादी किया तो वो सामान्य घर का था। इसका उसके माता की वजह से, उसके परिवार में जो बच्चे उसके गोद में था उसकी वजह से उनको जो रॉयल फैमिली बिलोंग्स करती थी, तो उनका जो भी बच्चा हुआ वो बहुत रॉयल हुआ। उसके पिता का कोई भी संस्कार उसने ग्रहण नहीं किया। हालांकि ये ऐसा तभी हो सकता है जब माता पूरी तरह से वो खुशी, वो रॉयल्टी को महसूस करे। और अगर वो परिस्थिति में वो रॉयल्टी को, जिस परिस्थिति में वो 13 हफ्ते, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं गर्भ के, वो 13 हफ्ते को उन्होंने बहुत रॉयल्टी से इंजॉय किया, हर चीजों ने उनमें रॉयल्टी से देखा, इसलिए उनके बच्चों पर उनके पिता का कोई असर नहीं हुआ। सिंगल पेरेंट माँ एज अ माँ वो हर अपने बच्चे को अपने जैसा बना सकती है, वो जैसा चाहती है, जिस तरह का संतान चाहती है, जिस तरह की चरित्र से लेकर स्वभाव, उसकी हर चीज को वो स्वतः ही बिल्ड कर सकती है। वो माँ खुद जिम्मेदार होती है और पिता का कर्तव्य है कि वो उनको सहयोग दे। प्यार और सहयोग उनका उनके बच्चों को हेल्प करता है, ये सही बातें उनके इज्जत करती है। तो जानते हैं कि माताओं का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माताओं की आदतें कैसी होनी चाहिए, उनका इच्छा क्या चल रही है, उनकी इच्छा मनोकामनाएं जो है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। ये शारीरिक, मानसिक और इच्छाएं ये भावनात्मक स्वास्थ्य बनाती है बच्चों की। स्वास्थ्य तो हेल्थ भी होता है, लेकिन ये जो है माइंड साइकोलॉजी को बोलते हैं, ये सब बचपन में डेवलप होता है, ये 13 हफ्तों के अंदर ही डेवलप हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने सुना है महाभारत में, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अभिमन्यु एक चक्रव्यूह को काटने के लिए कौरवों ने अर्जुन को बहुत फुसलाकर दूर लेके गया। जब वो चक्रव्यूह में पड़े फंसे तो 23 साल का अभिमन्यु बोला कि मैं जानता हूँ इस चक्रव्यूह को कैसे काटा जा सकता है। तो उससे पूछा गया कि युधिष्ठिर ने कि आप कैसे जानते हो, तो उसने बताया मैं अपने माता के कोख में, सुभद्रा के कोख में जब था, तब मेरे माता को लेबर पेन से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह को कैसे काटना चाहता, कैसे भेदा जा सकता है, तब मैंने वो बात सुनी थी और अब मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। इसका ये सिद्ध प्रमाण है जो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, महाभारत में ये जो घटना दिखाई गई है उससे स्पष्ट होता है कि ये होता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। हम समझते हैं कि जो भी गर्भ का संस्कार है वो कैसे दे सकते हैं। वैसे तो 14वें दिन तक कुछ होता नहीं है बॉडी में चेंजेस, लेकिन आफ्टर 14 डे फर्स्ट न्यूरॉन डेवलप होता है और उसके बाद ही हर 2.5 घंटे में, हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, वो पूरे ब्रेन साइकिल पूरे बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो उम्र में छोटा सा ही होता है। हमें करना क्या चाहिए, उसके बाद जो शरीर डेवलप होता है, ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है, उसमें हम विशेष योगदान माँ का क्या हो सकता है, उनका आहार कैसा होना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, शरीर और मानसिकता, उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा जी, ये सब हम आपसे जानेंगे जरूर कि ये क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी समय का ध्यान में रखते हुए अभी तो एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद आपसे फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, मनीषा जी हमारे साथ बने हुए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि गर्भ में किस तरह माँ के हर क्रिया का असर पड़ता है बच्चे में। तो माताएं चाहे तो गर्भ में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया है अभिमन्यु का, शिवाजी का। तो इस तरह आप जिस तरह अपने बच्चे को चाहती है उस तरह का आप बना सकती है, गर्भ के अंदर ही तैयार कर सकती है, ठीक है ना। तो इस बारे में और भी विस्तृत जानेंगे, लेकिन तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं कि किस तरह दूषित जल से स्वयं को बचाना है और स्वस्थ रखना है तो आप तुलसी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। और खुशनुमा जीवन की भी बहुत ही अच्छी बातें की है, अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए, सचमुच खुशियां हमारे सामने खड़ी है। और परवल का जो अचार बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और मनीषा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह गर्भ में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आज की किचन टिप्स इस प्रकार है, आलू की सब्जी बनाते समय नमक सब्जी बन जाने के बाद डालिए। ऐसा करने से सब्जी स्वादिष्ट बनने के साथ साथ जल्दी गल भी जाएगी। आज का अनमोल वाणी इस प्रकार है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआ की होती है, जो जुबा तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, आपको एक प्यारा सा भजन भी सुनाऊंगी और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
1: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़ को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ हम मेंटली फिट हैं।
3: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है। हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
1: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
2: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
1: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया, मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदि हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है, ऐसा लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिसे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती हैं या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
2: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोकर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहाँ हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
1: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिसे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा, तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी। जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द, और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाए। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ से जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाए।
1: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
2: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
1: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
2: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
1: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है?
2: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
3: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना है, इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीज़ें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीज़ें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज़ गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज़ बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही हैं, अभी हूँ और यही इन्जॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें, ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
1: मतलब कुल मिला करके हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल कितना खुशी लगता है। माय मैंने मेरा में इतना प्यार है, स्नेह है और लगाव है। मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा शब्द आता है कि नहीं? और मैं और मेरा दो शब्द है ना, क्योंकि आप लोग गाएंगे आज, हमारे श्रोता मित्र भी सुन रहे, आपका आवाज को सुनेंगे तो हमें बहुत खुशी है। राज के विद्यालय, खासकर राजेश्वर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिलित सहयोग से रेडियो मधुबन आज बच्चों का हुनर को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज दे रही। आज तो हमें बहुत खुशी है, सभी बच्चे टैलेंट है, सिलेक्टेड बच्चे। तो देर किस बात की, एक प्रार्थना का रूप में माँ सरस्वती का वंदना सुनेंगे, क्योंकि हर कार्य शुरू करने का पहले माँ सरस्वती को याद करते हर विद्यालय में। तो राजेश्वर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिलेगा। हमें बहुत खुशी है, बच्चे आज बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, इसलिए माँ सरस्वती का एक हृदय से एक संगीत सुनाएंगे। तो रेडी बच्चे? ओके सभी, ओके शुरू करिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जैसे विद्यालय उस तरह बच्चे सभी राजा रानी बनेंगे, है ना? आत्मा तो राजा ही है, आत्मा तो राजा है। और जो पुरुष शरीर में रहता है तो हम राजा कहते हैं, और स्त्री शरीर में बालिका शरीर में रहते हैं तो हम रानी कहते हैं। क्या कहेंगे? राज, राजेश्वरी, राजेश्वर। तो राजेश्वर, राजेश्वरी और राजेश्वर दो आज आवाज मिल रहा है, क्योंकि आत्मा तो जो शरीर धारण किया, एक तो पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर, बालक और बालिका मिलकर आज गा रहे। हमारा ढोलक में भी क्या नाम है?
1: निकुल।
0: निकुल, अरे वाह। और आप?
1: आयत।
0: आयत, आयत में रहते हैं। बड़ा कंट्रोल, आयत मतलब क्या है? कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना आ गया आज? खुद का कंट्रोल आया?
1: जी सर।
0: पहले भी कंट्रोल करते थे, लेकिन आज खुद का बारे में मालूम पड़ा?
1: जी सर।
0: हम कौन है?
1: आत्मा।
0: और ये मेरा शरीर,
1: शरीर है।
0: और आयत मेरा नाम है, मेरी नाम कहेंगे ना? नाम क्या है आपका?
1: पहचान।
0: पहचान है। और आयत को क्या है?
1: निशानी।
0: निशानी, अरे वाह। चलिए, देर किस बात की। और एक प्रार्थना होगा, माँ सरस्वती का वंदना अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि एक माँ सरस्वती का वंदना जो कि हम पहले कहे थे, ये पहले कोई भी कार्यक्रम होता था माँ सरस्वती को याद करते, एक सरस्वती वंदना होगा विद्यालय का आवाज। सभी बच्चे फिर मिलकर गाएंगे सभी आवाज से, ओके? लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज बच्चों का आवाज को कोई रोक नहीं पाएगा, आज तो बच्चे पूरा बुलंद है। बहुत सारे बच्चे मंडर राजेश्वर विद्यालय के, तो चलिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी

0: जिंदगी हर कदम एक नई।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक का पहले हम बच्चों से एक प्रेरणादायी गीत सुने और प्रार्थना सत्र में भी कहते मन को मार के बटना नहीं है, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। जितना भी संकल्प, जितना भी थॉट, जितना भी इच्छा, जितना भी विचार मन से आता है कि नहीं बच्चे?
1: जी सर।
0: मन को कोई मारना नहीं है, मन को सुमन बनाना है। क्या बनाना है? सुमन, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ विचार, सात्विक विचार, अच्छा विचार, परोपकार विचार। जो हमारा संकल्प अच्छा आएगा तमाम अच्छा कर्म करेंगे, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। मन से सोचते हैं और बुद्धि से करते हैं। करते कि ना बच्चे? बुद्धि से करते ना, दिमाग से करते ना, तो दिमाग से करने के बाद हमारा संस्कार बनता है। क्या बनता है? संस्कार। ये जैसे बोलने का संस्कार बन गया आपका, ऐसे बार बार करेंगे तो रेडियो में आपका बोलने का संस्कार आएगा कि नहीं
1: आएगा?
0: तो संस्कार किसको कहते पता चल गया?
1: जी सर।
0: पहले गीत गाने के लिए इच्छा हुई, ये हो गया आपका मन से। फिर बुद्धि बोला हाँ चलो हम भी भाग लेंगे, बुद्धि बोला डिसाइड किया, हाँ निर्णय किया, परख लिया, हाँ चलो। एक नहीं, सभी लोग आकर अपना काम बुद्धि से कर रहे ना, बुद्धि से जो सोचे उसको काम में लाए, कार्य में कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे ना, गीत गाए, उसको कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं?
1: बुद्धि।
0: ये आत्मा का दूसरा काम, पहला काम सोचना, दूसरा काम करना। कर रहे ना, गीत गा रहे?
1: जी सर।
0: और इसको बार बार, अगला बार कोई आएगा तो उनका सामने भी गाएंगे तो संस्कार बन जाएगा। बार बार गीत गाएंगे तो क्या होगा?
1: संस्कार बनेगा।
0: तो आत्मा का तीन काम हो गया, एक तो सोचना, बुद्धि देख करना, और एक बार बार करना, उसको संस्कार बन जाता है, अच्छा संस्कार। ओके चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे प्रार्थना के रूप में।
1: या

सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हर विद्यालय में इस तरह कार्यक्रम करते हैं और बच्चे अपना दिल का भाव भावना संगीत का रूप में माँ सरस्वती तक पहुंचाते हैं और ज्ञान का देवी माँ सरस्वती को कहते हैं। जब अंधेरे से प्रकाश की ओर हम जाते हैं और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सिंगल के रूप में एकल गान, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और ये था खासकर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर मंडार का आवाज बार बार सुनने को मिल रहा है। तो एक ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे एक एकल प्रस्तुति के लिए।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: और एक वंस मोर और एक गीत एकल में प्रस्तुति करेगी और खड़े होकर अभी से बैठ कर गा रहे थे तो उमंग आएगी एकल गान के लिए। तो ढोलक मंजरा साथ इसमें नहीं होगा, एकल ही करेगी और आवाज को बुलंद रखते हुए उनका परिचय भी देंगे, स्कूल का नाम और वो कहाँ से और वो खुद का नाम।
2: मैं क्लास 8 के छात्रा हूँ। मेरा नाम आयत परवीन है। मैं बिहार गाँव से हूँ। मैं श्री राजेश्वर विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से आप सभी को एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी।

0: नहीं, धन्यवाद।
1: चलिए और एक प्रस्तुति, वंस मोर उनका दोस्त है, तो अपना प्रस्तुति देंगे नाम का साथ।
0: मेरा नाम हेतल कुमारी है, बड़ेची गांव से हूँ।
1: और क्या प्रस्तुत करेगी, सुनाओ।
0: राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।

0: आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए वंस मोर, और उनका दोस्त लोग भी उपस्थित है, और एक एकल गान के लिए हमारा छोटी सी कन्या आओ नाम बताएगी और प्रस्तुति देगी, अपना परिचय दे।
2: मैं जिनल कुमारी क्लास 8 की छात्रा हूँ, राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं मंडार की हूँ। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
1: ओके शुरू करिए।
2: श्री

0: वसुदेव, धन्यवाद।
1: क्या नाम बताए थे?
0: जीनल कुमारी।
1: और बड़े क्या बनेगी, कुछ एम रखा है?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, वाह। डॉक्टर का काम क्या होता है?
0: इलाज करना।
1: हाँ, सुई नहीं देना, इलाज। बच्चों को जब पूछते हैं डॉक्टर का काम क्या है, तो सुई का ध्यान जाता है, लेकिन ये बोला इलाज। बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। और डॉक्टर का थोड़ा हाइट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, और एक प्रस्तुति इसी कड़ी में लेंगे, और एक एकल गान के लिए हमारा और एक छात्र उपस्थित है, तो वेलकम करते हैं उनको भी, माइक देते हैं। तो अपना परिचय का साथ नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे और हमारा श्रोता भी और ध्यान से सुन रहे। अपना नाम बताइए और क्या प्रस्तुति सुनाइए।
2: मैं वंशिका कुमारी क्लास 11 की हूँ। मैं वर्मान से आती हूँ और मैं राजेश्वर विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं एक गाना प्रस्तुत करूंगी
1: जी।
2: यहाँ गाना एक भोलेनाथ का है, गलती हो तो क्षमा करना।
1: जी जी, बहुत अच्छा। सभी बच्चे भी आपको सुन रहे हैं।
2: कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति के लिए ओम शांति। आज ओम शांति वाले आपका पास पहुंचे और गीत में भोला बाबा का महिमा गान कर रहे हैं। और भोला बाबा सबका बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। भोला शिव भी बाबा कहते हैं, जटिया बाबा पार करेगा कहते हैं, राम बाबा नहीं कहते हैं, कृष्ण बाबा नहीं करते हैं। लेकिन चलिए एक प्रस्तुति हुआ, एकल प्रस्तुति, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: प्रभु।
1: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वांस मोर ब्रेक के बाद हम बच्चों को सुन रहे भोला बाबा का महिमा अपरंपार है और उसको देखते हुए बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। अगला प्रस्तुति के लिए दो छात्रा उपस्थित है तो उनको स्वागत करते नाम का साथ रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे, अपना परिचय देंगे प्लीज।
1: मेरा नाम भावना कुमारी है, मैं कक्षा 8वीं सी में पढ़ती हूँ और मैं राजपुरा गांव से आती हूँ।
2: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं कक्षा 8वीं सी में पढ़ती हूँ, मैं मालीपुरा गांव से आती हूँ।
0: चलिए शुरू करिए।

0: गोरे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सब बड़े होकर लक्ष्य रखे हैं और इस तरह माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जब आकाशवाणी में उनका आवाज आएगा तो उनका माँ बाप परिवार जन और शिक्षकगण तो बुला रही, तो हमारा ऋतिका का आवाज है, उसका आवाज है, तो बहुत खुशी लगेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक दो गुड्डा है, छात्र है, तो आइए अपना परिचय देंगे और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो लड़की तो है ही है, लड़का भी कम नहीं है, पांडव और शक्ति, शक्ति सेना और पांडव सेना है ना, बॉय बालक और बालिका, छोकरा और छोकरी दोनों का आज मिलित सहयोग में आज हमारा कार्यक्रम सुंदर में हो रहा है। तो अपना परिचय देंगे प्लीज।
2: मैं खुशील कुमार पांची बी से
1: जी।
2: मैं मोहम्मद सईद पांचवी बी से।
1: वेरी गुड, चलिए शुरू करेंगे, रेडी।
3: उमारी घुमर से नफर लिए राजा जी, हमें
1: छोटा सा गीता, लेकिन कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। और राजस्थान पूरा वीरों का भूमि है, राणा प्रताप को याद आता है क्योंकि राजस्थान, और स्कूल का नाम भी श्री राजेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और हमारे साथ दो।
4: मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं क्लास सेवेंथ में पढ़ती हूँ, मेरा गांव मंडार है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ भोलेनाथ का।
1: चलिए शुरू करिए।
4: नील है प्रचंड तेरी शक्ति है, खंड तेरी दुनिया है, जो भीड़ तेरी कर दे खंड खंड में, मिल जा तू कह तार में या किसी अवतार में, मैं खड़ा हूँ शंकरा तेरे ही दरबार में, शिव शिवाय महादेव, मिल भी जाओ महादेव, नाजुके नाज

0: है किधर दे आए महादेव मिल जाओ महादेव किधर दे आए महादेव मिल जाओ महादेव।
1: अरे वाह, चलिए और एक गुड्डा हमारे पास आए हैं, तो गुड्डा गुड्डी मैंने बालक बालिका है ना, और हीरो हीरोइन कहते हैं, राजा रानी कहते हैं, सब अपना अपना राजा बनेंगे।
2: Yes.
1: हाँ राजा बनेगा, वाह क्या नाम है राजा?
2: सिवाय।
1: सिवाय, चलिए शुरू करें।
2: युब युब की साखले मन में बहरागले संतों का मेला प्रयागराज में धूड़ की आगले दान पुण्य त्यागले संतों का मेला प्रयागराज में ये महाकुंभ पर्व है जिस प्रथा पे गर्व है ये महाकुंभ पर्व है जिस प्रथा पे गर्व है धर्म के पुजारियों को फिर बुला रहा धर्म ध्वज हाथ लो हिंदुओं को साथ लो ये महाकुंभ फिर बुला रहा धर्म ध्वज हाथ लो हिंदुओं को साथ लो ये महाकुंभ फिर बुला रहा धर्म को रखेगा उसे धर्म रखेगा धर्म थारी मानवों का भर्म रखेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा साथ और एक छात्रा उपस्थित है, पहले से रेडी है, तो सर हमें कब बुलाएंगे इशारा कर रहे थे, तो उनको बुला दिए, तो अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम सुरेखा है, मैं मंडार से हूँ और राजेश्वर विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ।
1: जी जी, सुनाओ क्या सुनाएगी?
3: ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा

0: ਸਿਰਦਾਰੀ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਜੋ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਵਾੜੀ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਜੋ ਜੀ ਹੇ ਰਾਣਾ ਥਾਰੀ ਡਕਾਲ ਸੁਣਨੇ ਅਕਬਰ ਦੂਜੋ ਜਾਏ ਹੇ ਰਾਣਾ ਥਾਰੀ ਡਕਾਲ ਸੁਣਨੇ ਅਕਬਰ ਦੂਜੋ ਜਾਏ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਰੰਗੇ ਖੂਨ ਸੋ ਨਹਲੋ ਬਹਿ ਤੋ ਜਾਏ ਉਚਾਲੀ ਮੇਵਾੜੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਗਿਆ ਖੂਨਾਰਾ ਖੰਗਾਲ ਰਾਣਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਜੋ ਜੀ ਈ ਮੇਵਾੜੀ ਰਾਣਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਜੋ ਜੀ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुत के लिए ताली बजा बच्चे, बहुत अच्छा। एक के बाद एक सभी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे और हमारा साथ और एक छात्र है तो उनको भी लेंगे। सभी प्यार से दिल से गीत गा रहा है, रेडियो तो कार्यक्रम तो पूरा हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन रहा है। चलिए और एक प्रस्तुति, बच्चे रेडी है? ओके शुरू करिए।
2: मेरा नाम बुराना में कक्षा 9 से। हो આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારા, આટલો જન્મ સુધારો, આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારા, આટલો જન્મ સુધારો। મડુલે કહા મહાન ગારે બાવલિયા તારે, મડુલે કહા મહાન ગારે, मडुले का मान गारे बावलिया तारी, मडुले का मान गारे। वतन न गणती बाबा जी आविया, वतन न गणती बाबा जी आविया, तर भगवा मकान दारे बावलिया तारी, मडुले मडुले का मान गारे।
1: धन्यवाद के लिए धन्यवाद। और एक प्रस्तुति वंस मोर, कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोई आ रहा है? आ जाओ, वेरी गुड। चलिए चलिए और एक सुनिए प्रस्तुति। आज तो मुझे जाने नहीं दे रहे सभी बच्चे, इतने बच्चे आज भाग ले रहे तो मुझे आश्चर्य लग रहा है क्योंकि कोई बच्चे तो बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन राजेश्वर विद्यालय का जो बच्चे मानना पड़ेगा। चलिए शुरू करिए मंडल का आवाज।

0: वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और एक प्रस्तुति, हमारा बहुत बच्चे इसलिए सबको कम कम समय मिल रहा है, तो चलिए और वंस मोर करते हुए इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए, हमारा होनहार बच्चे हैं और नाम रोशन करेंगे बड़े होकर, और स्कूल का तो नाम रोशन करते ही है, और विद्यालय में जो आते हैं, हमारा इसमें आईडी कार्ड में लिखा है निशा कुमारी, और इसका आईडी में लिखा है अध्याय, बस अध्याय आज तो शुरू होगा, अध्याय कि नहीं, चलिए शुरू करते हैं। नाम तो अध्याय और निशा, चलिए शुरू करते हैं। निशा, और कौन सा क्लास में निशा?
1: 6B।
0: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? निशा। गुड, निशा इसलिए उसका दोस्त है। चलिए शुरू करते हैं।
1: समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, ड्रम बचाने वाले को दुनिया ने कब की बता दिया, तरह तरह के शाप मिले, अश्रु की बूंदे सूख गई।

0: लगा तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत जैन की नाम मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का प्रथम देखा, बलब्रीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीर हरण, अभिमन्यु का अकाल हरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भाई भीम विध्वंस
1: देखा। ताली बजा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों को, आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब इनका आवाज सुनेंगे, इनका माँ बाप भाई बहन चाचा चाची नाना नानी दादा दादी सुनेंगे तो अरे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, आवाज का दुनिया में हम पहुंचे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मामा सबना हार्दिक स्मरण कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चलिए अगला प्रस्तुति के लिए दो छात्र उपस्थित है, तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आप सुनने जा रहे हैं, और सभी अपना नाम बता रहे हैं।
1: मेरा नाम ऐश्वर्या कुमारी है।
2: मेरा नाम पुष्पा कुमारी है।
0: चलिए शुरू करें।

0: चलिए वंच मोर सभी बच्चों को ध्यान देते हैं, सभी बच्चों का आवाज होना चाहिए। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा साथ आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं। और इतने बच्चे लगभग तो 20-30 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सभी नाम फटाफट दे रहे हैं और अपना क्लास का भी बता रहे हैं। सुना,
1: मेरा नाम रितिका कुमारी है, मैं क्लास 7A में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम यशोदा कुमारी, मैं क्लास 7A में पढ़ती हूँ।

0: सही में बहुत सुंदर प्रस्तुत, प्रेरणादायक गीत है, संगीत है। तन को धुलाना साफ करना अति सहज है, लेकिन मन को धुलाना बहुत कष्ट होता है। लेकिन मन को मारना नहीं, मन के बारे में जान गए, मन मतलब अच्छा संकल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और एक प्रस्तुति हमारा दो तीन छात्रा है तो सुनेंगे उनका आवाज को, बुलंद से नाम बताएंगे सभी। ओके,
1: मेरा नाम प्रियांशी डिंगर, मेरा गांव मंडा, मेरी क्लास 5वीं बी।
2: मेरा नाम मनीषा कुमारी, कक्षा 5वीं बी से, गांव मेरा जुआद्रा।
3: मेरा नाम इतल कुमारी, गांव मंडार से।
4: अभी शुरू करेंगे।
5: पार्वती बोली शंकर से, सुनिए बोल नाथ जी, रहना है हर

0: ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और
2: मेरा नाम वसंत और मैं राजेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ मंडार से। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहाँ, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये।

0: सदन तो मेरी राम जी सके दे ना जय सिया राम। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद लास्ट अंतिम प्रस्तुत लेंगे सभी को, लेकिन अल्प विराम का बाद।
2: आप हमारे रेडियो मधुबन 107.8 FM हमारे रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम प्रस्तुति की ओर जा रहे और सभी, अभी तो मुझे लग रहा है एक ही प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय को देखते हुए सभी को चांस मिलेगा, एक एक अंतरा एक मुखड़ा भी देंगे, फिर सर को बोलेंगे तो बच्चे फिर देंगे प्रोग्राम, लेकिन आज समय को देखते हुए चलिए एक एक अंतरा सुनाएंगे सभी नाम का साथ।
1: धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, भूल मत, भूल मत।

0: मुझको वरदान। धन्यवाद
1: धन्यवाद के लिए धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, छोटे छोटे गुड़िया है। तो चलिए और एक इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाम बताइए।
2: मेरा नाम तनिषा है, मैं क्लास 7th की हूँ।
3: मेरा नाम विनीता है, मैं क्लास 8th की हूँ।

0: धन्यवाद।
1: चलिए चलिए चलिए, और पीछे तो लाइन लगे हुए, हमारा बच्चों किसे छोड़ेंगे, इसे जाने के लिए मन नहीं कर रहा। चलिए एक प्रस्तुति।
2: मेरा नाम है मीनल जोशी, मैं देशभक्ति गाना गाना चाहती हूँ।
1: ओके।

0: हाँ तो सबको चांस मिल रहा है और हम जाने के लिए मन नहीं कर रहा, और एक दिन लगेगा, इतना बच्चे को क्या छोड़ेंगे, फिर भी और एक प्रस्तुति।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए,
2: मेरा नाम श्रुति है।
3: मेरा नाम चित्राक्षी कुमारी है।
2: हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे।

0: जाओगे कामयाब। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा होकर क्या बनेगी रे?
0: डॉक्टर बनूंगी।
1: मेहनत करना, मेडिटेशन करना है ना।
0: हाँ।
1: ध्यान करेंगे ना, मन बुद्धि और संस्कार के बारे में पता चला ना, मन बुद्धि और संस्कार अपना तीन काम करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय करती है और हमारा संस्कार बनती है ना। नाम बताओ? चित्रा की। और बड़ा क्या बनेगी तुम?
2: डॉक्टर।
1: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। इतने बच्चे, 1000 बच्चों में कम से कम तो 100 बच्चे आ गए, हम क्या करें? तो इसलिए अभी 2 प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए एक अंतर एक मुकड़ा सबका लिए हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था श्री राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
2: आप सभी हमारे बीच उपस्थित हुए उनके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह

है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, हर तरफ हर जगह

रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर।

0: हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मन की आंखों से एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारी मन की आंखों से हम दुनिया को देख सकें। ये मन की आंखें होती क्या है? हमारी स्थूल आंखों से वो कुछ अलग है क्या? क्या हम जो दुनिया मन की आंखों से देखते हैं, क्या हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं? अगर देखते हैं तो ऐसा क्या कमी रह जाती है जो हम मन की आंखों से जो देखते हैं वो इस स्थूल आंखों से दिखता नहीं है? दोस्तों बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, जो दिखता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं देखने के बारे में। लेकिन आज कुछ ऐसे ही अनोखे अनुभवों के साथ हमारे बीच में है अभिषेक कुलहरी जी। आप वैसे मूलतः राजगढ़ चुरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप जयपुर में रहते हैं। आपका जीवन तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में एक ऐसी दुर्घटना घटी और उनके पूरे जीवन को बदल दिया। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और उसके बाद उनकी जीवन कैसी है और अभी वो अपनी जीवन में इस बदलाव को एक नॉर्मल बना करके कैसे जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमें सुनने, सीखने और समझने की है। तो इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हम स्वागत करते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में अभिषेक कुलहरी जी को। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
3: शुक्रिया निधि, शुक्रिया।
2: अभिषेक जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआत की जीवन, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, और वो समय का क्या जीवन था, और जब आपकी जीवन में एक मोड़ आया और जब जीवन पूरा बदल गया और आपसे जब बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं एक नया जीवन जीना सीखा है, तो वो क्या है?
3: नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मेरे को दिखाई देता था तो दुनिया की आपाधापी के अंदर है ना, कुछ ढंग से पता नहीं चल पाता था, अपने आप को जज नहीं कर पाते थे, अपने बारे में नहीं सोच पाते थे कि क्या है ये। जैसे मतलब बाहरी दुनिया में अपन बात करें तो थोड़ी सी मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल था वो अच्छा था, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे मुझसे, तो जिनका वो कोई काम निकलवाना होता था वो मतलब मेरे को फ़ोन कर लेते। तो उस टाइम पे बिल्कुल यंग था तो मैं तो ये सोचता था कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ और मेरा कर्तव्य है ये इन सभी का मतलब काम करना, चाहे वो रात को मेरे को 12 बजे फ़ोन कर दें, चाहे रात को 2 बजे कर दें, मैं एटलीस्ट काम करता था उनका, अपना काम छोड़ के।
2: जी,
3: तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम पे राजकुमार जी शर्मा, यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उनके पीए थे वो मेरे मित्र थे।
2: अच्छा।
3: अब एक जो पीए होता है मतलब मंत्री जी का, तो फिर अपन तो कोई भी काम करवा सकते हैं, एटलीस्ट उस विभाग में तो करवा ही देंगे।
2: जी।
3: अब मेरे दोस्त थे वो डॉक्टर थे, तो कुछ दोस्त वो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब उसको बोलें तो अपन थोड़ा सा चालाक भी बोल सकते हैं।
2: अच्छा।
3: ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, पहले उस टाइम पे नहीं पता थी।
2: जी।
3: और ये बातें है ना, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा से जब से मैं जुड़ा हूँ ना, तो मेरे को ना सभी के बारे में बाबा ना टच करवा रहे हैं कि जिसके बारे में तू सोचता था वो कैसे हैं, उनकी बातें बताते हैं वो मुझे। स्थूल आंखों से मैं मतलब उस टाइम पे नहीं सोच पाया ये बातें। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को फोन किया कि मेरा ट्रांसफर करवाना है, वो मतलब MBBS के बाद पोस्टेड था मेडिकल ऑफिसर वहाँ अनूपगढ़ में।
2: जी।
3: गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी।
2: जी।
3: उसमें अब वो था झुंझुनू का, तो वो उनको ये पता कि अभिषेक के पास फोन करेंगे ना तो एटलीस्ट काम हो जाएगा अपना, कैसे भी हो जाए।
2: जी।
3: तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि अभिषेक यार ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, कहाँ करवाना? तो वो बोले कि तेरा जानकार है ना यार वो मंत्री जी के पीए, तो उनसे ट्रांसफर करवा दे यार मेरा, तो इतना सा वो काम कर ही दे, वहाँ बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें क्या होता है कि अपन को मतलब जब एक तो होता है कि मतलब अपन दिमाग से काम करें, एक अपन दिल से काम करें। अब दिल से काम करते हैं ना तब दिमाग नहीं लगाते उसमें, तो मैंने उसको ही नंबर दे दिए सीधे पीए के, मैं यार ये नंबर पकड़ और इनको बोलना कि मैं अभिषेक का फ्रेंड हूँ तो तेरा काम हो जाएगा। वो बोले ठीक। अब मैंने उनको नंबर दे दिया, अब मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपना तो ट्रांसफर करवाया, अपनी रेपो बढ़ाने के लिए 5-6 लोगों के और ट्रांसफर करवाए।
2: अच्छा।
3: रोजाना फोन करते, आज इधर से इधर करना, उनकी नहीं बनती किसी से तो ट्रांसफर करवा देते
2: जी।
3: ये बातें मेरे को नहीं पता
2: जी
3: उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो वो काम कर दिया मेरे को जो करना था। मेरा 2018 में एक रोड एक्सीडेंट हो गया मार्च में, तो उसके बाद में मेरे को मतलब दूसरी रियल टाइम जो है ना, मतलब जो सही दुनिया क्या है उस टाइम पे शुरू हुआ, जब मैं बाबा से जुड़ने लग गया, मेडिटेशन करने लग गया, सूरज भाई की वीडियो सुनता, मेरा यही काम था। तो एक साल तक मैंने खूब वीडियो सुने सूरज भाई के, मतलब सोचता रहता नींद तो।
2: ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका?
3: एक्सीडेंट मेरा जब मैं घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं MBA पढ़ाई कर रहा था मेरी जयपुर से, तो मैं घर पे आया हुआ था, तो काम चल रहा था, मिस्त्री को छोड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पे गया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने हेलमेट नहीं पहना, अदरवाइज मैं हेलमेट पहनता था। लोग मेरी मजाक बनाते थे मेरे हेलमेट की वजह से, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ हेलमेट कोई नहीं पहनता, छोटा क्षेत्र है वो, तो इस वजह से मेरे को आदत पड़ी हुई थी कि हेलमेट पहने, भाई अपन को सीधी हवा भी नहीं लगती आंखों में, तो सेफ्टी रहती है, सेफ्टी भी है। तो इस चक्कर में लोग मेरा दोस्त में मजाक बनाते थे कि भाई तू हेलमेट क्यों पहनता है, अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है तेरे पास, तो तू यार कम से कम इसको दिखाए, अगर दिखे तो सही कि कौन जा रहा है इस बाइक के ऊपर।
2: अच्छा।
3: तब मैं यार इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो मैंने सुविधा के लिए ले रखी है, दिखाने के लिए थोड़ा ना ले रखी है। तो एटलीस्ट चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ, मैं हेलमेट नहीं पहना और मिस्त्री जी को शाम को छोड़ने गया, तो जैसे मैं उनको छोड़ के आया तो मैंने मेरी बाइक को घर की तरफ आ गया था, मैं वापस मेरे इंटेंशन हुआ दिमाग में कि अपने को तेल डलवाना चाहिए, मेरी बाइक है ना रिजर्व में आ गई थी ऑन से, तो मैंने सोचा तेल डलवाना चाहिए, तो फिर मैं मुड़ गया वापस, जबकि मेरे को शाम को 7 बजे की बात है वो शाम को, तो मेरे को वापस कहीं नहीं जाना था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है
2: जी।
3: वो मतलब मैं जानबूझ के ना वहां पे गया कि इंसिडेंस बने
2: जी।
3: हाँ मतलब ये हकीकत है, क्योंकि उसी दिन मैं सही बताऊं तो उसी दिन मेरे एक्सीडेंट से 1 घंटा पहले जब मैं मिस्त्री को छोड़ने जा रहा था, दिन में साथ में उनके काम करवाता, मैं हेल्प करता, तो शाम को नहाने के बाद मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ, अब इनको छोड़ने का टाइम हो गया। मैं जो ही नहा के आया बाथरूम से, तो मेरे दिमाग में अचानक से विचार आया उसी वक्त कि एक जादूगर होता है वो आंखों की पट्टी बांध के कैसे चला सकता है बाइक, और कोई बिना आंखों के मतलब कैसे सर्वाइव करते होंगे जिनको नहीं दिखाई देता। तो उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा था, उसी दिन की बात है 6 मार्च की ही, 1 घंटा पहले की
2: जी।
3: अब मैं मिस्त्री को छोड़ने गया ना, तो वापस मतलब वो मैं उसको टच करता हूँ बात को, कि जैसे मैं घर के पास पहुंच गया, अब वापस मतलब मैं सेफ आ जाता, घर पे पहुंचने वाला था
2: जी,
3: 200 मीटर की दूरी है बस स्टॉप की
2: जी
3: मेरे घर से। तो वापस मैंने मोड़ी है बाइक को, और वापस मोड़ी के मतलब मैं जो ही चला तो रोड के ऊपर बस स्टॉप के जैसे ही आ गया, तो फिर ऑटो ने मेरे को रॉन्ग साइड से आके हिट कर दिया, मेरे बराबर में बस चल रही थी, तो मेरे पास और कोई मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक्सीडेंट हो गया, पता भी नहीं लगा, न संभलने का मौका मिला
2: जी।
3: तो उसी वक्त फिर मेरे को कैजुअलिटी में लेके गए हॉस्पिटल में, सेमी कॉन्शियस मोड पे, तो 1-2 दिन बाद में होश में आया, तो फिर पता लगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं तो वहीं पे मतलब डॉक्टर्स को यही बोल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है, और शुरू शुरू में तो देखो डर भी लगा था कि मेरे साथ में क्या हो गया, मैं मतलब मेरे को हाथ पकड़ के चलाते थे पापा, तो मैं उनका हाथ खींचता था पीछे की तरफ, वो मेरे को मतलब इंश्योर करते थे इस बात के लिए कि मैंने हाथ पकड़ रखा है बेटा तो तेरे को गिरने नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कोई बैरियर आएगा तो आगे, इतना क्यों डर रहा है। लेकिन मैं मतलब इतना डर था वो अचानक से दिमाग में, पता नहीं मैंने सोचा कि उस टाइम पे सोचता था कि ये पता नहीं धरती नीचे ही मेरे ऊपर आ जाएगी, मतलब मैं चल भी नहीं पाता था बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ी, फिर हॉस्पिटल में 3-4 महीने ट्रीटमेंट चला मेरा, और दोबारा एक्सीडेंट ऐसे हो गया जो डॉक्टर को मतलब आंखों का करना चाहिए था ट्रीटमेंट, उन्होंने किया नहीं, मेरी ब्रेन की सर्जरी कर दी एक थोड़े से पैसे के लिए
2: जी,
3: क्योंकि उनके पास आई सर्जन भी नहीं था उस हॉस्पिटल में, जबकि घर वालों ने बोला था उनको कि भाई इसको दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम, मेरे घर वाले डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम इसका इलाज सबसे पहले करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को लाइट में चेक कर रहे थे तो लाइट परसेप्शन में बता पा रहा था उनको, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे 8 दिशाओं से बता रहा था मैं एग्जैक्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके पर्दे के ऊपर, रेटिना के ऊपर है ना, ब्लड आ गया, तो ये दिखाए इसको, मतलब दिख जाएगा इनको, वो ब्लड हटाएंगे तो। लेकिन जो डॉक्टर को पता है, अब मेडिकल के अंदर क्या है कि मतलब उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कोई भी पेशेंट की कैजुअलिटी अगर है ना, अगर आंखों पे लगी है तो 72 घंटे के अंदर उसको ऑपरेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज रोशनी बचने के कम चांस हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। अब डॉक्टर को ये पता है, ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, जितने मैंने हॉस्पिटल विजिट किए हैं वहाँ से पता लगी कि ऐसा होना चाहिए था। तो उन्होंने वो पैसे बनाने के चक्कर में फिर मेरी ब्रेन की सर्जरी कर दी और 10 दिन वहाँ पटके रखा मेरे को वहीं हॉस्पिटल में। फिर घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मतलब इसकी आंखों को चेक ही नहीं कर रहे हो अभी और इसको दिखाई नहीं दे, तो इसका तो इलाज करिए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कर देंगे। वो सिर्फ मतलब मेरे को है ना बस वो अपना वो चार्ज बना रहे थे सिर्फ। तो फिर घर वालों ने वहाँ से फिर वो बोला कि ऐसा कीजिए आप छुट्टी कर दीजिए हमारी। वो जबरदस्ती ना छुट्टी दिला के मेरे को जयपुर लिया है SMS हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे फिर SMS जयपुर में दिखाया मेरे को, तो फिर डॉक्टर ने कहा यार आप है ना मतलब 10 दिन लेट हो गए हैं। अब वो मेरे जो दोस्त थे डॉक्टर थे वो SMS में PG कर रहे थे उस टाइम पे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा हुआ था। अब उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको तो पता ही है ना वो बातें कि भाई इनको कैजुअलिटी में पेशेंट की आंखों को चेक करना जरूरी होता है। उन्होंने मेरे को देखते ही मतलब पापा को पास करे थे मेरे, तो उन्होंने कह दिया कि अंकल मतलब बहुत लेट हो गई, 10 दिन निकाल दिया आपने और आंख अभी तक इनकी ऑपरेट नहीं की है, अब हमें लगता है कि इसकी रोशनी नहीं बच पाएगी, बहुत 1% चांस बचे हैं। वही सेम बात डॉक्टर ने आंखों के जो रेटिना सर्जन थे वो उन्होंने कही कि 1% चांस है, अगर आप चाहो तो हम ऑपरेट कर लें और अगर आप ऐसा सोचो कि और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, एम्स दिल्ली में चले जाइए आप, वहाँ पे और भी अच्छे डॉक्टर हैं। सभी आदमी ये चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट जगह जाऊँ, ऑपरेट कम से कम मतलब थोड़ा चांस बचाए उसको सही में तो मतलब अच्छे से जगह से कन्वर्ट करें कि भाई थोड़े चांस बच जाए रोशनी के। इसलिए मैं फिर दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पे भी मेरा ऑपरेशन हुआ, 4-5 घंटे की सर्जरी की और वो सर्जरी बीच में छोड़ दी क्योंकि उसके अंदर डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे थे। एक कागज़ को जैसे मतलब अपन हाथ की मुट्ठी के अंदर भींच के रखेंगे और उसमें सलवटें कैसे पड़ेंगी, रेटिना में वैसे सलवटें पड़ गई थी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा मेरे को, और वो बीच में छोड़ दी और उन्होंने कहा कि रोशनी अब नहीं आ पाएगी
2: जी।
3: फिर मैंने सोचना शुरू किया वहाँ से कि अपन इसमें क्या, शुरू में तो देखो गुस्सा आता था। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा करते हैं डिसेबिलिटी का वो सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर्टिफिकेट बनाएंगे तो अच्छी जगह या फॉरेन भेजेंगे अपन को कहीं जहाँ अपना ट्रीटमेंट हो जाए। तो वो सर्टिफिकेट आप किसका बना रहे हो सर? तो बोला कि आपको ट्रांसपोर्टिंग में कंसेक्शन मिल जाएगा। बोले यार आपका दिमाग खराब हो गया डॉक्टर, आप कंसेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो रियलिटी थी, उनको पता था रियलिटी क्या है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इन चीजों को क्योंकि अचानक से मतलब चेंजेस हो गए थे लाइफ में।
2: आपकी फैमिली की रिएक्शन क्या थी जब ये पता चला कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता है और आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेशन बना रहे हैं?
3: देखो पापा तो साथ में घूम रहे थे, पापा शुरू में तो देखो मेरे को बाद में पता लगा कि पापा बाथरूम में बैठ के रोते थे मेरे लिए कि भाई अपना एक ही बेटा है उसकी आंखें चली गई और डिपेंडेंसी होगी, इसकी लाइफ कैसे कटेगी अब आगे। तो पापा ने तो कह दिया था कि हाँ ठीक है आप बना सर्टिफिकेट तो बनाइए क्योंकि वो मेरे पापा आर्मी में थे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन है और स्ट्रांग है वो थोड़े मेंटली भी। तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब मम्मी, रही बात मम्मी की, तो मम्मी जी कहती थी, मम्मी शुरू में से बहुत मतलब कहती थी। एक दिन मैंने उनको सुना अपनी बहन से बात करते हुए यानी मेरी मौसी जी से, वो कह रही थी कि इससे अच्छा ना ये बढ़िया रहता कि भगवान हमको ना ये बेटा नहीं देता, एक लड़की ही, एक मेरी सिस्टर है, हम दो भाई बहन है, वो बोल रही थी कि मतलब लड़की, एक लड़की रह जाती ना तो अच्छा था, आज दुख नहीं देखना पड़ता हमें कि हमारा बेटा अंधा हो गया है और इसकी लाइफ कैसे कटेगी, ये भी दुखी है। लेकिन इसके अपोजिट था मेरे साथ में, उस टाइम तक मैंने सूरज भाई की क्लासे मतलब सुनता था मैं फोन के ऊपर, मुझे मतलब समझ में आ गई थी चीजें।
2: सूरज भाई जी की क्लासेस सुनना कैसे शुरू हुआ आपका?
3: वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने वो सुनते थे पहले, तो उन्होंने फिर जैसे मेरी वाइफ ने मेरे को सुनाया फिर।
2: अच्छा।
3: मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं साली हैं वो मतलब जुड़ी हुई हैं ज्ञान मार्ग में हैं,
2: ब्रह्म कुमारी से
3: जुड़ी हुई हैं। वही मेरे को सेंटर पे लेके गए थे वहाँ
2: जी,
3: बापू नगर जयपुर वाले सेंटर पे लेके गए थे
2: जी।
3: तो उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया तो मेरे पे ना लोगों के तो कमेंट देखो उल्टे उल्टे आते थे कि धरती पे बोझ बन गया है, इसकी किस्मत खराब है। अब वो कमेंट ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते थे हकीकत में। अब मैं उनको तो जवाब नहीं देता था लेकिन मन ही मन सोचता कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जितनी बातें बोल रहे हैं ना ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। समय आएगा एक दिन ऐसा जरूर जब इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, अपन को देने की जरूरत नहीं है। मैं किस किस को जवाब दूंगा, सेम बातें होती थी लोगों की, वही किस्मत खराब है, आग गई तो संसार गया। और कुछ लोग तो हाँ ऐसे भी बोलते थे कि हीरो से जीरो बन गया, और कुछ कमेंट भी मारते थे अब सुन चिड़िया की आवाज मतलब यही बचा है। ठीक है बहुत मतलब उठपटांग से कमेंट नेगेटिव चलता था और हमें चारों तरफ
2: जी।
3: लेकिन वो इन सब के बीच मैं तो यही सोच रहा था कि देखो एक इंद्री के खत्म हो जाने से ना कुछ नहीं हो सकता, अभी अपन जिंदा है ना तो फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं
2: जी।
3: क्योंकि अपने पास ऊपर वाले ने अपन को एक दिव्य बुद्धि दी है, उसका विवेक उसमें एक विवेक है, उसका अपन अगर सही से उपयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या का मतलब समाधान नहीं हो सकता। अपन उसको इजी वे में डाल सकते हैं, इजी भी प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है
2: जी,
3: वहाँ से मतलब श्री कृष्णा जी पुनिया हैं जो एथलीट निकली हैं कॉमनवेल्थ गेम में, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ओलंपियन हैं
2: जी,
3: पीछे विधायक भी थी वो। और श्री देवेंद्र झाझड़िया हैं जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, दो बार ओलंपिक में, एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो मेरा इंटेंशन वहाँ गया कि अपन स्पोर्ट्स में करते हैं
2: जी।
3: तो फिर मैंने शुरू किया, अपने घर में थोड़ा जिम का सामान मंगवाया, मैंने सोचा कि शॉट पुट है वो मतलब फील्ड गेम है तो उसमें ज़्यादा ट्रैक गेम है, वो फील्ड गेम है सॉरी, तो उसमें अपन को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, अपन घर से तैयारी कर सकते हैं उसकी
2: जी।
3: तो मैंने उसका सामान मंगवाया, जिम का सामान मंगवाया, वेट लिफ्टिंग डम्बल्स वगैरह, तो घर से शुरू किया मैंने।
2: कौन सी स्पोर्ट की तैयारी कर रहे थे?
3: शॉर्ट पुट की कर रहा था मैं।
2: अच्छा शॉर्ट पुट।
3: शॉर्ट पुट की हाँ। तो 6-7 महीने मैंने मतलब कम से कम भी मैं करता था 10-12 घंटे, मेरे को नींद आनी वैसे बंद हो गई थी, 4-5 घंटे ही मैक्सिमम सो पाता था मैं एक्सरसाइज करने के बाद भी, जबकि क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही चलता था कि लोगों को जवाब जल्दी से जल्दी कैसे मिले। तो मैंने तैयारी शुरू की, रनिंग करता मैं, मैंने डोरी बांध ली घर में, साइड में खाली प्लॉट था उसमें, और उस डोरी के सहारे मैंने दौड़ता, सुबह 5 किलोमीटर शाम को 5 किलोमीटर, उसको नाप लिया मैंने इंच टेप से, और जब तक 5 किलोमीटर के चक्कर ना हो जाए उसमें 260 चक्कर बनते थे मेरे, तो 5 किलोमीटर रनिंग, और फिर मैं 3-4 दिन जिम करता हूँ जिम।
2: ये सारी चीज आपने खुद से सोच के किया?
3: खुद से सोच के किया मैंने।
2: आपको कैसे जीना है बिना विजन का?
3: हाँ बिना विजन के मैं क्या बेस्ट बेटर कर सकता हूँ दुनिया को, मतलब ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इनको
2: कुछ तो करके दिखाए।
3: हाँ करके दिखाएं, इनको जवाब कैसे मिले, और दुनिया के लिए मतलब जो रास्ता भटक चुके हैं, जो आत्माएं मानो भटक गई हैं और वो ऐसे जैसा हाँ डाइवर्जन हो जाता है, वो ऐसे सोचते हैं, तो मेरे दिमाग में चलता है इनके लिए अपन एक दिन मोटिवेशन बनेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे अपन कि भाई आप बैठ नहीं सकते किसी भी कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन कोई भी हो जाए, यही सोच के मैं ना एक्सरसाइज वगैरह मतलब मैंने शुरू कर दिया। और जस्ट 1 साल बाद में मेरे फिर यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप होनी थी अपने राजस्थान की, SMS स्टेडियम में होनी थी, 6 मार्च 2019 की बात है ये, और 6 मार्च 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, सेम डेट को 1 साल बाद में मैंने ना शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल लगा दिया था।
2: अरे वाह कांग्रेचुलेशंस।
3: और उसी दिन मेरा इवेंट होना था डिस्कस का, मैं डिस्कस की भी तैयारी करता था, मेरे को बाद में पता लगा कि एक खिलाड़ी 3 इवेंट में भाग ले सकता है
2: जी।
3: तो मैंने उसमें सिल्वर भी खेला, डिस्कस के अंदर फिर मेरा सिल्वर मेडल लगा,
2: ये स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन।
3: हाँ स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन था। तो उसमें बिलो विजन भी आते हैं
2: जी,
3: मतलब पार्शली ब्लाइंड होते हैं और बिलो विजन है ना वो सभी खेलते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा क्या है कि करप्शन भी होता है, अपनी टेक्नोलॉजी है ना इंडिया में इतनी एडवांस नहीं है कि वो आंखों को देख के मतलब एग्जैक्ट बता दे इसकी इसका विजन कितना बचा हुआ है, ये मतलब फैसिलिटीज है ना फॉरेन में होती है, तो उसमें करप्शन ज्यादा चलता है, उसमें जनरली मतलब जिनको कम दिखाई देता है ना, वो है ना मतलब सर्टिफिकेट बना लेते हैं और वो मतलब उससे खेलते हैं, वो हमारे कंपटीशन में खेलते हैं जो मतलब कंप्लीट ब्लाइंड है, क्योंकि उसकी तीन कैटेगरी होती है F11, 12 एंड 13। तो उसमें कंप्लीट जो होता है ना वो F11 में आता है, लेकिन वो F12 और 13 के जो क्राइटेरिया है ना वो भी F11 में खेलते हैं, क्योंकि वो मतलब बता नहीं पाते ना वहाँ पे, और वो वहाँ पे है ना ऐसी ही एक्टिंग करते हैं कि वो मतलब दूसरे को ऐसे लगे कि वो ब्लाइंड है, जब वो मतलब उनका टाइम आता है गेम का मतलब फेंकने का शॉट पुट को डिस्कस को, उस टाइम पे वो ऐसे ही नाटक करते हैं, वैसे नहीं करते। क्योंकि ये बातें तो मुझे पता लगी कि जब वाइफ साथ में जाती थी तो वो मतलब बोलती थी कि वो इतना इजी घूम रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए घूम रहे हैं, पूरे फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं अपने आप ही, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक ब्लाइंड पर्सन है ना बिना स्टिक के, तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट वो नहीं चल सकता है अकेला, स्टिक तो उसके हो गया आदमी, उसको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, असिस्ट करने की आवश्यकता है उसको, तो वहां पे वैसे ही चलता है। फिर चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं मतलब उनसे आगे निकल गया फिर भी
2: जी।
3: तो फिर मेरे को ये पता लगा तीसरा इवेंट और कर सकता हूँ, जेवलिंग भी कर सकता हूँ, तो जेवलिंग का मैंने
2: जेवलिंग थ्रो,
3: हाँ जेवलिंग थ्रो, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। उसका दूसरे दिन इवेंट होना था 7 मार्च को
2: जी।
3: तो मैंने पूछा कोच साहब से, वहाँ जो SMS स्टेडियम में कोच हैं लगे हैं, कि मैं जेवलिंग फेंक लूंगा, वो बोला कि पहले फेंकी है, मैं बोला नहीं फेंकी, लेकिन मेरे को ये पता है कि कैसे फेंकी जाती है, देखा है मैंने
2: जी।
3: तो बोले कि यार फिर भी है ना प्रैक्टिस भी नहीं की तो यार नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस 6 तारीख की बात है, ये दूसरे दिन होना था, मैं बोला यार मैं अभी मेरे पास शाम का टाइम है और सुबह मेरा कब होगा इवेंट, टाइम तो मतलब 12 बजे के बाद होना है, तो सुबह का भी टाइम है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसकी, तो हो सकता है मेरा काम हो जाए, मतलब कोई पोजिशन आ जाए। तो बोला कि उन्होंने फिर जेवलिंग लाए, वो मेरे को 1-2 थ्रो करवाए, तो फिर मैंने शुरू शुरू में तो देखो ढंग से थ्रो नहीं कर पा रहा था मैं जेवलिंग को, लेकिन वो मतलब मैंने कम से कम 100-200 बार ट्राई किया उस टाइम पे, तो फिर वो मतलब परफेक्शन आ गया
2: जी।
3: क्योंकि वो ना फिर जैसे
2: खड़े होने जितना स्टैमिना आ गई,
3: हाँ और फेंक सकते हैं अपन उसको
2: जी।
3: 3-4 स्टेप लेके भाई मैं ज्यादा रनिंग ना करूँ तो थोड़ी रनिंग कर लूंगा, और वहां पे ना फिर आवाज करते हैं वो मतलब ताली बजाते हैं ऐसे, तब रिलीज करनी होती है उसको साउंड के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने वहां से फेंक दिया और वो भी फाइनली ब्रॉन्ज पे तो लग गया मेरा
2: वेरी नाइस।
3: तो कोच ने फिर मेरे को ये कहा कि ठीक है तुम कोशिश तो कर ले, लेकिन कुछ मेडल पे तो नहीं लगेगा यार तेरा
2: जी।
3: तो मैं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, अपन ट्राई तो करें, चलो नहीं लगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अपन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है
2: जी।
3: कोशिश करते हैं देखते हैं, लेकिन वो फाइनली हो गया काम। फिर उन्होंने कहा कि तू 12 मीटर ही फेंक पाएगा इसको, तो मैं ठीक है मतलब उन्होंने मेरे थ्रो देखे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो मैंने उस टाइम पे फेंका मैंने ना 24 मीटर फेंकी मैंने उसको,
2: अच्छा
3: 24 पॉइंट समथिंग, मतलब उससे उन्होंने जितना बताया उससे डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही फेंकी मैंने।
2: ओके,
3: तो फिर मैंने उनकी बात को भी गलत साबित कर दिया। वैसे वो मतलब
2: लक्ष्य था ही वैसे भी सबको गलत साबित करना।
3: तो मेरे कोच वैसे देवेंद्र झाझड़िया जी है ना, उनके सानिध्य में किया था मैंने प्रैक्टिस, उनका नाम है RD सिंह, वो अपने राजस्थान से पहले द्रोणाचार्य अवार्ड ही है।
2: अच्छा,
3: हाँ मतलब पहला द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हीं को मिला है अपने राजस्थान से, जिन्होंने पैरा खिलाड़ियों को तैयार किया है। अब देवेंद्र झाझड़िया जी है उनके वो गुरु है, तो उन्होंने गोल्ड मेडल लगाए ना, तो इसके लिए उनको सम्मानित किया गया द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो ऐसे चलता रहा, फिर दूसरे साल मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे, फिर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हो गया
2: जी।
3: और 2019 में फिर लास्ट में क्या हुआ, कोविड आ गया था
2: जी
3: उस टाइम पे
2: जी,
3: 2020 में, तो 2020 में वापस वो मेरे स्टेट वाले होने थे, तो स्टेट में तो मैं चला गया, जोधपुर हुए उस टाइम पे, फिर स्टेट वाले चैंपियनशिप, तो उसमें भी फिर मेरा सेम लगा, शॉर्ट पुट में गोल्ड और उसी में डिस्कस में सिल्वर, और उस टाइम पे वो हटा दिया था जेवलिंग, हटा दिया फिर अपने राजस्थान से, तो वो मैं नहीं कर पाया फिर दो इवेंट ही उसमें। दूसरी बार दूसरी साल भी मैंने सेम रिपीट किया फिर गोल्ड और सिल्वर उसमें, फिर कोरोना, फिर मेरा नेशनल में हो गया, लेकिन नेशनल फिर डिले कर दिए कोरोना की वजह से, नहीं हो पाए। फिर मैं तैयारी कर रहा था तो दोबारा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, मैं वेट लिफ्ट कर रहा था, वो बार है ना पसीने की वजह से स्लिप हो गई मेरे हाथों से, शोल्डर के ऊपर, मतलब वेट गिर गया,
2: फिर इंजरी
3: हो गई फिर शोल्डर में। अब जिस वजह से थ्रो करना वही वापस इंजरी हो गई। अब डॉक्टर को जैसे दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अभी तो यार एक्सीडेंट हो, वो भी मतलब आश्चर्य में थे, जैसे मेरे ब्रेन की सर्जरी हो तो वो टांके वैसे मतलब दिखते निशान गए नहीं थे वहां से।
2: अच्छा।
3: उस टाइम तक तो बोले यार अभी सारा लोड है ना सर पे आता है, तेरी जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो मतलब सर को है ना प्रभावित करती है, और ब्रेन की सर्जरी करवा रखी है ताजा इतने डैमेजेज हैं आपके साथ में, तो यार ये एटलीस्ट और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मेरे कुछ वैसे लेफ्ट ईयर के अंदर है ना थोड़ी सी, जब मैं वेट लिफ्ट करता था ना भार पड़ता था तो मेरे को ऐसे जैसे प्लेन में बैठते हैं तो अपन वो कानों के पर्दे बंद से खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, ऐसे आवाज आने लगती थी मैं जो ही वेट लिफ्ट करता था। अब मेरे दिमाग में चलता कि यार कहीं पर्दा वर्दा है ना कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, अब सुनाई भी नहीं दिएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा वैसे डर हो गया। और फिर डॉक्टर ने भी फिर मेरे को कहा कि यार एटलीस्ट ये तो मत करो, अभी मत करो, इसको कम से कम है ना 3-4 साल आप वेट करो थोड़ा
2: तो हील
3: होके नॉर्मल हो जाए।
2: जी
3: डैमेज ज्यादा है क्योंकि मेरे चेहरे पे भी फ्रैक्चर हुए थे कई, कम से कम ऐसे मानो 25-30 फ्रैक्चर थे मेरे फेस के ऊपर,
2: एक एक्सीडेंट के
3: आंखों की मतलब जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है फेस की वो करने के लिए रिकमेंड किया था मेरे को, लेकिन वो मैंने नहीं करवाई फिर।
2: लेकिन आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि इतनी सर्जरीज हुई है?
3: नहीं वो लगता नहीं है, वो फिर मैंने करवाई भी नहीं। ब्रेन सर्जरी तो हुई थी, आंखों की भी हुई, लेकिन वो ज्यादा नेसेसरी नहीं लगा मेरे को, क्योंकि भाई अपन एक्यूरेट वैसी चाहे ना, अब 19-20 का फर्क है मेरे मतलब चेहरे में सिर्फ, वो भी उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने मेरे को एक्सीडेंट से पहले देखा और बाद में देखा है। जिसने बाद में देखा वो जज नहीं कर पाएगा कि कुछ है इसमें डिफरेंस। फिर वो डॉक्टर ने कहा तो फिर मैं बैठ गया फिर वापस, फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर उस टाइम पे ना राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है
2: जी,
3: तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है ये अपनी स्ट्रीम की है तो इसमें अपन ट्राई करते हैं। तो पहली बार वैकेंसी आई थी राजस्थान में उसकी इंस्ट्रक्टर की
2: जी,
3: तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अब वो कोचिंग से जो नोट्स दिए ना उन्होंने
2: जी,
3: वो मैंने एज इट इज एक एक वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया। अब मेरा ये चीज
2: तो के आप लिए... तो कैसे पढ़ते थे, ब्रेल में पढ़ते थे या?
3: नहीं ब्रेल में नहीं पढ़ता था, ब्रेल तो मैं मतलब मेरे लिए सीखना इतना इजी नहीं था क्योंकि मैं बर्थ ब्लाइंड नहीं था
2: जी।
3: मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर रखी थी। अब जैसे ब्रेल में डॉट्स पे चलता है
2: जी,
3: तो उसमें 6 डॉट होते हैं वो, अब तो मुझे पता है कि वो कैसे है, थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया
2: जी
3: काम चलाओ। लेकिन वो उस टाइम पे तो मैं पढ़ाई करता था तो वो क्लासेस सुनता था ऑनलाइन उनकी घर से
2: जी,
3: ऐप के द्वारा उनका ऐप होता है कोचिंग वालों का, तो ऐप
2: आपको कोई मदद भी करते थे, कोई किताब पढ़ के सुनावे या रिकॉर्डिंग करके? हाँ,
3: कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी वाइफ है ना मेरे को नोट्स पढ़ के सुना देती थी।
2: आपकी वाइफ ने क्या पढ़ाई किया है?
3: उन्होंने वो किया है BA BEd है, MA BEd है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है वो भी
2: जी,
3: तो वैसे उनको टाइम कम ही मिल पाता है क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी भी होती है, घर के काम भी होते हैं
2: जी,
3: और फिर मुझे पढ़ाने वाला काम, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े
2: जी।
3: नहीं वो मेरे दिमाग में ना देखो पहले ऐसे ही आता था कि मैं ना कम से कम हेल्प लूं, चाहे वो मतलब अपने घर वाले ही क्यों ना हो। स्टार्टिंग के अंदर मेरी सेविंग करते थे पापा, तो मुझे अंदर से गिल्ट फील होता था कि मेरे साथ में ऐसा देखो क्या हो गया कि मुझे सेवा करनी चाहिए माता पिता की, आज मुझे करवानी पड़ रही है। तो मैं सोचता बहुत था, मतलब पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं क्या करूँ, मतलब जितना मुझे पढ़ना हो, तो पढ़ाई वाला सीन तो बाद में शुरू हुआ है, ये तो एक्सीडेंट 18 में हुआ है, तैयारी तो मैंने 21 में शुरू की थी, एक्सीडेंट वो दोबारा मेरा वेट गिर गया था तब उसके बाद
2: जी।
3: तो फिर मैंने ना धीरे धीरे अपने आप को ये सोच लिया कि काम अब मतलब अपन को जीना पड़ेगा, तो जहां पर मतलब अपन को नेसेसरी है ना वहीं अपन सहायता लें, उससे पहले नहीं। तो फिर मैंने सारे काम करने अपने सीख लिए थे।
2: अब मैं कभी आपकी वाइफ को लगता था कि ये कहां से मेरे जीवन में आ गया, अभी अभी शादी हुई और अभी अभी ऐसी जीवन है, सपने क्या देखा और हकीकत में क्या हो गया है अभी, क्योंकि नया नया शादी है तो वो छोड़ के भी जा सकती है?
3: हाँ जा सकती है, मेरी सास ने बोला था उनको रिकमेंड किया था इस बात के लिए कि एक अंधे व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है बेटी
2: जी।
3: तो
2: उन्होंने दे दो,
3: हाँ मतलब उन्होंने ये कहा था
2: जी।
3: कि पूरी जिंदगी नहीं गुजर पाएगी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड भी कर दिया जल्दी कि हो गया इनका काम, अब मतलब आप छोड़ सकती हैं चाहो तो, अगर आपकी मतलब जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे।
2: लेकिन
3: उन्होंने वो मतलब कहा कि नहीं नहीं, वो स्ट्रॉन्ग थी वैसे मेंटली मेरी वाइफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा आगे, स्पोर्ट्स में भी कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई में भी करूँगा, ये तो बातें अब हुई हैं
2: जी,
3: उनको नहीं पता था, ये तो अर्लियर स्टेज पे उन्होंने ये कर ली थी फिर। लेकिन उसका डिसीजन था कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं इनके साथ ही रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी कंडीशन हो।
2: कितना समय हो गया था शादी को जब आपका एक्सीडेंट हुआ?
3: मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब 4 साल हो गए थे
2: शादी को।
3: हाँ शादी को 4 साल हो गए थे।
2: तब तक तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो चुकी है।
3: हाँ बस वही है, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मतलब शायद हो सकता है कि वो मेरे साथ रहना पसंद किया उन्होंने,
2: छोड़ा ना।
3: हाँ तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था, हाँ इंस्ट्रक्टर के निकले तो फिर वो मैंने तैयारी शुरू की, कला से सुनता था कभी कभी, वो मुझे पढ़ के सुनाती थी तो मैंने वो वर्ड बाई वर्ड याद कर लिए थे। अब अनफॉर्चुनेटली उस साल है ना इतना पेपर डिफिकल्ट आया, क्योंकि पहली भर्ती थी, किसी को आइडिया नहीं था इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का, नेचर क्वेश्चन की नेचर कैसी होगी इसमें पेपर में। तो जैसे उन्होंने तैयारी करवाई ना, मेरे कोचिंग से 12% ही आए 100 में से
2: जी।
3: अब उसके लिए कम मिनिमम मार्क्स लाने थे 35%, मतलब 35 नंबर लाने जरूरी थे उसमें। तो मेरे जो मतलब नोट्स में पर्सन ही अगर मैंने नहीं पढ़े उसके अलावा तो फिर मैं कैसे पास करूँगा, मैं नहीं पास कर पाया उसको
2: जी।
3: 12% तो नोट्स में थे और कुछ मैंने तुक्के लगाए थोड़ा, मतलब आसपास के ज्ञान को बढ़ा के मतलब मेरे अकॉर्डिंग किया, तो 21 नंबर तक पहुंचा मैं वहाँ।
2: अच्छा
3: लेकिन 35 मैं नहीं कर पाया क्रॉस
2: जी,
3: तो मैं उसमें रह गया। उसके बाद नगर पालिका ईयू की भर्ती निकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की
2: जी।
3: मैंने सोचा इसमें लगाएंगे क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज आती थी, थोड़ा सिलेबस छोटा था उसका और धाराएं याद करनी थी नगर पालिकाओं की। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती, लोग आते जाते रहते हैं
2: और
3: मम्मी की और वो मतलब वाइफ की उनकी भी मतलब आपस में कभी कभी वो हो जाती है नोकझोंक हो जाती है। अब इधर माताजी मेरे को कहती हैं, इधर वो कहती है, मैं यार ये तो पंगा तो है गड़बड़ी यहाँ पे
2: जी।
3: मैंने फिर सोचा कि अपन बाहर चलते हैं, घर को छोड़े ना
2: जी।
3: तब अपना कल्याण हो सकता है।
2: अच्छा
3: तो मैंने छोड़ दिया फिर घर को।
2: अच्छा जी।
3: अब शुरू शुरू में तो फिर
2: श्री राम जी वनवास चले गए जी।
3: तो उसके बाद शुरू में तो देखो मेरी वाइफ आई मेरे साथ में
2: जी
3: 3-4 महीने। तो मेरे जो असिस्टेंट बैठे हैं मेरे पास में, इन्हीं की बिल्डिंग में मतलब आया था मैं।
2: अच्छा।
3: इनके जो दादाजी है ना वो गार्ड हैं।
2: अच्छा।
3: उस बिल्डिंग के
2: जी
3: चौकीदार हैं वो। तो इनके यहाँ पे आके मैंने रेंट पे रहना शुरू किया इनके बिल्डिंग में। तो शुरू में तो वो 4-5 उसने 4 महीने की छुट्टी ली। अब गवर्नमेंट में वो छुट्टियां भी अपन लिमिटेड ले सकते हैं
2: जी।
3: तो जैसे तैसे करके है ना 1 साल निकल गया 4 महीने की। फिर वो मतलब और छुट्टी आगे गर्मियों की छुट्टियां आ गई
2: जी।
3: फिर थोड़ा मतलब 2-3 दिन 4-5 दिन चली गई वापस स्कूल में और वो मेरे को साथ लेके जाती। मैं यार ऐसे नहीं चलेगा ये फिर मतलब ऐसे काम। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अपन एक कंपटीशन का पेपर दें उसमें सिलेक्ट हो जाएं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब वो मैंने पेपर तो देखो क्लियर किया उस टाइम पे ईओ का कर दिया, लेकिन वो पेपर आउट हो गया। किस्मत खराब थी मेरी पेपर आउट हो गया तो सरकार ने कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी
2: जी।
3: अब दोबारा तैयारी की तो वही दिमाग में है कि अब की बार तो हो गया लेकिन अगली बार हो जाए भाई 1% तो मतलब दिमाग में देखो रियलिटी रियलिटी होती है हमेशा, प्लान बी भी होना चाहिए आपके पास। तो मैंने सोचा कि ठीक है। अब वो बोले कि चलो अब तैयारी कर ली घर पे चलते हैं। मैं यार घर पे मैं नहीं जा सकता। तो मैंने उसको क्लियर बोला कि दुनिया को पता लग गया अब ये तैयारी करने गया हुआ है और घर पे मैं चला जाऊँ, घर पे मेरी तैयारी भी नहीं होगी तो यार दुनिया को जवाब क्या मिलेगा
2: जी
3: कि तैयारी करके आ गया, लोग मनाएंगे मजाक। मजाक तो पहले ही बना रखा है लाइफ ने और लोगों ने भी बना रखा है साथ में
2: जी।
3: और अब नहीं होगा तो फिर ये तो नाक का सवाल हो गया है
2: जी।
3: अब मैं ना तभी जाऊंगा जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा
2: जी,
3: वरना नहीं जाऊंगा मैं घर पे। तो फिर उन्होंने मेरे पास जो मेरे असिस्टेंट बैठे हैं विशाल भाई को, इनको स्टार्टिंग में मैंने रखना शुरू किया मेरे साथ में
2: जी।
3: अब ये उस टाइम पे थे शायद 9th क्लास में थे विशाल,
0: 9th
3: हाँ 9th क्लास में थे उस टाइम पे, बच्चा था ये बिल्कुल। तो ये भी थोड़े दिन में इसकी स्कूल होती, अब शाम को थोड़ा टाइम मेरे को देते, लेकिन मेरा मकान वाले मैंने इनके घर को छोड़ दिया था उस टाइम पे, दूसरे मकान में आ गया फिर मैं
2: जी,
3: क्योंकि उसमें थोड़ा वेंटिलेशन का वगैरह ये प्रॉब्लम था। तो मैंने वो फॉर्चुनेटली मेरे मकान वाले का वो भी अच्छे मिले मेरे मेरे को, वहाँ पे जो दीदी रहती थी वो ओनर थी, लैंड लॉर्ड थी वो मेरी क्लासें लगा देती
2: जी।
3: थोड़ा ये मतलब मेरे को टाइम दे देते हैं, तो फिर इससे भी लंबा टाइम इनको भी लंबा ये मेरे को लंबा टाइम नहीं दे सकता था, क्योंकि इसके भी खुद के पर्सनल काम होते थे, बच्चा था, इसका खेलने का भी मन करेगा, ये खेल दोस्तों को भी टाइम देगा उस टाइम पे, खेलेगा भी
2: जी।
3: तो फिर वो मेरी दीदी है ना, वो मतलब लैंडलॉर्ड थी, वो क्लासें लगा दी थी मनीषा दीदी, और मैं क्लासे सुनता रहता, मैं रात को 11 बजे तक लास्ट मतलब उनका पूछ लेता मैं कब सोने का टाइम होगा आपका, तो वो बोलते कि हम 10:30 तक लगा सकते हैं, तो मैं लास्ट मतलब 11 बजे तक क्लास लगवाता, और दो क्लासे है ना
2: करंट पढ़ के सुनाती थी सारी।
3: नहीं नहीं नहीं, ऐप में क्लास लगाता ना मैं, ऐप से सुनता मैं क्लासे, चालू करके दे देती थी मेरे को
2: जी।
3: और मैं मतलब उसको
2: आप सुनते थे
3: और मैं उसको स्पीड में सुनता था, वो भी 2x

0: भाई के वीडियो सुन लेता।
1: अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं सुनने का ही काम कर रहे थे पूरा दिन में।
0: हाँ पूरा दिन
1: या तो ये सुनो या तो वो सुनो।
0: हाँ बस दो ही काम करता
1: ज्ञान है।
0: हाँ ज्ञान ही
1: पूरा दिन ज्ञान है
0: जी भाई, दुनिया से तो देखो कट हो ही गया था मैं, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था दुनिया में अब
1: जी।
0: मेरे को ना मतलब वो खाने को दौड़ते थे, वो जैसी बातें करते थे मेरे साथ में, और वो मेरे को ना अजीब नजरिए से देखते थे। दूसरी बात ये और है तो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं ऐसे मतलब मेरे मन में यही सोचता था कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, सीधी सी बात है, और मैं आज भी यही सोचता हूँ
1: जी। मैं ऐसे ही सोचना चाहिए, अब नॉर्मल क्या है इसमें।
0: मैं ऐसे नहीं सोचता कि मैं अब नॉर्मल हूँ या फिर मेरे कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर मतलब क्योंकि अपन सीधी सी बात है समस्या के बारे में सोचेंगे ना तो समस्याएं आएंगी, और समाधान के बारे में सोचेंगे तो समाधान मिलेगा अपन को
1: जी।
0: तो ये तो नॉर्मल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। इस चक्कर में मूड फ्रेश के लिए सूरज भाई सुन लेते थे, क्लासेस सुन लेते थे, फिर दोबारा मेरा ईओ में नहीं हो पाया। उसके बाद निकली आईए की भर्ती, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, वो भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थी। अब की बार हो जाएगा अपना सिलेक्शन इसमें, इसकी तैयारी करते हैं। फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, और साथ साथ में मैंने शुरू की उस टाइम पे आरएएस की
1: जी।
0: दोनों पैरेलल कर रहा था क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की करी थी, वो सेम सिलेबस था उसमें आईए में, कंप्यूटर साइंस वाला ही। तो मैंने सोचा कि होएगा ना तो इस नॉलेज पे ही हो जाएगा अपना, और साथ साथ में आरएएस की तैयारी करते हैं। फिर मैंने आरएएस की शुरू किया, और वाइफ भी चली गई थी, मैं अकेला रहता था, और अभी भी मैं अकेला रहता हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ तो
1: वाइफ अपनी बेटी के साथ, आपकी ससुराल, आपकी मायके में, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ,
0: पेरेंट्स के साथ वही रहती है।
1: उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स?
0: मेरे पेरेंट्स हमारे घर पे रहती है
1: जी।
0: बेटा मेरे वैसे एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है, तो अब अकेले रह के मैं खूब क्लासेस सुनता था, और साथ साथ में नोट्स पढ़ता था, और मेरे को कोचिंग में, मतलब मेरे को कोचिंग अच्छी मिली, मैं कोचिंग में जाता था, फिर मेरे को वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे मित्र बन गए थे, तो वो मेरे को पढ़ाते नोट्स
1: जी।
0: कभी मेरे को जरूरत पड़ती ना कि ये चीज़ मेरे को पढ़ के सुन लेनी चाहिए दो तीन बार, तो वो मैं उनसे रिकॉर्ड भी करवा लेता था फिर नोट्स को, नोट्स रिकॉर्ड किए हुए, वो कभी कभी वो सुन लेता, और वो कभी मेरे वो दोस्त पढ़ा देते हैं और क्लासेस सुनता
1: जी।
0: 14 से 15 घंटे पढ़ाई की रही है मैंने
1: जी,
0: और पिछले मतलब 4 साल से लगातार करी इतनी मैंने पढ़ाई
1: जी।
0: तो 2023 में तो देखो आईए के अंदर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, मतलब जनवरी में था उसका एग्जाम, तो फिर वो उसमें सिलेक्ट हो गया मैं 23 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरे साथ में दिक्कत ये हुई कि मेरे को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने अयोग्य करार दे दिया मेरे को।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा कि आप डिसेबल मतलब आंखों से होना तो फिर हम आप हमारे विभाग आपको अलाउ नहीं करेगा, आपने चाहे एग्जाम क्लियर कर दिया हो। मैं यार ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, विज्ञप्ति में डालनी चाहिए थी ये बात। मैंने ना देखो प्रयास किया ईमानदारी से, मैंने मेरा टाइम भी खराब किया है स्पेशली आपके लिए, इस भर्ती के लिए, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो आप ये कह रहे हो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपके विभाग के लिए। आप मुझे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी देके देखिए, देखिए तो सही, मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा तब आप कह सकते हैं। मैं चाहे असिस्टेंट रखो, किसी को भी रखो, मैं मेरा काम करूंगा, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा मैं पूरा। वो बोले फिर मेरे को, मैं अधीनस्थ बोर्ड में गया वहाँ पे सचिव के पास, तो वहाँ पे भी मजाक बनाया मेरा। वो क्लर्क थे, वो बोले यार भाई यार तू क्या, पहली बात तो रेस्पेक्ट तो देगा ही नहीं कोई।
1: हाँ।
0: मुझे ऐसे लगता है।
1: हाँ।
0: तू तो पार्ट में ही बात करते हैं वो
1: जी,
0: अरे तू क्या कर पाएगा, तेरे को दिखाई देता नहीं। हाँ। यार
1: कितने भी पढ़ा लिखा सक्सेसफुल हो जाओ फिर भी जस्ट बिकॉज आपको विजन नहीं है इसीलिए आपका कोई वैल्यू नहीं है।
0: हाँ वो मेरे को ऐसे बोलते कि आप बोझ बन जाओगे, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला। तो फिर मैंने उनको समझाया यार आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो
1: जी।
0: मैं मेरे दिमाग में ना फिर उस दिन है ना ये सोच लिया मैंने कि अब मैं आरएएस ही बनूंगा, प्रशासनिक अधिकारी ही बनूंगा मैं, और एक दिन इनको मतलब साबित करके दिखाऊंगा अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ काम
1: जी।
0: तो उस टाइम से फिर मैंने शुरू कर दिया आरएएस का, मैं कर ही रहा था साथ में। तो फिर फाइनली मैं 2023 में तो रह गया था, 4-5 नंबर से रहा था मैं फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग फिर मेरी फॉर्चुनेटली 2024 में भी है ना बराबर भर्ती निकल गई, मैं लक्की था, बैक टू बैक भर्ती आ गई आरएएस की, वरना 2-3 साल में आती है हर बार
1: जी।
0: तो फिर मेरा 2024 में फाइनली है ना सिलेक्शन हो गया आरएएस में।
1: कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने जीत लिया।
0: हाँ अब लोगों का ना जो लोग ये बात बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग ये बात बोलते हैं कि हमें

0: पहले ही पता था ये सब कुछ कर सकता है। सेम पर्सन सेम बात कर रहा है
1: जी।
0: जिसने ये बोला कि ये नहीं कर सकता था,
1: हाँ।
0: आज वही कर, वही ये बात है ना, कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि हमें तो पहले ही विश्वास था कि ये कर सकता है कुछ भी। वही उन्हीं लोगों की जो बोल रहे थे हीरो से जीरो बन गया,
1: हाँ।
0: आज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो साथ में मेरे आके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, स्टेटस लगाना चाहते हैं कि अभिषेक हमारा दोस्त है।
1: अच्छा,
0: ये आरएस भाई आरएस बन गया प्रशासनिक अधिकारी, तो हो सकता है कि हमारे काम आ जाए। आज वही लोग है ना, मतलब आके है ना फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं जो मतलब किस्मत की दुआई देते थे, धरती पे बोझ बताते थे, आज वही मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को
1: जी।
0: लोगों का मतलब काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको जो करना है ना वो करिए, मेरा तो मानना ये है
1: जी।
0: लोगों अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे ना
1: जी,
0: तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप जवाब दे देता है
1: जी। सो अभिषेक जी, इतनी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ लर्निंग है। जब आप अपने आप को देखते हैं, वैसे आपने बातचीत के दौरान कई बातें शेयर की है, विजन के पहले और विजन के बाद, अब अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं?
0: वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है
1: जी।
0: अगर मैं पर्सनली देखूं तो बस इतना फर्क है कि मैं थोड़ा सा इस जीवन के बारे में थोड़ी सच्चाई को, ट्रूथ को है वो अच्छे से समझ पाया हूँ
1: जी,
0: कि क्या रियलिटी है
1: जी।
0: इस भागा दौड़ में अपन यूं ही भागे जा रहे हैं, अपन को कुछ पता ही नहीं है, फालतू के माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। फाइनली है ना, मेरे को तो ऐसे लगता है कि कोई आना जाने नहीं है इन बातों में, कुछ नहीं है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अपन सांसारिक
1: वस्तुओं
0: में उलझे हुए हैं और कुछ उनका पार्ट भी होते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी ऐसा करें
1: जी,
0: ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जैसे मतलब अपन बात करें कि हर व्यक्ति, हर फैमिली वाला ये सोचता है कि मेरा बेटा बेटी है ना डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो वही बात है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बच गए बन जाएंगे, तो फिर वो क्लर्क कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा तो वही है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, मैं अगर मैं पहले टच में आ जाता तो हो सकता है मैं सब कुछ छोड़ देता
1: जी।
0: अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मेरे को जैसा गृहस्थ जीवन मिला है तो मैं इसके साथ में रह के।
1: तो आध्यात्मिकता आपको कैसे मदद किया?
0: आध्यात्मिकता तो देखो, हकीकत तो ये है कि कुछ अच्छी चीजें होती है ना लाइफ में, वो चाहे अपन यहाँ बैठ के बातें कर लें और चाहे साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे जाके बातें करें, तो भी वो वही रहेगी। तो मेरे को याद है कि मैं जब 18 साल कॉलेज में था ना, तो एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया था, हु एम आई, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया
1: जी।
0: और उसके नीचे भी लिखा मे बी अभिषेक कुलेरी एल्स सर्चिंग और डॉट डॉट के। तो ये बातें है ना, वो प्रश्न मेरे को है ना सूरज भाई से जुड़ने के बाद पता लग गया
1: जी।
0: हु एम आई, आई एम ए सोल
1: जी,
0: और अपना है सुप्रीम सोल से नाता है, ये हकीकत है। जैसा अपन सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं
1: जी।
0: अपने मतलब ओरा को अपन इतना प्योरिटी रखें उसमें
1: जी,
0: और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों से दूर रहेंगे ना, तो कॉस्मोस आपकी है ना अपने आप सहायता करने लगता है, ये हकीकत है।
1: ये आपने अनुभव किया है।
0: जो मैं सोचता हूँ, ऐसे सोच के बैठ जाऊं कि मुझे इसका जवाब मिले, तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरनली मन में ऑटोमेटिक कभी कभी विचार आते हैं, तो जनरली 90% ऐसा ही होता है कि उनका जवाब है ना अपने आप में मिल जाता है
1: जी।
0: मैं मतलब बाहर जाके भी नहीं देखूं, तो एक बार मैं एक मजाकिया किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ में
1: जी।
0: तो मेरे पड़ोस में आंटी है, वो उनके हस्बैंड है डॉक्टर
1: जी।
0: अब वो थोड़े से है ना, वो ऐसे मतलब उनका व्यवहार है ना थोड़ा ऐसा है कि अगर उनसे जाके अपन गार्बेज के लिए भी हेल्प मांग लेंगे ना, कि आपका ये कचरा पड़ा है ये मेरे को दे दीजिए, तो वो भी ना दे वो चाहे वो उनके काम का नहीं है
1: क्योंकि आप मांग रहे हैं इसलिए कुछ तो है इसलिए
0: हाँ, मतलब वो फिर ऐसा सोचेंगे हाँ इसमें कुछ ना कुछ ये काम की है अपनी चीज। तो एक दिन फिर अब मेरे को दुनिया के बारे में मैंने खूब सोचा एक्सीडेंट के बाद में
1: जी,
0: क्योंकि अपने जिस आसपास में जितने लोगों से टच में है सब के बारे में सोचेंगे अपन कौन कैसा है
1: जी।
0: तब उनके बेटे की मतलब डॉक्टरी है उनका बेटा भी
1: जी।
0: उनके बहू आ गई, उनकी कोरोना हो गया है, कोरोना टाइम की बात है। अब मैंने सोचा कि यार ये औरत मतलब अपनी बहू की है, वो मतलब कोरोना हो गया तो वो सही हो गई, मुझे ऐसा पता लगा, तो मैं यार ये आने दे सकती है क्या नीचे, मैं मन ही मन सोच रहा हूँ अब, मतलब अपने साथ रख रही होगी क्या आंटी जी। अब मैंने तो सोच लिया अब दूसरे दिन ये ना वो बहू ना छत से, मतलब वैसे दूरी पे है थोड़ा सा, 50-100 मीटर की दूरी पे, वो छत से है ना अपनी वो आंटी जी को बोल रही कि मम्मी अब तो मैं सही हो गई, नीचे आ गए, आ जाऊं क्या?
1: शायद ये आवाजें नहीं सुनते आप जब आप देख सकते तो।
0: हाँ पहले नहीं सुनता था तो फिर उन्होंने जवाब दिया आंटी ने, नहीं नहीं नहीं वो देसी भाषा मारवाड़ी में बोला उन्होंने, ना तू ऊपरी बड़ी रहे, ऊपरी बड़ी रहे तो नीचे बारह और कोरोना लगा देगी हमारे भी कोरोना लगा देगी फालतू तो, जबकि वो है ना मतलब उससे ना कोरोना सही हो गया उसका
1: जी, फिर
0: लेकिन वो मानसिक दिवालियापन है ना उनका, मतलब वो ऐसे मतलब अपन को पहले पता होता है कि कौन पर्सन कैसा है
1: जी।
0: तो जब मैं बाबा से टच में आया ना तो मुझे मतलब ये चीजें ऐसे पता लग जाती है, हाँ सिक्स सेंस से, मतलब फिर है ना जवाब अपने आप मिल जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, और मैं शेयर भी नहीं करता ज्यादा बातें।
1: सही बात,
0: क्योंकि किसी का देखो प्रभाव है ना, कम भी नहीं करना चाहिए किसी के आगे, अपन क्यों बोल के कहें किसी के बारे में, हमें पता है तो पता है ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपन को कोई मतलब भी नहीं है उस बात से।
1: सही बात है अभिषेक जी, आपने बहुत सारी बातें जो अपनी जीवन की हकीकतें हैं उन चीजों को समझना, देखना, गौर करना आपने ये सीखा समझा और कर भी रहे हैं। अंत में जाते जाते जैसे हमारी मन की आंखों से कार्यक्रम है उसका जीवंत आपने, आपके जीवन के उदाहरणों से तो आपने बहुत सारी बातें कही है, अब अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं अभी?
0: देखो फ्यूचर तो मैंने अभी यही सोचा है कि मैंने प्रशासनिक सेवा को चूज भी इसीलिए किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा है ना सेवा भाव से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और कोई व्यक्ति अंतिम लाइन में खड़ा है और अंतिम पंक्ति में जहां मतलब अंतिम पायदान पे है ना वहां तक मैं पहुंच सकूं मेरी सेवा के माध्यम से, जो भी मुझे सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी, जिस भी विभाग में भेजेंगी मैं मेरा काम ईमानदारी से करूँगा, और जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा मतलब लास्ट व्यक्ति तक कैसे पहुँचे वो पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसको वहां तक पहुंचाने की, जिस वजह से उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके
1: जी। एक बात और है इसमें, जब भी हम दिव्यांगों की बातचीत करते हैं एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड सोशल इक्वालिटी, इन चीजों की बहुत हम चैलेंजिंग देखते हैं, ये चीजें बहुत कम मिलते हैं दिव्यांगों के लिए। एक सोशल एक्सेप्टेंस कम मिलता है, एक्सेसिबिलिटी भी कम मिलती है, एक्सेप्टेंस भी कम मिलता है, और कई चीज़ें आपने खुद भी अपने जीवन से शेयर किया है। तो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मैं आरएएस बनूंगा तो मैं सेवा करूंगा,
0: नहीं बन गया हूं मैं, अब सेवा करूंगा, मेरे को विभाग अलॉट हो जाएगा तब।
1: हाँ
0: हाँ,
1: आप जैसे आरएएस अभी बने हैं
0: हाँ,
1: तो आप सेवा करने की जो आप सोच रहे हैं, एक होता है कि जब आप देख पा रहे थे दुनिया को अपने स्थूल नेत्रों से, उस समय हमको इतना अंदाजा नहीं होता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड की दुनिया क्या होती है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। अभी आप खुद वो जीवन जी रहे हैं, तो अभी आप क्या सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसी एजेंडा या क्राइटेरिया है कि सबसे पहले मैं इस वर्ग के लोगों के लिए ये चीज़ें करना चाहता हूँ?
0: देखो फाइनली तो मैं अब जब ही बता पाऊंगा, जैसे मेरे को अभी मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, जैसे जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर मिलेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में
1: जी,
0: तो वहाँ पे हो सकता है जैसे मतलब मंडी के अंदर शोषण होता है किसानों का, जो उनके अनाज पैदा होता है खेतों में उनका, उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता अपनी फसल का, तो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं ईमानदारी से प्रयास करूँ और उनको मतलब उनका सही उपज का जो सही मूल्य है वो मिले, उनका शोषण ना हो मंडियों के अंदर बनियों के द्वारा, उनको एक्चुअल कीमत मिले। और दूसरा लेबर वेलफेयर ऑफिसर बन सकता हूँ मैं, सेकंड प्रेफरेंस है उसमें श्रम कल्याण में, तो मैं वहाँ भी ये देखूँ अगर मुझे ये डिपार्टमेंट अलॉट होता है तो फिर मैं देखूँगा कि जो भी फैक्ट्रियों में मजदूरों का मतलब शोषण होता है, उनको टाइमिंग मतलब जितना भी होता है उनका उससे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, उनको अलग मेहनताना भी नहीं दे पाते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट्स ने निर्धारित कर रखे हैं उनको वेजेज वो नहीं दे पाते हैं, तो मैं उनका एनालिसिस करूँगा जाके और देखूँगा उनकी हालत कैसी है, अगर उनका शोषण हो रहा होगा तो मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि उनको सही उनका वेजेज मिले उनके मेहनताना के अकॉर्डिंग
1: जी। सो कुल मिला के आपको जो भी डिपार्टमेंट मिले उसमें जो भी लूप होल से आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिव्यांगों के बारे में सोचें।
0: नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दिव्यांगों के बारे में सोचूं, मतलब वो तो है ये तो मैंने देखो, अभी मैं जहाँ से आता हूँ सेंटर से जुड़ा हूँ, वहाँ की हमारी इंचार्ज जो सेंटर इंचार्ज हैं सादलपुर की, शोभा दीदी हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अगर डिसेबल हो चाहे नॉर्मल हो, अगर किसी को आवश्यकता है ना अपनी मदद की तो मुझे वो कभी भी बता सकती हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि लोग शिक्षित, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो शिक्षित होंगे ना तो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होंगे, तो मैं वैसा समझता हूँ कि अगर वो शिक्षित हों और उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है शिक्षा लेने में, चाहे वो मतलब उनको पैसों की हो, तो मैं बेझिझक उनकी हेल्प करूँगा, चाहे वो डिसेबल हो चाहे डिसेबल ना हो।
1: थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत ही आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बातचीत करके। वाकई में मन की आंखों से ये कार्यक्रम जो है वो हमारी मन की आंखों से दुनिया को देखने की एक दिशा देती है। आप सभी के जीवन के अनुभव तमाम श्रोताओं की आंखें खोलती हैं और एक एक्सेप्टेंस कहे या फिर हमारी जो साथ में रहने वाले दिव्यांग साथी जो हमारे आसपास में रहते हैं उनके साथ हमें कैसे जीना है, उनको कैसे समझना है और उनको किस तरीके की मदद की आवश्यकता होती है, ये सारी बातें समझने को मिलता है। तो आप इतने खुल के सच्चाई के साथ अपनी जीवन की कहानी को हमारी श्रोताओं के साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका, शुक्रिया।
1: दोस्तों अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं और अभी तक आप सुन रहे थे अभिषेक कुल्हारी जी को। आप मूलतः राजगढ़ से है लेकिन वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं। आपने RIS की परीक्षा को क्रैक किया है और बहुत जल्द वो नियुक्त होने वाले हैं अपने पद पर। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

ओम शांति। आज है 28 अगस्त 2026 और आज भारत का सबसे पावन त्योहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पवित्र प्रेम का प्रतीक है, जहां परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं और पावन बनने के रक्षा सूत्र में हम सबको बांधते हैं। इसीलिए कहा जाता कि परमात्मा ही पतित पावन है। वो जब इस धरा पर आते हैं तो सबको पावन जरूर बनाते हैं। ये कर्म प्रैक्टिकल भगवान ने किया है, हम आत्माओं को पावन बनाया है और हर कल्प के अंत में संगम युग पर हमें पावन बनाते रहते हैं। उसी का प्रतीक ये पावन धागों का त्योहार है, जहां स्वयं में हम एक संकल्प लेते हैं, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पावन बन दूसरों को भी पावन बनाएंगे। रक्षा बंधन कहा, अर्थात बंधन तो कभी किसी को प्रिय नहीं लगता है, लेकिन ये बंधन अनोखा बंधन है, प्रेम का बंधन है, जिस प्रेम के बंधन में हर आत्मा खुशी खुशी से बंध जाती है। राखी के दो धागे हैं, ये दो धागे प्रतीक है कि जीवन के अंदर पावन बनने के लिए हिम्मत भी चाहिए और उमंग उत्साह खुशी भी चाहिए। पावन बनो तो खुशी से बनो, हिम्मत से अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लो। ये दो धागे हैं। साथ ही जब गांठ बांधते हैं तो ये गांठ दृढ़ संकल्प की स्वयं के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो पहली गांठ है स्वरक्षा की, अर्थात कि हमारी मनस्थिति की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। कोई दूसरा मेरी मनस्थिति की रक्षा नहीं कर सकता है। दूसरी गांठ है मर्यादा रक्षक बनने की, कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो मर्यादाएं हमें दी है, उन मर्यादाओं की रक्षा हमें अपने जीवन में जरूर करनी है। और तीसरी गांठ है यज्ञ रक्षक बनने की, अर्थात बाबा के घर के वातावरण की शुद्धि की रक्षा। भावार्थ ये कि बाबा के घर के वातावरण को मुझे शुद्ध रखना है, पावन रखना है। कभी इस वातावरण के अंदर कोई भी प्रकार की अशुद्धि न आए, उसका संकल्प अंदर ही अंदर दृढ़ता से हमें करना है। तो इसीलिए रक्षा सूत्र में सबसे पहले ये तीन रूप से रक्षक हमें बनना है, स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। जब हम स्वयं से ये दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा हमारा रक्षक सदा हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। तो आज के बाबा के मधुर महावाक्य में भी हम यही बात सुनेंगे कि पतित पावन बाप आते हैं सबको पावन बनाने, आकर के कैसे हम सबको पावन बनाते हैं और ये दृढ़ संकल्प करा के पावन दुनिया में ले चलते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है?
और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं तो मेरा नाम नहीं बदलता है। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है, ब्रह्मा बाबा का नाम बदल जाता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं, बाबा कहते मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। इनकॉग्निटो माना आत्मा है गुप्त, शरीर है प्रत्यक्ष। कॉग्निटो माना प्रत्यक्ष, आत्मा है इनकॉग्निटो माना गुप्त। मैं भी अशरीरी हूं, बाप इनकॉग्निटो इन शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाप भी गुप्त है परंतु इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं परंतु उनको कोई पता ही नहीं।

कि समझते हो हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसाताल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। उत्थान और पतन की या चढ़ती कला उतरती कला की ये सीढ़ी है, तो बीच में क्या होता है बाबा कहते यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहते मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है ततत्वम, जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है ततत्वम। मैं तो आता ही हूं साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूं तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए, लाखों साल पहले ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में सारा शिवलिंग हीरो से जड़े हुए थे, हीरो से जैसे पूरा जड़ था, तो उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरत के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने

कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म कौन से हैं? सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर के करके जाते हैं। पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं। सोमनाथ के मंदिर को 17 बारी लूटा, ऊंटे भर भर करके हीरे जवाहरात सब लेके गए। तो सोचो उस मंदिर के अंदर भी कितने हीरे जड़ित या हीरे जवाहरात से जड़ा होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों को लूटा नहीं, उनको तोड़ा गया, लेकिन शिव के मंदिर को लूटा गया। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनके छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन तो राजा महाराजाओं के साथ था, तो बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, माना द्वापर युग में ऐसी भव्यता होगी तो सोचो स्वर्ग में तो कैसा होगा। द्वापर युग में जब सोमनाथ का मंदिर बनाया, इतने हीरे जवाहरतों से जड़ा हुआ, तो उन राजाओं के महल भी कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं कि सोचो अगर द्वापर में ऐसे महल होंगे तो सतयुग के कैसे होंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। 5000 क्या, आज तो करोड़ों की, लाखों में एक एक जमीन का टुकड़ा होता है। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वह दिन आया आज। बाप को गरीब निवास कहते हो, अब अर्थ समझाना किसको शाहूकार बनाते हैं। जरूर यहां जो आएंगे उनको शाहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है।
लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहां तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाबा के पास तो कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए, अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो, लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्र से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, ये बहुत जन्म के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना, आत्मा सुनती है तो शरीर भी जैसे एकदम झूलता है खुशी में। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो, बाबा के लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया, कण कण में, बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में भी कहते श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है, वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास हूं ना, भारत ही सबसे शाहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है, यह ह्यूज ड्रामा है, ड्रामा जो शूट हुआ बहु रिपीट होगा, ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा, इसके आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं, बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नरसे नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। रहस्य कितना सुंदर बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण का जितना नाम है उनका पिता का नाम इतना नहीं होगा,
भले वो राजा होंगे लेकिन पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, बाबा ने तो सारा हिसाब बताया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। स्वार्थ व ईर्ष्या के वश कोई भी बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा, ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।